मीडियम वेव 205.76 मीटर अर्थात 1458 किलो हर्स और FM 100.1 मेगा हर्स पर ये आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है। आज रविवार है, शक संवत 1948 के आषाढ़ माह की 21वीं तिथि, तदनुसार 12 जुलाई सन 2026। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में प्रातः के 5:52 होने को हैं। आरंभ होती है हमारी आज की सभा।

0: ये आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है। प्रस्तुत है खेत खलिहान कार्यक्रम। इसमें सुनिए वार्ता नेनुआ की खेती। वार्ताकार हैं श्रीनिवास सहाय।
1: भाइयों नमस्कार। नेनुआ एक महत्वपूर्ण सब्जी की फसल है। नेनुआ की खेती संपूर्ण भारत में की जाती है। अपने यहीं भी नेनुआ की खेती दोनों मौसम में की जाती है, एक तो गर्मा मौसम में और बरसात के मौसम में भी इसकी खेती की जाती है। नेनुआ की किस्मों में घिया तुरई प्रमुख है। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान द्वारा यह प्रस्तावित है किस्म है। पूसा चिकनी 45 दिनों में फूलती है। काली तुरई में पूसा नसदार प्रमुख किस्म है जो 60 दिन में तैयार होती है और पंजाब सदाबहार किस्म भी है। काली तुरई में एक द्विलिंगी किस्म भी है जिसमें सतपुतिया भी कहा जाता है। इसकी बुआई वर्षा ऋतु में जून जुलाई के मौसम में की जाती है। लाइन से लाइन की दूरी 1.5 मीटर और पौधे से पौधे की दूरी 1 मीटर रखें। अधिक फैलने वाली किस्मों के लिए 4 मीटर की दूरी पर पौधों को लगाना चाहिए। एक जगह पर 2 बीजों की आप बुआई करें। सामान्य रूप से 20 से 25 टन गोबर या कंपोस्ट की खाद खेत तैयार करते समय मिट्टी में मिला देना चाहिए। इसके बाद 60 किलोग्राम नाइट्रोजन, 80 किलोग्राम फास्फोरस और 60 किलोग्राम पोटास प्रति हेक्टेयर के हिसाब से देना चाहिए। फास्फोरस की पूरी मात्रा और नाइट्रोजन की आधी मात्रा बोते समय तथा बची हुई नाइट्रोजन की आधी मात्रा बोने के 1 से 1.5 महीने बाद तथा बची हुई नाइट्रोजन की आधी मात्रा बोने के 1 से 1.5 महीने बाद खड़ी फसल के रूप में जड़ों के पास देनी चाहिए। निकाई करके पौधों के पास से खरपतवार हरदम निकालते रहना चाहिए। वर्षा ऋतु में सिंचाई की कोई आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन गर्मियों में सिंचाई हर 5वें दिन पर करनी चाहिए। फली की छोटी अवस्था में ही तुड़ाई करते रहना चाहिए, क्योंकि फल जब कड़े हो जाते हैं तो उस समय जो है इनकी गुणवत्ता में भी कमी आ जाती है और बाजार भाव भी आपको कम मिलते हैं। इस तरह से जो आप नेनुआ की खेती करते हैं तो उस पर कुछ कीड़ों के भी आक्रमण करने की संभावना होती है। कीड़ों में रेड पंपकिन बीटल, एपिलेकना बीटल, माहू, कैटरपिलर और स्टिक बग्स प्रमुख हैं। रेड पंपकिन बीटिल जो कीड़ा होता है उसके प्रौढ़ पत्तियों को खाते हैं, अनियमित सुराग उसमें बना देते हैं। लार्वे भूमि में पड़े रहते हैं जो लताओं और फलों को प्रभावित करते हैं, इससे फल जो है सूख जाते हैं। इसके लिए आप कीटनाशक दवा का प्रयोग कर सकते हैं जिसमें डिप्टेरिक्स दवा है, इसका छिड़काव आप कर सकते हैं। और पंपकिन फ्रूट फ्लाई जो है इस कीड़े की तितलियां फलों में सुराख कर देती हैं जिससे उनमें सड़न हो जाती है, इसके लिए भी डिप्टेरिक्स दवा का आप प्रयोग कर सकते हैं। माहू कीड़े से आप भलीभांति परिचित हैं। माहू कीड़े रस चूसते हैं, लेकिन ग्रीष्मकालीन फसल में इनका ज़्यादा आक्रमण होता है, वर्षाकालीन फसल में कम आक्रमण होता है। कैटरपिलर पत्तियों को खा जाते हैं और पत्तियों की नसों को खा करके जालीनुमा बनावट छोड़ जाते हैं। इनकी रोकथाम के लिए भी कीटनाशक दवाओं का आप प्रयोग करें। पाउडरी मिल्ड्यू सबसे महत्वपूर्ण बीमारी है। इस बीमारी को रोकने के लिए कैराथेन दवा का आप प्रयोग करें या सल्फर चूर्ण का बुरकाव भी कर सकते हैं। डाउनी मिल्ड्यू रोग में पत्तियों की निचली सतह पर धब्बे पड़ जाते हैं और ये ऊपरी सतह पर भी धब्बे होते हैं, पीले रंग के बन जाते हैं। इनकी रोकथाम के लिए आप बोर्डेक्स मिश्रण का प्रयोग कर सकते हैं। तो इस तरह से आप सब्जियों की खेती जो करते हैं उससे आपको लाभ होगा।
0: आप सुन रहे थे खेत खलिहान कार्यक्रम के अंतर्गत वार्ता नेनुआ की खेती। वार्ताकार थे श्रीनिवास सहाय। प्रसारण आकाशवाणी भागलपुर से किया गया। कुछ ही देर में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की यात्रा पूरी कर स्वदेश रवाना हो गए हैं। न्यूजीलैंड से स्वदेश लौटते हुए श्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों के समक्ष अवसरों की अपार संभावनाएं हैं और वे अपनी साझेदारी को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज दिल्ली स्थित पूसा परिसर में पर्यावरण संरक्षण संकल्प कार्यक्रम में शामिल होंगे। इस अवसर पर वे देश भर से आए लगभग 17,000 वृक्ष मित्रों से संवाद करेंगे। श्री सिंह वृक्ष मित्रों के साथ पूसा परिसर में वृक्षारोपण अभियान में भी हिस्सा लेंगे। उत्तर प्रदेश सरकार एक विशाल अभियान में आज 35 करोड़ पौधे लगाएंगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज सुबह गोरखपुर से राज्यव्यापी पौधारोपण महायज्ञ 2026 का शुभारंभ करेंगे। वे एक पेड़ मां के नाम अभियान के अंतर्गत गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे और आरकेबीके के पास ताल रिंग रोड के किनारे पौधे लगाएंगे। मध्य प्रदेश में आज मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना की 38वीं मासिक किस्त जारी की जाएगी। मुख्यमंत्री मोहन यादव प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से 1,25,00,000 से अधिक महिलाओं के बैंक खातों में 1,835 करोड़ रुपए से अधिक की राशि अंतरित करेंगे। इसके अतिरिक्त 83 करोड़ रुपए से अधिक की 16 नई लोक कल्याणकारी परियोजनाओं का शिलान्यास भी करेंगे। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य के लिए समान नागरिक संहिता विधेयक के मसौदे की जांच के लिए 9 सदस्यीय समिति का गठन किया है। सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई इसकी अध्यक्ष होंगी। खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण FSSAI ने खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2026 के अंतर्गत नियमों का उल्लंघन करने के आरोपों से संबंधित कई उपभोक्ता शिकायतों के बाद स्विगी इंस्टामार्ट को 9 नोटिस जारी किए हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में FSSAI ने कहा है कि स्विगी को विस्तृत स्पष्टीकरण और अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है और ऐसा न करने पर उचित कानूनी कार्रवाई शुरू की जाएगी। उपभोक्ता शिकायतों में स्विगी इंस्टामार्ट पर उत्पादों के निर्धारित अवधि समाप्त होने, खराब, सड़े, दूषित और अन्य प्रकार के असुरक्षित खाद्य उत्पादों की आपूर्ति का आरोप लगाया गया है। भारतीय जनता पार्टी ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायकों को अपने पक्ष में करने के जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के आरोप की आलोचना की है। दिल्ली में पत्रकारों से बातचीत में पार्टी के प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा

0: कि श्री अब्दुल्ला का यह बयान अत्यंत गैर जिम्मेदाराना है और इसकी निंदा की जानी चाहिए। भारतीय पर्यटकों को ले जा रही एक स्पीड बोट कल वियतनाम के फुकवोक द्वीप के पास पलट जाने से 15 भारतीय पर्यटकों की मौत हो गई। वियतनाम स्थित भारतीय दूतावास ने पुष्टि की है कि मृतकों में 13 पुरुष और 2 महिलाएं शामिल हैं। दूतावास ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में मृतकों की सूची साझा करते हुए कहा कि ये नाम वियतनामी अधिकारियों द्वारा उपलब्ध कराए गए हैं। दूतावास के अनुसार मृतकों से 10 तमिलनाडु से और 3 आंध्र प्रदेश से जबकि 2 केरल से थे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय नागरिकों के साथ हुई दुखद नाव दुर्घटना पर शोक व्यक्त किया है। इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के होर्मुज जलडमरू मध्य में साइप्रस के झंडे वाले जहाज पर हमले के बाद अमेरिका ने ईरान पर नए हमले शुरू कर दिए हैं। अमेरिकी सेना ने कहा है कि ये हमले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के निर्देश पर किए गए। इस बीच ईरान ने होर्मुज जलडमरू मध्य को अगली सूचना तक बंद कर दिया है। और खेलों में इंग्लैंड ने कल रात साउथैम्पटन में 5वें और अंतिम T20 क्रिकेट मैच में भारत को 56 रन से हराकर श्रृंखला 4-0 से जीत ली है। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में इंग्लैंड ने आज तड़के फ्लोरिडा के मियामी स्टेडियम में नॉर्वे को 2-1 से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। स्पेन और फ्रांस पहले ही सेमीफाइनल में जगह बना चुके हैं। उधर लंदन में कल रात विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट में 21 वर्षीय लिंडा नोस्कोवा ने चेक गणराज्य की करोलिना मुकोवा को हराकर महिला सिंगल्स का खिताब जीत लिया। महिला डबल्स के फाइनल में आज गुओ हान्यो और लुइसा स्टेफेनी की जोड़ी का मुकाबला क्रिस्टीना माल्डिनोविच और ग्रेबेलिया डाब्रोवस्की की जोड़ी से होगा। यह मैच शाम 5:30 बजे शुरू होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 205.76 मीटर अर्थात 1458 किलोहर्ट्ज़ और FM 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है। प्रस्तुत है आज का चिंतन मनन।
2: तिरुवल्लुवर दक्षिण भारत के एक महान संत थे। वे कबीर की भांति कपड़े बुनने का काम करते थे और उसी से अपनी जीविका चलाते थे। उनकी एक विशेषता थी कि वे सभी से प्रेम करते थे और किसी भी परिस्थिति में क्रोधित नहीं होते थे। इस कारण उनकी दूर दूर तक ख्याति थी। एक बार तिरुवल्लुवर की ख्याति एक अत्यंत दुष्ट धनी व्यक्ति तक पहुंची। उसे ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा कि लोग उससे अधिक तिरुवल्लुवर की प्रशंसा करते हैं। अतः उसने तिरुवल्लुवर को अपमानित करने और उन्हें क्रोध दिलाने की ठान ली। एक दिन वो धनिक व्यक्ति तिरुवल्लुवर के घर पहुंच गया। उसने तिरुवल्लुवर से कहा कि एक चादर खरीदनी है, इसलिए एक सुंदर सी चादर दिखाई जाए। तिरुवल्लुवर ने उस धनिक व्यक्ति को चादर दिखाई। धनिक ने पूछा, इसकी कीमत कितनी है? तिरुवल्लुवर ने बताया, 10 रुपये। धनिक ने चादर को बीचों बीच चीरकर 2 टुकड़े कर दिए और एक टुकड़े को दिखाते हुए इसकी कीमत पूछी। तिरुवल्लुवर ने विनम्रतापूर्वक कहा, 5 रुपये श्रीमान। फिर धनिक ने बचे हुए टुकड़े के भी 2 टुकड़े कर दिए और बोला, अब इसकी कीमत क्या है? तिरुवल्लुवर ने बिल्कुल शांत और सहज भाव से कहा, 2.5 रुपये। फिर धनिक ने उस बचे हुए टुकड़े को भी चीर दिया और पूछा, अब इसकी कीमत? संत तिरुवल्लुवर ने कहा, 1.25 रुपये। फिर इसके बाद धनिक ने कपड़े को फेंक कर कहा, चूंकि अब ये मेरे काम का नहीं रहा, मैं इसे नहीं खरीदूंगा। तिरुवल्लुवर ने शांत भाव से कहा, बिल्कुल सही कहा आपने, अब तो ये किसी के भी काम का नहीं रहा। धनिक को आश्चर्य हुआ कि इतना सब हो जाने पर भी तिरुवल्लुवर को क्रोध क्यों नहीं आया।

0: उसका सारा दांव फेल हो गया। अब उसने आखिरी दांव खेला। उसने तिरुवल्लुवर से कहा, श्रीमान, आप मुझसे चादर की पूरी कीमत अर्थात 10 रुपये ले लीजिए। तिरुवल्लुवर ने कहा, नहीं श्रीमान, मैं पैसे नहीं ले सकता, हमारा माल तो बिका ही नहीं, फिर कीमत कैसी। इस घटना के बाद उसका अभिमान चूर चूर हो गया। वो फूट फूट कर रोने लगा। वो तिरुवल्लुवर के चरणों में गिर गया। उसने कहा, महात्मा, हमें अपने धन का अभिमान था, हमने सोचा था कि हम अपने धन से आपको खरीद लेंगे और विजयी भाव से चले भी जाएंगे, लेकिन हमें आपके समक्ष हारना पड़ा। आगे धनिक ने कहा, कितना अंतर है आप में और मुझ में, आप कितने महान हैं और मैं कितना नीच। तिरुवल्लुवर ने धनिक को चरणों से उठाकर गले लगा लिया और बोले, लेकिन अब अंतर कहाँ रहा। सचमुच क्रोध काल के समान है, क्रोध व्यक्ति को अंधा बना देता है। क्रोध के वशीभूत होकर व्यक्ति दूसरे का तो अनिष्ट करता ही है, स्वयं अपना भी अहित करता है। आज विज्ञान ने भी ये साबित कर दिया है कि क्रोध का हमारे शरीर पर बुरा प्रभाव पड़ता है। क्रोध में हमारे अंदर विषैले रसायनों का स्राव होता है। ये हमारे शरीर, मन और आत्मा तीनों के लिए घातक है। यही कारण है कि धर्मशास्त्रों में क्रोध को शत्रु बताया गया है। जिसने क्रोध रूपी शत्रु को जीत लिया वो सबसे बड़ा विजेता है। यही कारण है कि प्रायः सभी धर्मों में क्रोध को अक्रोध से, हिंसा को अहिंसा से और घृणा को प्रेम से जीतने का संदेश दिया गया है। यदि हम सभी इस संदेश को अपने जीवन में उतार लेते हैं तो धरा पर स्वर्ग उतर ही आएगा।
1: आप सुन रहे थे चिंतन मनन, प्रसारण आकाशवाणी भागलपुर से किया गया। प्रस्तुत है भक्ति संगीत का हमारा कार्यक्रम वंदना। आरंभ में सुनिए देश वंदना समूह स्वर में।

0: सुन रहे थे भक्ति संगीत का हमारा कार्यक्रम वंदना, प्रसारण आकाशवाणी भागलपुर से किया गया। आइए सुनते हैं स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम के अंतर्गत भेंट वार्ता बच्चों में इंसेफेलाइटिस। भेंट वार्ताकार हैं डॉक्टर अजय कुमार सिंह और भेंटकर्ता सचिन कुमार।
1: श्रोताओं नमस्कार, स्वास्थ्य चर्चा में आज हमारे साथ हैं डॉक्टर अजय कुमार सिंह जो शिशु रोग विशेषज्ञ हैं और इनसे आज हम बातें करेंगे बच्चों में होने वाले इंसेफेलाइटिस रोग पर। डॉक्टर साहब आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है।
2: धन्यवाद
1: डॉक्टर साहब। ये बच्चों में इंसेफेलाइटिस रोग होता है, नवजात शिशुओं में भी कह लें कि इंसेफेलाइटिस रोग बहुत ज्यादा पाया जा रहा है, तो ये इंसेफेलाइटिस रोग होता क्या है?
2: इंसेफेलाइटिस का मतलब होता है कि ब्रेन के टिश्यू, ब्रेन के उत्तक का सूजन। इसमें इन्फेक्शन के द्वारा होता है और भी कई कारण है जिससे ब्रेन क्षतिग्रस्त हो जाता है। यह बच्चों में ज्यादा होता है और काफी जानलेवा होता है।
1: ये रोग जो है कैसे क्षेत्रों में होने का खतरा ज्यादा है, क्या क्षेत्र विशेष भी कुछ प्रभाव डालते हैं?
2: हाँ, क्षेत्र विशेष भी डालते हैं। देखा जाता है कि कोई खास एरिया में हर साल इंसेफेलाइटिस के अटैक ज्यादा होता है और सैकड़ों बच्चे भी कई बार इसे मौत के मुंह में चले जाते हैं। तो लेकिन उसमें इम्पोर्टेंट है कि उस एरिया में जो भी इसका फैक्टर है जिसके द्वारा वायरस जाता है वो ज्यादा मिलता है और कुछ गंदगी से भी होता है, तो ऐसा देखा जाता है। और इसका खास करके रुझान सीजन पर भी होता है। ये बरसात के सीजन में, गर्मी और बरसात, इस समय ये वायरस का प्रोपेगेशन ज्यादा होता है, ज्यादा तेजी से फैलता है।
1: जी, अब डॉक्टर साहब इसके कारणों के बारे में अगर बातें करें तो इस रोग के होने के कौन कौन से कारण हैं?
2: इंसेफेलाइटिस एक जनरल टर्म है और इंसेफेलाइटिस या इंसेफेलोपैथी ये कई कारणों से होता है, परंतु इसका ज्यादातर कारण जो होता है, जो ज्यादा तेजी से फैलता है, वो वायरल इन्फेक्शन होता है और जिसको हम लोग मुख्यतः इंसेफेलाइटिस समझते हैं। ज्यादातर वायरल इन्फेक्शन मच्छर या टिक्स के काटने से मानव शरीर में प्रवेश करता है, जो उसमें अरबो वायरस प्रमुख है। दूसरा वायरस है हर्पीस वायरस, जिससे आप देखते होंगे कि शरीर में जैसे कि कीड़ा चाटता है उस तरह का निशान पड़ता है, वो वायरस से भी, और जो चिकन पॉक्स कराता है वो वायरस भी इंसेफेलाइटिस कराता है। या जैसे आपने बताया कि नवजात शिशु में, तो ये चिकन पॉक्स जो है माँ के गर्भ के द्वारा बच्चों में भी ये आ सकता है, ट्रांसफर हो जाता है और न्यूबॉर्न बच्चे को भी इंसेफेलाइटिस होता है। उसी तरह एक सीएमवी वायरस है, साइटोमेगलोवायरस कहते हैं, ये भी न्यूबॉर्न बच्चों में होने का चांस रहता है और वो भी माँ से बच्चों में आता है। और ये कमजोर बच्चों में सीएमवी वायरस खास करके ज्यादा असर करता है, ज्यादा क्षतिग्रस्त करता है। श्रोता लोग जानते होंगे कि मॉम्स जो होता है, जो गलफुल्ली बीमारी कहलाता है, तो उस वायरस से भी इंसेफेलाइटिस होता है। इसके अलावा रूबेला, रूबियोला, रेबीज वायरस कहते हैं, जो कुत्ता काटने से होता है, तो रेबीज में भी जो डेथ होता है वो इंसेफेलाइटिस के द्वारा ही होता है। उसका कीटाणु ब्रेन में जाके ब्रेन डैमेज करता है। इसके अलावा भी कई कारण है लेकिन मुख्यतः ये कारण है।
1: डॉक्टर साहब आपने कहा कि मच्छर के काटने से या कुत्ते के काटने से भी ये रोग हो सकता है, तो कितने दिनों के बाद इसके लक्षण उभर कर

0: और अचानक से डेथ भी हो सकती है। इतना तेजी से ब्रेन डैमेज होता है कि अचानक से हो जाता है, और कभी कभी ये 5 से 7 दिन भी लेता है, लेकिन ज्यादातर ये अचानक से होता है, जिसमें प्राय बुखार, सरदर्द, बेचैनी या सुस्ती होता है। इसमें उल्टी एवं दस्त भी हो सकता है, जिससे नॉर्मल आप समझ सकते हैं कि ये गैस्ट्रोएंटेराइटिस या डायरिया हुआ, लेकिन ये एक इंसेफ्लाइटिस का भी लक्षण हो सकता है। इसके बाद बच्चा बेहोश हो जाता है, चमकी होने लगता है, साथ में लैट्रिन और पेशाब पर कंट्रोल खो देता है। पहले कुछ वायरल इन्फेक्शन, चमड़ी में दाग मिल सकता है, जिसको रैशेस कहते हैं, वो भी दिख सकता है।
1: तो डॉक्टर साहब, इस रोग का उपचार क्या हो सकता है, कैसे इसका इलाज किया जा सकता है?
0: मैं पहले बता दूं इसका डायग्नोसिस के बारे में।
1: जी,
0: डायग्नोसिस कैसे होता है?
1: जी,
0: ये भी एक्सक्लूजन का डायग्नोसिस होता है, लेकिन कोई ऐसा जांच नहीं है, खास करके नॉर्मल सीजन में ये जांच इसका अवेलेबल नहीं है। इसको सीटी स्कैन और ईईजी के मदद से पहचाना जाता है। कभी कभी जब वायरल का तेजी से बीमारी ये फैलता है, इसका वायरल जाँच के लिए इसको भेजा जाता है दूसरे जगह ब्लड सैंपल।
2: स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम के अंतर्गत आपने भेंट वार्ता सुना, बच्चों में इंसेफेलाइटिस। भेंट वार्ता करते हैं डॉक्टर अजय कुमार सिंह और भेंट करता सचिन कुमार। प्रसारण आकाशवाणी भागलपुर से किया गया। प्रस्तुत है रामचरितमानस गान की अगली कड़ी। कलाकार हैं राजन मिश, साजन मिश और ए हरिहरन।

आज से आरंभ होता है श्री रामचरितमानस के पांचवें सोपान सुंदर कांड का संगीतबद्ध पाठ। मंगलाचरण के श्लोक में गोस्वामी तुलसीदास ने श्री राम की निर्भरा अर्थात पूर्ण भक्ति की याचना करते हुए जगदीश्वर के राम रूप की वंदना की है। माया से मनुष्य रूप धारण करने वाले रघुकुल मणि शांत चित्त शाश्वत शांति देने वाले सर्वव्यापी और सभी प्रकार के प्रमाणों से परे हैं। इस वंदना के पश्चात भक्त कवि ने अतुलित बल वाले पवनसुत हनुमान को प्रणाम निवेदित किया है, जिन्हें सुमेरु पर्वत के समान कांति प्राप्त है, किंतु जो दैत्यों का विनाश करने के लिए अग्नि रूप धारण कर लेते हैं। सागर तट पर रीचराज जांबवान के प्रेरणा भरे वचन सुनकर पवन पुत्र हनुमान को अपनी क्षमता और सामर्थ्य का ज्ञान प्राप्त हुआ।

आप सुन रहे थे रामचरितमानस गान। कलाकार थे राजन मिश, साजन मिश और ए हरे हरण। प्रसारण आकाशवाणी भागलपुर से किया गया। कार्यक्रम विवरण, इसमें सुनिए आज की सभा में प्रसारित होने वाले हमारे मुख्य कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा। 7:00 से 7:55 तक आप सुनेंगे मॉर्निंग इन्फॉर्मेशन प्रोग्राम गुड मॉर्निंग विक्रमशिला। इसमें आप सुन सकते हैं मौसम का मिजाज, रेल सूचना, समाचार पत्रों की सुर्खियां, आज का इतिहास, रसरंग, हिंदी वार्ता और फिल्म संगीत। 9:06 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम नगमे नए पुराने। 9:30 पर बाल मंजूषा कार्यक्रम का प्रसारण किया जाएगा। 10:00 आप सुनेंगे प्रायोजित कार्यक्रम बाल किलकारी। 10:30 पर लोकगीत का प्रसारण होगा, कलाकार होंगे विश्वनाथ ठाकुर। 11:00 आप सुनेंगे कार्यक्रम नई फिल्मों से। 11:30 पर गुलदस्ता कार्यक्रम का प्रसारण किया जाएगा।

विज्ञान वाणी ये कार्यक्रम आप सुनेंगे 12 बजे 12:30 पर शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम सुर संगम आप सुन सकते हैं। कलाकार होंगे शाहिद प्रवेश। 1 बजे लोकगीतों का कार्यक्रम लोकरंग का प्रसारण होगा। कलाकार होंगी नूतन कुमारी। 1:30 पर अंग दर्पण कार्यक्रम आप सुनेंगे। 2:30 पर फिल्म संगीत का प्रसारण होगा, श्रोताओं के ईमेलों और पत्रों पर आधारित। 3 बजे आप सुनेंगे सामुदायिक गान एवं शिक्षा पाठ।

संध्या 5 बजे आप सुनेंगे युवाओं को संबोधित कार्यक्रम युववाणी। 5:30 पर फिल्म संगीत का प्रसारण होगा। 6 बजे आप सुनेंगे कार्यक्रम ग्राम जगत खेती गृहस्थी। 7:10 पर लोकगीत का प्रसारण होगा। कलाकार होंगे शिवशंकर कुशवाहा। 7:52 पर सुगम संगीत का कार्यक्रम सुरलहरी आप सुन सकते हैं। कलाकार होंगे स्वामी प्रणवानंद। 8 बजे फिल्मी गीतों का कार्यक्रम रजनीगंधा आप सुनेंगे। रात्रि 9:30 पर फिल्म संगीत का प्रसारण होगा और 10 बजे आप सुनेंगे अखिल भारतीय रविवासरीय संगीत सभा हमारे दिल्ली केंद्र से। कार्यक्रम विवरण में अभी आप सुन रहे थे आज की सभा में प्रसारित होने वाले हमारे मुख्य कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा। ये आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है। कुछ ही देर में आप सुनेंगे संस्कृत में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: अथ वार्ताः। प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी न्यूजीलैण्डदेशस्य स्वीयाम् ऐतिहासिकीं द्विदिवसीय यात्रां सम्पन्नं कृत्वा भारतं प्रति प्रस्थितवान्। विगतचत्वारिंशत् वर्षेभ्यः अनन्तरम् एषा कस्यापि भारतीय प्रधानमन्त्रिणः प्रथमा न्यूजीलैण्ड यात्रा आसीत्, या उभयदेशयोः द्विपक्षीय सम्बन्धान् नूतनां गतिम् अददात्। यात्रा समये प्रधानमंत्री मोदी न्यूजीलैंड देशस्य प्रधानमंत्रिणा क्रिस्टोफर लक्सन इत्यनेन सह द्विपक्षीय वार्ताम् अकरोत्। उभौ नेतारौ रक्षा पर्यटन क्रीडा पद प्रबंधन दुग्ध व्यवसाय पशुपालनादिषु क्षेत्रेषु पंच ज्ञापन पत्राणाम् आदान प्रदानं कृतवन्तौ। अस्याः यात्रायाः प्रमुखाकर्षणेषु अन्यतमः कार्यक्रमः ऑकलैंड नगरस्य स्पार्क अरीना इत्यत्र आयोजितः प्रवासी भारतीय समुदायस्य समागमः आसीत्, यस्मिन् 10,000+ प्रवासी भारतीयाः समुपस्थिताः आसन्। समागमं सम्बोधयन् प्रधानमन्त्री मोदी अवदत् यत् भारत न्यूजीलैंड देशयोः भविष्यं परस्परं सम्बद्धमस्ति।
1: भारत और न्यूजीलैंड के रिश्ते में यादें भी हैं, दोस्ती भी है, वैल्यूज भी है और एक कमिटमेंट भी है। भारत न्यूजीलैंड की यही वाका एक नई यात्रा पर निकलने के लिए तैयार है। हमारे सामने अवसरों से भरा खुला समुद्र है, हवाएं हमारे साथ है, समंदर की विशाल लहरें हमारे साथ है, इच्छा शक्ति का नीला आसमान हमारे साथ है, पाने को काफी कुछ है और मैं जानता हूं हम सफल होंगे।
0: प्रधानमंत्री मोदी सस्नेह स्वागताय न्यूजीलैंड देशस्य प्रधानमन्त्रिणं क्रिस्टोफर लक्सन इत्येतं प्रति कृतज्ञतां प्रकटितवान्। रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहः उक्तवान् यत् भारतं पारम्परिक रक्षा सामर्थ्यस्य उन्नत प्रौद्योगिकीनां च सुदृढीकरणेन दृढं आत्मनिर्भरं भविष्यस्य आह्वानेभ्यश्च अनुकूलं रक्षाबलं निर्माति। असौ एतत् विशाखापत्तनम् नगरे भारतीय नौसेनायाः पूर्वी नौसेनादले प्रोजेक्ट 17A इत्येतस्य अन्तर्गते स्वदेशे निर्मितस्य षष्ठयुद्धपोतस्य INS महेन्द्रगिरिः इत्येतस्य समावेशन समारोहं सम्बोधयन् अवदत्। रक्षामन्त्री अवदत् यत् INS महेन्द्रगिरिः इत्येतस्य नौसेनायां सम्मेलनम् भारतस्य सामुद्रिक सामर्थ्यस्य स्वदेशी रक्षा क्षमतायाश्च सुदृढीकरण दिशि अन्यत् महत्वपूर्णं सोपानमस्ति। पश्चिम बंगाल प्रशासनेन राज्याय UCC इति समान नागरिक संहितायाः प्रारूप विधेयकस्य परीक्षार्थं नव सदस्यात्मिका समितिः निर्मिता। अस्मिन् विषये अधिसूचना पूर्वमेव प्रकाशिता अस्ति। सेवा निवृत्त न्यायमूर्तिः रंजना प्रकाश देसाई समितेः अध्यक्षत्वेन नियुक्ता। मेघालयस्य पूर्व राज्यपालः तथागत रॉयः अपि समितेः सदस्येषु अन्यतमः अस्ति। भारतीय खाद्य सुरक्षा मानक प्राधिकरणेन खाद्य सुरक्षा मानकाधिनियमस्य 2006 इत्यस्य उल्लंघन सम्बद्धानां बहूनां उपभोक्तृ परिवादानां अनन्तरं स्विगी इंस्टामार्ट इत्यस्मै नव अधिसूचनाः प्रेषिताः। फीफा विश्व चषक प्रतिस्पर्धायाम् अद्य प्रातः फ्लोरिडा इत्यत्र मियामी क्रीडा प्रांगणे इंग्लैंड देशेन नॉर्वे देशं 2-1 इत्यंकांतरालेन पराजित्य उपांत्यचक्रे प्रविष्टम्। वियतनाम देशस्य प्रधानमंत्री ले मिन हुन इत्येषः फूक्वक द्वीपस्य समीपे जाता स्पीड बोट इत्येतस्याः दुर्घटनायाः अन्वेषणाय आदेशं प्रदत्तवान्। अस्याम् दुर्घटनायाम् 15 भारतीय पर्यटकाः निधनमुपगताः। इति वार्ताः।
2: मीडियम वेव 205.76 मीटर अर्थात 1458 किलोहर्ट्ज और FM 100.1 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम गुड मॉर्निंग विक्रमशिला।

गुड मॉर्निंग विक्रमशिला श्रोताओं, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं मौसम का मिजाज, रेल सूचना, समाचार पत्रों की सुर्खियां, आज का इतिहास, रसरंग, हिंदी वार्ता और फिल्म संगीत। तो श्रोताओं, शुरू करते हैं रसरंग से। डॉक्टर स्मिता सिन्हा की आवाज़ में सुनिए ये भजन।

0: श्रोताओं, आगे बढ़ते हुए सुनते हैं मौसम का मिजाज। बिहार कृषि विश्वविद्यालय ग्रामीण कृषि मौसम सेवा एवं भारत मौसम विज्ञान विभाग के सहयोग से जारी मौसम पूर्वानुमान के अनुसार पूर्वानुमान अवधि 12 से 15 जुलाई के दौरान दक्षिण बिहार के जिलों में एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ आंधी चलने एवं मध्यम वर्षा होने का अनुमान है। बांका नवादा जिलों में एक या दो स्थानों पर भारी वर्षा होने की संभावना है। अधिकतम तापमान 31 से 32 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 26 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 90 से 95 प्रतिशत तथा दोपहर में 50 से 55 प्रतिशत रहने की संभावना है और पूर्वानुमान की अवधि में 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से पछिया हवा चलने का अनुमान है।
1: बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
2: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
1: और अब तो आप घर दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
2: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
1: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700001-4242 पर।
2: 8700001-4242।
0: अब सुनिए कबीरदास का ये भजन। कलाकार हैं डॉक्टर अस्मिता सिन्हा।

श्रोताओं, अब आइए सुनते हैं आज के इतिहास के बारे में। 1823 में भारत में निर्मित पहला वाष्प इंजन युक्त जहाज डायना कलकत्ता के पानी में आज ही के दिन उतारा गया। 1962 में प्रसिद्ध ब्रिटिश रॉक बैंड द रोलिंग स्टोन्स ने लंदन के मार्की क्लब में अपना पहला प्रदर्शन किया था। 2000

0: 2012 में संयुक्त राष्ट्र लड़कियों की शिक्षा के लिए आवाज उठाने वाली मलाला यूसुफजई के सम्मान में मलाला दिवस घोषित किया गया। 1977 में पूर्व WWE चैंपियन और रेसलर ब्रॉक लेसनर का जन्म अमेरिका में हुआ था और 1997 में पाकिस्तान में जन्मी नोबेल पुरस्कार विजेता और शिक्षा कार्यकर्ता मलाला यूसुफजई का जन्म हुआ था।
1: बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
2: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
1: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
2: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
1: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700001-4242 पर।
2: 8700001-4242।
0: श्रोताओं, बिंदु जी के भजन को सुनिए डॉक्टर स्मिता की सिन्हा की आवाज में।

0: श्रोताओं, कार्यक्रम के अगले स्तंभ की ओर बढ़ते हैं और ये है हिंदी वार्ता कार्यक्रम। इसके अंतर्गत सुनिए वार्ता बनफूल और भागलपुर। वार्ताकार हैं शिवशंकर सिंह परिजात।
1: डॉक्टर बलाय चंद मुखर्जी बनफूल बांग्ला के एक सुपरिचित हस्ताक्षर हैं। अपनी सिद्धहस्त लेखनी और मर्म स्पर्शी रचनाओं के कारण आज उनकी पहचान अखिल भारतीय साहित्य में भी है। दर्जनों प्रसिद्ध उपन्यासों, नाटकों तथा सैकड़ों भावप्रवण कहानियों के रचयिता बनफूल भले ही बांग्ला भाषा के लेखक हैं, किंतु उनका जन्म स्थल और विशेष रूप से कर्म स्थल बिहार और खासकर भागलपुर ही रहा। पेशे से डॉक्टर पर हृदय से एक संवेदनशील रचनाकार बनफूल ने अपनी लेखनी से बिहार और भागलपुर के सामाजिक आर्थिक सांस्कृतिक जीवन के विविध रंगों को उकेरा है। उनके व्यक्तित्व में हिंदी और बांग्ला की भाषागत व सांस्कृतिक विविधताओं का एक विरल समन्वय था। शरद की तरह उन्होंने भी भागलपुर की मिट्टी से न केवल जीवन का मर्म वरन साहित्य की ऊर्जा भी प्राप्त की और भारतीय साहित्य में अपना अपूर्व योगदान किया। सन 1960 के आसपास बांग्ला भाषा में एक फिल्म बनी थी हाटे बजारे। इस फिल्म के मुख्य कलाकार थे अशोक कुमार और बैजयंती माला। निर्देशक थे अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त तपन सिन्हा। वर्ष की सर्वश्रेष्ठ फिल्म होने के कारण इसे राष्ट्रपति का स्वर्ण पदक प्राप्त हुआ था। मृणाल सेन के निर्देशन में एक दूसरी फिल्म बनी थी भुवन सोम, इसे भी राष्ट्रीय सम्मान मिला था। ये दोनों फिल्में बनफूल की कृतियों पर आधारित थीं। बनफूल के पिता सत्यचरण मुखोपाध्याय पश्चिम बंगाल के हुगली जिला निवासी थे, पर डॉक्टरी पास करने के बाद वे बिहार के मनिहारी में आकर नौकरी करने लगे। यहीं 19 जुलाई 1899 को बनफूल का जन्म हुआ। मनिहारी के एक स्कूल में प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद उन्होंने साहेबगंज से मैट्रिक की परीक्षा पास की, फिर हजारीबाग से आईएससी किया। कोलकाता और पटना में मेडिकल और पैथोलॉजी की पढ़ाई पूरी कर वे आजिमगंज पश्चिम बंगाल में मेडिकल ऑफिसर की नौकरी करने लगे। आजिमगंज में पिता के दुर्घटनाग्रस्त हो जाने के कारण बनफूल उन्हें लेकर भागलपुर आ गए और सन 1929 के आसपास जो वे भागलपुर आए तो यहीं बस गए तथा अपने जीवन के अमूमन 40 अमूल्य वर्ष यहीं पर गुजारे। भागलपुर में बनफूल अपने छोटे भाई के साथ रहने लगे। बनफूल ने यहाँ अपना पैथोलॉजिकल क्लिनिक खोला और मेडिकल प्रैक्टिस

0: शुरू कर दी। भागलपुर में बनफूल की दिनचर्या अद्भुत थी। दिन में वे अपने क्लिनिक में मरीजों की जांच करते और रात में जागकर लेखन कार्य करते। इन्हीं दिनों उनके स्कूली मित्र परिमल गोस्वामी कोलकाता से प्रकाशित होने वाली साहित्यिक पत्रिका शनिवारी चिट्ठी में संपादक बन गए। शनिवारी चिट्ठी में नियमित रूप से बनफूल की व्यंग कविताएं और लेख आदि प्रकाशित होने लगे। उन्हीं दिनों बांग्ला के एक प्रतिष्ठित लेखक पूर्णिया निवासी केदारनाथ बंदोपाध्याय की अनुशंसा पर कोलकाता के प्रतिष्ठित प्रकाशक गुरुदास चट्टोपाध्याय एंड संस उनकी रचनाएं प्रकाशित करने के लिए तैयार हो गए। बनफूल की एक साथ तीन सशक्त पुस्तकें प्रकाशित हुईं। बनफूलेर गल्प, बनफूल की कहानियां, बनफूलेर कविता, बनफूल की कविताएं और उपन्यास तृणखंड। इसके कारण बनफूल तत्कालीन बांग्ला साहित्य जगत पर छा से गए। कई प्रतिष्ठित पत्र पत्रिकाओं में लगातार उनकी रचनाएं प्रकाशित होने लगी। उसी समय उन्होंने दो उपन्यास लिखे, द्वैरथ तथा बैतरणी तीरे। बनफूल अब जम कर लिखने लगे। किछुक क्षण निर्मोख, जंगम, पाथर, भुवंसों, सरीखे उपन्यास सहित उनकी कई कविताएं और संग्रह एवं एकांकी संग्रह प्रकाशित हुए। उनके नाटक मंत्रमुग्ध पर बिमल राय के निर्देशन में फिल्म भी बनी। उनके एक अन्य उपन्यास अग्निस्वर पर भी फिल्म बनी, जो काफी चर्चित रही। एक सिद्धहस्त साहित्यकार के रूप में स्थापित होने के बाद बनफूल का संबंध उन दिनों के ख्यात बांग्ला साहित्यकारों से हुआ, जिनका भागलपुर में आना जाना होता रहता था। राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर उन दिनों भागलपुर विश्वविद्यालय के कुलपति हुआ करते थे। दिनकर और बनफूल के बीच बराबर संपर्क होता रहता था। भागलपुर के साहित्यकार कलाकार हरिकुंज के चित्रशाला स्टूडियो में उनकी डॉक्टर बेचन वो अन्य साहित्यकारों के साथ बैठकें चलती थी। दिनकर ने बनफूल को विश्वविद्यालय के सीनेट का सदस्य भी बनाया। बनफूल अपनी जीवनी में कहते हैं, एक सच्ची बात बिना कहे मैं नहीं रह सकता। भागलपुर में बिहारी और दूसरे गैर बंगालियों ने मुझे जो आंतरिक प्यार दिया, बंगालियों से वैसा नहीं मिला। बंगालियों ने मेरी ख्याति के चलते मुझे माना, लेकिन बिहारी लोग मुझे ज्यादा प्यार करते थे। भागलपुर के फोटोग्राफर हरि कुंज और आनंद प्रेस के मालिक रामा अवतार आज भी मेरे दिल में समाये हुए हैं। बनफूल का महान कवियत्री महादेवी वर्मा से भी घनिष्ठ संबंध था, जिनके पिता भागलपुर के एक विद्यालय में प्रधानाध्यापक थे। महादेवी जी के विशेष आमंत्रण पर वे इलाहाबाद भी गए, जहां वे पंडित सूर्यकांत त्रिपाठी निराला से भी मिले थे। निराला जी के साथ उनकी विशेष अंतरंगता थी। अंगभूमि के नाम से विख्यात भागलपुर की ऐतिहासिक नगरी से महान साहित्यकार शरत और बनफूल दोनों ने अपनी लेखनी की ऊर्जा और विषय वस्तु प्राप्त की। शरत ने जहां भागलपुर के प्रवेश को अपने साहित्य में अनुभूति की गहराई दी, वहीं बनफूल ने इसे अपने अनुभव का विस्तार दिया। शरत का श्रीकांत जितना बाहर भटकता है, उससे ज्यादा कहीं अपने अंदर भटकता है, किंतु बनफूल के हाटे बजाने के डॉक्टर बाबू अपनी भानगाड़ी से बस्ती बस्ती तथा हाट बाजारों में घूमते हैं और नित नया अनुभव प्राप्त करते हैं। बनफूल के साहित्य की एक बड़ी विशेषता है पात्रों एवं घटनाओं की विविधता, जिसके मूल में है आम आदमी, उनका जमीन से निकट का जुड़ाव व जीवन के विभिन्न अनुभवों की परख। अपनी जीवनी में वे बताते हैं, मुझे कुली, मोटिया, मजदूर, मछुआ, मछुआरिन सभी प्यार करते थे। इन लोगों ने तो मेरे साहित्य का आस्वादन नहीं किया, फिर भी मुझे प्यार किया, क्यों मुझे नहीं मालूम। इन्हीं लोगों की बातों को मैंने हाटे बाजारे पुस्तक में लिखी। जाहिर है बनफूल की रचनाओं में भागलपुर का अक्स समाया हुआ था। बनफूल जहां साहित्यिक तथा सामाजिक सरोकारों से गहराई से जुड़े थे, वहीं वे स्वतंत्रता आंदोलन तथा देशभक्ति से भी अछूते न थे। इस संदर्भ में उनके अग्नि, भूदर्शन और स्वप्न संभव शीर्षक उपन्यास उल्लेखनीय है। समय के बहाव में कुछ एक पारिवारिक एवं निजी कारणों से बनफूल भागलपुर छोड़ कोलकाता जाकर बस गए। सन 1968 के जून माह में अपने असंख्य प्रशंसकों और बंधुओं को भागलपुर में छोड़कर वे चले गए। अपनी जीवनी उदय अस्त में वे कहते हैं, भागलपुर के लोगों ने मुझे कितना प्यार किया उसका पता मुझे भागलपुर छोड़ने के समय चला। बहुत सी सभाएं हुई, स्टेशन में भीड़ ही भीड़। कोलकाता में बसने के बाद भी महानगरीय जीवन की कृत्रिमता के बीच उन्हें भागलपुर की याद आ जाया करती थी। अपनी जीवनी में आगे वे लिखते हैं, भागलपुर में मेरा जीवन सुख का जीवन था। बीच बीच में आकाश चर्चा किया करता था, दिन को चिड़ियां देखता था, पैदल गंगा के चौर में घूमता था। लेखन के अलावे अच्छा भोजन करना, नक्षत्र तारा राशि का अध्ययन करना तथा विभिन्न प्रकार के पक्षियों की जानकारी हासिल करना बनफूल के प्रिय शौक थे। बनफूल ने जीवन को वैविध्यपूर्ण रूप से देखा था, जिसकी छाया उनके विपुल साहित्य में मिलती है। उन्होंने अपने जीवन को भरपूर जिया और जितना जिया साहित्य के लिए जिया। आज भागलपुर की गलियों मोहल्लों में बनफूल की यादें बिखरी पड़ी हैं, पर अब ना तो यहाँ उनको याद करने वाले लोग बचे हैं और न उनकी स्मृतियों को सहेजने वाले।
1: आपने वार्ता सुनी बनफूल और भागलपुर। वार्ताकार थे शिव शंकर सिंह परिजात, हिंदी वार्ता कार्यक्रम के अंतर्गत। अब सुनिए फिल्म संगीत। फिल्म है बाजीगर, आवाज है आशा भोसले और विनोद राठौड़ की। गीत लिखा है रानी मलिक ने और संगीत दिया है अनु मलिक ने।

श्रोताओं, अब सुनिए भागलपुर रेलवे स्टेशन से गुजरने वाली ट्रेनों की सूचना। रेलवे स्टेशन भागलपुर से प्राप्त सूचना के अनुसार गाड़ी संख्या 15553 भागलपुर से चलकर जयनगर को जाने वाली भागलपुर जयनगर एक्सप्रेस, ये गाड़ी सुबह 7:50 पर अपने सही समय से भागलपुर से जाएगी। गाड़ी संख्या 13016 जमालपुर से चलकर हावड़ा को जाने वाली हावड़ा कवि गुरु एक्सप्रेस, ये गाड़ी सुबह 7:45 पर अपने सही समय पर भागलपुर को आएगी।

0: छोड़कर दिल्ली को जाने वाली ब्रह्मपुत्र मेल, ये गाड़ी सुबह 8:05 पर अपने सही समय पर भागलपुर को आएगी। गाड़ी संख्या 53416 जमालपुर से चलकर साहेबगंज को जाने वाली जमालपुर साहेबगंज पैसेंजर, ये गाड़ी सुबह 8:37 पर अपने सही समय पर भागलपुर को आएगी। गाड़ी संख्या 22311 गोड्डा से चलकर लोकमान तिलक तक जाने वाली गोड्डा लोकमान तिलक सुपरफास्ट एक्सप्रेस, ये गाड़ी सुबह 8:35 पर अपने सही समय पर भागलपुर को आएगी। गाड़ी संख्या 13403 रांची से चलकर भागलपुर को आने वाली वनांचल एक्सप्रेस, ये गाड़ी सुबह 9 अपने सही समय पर भागलपुर को आएगी। गाड़ी संख्या 63431 साहेबगंज से चलकर जमालपुर को जाने वाली साहेबगंज जमालपुर मेमो, ये गाड़ी सुबह 9:15 पर अपने सही समय पर भागलपुर को आएगी। गाड़ी संख्या 13409 मालदा से चलकर क्यूल को जाने वाली मालदा क्यूल इंटरसिटी एक्सप्रेस, ये गाड़ी सुबह 9:35 पर अपने सही समय पर भागलपुर को आएगी। गाड़ी संख्या 13241 बांका से चलकर राजेंद्र नगर को जाने वाली बांका राजेंद्र नगर इंटरसिटी एक्सप्रेस, ये गाड़ी सुबह 10:15 पर अपने सही समय पर भागलपुर को आएगी। और गाड़ी संख्या 12367 भागलपुर से चलकर आनंद विहार को जाने वाली विक्रमशिला एक्सप्रेस, ये गाड़ी सुबह 11:55 पर अपने सही समय से भागलपुर से जाएगी।
1: बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
2: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
1: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
2: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
1: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700001-4242 पर।
2: 8700001-4242।
0: बेवफा फिल्म का गीत सुनिए अभिजीत की आवाज में। गीत समीर के हैं और संगीत नदीम श्रवण का।

0: श्रोताओं, आगे बढ़ते हुए सुनते हैं समाचार पत्रों की सुर्खियां। बिहार में बढ़ेगी MBBS सीट, PMCH में अब 250 सीटों पर दाखिला। बिहार में अब होम रजिस्ट्री, 75 पार के बुजुर्गों को लाभ। सुब्रतो मुखर्जी अंडर 17 के लिए भागलपुर टीम रवाना। फुटबॉल वर्ल्ड कप क्वार्टर फाइनल में स्पेन ने बेल्जियम को 2-1 से हराया। 88वें मिनट में विजयी गोल, 16 साल बाद सेमीफाइनल में स्पेन। और एथलेटिक्स, अनिमेश विदेश में सबसे तेज भारतीय धावक बने। अब सुनिए फिल्म। चोरी चोरी छुपके छुपके का ये गीत जसविंदर नरूला की आवाज में, गीत लिखा है समीर ने और संगीत रचना है अनु मलिक का। इस अंतराल के बाद
1: करो राजू, मोबाइल छोड़ो।
2: अरे दीदी, वो बैंक का नंबर चाहिए, रिफंड ही नहीं आया है। मिल गया, अब भी कॉल करता हूँ दीदी।
1: बिना नंबर जांचे अक्सर जालसाज बैंक की नकली वेबसाइट और फर्जी नंबर से पैसों की धोखाधड़ी करते हैं।
2: तो फिर सही नंबर,
1: बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट या तो कार्ड।
2: आपने तो बचा लिया दीदी।
1: काम से नहीं।
3: RBI कहता है
4: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।

0: सुन रहे थे कार्यक्रम गुड मॉर्निंग विक्रमशिला।
1: बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
2: आपका बिजनेस
1: घर दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
3: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
1: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700001-4242 पर।
3: 8700001-4242।
4: जानते हैं इन वीरों की वीर गाथाएं लेकर कौन आ रहे हैं? हम यानी
5: क्रेश,
6: ट्रेश
4: और बाल्टी बॉय।
7: फ्रीडम फाइटर्स की कहानियां दिखाएंगे दूरदर्शन पर हर रविवार सुबह 11 बजे। क्रेश, ट्रेश और बाल्टी बॉय।
8: सुनो ना।
1: हाँ?
8: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
1: तो रोका किसने है? हाँ,
8: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
1: मुझसे।
8: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
1: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
8: पर उससे मेरा क्या फायदा?
1: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
8: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूँ।
1: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो 8700001-4242।
8: ओ 8700001-4242। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700001-4242 पर।

0: जल है तो हम है। आइए घरों ऑफिसों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक अपनाएं, रिचार्ज पिट और शाफ्ट बनवाएं, अनुपयोगी बोरवेलों को ठीक करें, जलाशयों से गाद निकालें, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। इस बारिश आइए जुड़े कैच द रेन अभियान से।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की तीन देशों की यात्रा संपन्न। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के साथ विस्तृत वार्ता के बाद स्वदेश रवाना। देश भर में आज व्यापक पौधारोपण अभियान चलाया जाएगा। वियतनाम सरकार ने स्पीड बोट दुर्घटना की जांच के आदेश दिए। दुर्घटना में 15 भारतीय पर्यटकों की मौत। अमेरिका ने इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के होर्मुज जल डमरू मध्य में साइप्रस के झंडे वाले जहाज पर हमले के बाद ईरान पर नए हमले शुरू किए। ईरान ने जल मार्ग को अगली सूचना तक किया बंद। मौसम विभाग ने अगले चार दिन तक देश के उत्तरी और पूर्वी हिस्सों में बहुत तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया। इंग्लैंड ने नॉर्वे को 2-1 से हराकर फीफा विश्व कप के सेमीफाइनल में प्रवेश किया और लिंडा नोसकोवा ने कैरोलिना मुकोवा को हराकर अपना पहला विंबलडन टेनिस खिताब जीता। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की यात्रा पूरी कर स्वदेश रवाना हो गए हैं। इस दौरान श्री मोदी ने न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के साथ व्यापक बातचीत की। भारत और न्यूजीलैंड ने द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाया है। इस दौरान रक्षा, पर्यटन, खेल, आपदा प्रबंधन और डेयरी तथा पशुपालन सहित कई प्रमुख क्षेत्रों में समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। ऑकलैंड में सामुदायिक कार्यक्रम में भारतीय मूल के 10,000 से अधिक लोगों ने भाग लिया। श्री मोदी ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि भारत और न्यूजीलैंड का भविष्य आपस में जुड़ा हुआ है। प्रधानमंत्री लक्सन ने भारत को विश्वसनीय मित्र बताते हुए न्यूजीलैंड की प्रगति में भारतीय समुदाय के योगदान की सराहना की। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व की भी उन्होंने प्रशंसा की। श्री मोदी ने श्री लक्सन के शानदार आतिथ्य के लिए उन्हें धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि इस यात्रा से भारत न्यूजीलैंड संबंधों में एक नया अध्याय शुरू हुआ है। श्री मोदी ने 40 वर्ष बाद भारतीय प्रधानमंत्री की न्यूजीलैंड यात्रा के बारे में कहा कि अगली यात्रा में इतना समय नहीं लगेगा।
2: भारत और न्यूजीलैंड के रिश्ते में यादें भी हैं, दोस्ती भी है, वैल्यूज भी है और एक कमिटमेंट भी है। भारत न्यूजीलैंड की यही वाका एक नई यात्रा पर निकलने के लिए तैयार है। हमारे सामने अवसरों से भरा खुला समुद्र है, इच्छा शक्ति का नीला आसमान हमारे साथ है, पाने को काफी कुछ है और मैं जानता हूं हम सफल होंगे।
1: विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की तीन देशों की यात्रा के महत्वपूर्ण परिणाम निकले हैं। प्रधानमंत्री मोदी की तीन देशों की यात्रा के दौरान भारत ने इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के साथ व्यापार, प्रौद्योगिकी, सुरक्षा, नवाचार, शिक्षा और लोगों के बीच आपसी संबंधों जैसे कई क्षेत्रों में सहयोग का विस्तार किया है। देश भर में आज व्यापक पौधारोपण अभियान चलाया जाएगा। इसके अंतर्गत कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज दिल्ली स्थित पूसा परिसर में

0: पर्यावरण संरक्षण संकल्प कार्यक्रम में भाग लेंगे। इस अवसर पर वे देश भर से आए लगभग 17,000 वृक्ष मित्रों से संवाद करेंगे। श्री सिंह वृक्ष मित्रों के साथ पूसा परिसर में वृक्षारोपण अभियान में भी हिस्सा लेंगे। गृह मंत्री अमित शाह आज अहमदाबाद में नगर निगम की 405 करोड़ रुपए की जन केंद्रित विभिन्न परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास करेंगे। हमारी संवाददाता ने बताया है कि गृह मंत्री कार्यक्रम के दौरान अपने लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र गांधीनगर में महत्वाकांक्षी सामूहिक पौधारोपण अभियान की शुरुआत भी करेंगे।
1: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अपने संसदीय क्षेत्र को देश में सबसे हरा भरा बनाने के लिए महत्वाकांक्षी गांधीनगर हरियाली लोकसभा अभियान की शुरुआत कर रहे हैं, जिसके तहत इस साल गांधीनगर संसदीय क्षेत्र में 1.25 करोड़ से अधिक पौधे लगाए जाएंगे। इस अभियान के तहत वन विभाग अहमदाबाद और गांधीनगर जिलों में वन कवच मॉडल के माध्यम से लगभग 60 लाख स्वदेशी पौधे लगाएगा, जो त्वरित पर्यावरण सुधार के लिए जापानी मियावाकी पद्धति का गुजराती स्वदेशी संस्करण है। अपने दौरे के आखिरी दिन श्री शाह कल गांधीनगर में नेशनल फोरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी परिसर में 11वीं इंटरपोल डिजिटल फोरेंसिक एक्सपर्ट ग्रुप बैठक और पहली अंतर्राष्ट्रीय अन्वेषक अपराध प्रतियोगिता का उद्घाटन करेंगे। इसके बाद वे देहगांव में नवनिर्मित APMC सब्जी मंडी का भी लोकार्पण करेंगे। अपर्णा खुंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: उत्तर प्रदेश सरकार व्यापक पौधारोपण अभियान के अंतर्गत आज 35 करोड़ पौधे लगाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज गोरखपुर से राज्यव्यापी पौधारोपण महायज्ञ 2026 का शुभारंभ करेंगे। वे एक पेड़ मां के नाम अभियान के अंतर्गत गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे और RKBK के पास ताल रिंग रोड के किनारे पौधे लगाएंगे। एक रिपोर्ट।
2: 27 विभागों के समन्वय से चलाए जाने वाले इस विशाल वृक्षारोपण अभियान में वन, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन विभाग सर्वाधिक 15 करोड़ 50 लाख पौधारोपण करेगा। ग्राम्य विकास विभाग 10 करोड़, कृषि विभाग 3 करोड़ 25 लाख, उद्यान विभाग 1 करोड़ 50 लाख और पंचायती राज विभाग 1 करोड़ 22 लाख पौधे लगाएगा। गंगा एक्सप्रेसवे के किनारे भी 5.5 लाख पौधे लगेंगे। महाअभियान 2026 में इस वर्ष समरस वन, समृद्धि वन, कृषि वन, ऊर्जा वन, कपि वन समेत अनेक नवीन वन तैयार किए जाएंगे। महर्षि चरक औषधि वन की शुरुआत 5 जून यानी विश्व पर्यावरण दिवस पर की गई है। इस अभियान का प्रमुख हिस्सा मिशन छाया, अविरल धारा पौधारोपण, सहजन भंडारा और आम भंडारा भी होगा। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
3: एक प्रकार से PM जय

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। एक राष्ट्र एक चुनाव से संबंधित प्रस्तावित विधेयकों की जांच कर रही संयुक्त संसदीय समिति ने गोवा में अपनी 2 दिवसीय परामर्श प्रक्रिया पूरी कर ली है। इस दौरान समिति ने राज्य सरकार, राजनीतिक दलों, विधायकों, संवैधानिक विशेषज्ञ, हमारे संवाददाता की रिपोर्ट।
2: पहले दिन समिति ने गोवा के मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत, मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों, संवैधानिक विशेषज्ञों, राज्य निर्वाचन आयोग तथा गोवा विश्वविद्यालय के अधिकारियों के साथ विचार विमर्श किया। दूसरे और अंतिम दिन कल समिति ने गोवा विधानसभा के अध्यक्ष डॉक्टर गणेश गांवकर, विपक्ष के नेता यूरिया लेमाव तथा विभिन्न राजनीतिक दलों के विधायकों से चर्चा की। इससे पहले समिति के अध्यक्ष और सांसद पीपी चौधरी ने कहा कि एक साथ चुनाव कराने से सुशासन को बढ़ावा मिलेगा, चुनावी खर्च कम होगा और बार बार होने वाले चुनावों से होने वाले प्रशासनिक व्यवधान में कमी आएगी। समिति अब अपने राष्ट्रव्यापी परामर्श अभियान के अगले चरण में लखनऊ का दौरा करेगी। महेश चोपड़े, आकाशवाणी समाचार, पणजी।
1: वियतनाम के प्रधानमंत्री ले मिन हुन ने फुकवोक द्वीप के पास स्पीड बोट हादसे की जांच के आदेश दिए हैं। इस हादसे में 15 भारतीय पर्यटकों की मौत हो गई। ये हादसा

0: उस समय हुआ जब 36 लोगों को लेकर जा रही स्पीड बोट फुकुओक द्वीप के पास रत्नगोवाई टापू के निकट अचानक ऊंची लहरों की चपेट में आकर पलट गई। वियतनाम में भारतीय दूतावास ने मृतकों की सूची जारी की है। इनमें 10 लोग तमिलनाडु, 3 आंध्र प्रदेश और 2 केरल के रहने वाले थे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने दुर्घटना पर शोक व्यक्त किया है। इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के होर्मुज जल डमरू मध्य में साइप्रस के झंडे वाले जहाज पर हमले के बाद अमरीका ने ईरान पर नए हमले शुरू कर दिए हैं। एक रिपोर्ट।
1: अमरीका की सेना ने कहा है कि हमले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के निर्देश पर किए गए हैं। इस बीच ईरान ने होर्मुज जलडमरू मध्य को अगली सूचना तक बंद कर दिया है। ईरान की नौसेना ने कहा कि इस इलाके में अमरीका का दखल खत्म होने तक किसी भी जहाज को इस रास्ते से निकलने की अनुमति नहीं दी जाएगी। नौसेना ने कहा कि होर्मुज जलडमरू मध्य की इस घटना को लेकर अमरीका की किसी भी कार्रवाई का कड़ा जवाब दिया जाएगा। अमरीका ईरान से सार्वजनिक रूप से होर्मुज जलडमरू मध्य से गुजरने वाले जहाजों पर हमला नहीं करने का आश्वासन चाहता है। इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि तनाव के बावजूद ईरान के साथ बातचीत जारी रहेगी। ईरान ने कहा कि होर्मुज जलडमरू मध्य उसके जहाजों को शुल्क देना होगा। ओमान ने होर्मुज जलडमरू मध्य से जहाजों की आवाजाही के लिए 2 अलग अलग रास्तों का

0: सिंगल्स का खिताब अपने नाम कर लिया है। इस बीच पुरुष सिंगल्स के फाइनल में आज विश्व के नंबर एक खिलाड़ी यैनिक सिनर का मुकाबला जर्मनी के अलेक्जेंडर ज्वेरेव से होगा। ये मैच भारतीय समय के अनुसार आज रात 8:30 बजे से खेला जाएगा। महिला डबल्स के फाइनल में आज 10वीं वरीयता प्राप्त वो हानियू और क्रिस्टीना म्लाडेनोविच की जोड़ी का मुकाबला दूसरी वरीयता प्राप्त गैब्रियला डब्रोवस्की और लुइसा स्टेफनी की जोड़ी से होगा। ये मैच शाम 5:30 बजे से शुरू होगा। और इंग्लैंड ने कल रात साउथहैम्पटन में 5वें और अंतिम टी20 क्रिकेट मैच में भारत को 56 रन से हराकर श्रृंखला 4-0 से अपने नाम कर ली है।
1: और अभी अभी प्राप्त समाचार के अनुसार अमेरिका के कंसास में जारी क्वार्टर फाइनल मुकाबले में अर्जेंटीना और स्विट्जरलैंड 1-1 गोल से बराबरी पर हैं। मौसम विभाग ने अगले 4 दिनों तक देश के उत्तरी और पूर्वी हिस्सों में मूसलाधार वर्षा की आशंका व्यक्त की है। इनमें जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, दिल्ली, पूर्वी उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, अरुणाचल प्रदेश और ओडिशा शामिल हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं जया भारती।
2: धन्यवाद जागृति। आज प्रकाशित अखबारों ने अलग अलग खबरों को अपनी सुर्खी बनाई है। नवभारत टाइम्स ने प्रधानमंत्री मोदी की न्यूजीलैंड यात्रा को प्राथमिकता देते हुए लिखा है, आतंकवाद पर बनाएंगे ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप, प्रधानमंत्री मोदी और न्यूजीलैंड के पीएम के बीच सहमति। पंजाब केसरी ने INS महेंद्र गिरी के जलावतरण पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बयान को प्रमुखता दी है, भविष्य के युद्ध सिर्फ AI से नहीं सैनिकों के दम पर जीते जाएंगे। जनसत्ता ने श्रीराम जन्मभूमि मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा का बयान दिया है, चढ़ावा चोरी कलंक, व्यवस्था में जल्द सुधार। दैनिक जागरण ने अपने संपादकीय पृष्ठ पर बरसात में बेहाल होते शहरों पर विश्लेषण दिया है, हर बरसात में देश के शहरों में लोग जलभराव और उससे जुड़ी समस्याओं से जूझते हैं, इसके बाद भी नगर निकायों का काम करने का तौर तरीका नहीं बदला है। अखबार ने लिखा है कि अब यह जरूरी हो गया है कि संसद में एक विशेष सत्र बुलाकर बिगड़ते शहरीकरण को संवारने के लिए कोई सार्थक बहस की जाए। दैनिक भास्कर ने राष्ट्रीय राजधानी के मौसम का मिजाज दिया है, कमजोर पड़ा मॉनसून, अब 1 हफ्ते झेलनी पड़ेगी गर्मी।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के 3 देशों की यात्रा सम्पन्न। देश भर में आज व्यापक पौधारोपण अभियान चलाया जाएगा। वियतनाम सरकार ने स्पीड बोट दुर्घटना की जांच के आदेश दिए, दुर्घटना में 15 भारतीय पर्यटकों की मौत। अमेरिका ने इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के होर्मुज जल डमरू मध्य में साइप्रस के झंडे वाले जहाज पर हमले के बाद ईरान पर नए हमले शुरू किए, ईरान ने जल मार्ग को अगली सूचना तक किया बंद। मौसम विभाग ने अगले 4 दिन तक देश के उत्तरी और पूर्वी हिस्सों में बहुत तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया। और इंग्लैंड ने नॉर्वे को 2-1 से हराकर फीफा विश्व कप के सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I am Naresh Magu. The headlines. Prime Minister Narendra Modi concludes his 3-nation tour of Indonesia, Australia and New Zealand. Departs for India after holding extensive talks with New Zealand Prime Minister Christopher Luxon. Vietnam government orders probe into speedboat tragedy that killed 15 Indian tourists. US launches new round of strikes against Iran after IRGC forces attack container ship transiting Strait of Hormuz. Iranian Navy closes the vital sea corridor until further notice. IMD forecasts heavy rainfall across northern and eastern parts of the country for next 4 days. England beats Norway 2-1 to reach FIFA World Cup semi-finals. And Linda Noskova beats Carolina Muchova to win first Wimbledon tennis title. Prime Minister Narendra Modi has concluded his 3-nation tour of Indonesia, Australia and New Zealand and departed for India after holding extensive talks with New Zealand Prime Minister Christopher Luxon. India and New Zealand elevated their bilateral ties to a strategic partnership and signed several agreements and memoranda of understanding across key sectors. These include defense, tourism, sports, disaster management, and dairy and animal husbandry sectors. A major highlight of the visit was the community event at Auckland's Spark Arena, attended by over 10,000 members of the Indian diaspora. Addressing the gathering, Mr. Modi stated that the future of India and New Zealand is intertwined and the bilateral trade agreement will accelerate India's journey towards a developed nation.
4: भारत और न्यूजीलैंड के रिश्ते में यादें भी हैं, दोस्ती भी है, वैल्यूज भी है और एक कमिटमेंट भी है. भारत न्यूजीलैंड की यही वाका एक नई यात्रा पर निकलने के लिए तैयार है. हमारे सामने अवसरों से भरा खुला समुद्र है. हवाएं हमारे साथ है, समंदर की विशाल लहरें हमारे साथ है, इच्छा शक्ति का नीला आसमान हमारे साथ है. पाने को काफी कुछ है और मैं जानता हूं हम सफल होंगे.
3: On the occasion, Prime Minister Luxon described India as a trusted friend, praised the contribution of the Indian community to New Zealand's progress, and appreciated Prime Minister Modi's leadership. Prime Minister Modi thanked Prime Minister Luxon for his warm hospitality and said the visit had opened a new chapter in India-New Zealand relations.
4: 40 साल के बाद कोई भारतीय पीएम न्यूजीलैंड की धरती पर आया है. ये मेरा सौभाग्य है. मैं न्यूजीलैंड के सभी निवासियों के लिए, आप सभी लोगों के लिए 140 करोड़ भारतीयों की शुभकामनाएं लेकर आया हूं. साथियों, प्रधानमंत्री के रूप में भले ही मेरा पहला न्यूजीलैंड दौरा है, लेकिन 25-30 साल पहले जब मैं किसी सरकार में भी हिस्सा नहीं था, सार्वजनिक जीवन में मुझे कोई जानता नहीं था, तब भी मुझे यहाँ न्यूजीलैंड आने का अवसर मिला था.
3: मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स स्पोक्सपर्सन रणधीर जायसवाल सेड Prime Minister Modi's three-country visit delivered significant outcomes, advancing cooperation across several sectors, including trade, technology, security, education, innovation, and people-to-people exchanges, among others. Vietnamese Prime Minister Lê Minh Hun has ordered a probe into the speedboat tragedy near Phu Quoc Island that claimed the lives of 15 Indian tourists. According to a statement issued by Consulate General of Vietnam,

0: Mountains keep warning us, but are we listening? The Times of India writes that barely 2 years after Wayanad witnessed one of India's worst landslide disasters, another mountainside has collapsed. The immediate truth, they are living landscapes with limits that engineering alone cannot negotiate. And finally, historic Gurudwara in Lahore, associated with Sri Guru Har Gobind Sahib Ji, built in 1923, has been reopened for the first time since partition, ending a wait of nearly 79 years, reports the Sunday Tribune. And with that, it's back to you, Naresh.
1: Thank you, Subhadra. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi concludes his three-nation tour of Indonesia, Australia and New Zealand. Departs for India after holding extensive talks with New Zealand Prime Minister Christopher Luxon. Vietnam government orders probe into speedboat tragedy that killed 15 Indian tourists. U.S. launches new round of strikes against Iran after IRGC forces attack container ship transiting Strait of Hormuz. Iranian Navy closes the vital sea corridor until further notice. IMD forecasts heavy rainfall across northern and eastern parts of the country for next 4 days. England beat Norway 2-1 to reach FIFA World Cup semi-finals, and Linda Noskova beats Carolina Muchova to win first Wimbledon tennis title. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
2: आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं आसिया मेमुना। पहले इस वक्त की खास खास खबरें। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने तीन मुल्कों इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड का दौरा मुकम्मल कर लिया है। वो न्यूजीलैंड के वज़ीर-ए-आज़म क्रिस्टोफर लक्सन के साथ तफसीली बातचीत के बाद भारत रवाना हो गए। वियतनाम हुकूमत ने तेज रफ्तार कश्ती हादसे की तहकीकात का हुक्म दिया है, जिसमें 15 भारतीय सयाहों की मौत हो गई। अमेरिका ने ईरान के सिपाही पासदाराने इनकलाब IRGC की जानिब से आबनाए हुरमुज से गुजरने वाले एक माल बरदार जहाज पर हमले के बाद ईरान के खिलाफ हमलों का नया सिलसिला शुरू कर दिया है। ईरानी बहरिया ने अगले हुक्म तक इस अहम बहरी गुजरगाह को बंद कर दिया है। भारतीय महकमा मौसमियात ने अगले 4 दिन के दौरान मुल्क के शिमाली और मशरिकी इलाकों में शदीद बारिश की पेशगोई की है। फीफा वर्ल्ड कप में इंग्लैंड नॉर्वे को 2-1 से हराकर सेमीफाइनल में पहुंच गया है। और टेनिस में लिंडा नोस्कोवा ने कैरोलिना मुकोवा को हराकर अपना पहला विंबलडन खिताब हासिल किया। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने न्यूजीलैंड के वज़ीर-ए-आज़म क्रिस्टोफर लक्सन के साथ तफसीली बातचीत करने के बाद तीन मुल्कों इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड का अपना दौरा मुकम्मल कर लिया है और भारत के लिए रवाना हो चुके हैं। भारत और न्यूजीलैंड ने अपने दो तरफा ताल्लुकात को स्ट्रेटेजिक शराकतदारी की सतह तक ले जाने का फैसला किया और मुख्तलिफ अहम शोबों में कई समझौतों और मफाहमत नामों पर दस्तखत किए हैं। इन समझौतों में दिफा, सियाहत, खेलकूद, आफात से निमटने, डेयरी सनत और मवेशी पालने समेत कई शोबे शामिल हैं। वज़ीर-ए-आज़म के दौरे की एक नुमाया तकरीब ऑकलैंड के सापर्क एरेना में मुनाकिद होने वाला कम्युनिटी प्रोग्राम था, जिसमें भारतीय बिरादरी के 10,000 से ज्यादा अफराद ने शिरकत की। भारतीय बिरादरी के इस इज्तमा से खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने कहा कि भारत और न्यूजीलैंड का मुस्तकबिल एक दूसरे से जुड़ा हुआ है और दोनों ममालिक के दरमियान होने वाला दोतरफा तिजारती मुआहिदा भारत की तरक्की याफ्ता मुल्क बनने के सफर को मजीद तेज करेगा।
3: भारत और न्यूजीलैंड के रिश्ते में यादें भी हैं, दोस्ती भी है, वैल्यूज भी है और एक कमिटमेंट भी है। भारत न्यूजीलैंड की यही वाका एक नई यात्रा पर निकलने के लिए तैयार है। हमारे सामने अवसरों से भरा खुला समुद्र है, इच्छा शक्ति का नीला आसमान हमारे साथ है, पाने को काफी कुछ है और मैं जानता हूँ हम सफल होंगे।
2: इस मौके पर न्यूजीलैंड के वज़ीर-ए-आज़म क्रिस्टोफर लक्सन ने भारत को एक काबिल-ए-एतमाद दोस्त करार दिया। न्यूजीलैंड की तरक्की में भारतीय बिरादरी के रोल को सराहा और वज़ीर-ए-आज़म मोदी की क़यादत की तारीफ की। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने वज़ीर-ए-आज़म लक्सन

0: बेहतरीन मेजबानी पर उनका शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि इस दौरे ने भारत उन्हें किया कि भारत के वजीर आजम के न्यूजीलैंड के दौरे को 40 साल गुजर चुके हैं, ताहम उन्होंने यकीन दिलाया कि अगले दौरे में इतना तवील वक्फा नहीं होगा।
1: ये मेरा सौभाग्य है, मैं न्यूजीलैंड के सभी निवासियों के लिए, आप सभी लोगों के लिए 140 करोड़ भारतीयों की शुभकामनाएं लेकर आया हूँ। प्रधानमंत्री के रूप में भले ही मेरा पहला न्यूजीलैंड दौरा है, लेकिन 25-30 साल पहले जब मैं किसी सरकार में भी हिस्सा नहीं था, सार्वजनिक जीवन में मुझे कोई जानता नहीं था, तब भी मुझे यहाँ न्यूजीलैंड आने का अवसर मिला था।
0: वजारत खारजा के तर्जुमान रणधीर जायसवाल ने कहा कि वजीर आजम मोदी के तीन मुल्कों के दौरे से तिजारत, टेक्नोलॉजी, सिक्योरिटी, तालीम, इख्तरा और अवामी रवाबित समेत मुतादिद शोबों में तआवुन को फरोग मिला है और इस दौरे से अहम और मुस्बत नतायज हासिल हुए हैं। वियतनाम के वजीर आजम ली मिन हुन ने फू क्वाक जजीरे के करीब पेश आने वाले उस तेज रफ्तार कश्ती हादसे की तहकीकात का हुक्म दिया है जिसमें 15 भारतीय सयाहों की मौत हो गई। मुंबई में वियतनाम के कौंसिल खाने की जानिब से जारी एक बयान के मुताबिक वियतनाम के वजीर आजम ने मुतालिका हुक्काम को हिदायत दी है कि वो हादसे की वजूहात और मुतालिका कोताहियों की निशानदेही करें, जिम्मेदारी का तायुन करें और आइंदा ऐसे वाकयात की रोकथाम के लिए मौसर इकदाम करें। उन्होंने ये भी हिदायत दी कि जिन अफराद ने जाब्तों की खिलाफ वर्जी की है और जिनकी गफलत इस हादसे का सबब बनी है, उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। ये अफसोसनाक हादसा कल उस वक्त पेश आया जब 36 अफराद, जिनमें अमले के 4 अरकान भी शामिल थे, को ले जाने वाली तेज रफ्तार कश्ती रत्नगोई जजीरे के करीब अचानक एक बड़ी समुद्री लहर की जद में आकर उलट गई। मकामी हुकाम ने 21 अफराद को बहिफाजत बचा लिया, ताहम 15 भारतीय सयाह जिनमें 2 खवातीन भी शामिल थीं, जान की बाजी हार गए। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने वियतनाम के फू क्वाक जजीरे के करीब पेश आने वाले अफसोसनाक कश्ती हादसे पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार किया है। इस हादसे में 15 भारतीय शहरियों की मौत हो गई। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि वो इस अफसोसनाक कश्ती हादसे से बेहद गमजदा हैं। वजीर खारजा ने महलुकीन के अहले खाना से दिली ताजियत और हमदर्दी का इजहार किया और हादसे में जख्मी होने वालों की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ की। ईरान की सिपाही पासदारा ने इनकलाब IRGC की जानिब से आबनाए हुरमुज से गुजरने वाले कुब्रुस के झंडे वाले कंटेनर जहाज पर हमले के बाद अमेरिका ने ईरान के खिलाफ हमलों का एक नया सिलसिला शुरू किया है। पेश है एक रिपोर्ट।
2: अमेरिकी फौज ने कहा है कि ये फजाई हमले सदर डोनाल्ड ट्रंप की हिदायत पर किए जा रहे हैं। अमेरिकी सेंटकॉम ने कहा है कि एक तजारती जहाज पर हमले में पायलट हमले का एक शख्स लापता है और हमले की वजह से लगी आग के इंजन रूम में हुए नुकसान के सबब जहाज अपना सफर मुकम्मल नहीं कर सका। जजीरा कशाम, बंदर अब्बास और सिरीक में इन हमलों के बाद धमाकों की आवाजें सुनी गई। वहीं ईरान ने अगले नोटिस तक अपनाए हुरमुज को बंद कर दिया है। ईरान की सिपाही पासदारा ने इनकलाब ने कहा है कि उस जहाज ने गैर कानूनी रास्ता इख्तियार करने की कोशिश की थी। फौज ने कहा है कि किसी भी जहाज को स्ट्रेटजिक आबी गुजरगाह से गुजरने की इजाजत नहीं होगी जब तक कि खित्ते में अमरीका की दखलंदाजी बंद नहीं हो जाती। सिपाही पासदारा ने इनकलाब की जानिब से कि इंतबाही वार करने के बाद जब जहाज रुक गया तब ये ऐलान किया गया। वहीं अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि कशीदगी के बावजूद ईरान के साथ सालिसी जारी रहेगी। दूसरी तरफ ओमान ने अबनाए हुरमुज से जहाजों के गुजरने के लिए 2 अलहदा रास्ते तजवीज किए हैं, एक ईरानी समंदर से और दूसरा ओमान समंदर से। इससे पहले को बातचीत में तेहरान से इसी तरह की तजवीज को मुस्तरद कर दिया था। न्यूज डेस्क से जिज्ञासा की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं हबीबुर रहमान।
0: ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। मुजव्वजा इंतखाबी इख्तिताम पजीर हो गई। अपने दौरे के दौरान कमेटी ने रियासती हुकूमत, सियासी पार्टियों, कानून साजों, कानून के माहिरीन, अवामी शोबे के इदारों, सिविल सोसाइटी के नुमाइंदों और मीडिया से तबादला ख्याल किया। मजीद तफसील हमारे नामा निगार से।
3: आइन के

0: वियतनाम हुकूमत ने तेज रफ्तार कश्ती हादसे की तहकीकात का हुक्म दिया है जिसमें 15 भारतीय सयाहों की मौत हो गई। अमरीका ने ईरान के सिपाही पाजारन इनकलाब IRGC की जानिब से आबनाए हुरमुज से गुजरने वाले एक माल बरदार जहाज पर हमले के बाद ईरान के खिलाफ हमलों का नया सिलसिला शुरू किया। इसके साथ ही खबरनामा खत्म हुआ।
1: मीडियम वेव 483.1 मीटर यानी 621 किलो हर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। प्रादेशिक समाचार आप सुनेंगे एक छोटे से अंतराल के बाद।

0: कृपया ध्यान दें, डेंगू अपने शहर में पांव पसार रहा है, पर हम सावधानी और स्वच्छता से इसको हरा सकते हैं।
1: डेंगू की रोकथाम के लिए कुछ जरूरी बातों का पालन अवश्य करें, जैसे डेंगू का मच्छर साफ पानी में भी पनपता है, इसीलिए कहीं भी पानी जमा ना होने दें। डेंगू का मच्छर दिन में काटता है, इसीलिए अपने आसपास साफ रखें और अपने शरीर को ढक कर रखें। समय समय पर फॉगिंग करें और मच्छरदानी का प्रयोग करें। बच्चों को बाहर भेजने से पहले मच्छर भगाने की क्रीम लगाएं। खिड़की दरवाजों में मच्छर जाली लगवाएं।
0: जब होगा पूरा प्रयास हमारा, तभी मिलेगा डेंगू से छुटकारा। जीवंत बिहार, सपना हो साकार। अधिक जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 104 पर संपर्क करें। स्वास्थ्य विभाग और सूचना व जनसंपर्क विभाग, बिहार सरकार द्वारा जनहित में जारी।
2: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक, नॉन स्टॉप धमाल। पुरानी यादें, नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है।

नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज दिल्ली स्थित पूसा परिसर में पर्यावरण संरक्षण संकल्प कार्यक्रम में 17,000 वृक्ष मित्रों से संवाद करेंगे। ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने कहा, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल विकास योजना के लिए 8,33,00,000 रुपए की राशि जारी की गई। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग ने राज्य के मेडिकल कॉलेजों में MBBS सीटें बढ़ाने की दी मंजूरी। PMCH में सीटों की संख्या 200 से बढ़कर 250 हुई। और मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान राज्य के उत्तरी हिस्सों में कई स्थानों पर भारी बारिश और वज्रपात की चेतावनी जारी की। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज दिल्ली स्थित पूसा परिसर में पर्यावरण संरक्षण संकल्प कार्यक्रम में भाग लेंगे। इस अवसर पर श्री सिंह देश भर से आए लगभग 17,000 वृक्ष मित्रों से संवाद करेंगे। कृषि मंत्री जन भागीदारी के माध्यम से पर्यावरण संरक्षण को राष्ट्रव्यापी जन आंदोलन में परिवर्तित करने का भी आह्वान करेंगे। कार्यक्रम में देश के लगभग

0: सभी राज्यों से ऐसे वृक्ष मित्र शामिल होंगे जिन्होंने वृक्षारोपण, जल संरक्षण और पारिस्थितिकी पुनर्स्थापन के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान दिया है। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल विकास योजना के क्रियान्वयन के लिए 8,33,00,000 रुपए की राशि जारी की गई है। ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने बताया कि इस राशि में केंद्र सरकार 5,00,000,000 और राज्य सरकार 3,33,00,000 रुपए का अंशदान देगी। मंत्री ने बताया कि इस राशि से निर्धन परिवारों के लिए जीविकोपार्जन और स्वरोजगार को बढ़ावा देने के कार्य किए जाएंगे। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी आज मुजफ्फरपुर में नगर विकास और आवास विभाग की मुजफ्फरपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड के लिए लगभग 1,047,00,000 की लागत वाली 982 योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। इन योजनाओं से सड़क, जल निकासी, पार्क समेत अन्य शहरी आधारभूत सुविधाओं का विस्तार किया जाएगा। बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए नामांकन का कल अंतिम दिन है। उपचुनाव को लेकर प्रचार प्रसार का शोर बढ़ गया है। प्रत्याशी लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं। भाजपा प्रत्याशी नीरज कुमार सिन्हा और जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर के कल नामांकन दाखिल करने की संभावना है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने बताया कि पार्टी प्रत्याशी नीरज कुमार सिन्हा 13 जुलाई को नामांकन दाखिल करेंगे।
1: जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के एनडीए के प्रत्याशी हैं नीरज कुमार सिन्हा जी, तो बांकीपुर के एक सामान्य कार्यकर्ता के नाते वो काम कर रहे हैं। 13 तारीख को अपना नामांकन करेंगे। पूर्व में जो प्रत्याशी थे उन्होंने पारिवारिक कारणों से असमर्थता व्यक्त की चुनाव लड़ने से। उन्होंने कहा मैं पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, रहूंगा, चुनाव में भी पूरी पूरी मेरी सहभागिता रहेगी। तो केंद्रीय नेतृत्व में चुनाव समिति ने नीरज कुमार सिन्हा जी, जो उसी विधानसभा के कार्यकर्ता।
0: उपचुनाव के लिए अब तक 11 प्रत्याशियों ने अपने नामांकन पत्र दाखिल किए हैं। इनमें राजद की रेखा गुप्ता प्रमुख हैं। 16 जुलाई तक उम्मीदवार अपना नाम वापस ले सकते हैं। 30 जुलाई को मतदान होगा जबकि 3 अगस्त को मतगणना कराई जाएगी। राज्य सरकार विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन ग्रामीण VBG रामजी से प्रदेश में सामुदायिक स्वच्छता परिसरों का निर्माण कराएगी। ग्रामीण विकास विभाग के प्रधान सचिव पंकज कुमार ने बताया कि ऐसी ग्राम पंचायतें जिनमें सामुदायिक शौचालय निर्माण का काम अधूरा है, वहां महादलित टोलों और साप्ताहिक हाटों में भी सामुदायिक स्वच्छता परिसर के निर्माण पर विशेष बल दिया जाएगा। उन्होंने अधूरे निर्माण स्थलों को भी चिन्हित करने के निर्देश दिए हैं। प्रधान सचिव ने बताया कि कचरा संग्रहण और निस्तारण में किसी भी तरह की लापरवाही या कोताही पर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि महादलित टोलों और साप्ताहिक हाटों में भी सामुदायिक स्वच्छता परिसर के निर्माण पर विशेष रूप से ध्यान देने के निर्देश दिए गए हैं। पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश ने शेखपुरा जिले में सभी पंचायत में जल्द से जल्द पंचायत सरकार भवन के निर्माण को पूर्ण करने के निर्देश दिए हैं। मंत्री ने विभाग की ओर से चलाए जा रहे विभिन्न विकास और कल्याण योजनाओं की समीक्षा के दौरान यह निर्देश दिए। श्री प्रकाश ने अरियरी प्रखंड अंतर्गत चांदी पहाड़ इलाके में आयोजित कार्यक्रम में लोगों से विकास योजनाओं की निगरानी करने को कहा है। शिक्षा विभाग ने मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के अंतर्गत वर्ष 2026 में इंटरमीडिएट की परीक्षा में सफल अविवाहित छात्राओं को प्रोत्साहन राशि देने के लिए 700 करोड़ रुपए की राशि जारी की है। विभाग ने जारी आदेश में लिखा है कि छात्राओं को 25,000 रुपए दिए जाएंगे। इस वर्ष 5,65,675 छात्राओं ने इंटरमीडिएट की परीक्षा पास की है। गया जी के बिपार्ड परिसर में विधानसभा सदस्यों के लिए 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया जा रहा है। प्रबोधन कार्यक्रम का आज अंतिम दिन है। राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि यह कार्यक्रम उपयोगी है, इससे विधायकों को काफी लाभ होगा।
2: सभी माननीय मंत्री लोगों के ओरिएंटेशन का कार्यक्रम, तो इससे बहुत कुछ फायदा होगा। चीजों को समझने में, जनता की सेवा करते हुए काम करने में बहुत ही अच्छा कार्यक्रम है। इस तरह का कार्यक्रम होना चाहिए।
0: राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग ने राज्य के मेडिकल कॉलेजों में MBBS सीटों को बढ़ाने की मंजूरी दे दी है। आयोग के मेडिकल असेसमेंट एंड रेटिंग बोर्ड के अध्यक्ष M.K. रमेश ने बताया कि पटना मेडिकल कॉलेज एंड अस्पताल में सीटों की संख्या 200 से बढ़ाकर 250 कर दी गई है, जबकि JLNMCH में 120 की जगह 100

150 सीटों पर नामांकन होगा। वहीं कटिहार मेडिकल कॉलेज में सीटों की संख्या 150 से बढ़ाकर 200 कर दी गई है। इसके साथ ही राज्य में नए मेडिकल कॉलेजों में भी सीटों की संख्या निर्धारित की गई है। उन्होंने कहा कि निजी मेडिकल कॉलेजों में सीटों को बढ़ाने की मंजूरी दी गई है। इधर IGIMS में दंत शोध संस्थान की स्थापना की जाएगी। IGIMS के प्राचार्य डॉक्टर रंजीत कुमार ने बताया कि संस्थान की स्थापना के बाद अनुसंधान कार्य में तेजी आएगी और PG की पढ़ाई भी शुरू होगी। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने औरंगाबाद से पटना के नौबतपुर तक राष्ट्रीय राजमार्ग 139 को 4 लेन बनाने की मंजूरी मिलने के बाद DPR बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। NHAI के कार्यपालक अभियंता तुलसी प्रसाद ने बताया कि जिन हिस्सों में 4 लेन बाईपास का निर्माण होगा वहां की पुरानी सड़कों को 4 लेन में तब्दील नहीं किया जाएगा। ऐसी पुरानी सड़कों को राज्य सरकार के पथ निर्माण विभाग को सौंप दिया जाएगा। शेष समाचार एक अंतराल के बाद।

0: Akashwadi at 90. समाचारों में आपका फिर स्वागत है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR News_पटना को फॉलो कर सकते हैं। प्रदेश में मानसून की सक्रियता बनी हुई है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान मुजफ्फरपुर, गोपालगंज और सीवान जिले में अत्यधिक भारी बारिश, जबकि पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, सारण, शिवहर, सीतामढ़ी, कटिहार और पूर्णिया जिले में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है।
1: 24 घंटों के दौरान राज्य के उत्तर पश्चिम एवं उत्तर मध्य भाग के अधिकांश स्थानों में, उत्तर पूर्व भाग के अनेक स्थानों में, जबकि शेष भाग के कुछ स्थानों में वर्षा होने की संभावना है, तथा 24 घंटों के दौरान राज्य के गोपालगंज, मुजफ्फरपुर एवं सिवान जिलों में एक दो स्थानों पर अत्यधिक भारी वर्षा होने की संभावना है। राज्य के अधिकांश जिलों में एक दो स्थानों पर मेघ गर्जन वज्रपात होने की संभावना है। राज्य के पूर्वी चंपारण, कटिहार, पूर्णिया, सारण, शिवहर, सीतामढ़ी एवं पश्चिमी चंपारण जिलों में एक दो स्थानों पर भारी वर्षा होने की संभावना है।
0: मौसम विभाग की रिपोर्ट के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान पटना के विक्रम में लगभग 100 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। राजधानी पटना में भी 90 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। नेपाल के तराई क्षेत्रों में भारी बारिश और उत्तर बिहार के कई क्षेत्रों में लगातार बारिश के कारण गंडक नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। नदी का पानी पश्चिम चंपारण जिले के योगापट्टी प्रखंड के सिसवा गांव में कई घरों में घुस गया है। गांव को प्रखंड से जोड़ने वाली मुख्य सड़क पर भी 4 से 5 फीट पानी बह रहा है। जिले के रामनगर प्रखंड अंतर्गत दोन क्षेत्र में अवरहिया गांव के पास सड़क ध्वस्त हो जाने से लगभग 18 गांव का सड़क संपर्क टूट गया है। इधर कोसी नदी के जलस्तर में भी बढ़ोतरी हुई है। इसे देखते हुए नदी पर स्थित बराज के कई फाटक खोल दिए गए हैं। जल संसाधन विभाग के अधिकारियों के अनुसार स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है। शिक्षा विभाग ने बाढ़ से प्रभावित होने वाले विद्यालयों की पहचान कर बाढ़ आने से पूर्व सभी तैयारियां पूर्ण कर लेने के आदेश दिए हैं। विभाग ने इस संबंध में सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को पत्र लिखकर चिन्हित विद्यालयों को निर्देश दिया है कि विद्यालयों के अभिलेख, शिक्षण सामग्री और उपकरण सुरक्षित स्थान पर रखे जाएं। आदेश में कहा गया

कि जिन विद्यालयों में राहत शिविर लगाने की संभावना हो वहां पढ़ाई के लिए वैकल्पिक स्थान की पूर्व योजना बनाई जाए। मुख्यमंत्री विद्यालय सुरक्षा कार्यक्रम के तहत विद्यार्थियों को बाढ़ के दौरान क्या करें और क्या ना करें की नियमित जानकारी देने के भी निर्देश दिए गए हैं। विद्यार्थियों और अभिभावकों को पठन पाठन सामग्री सुरक्षित रखने के प्रति जागरूक किया जाए। बच्चों को बाढ़ से बचाव, डूबने से सुरक्षा और नाव से सुरक्षा संबंधित जानकारी देने को भी कहा गया है। दरभंगा मंडल कारा के सहायक अधीक्षक नंदू चौधरी को निलंबित कर दिया गया। सहायक अधीक्षक पर पत्नी की हत्या और दहेज प्रताड़ना का आरोप है। वहीं पटना की बेऊर जेल के 3 कक्षपालों को कार्य में लापरवाही बरतने को लेकर निलंबित कर दिया गया है। मद्य निषेध विभाग में दारोगा के 78 पदों पर नियुक्ति के लिए आज परीक्षा आयोजित की जा रही है। परीक्षा के लिए राज्य में 515 केंद्र बनाए गए हैं। परीक्षा में लगभग 2,00,000 अभ्यर्थी शामिल हो रहे हैं। इधर पूर्व मध्य रेल बिहार पुलिस भर्ती परीक्षा के अभ्यर्थियों के लिए आज 10 परीक्षा स्पेशल रेलगाड़ियों का परिचालन कर रहा है। पूर्व मध्य रेल के अनुसार ये रेलगाड़ियां बक्सर पटना, किउल गया, नवादा गया समेत अन्य मार्गों पर चलाई जा रही हैं। सीवान जिले के मैरवा थाना क्षेत्र के पंडितपुरा गांव में लगभग 5.5 लाख रुपए के जाली नोटों के साथ एक महिला और एक युवक को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ कर रही है। ग्रामीण विकास मंत्रालय की जांच में सारण जिले के सदर और सोनपुर प्रखंड के मनरेगा की योजनाओं में अनियमितता मिलने के बाद 4 अधिकारियों और कर्मचारियों पर प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। रोहतास जिले के अकूढ़ी गोला थाना क्षेत्र की पुलिस ने एक मकान से 50 लाख रुपए की शराब बरामद की है। अररिया जिले के रानीगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत बढ़हरा चौक के पास बीते दिनों एक पिकअप चालक और एक मवेशी व्यापारी से लूट मामले में पुलिस ने 3 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया। मुंगेर जिले के तारापुर संग्रामपुर मुख्य मार्ग पर रामपुर पंचायत स्थित 3 माइल चौक के पास एक हाईवा की चपेट में आने से बाइक सवार एक व्यक्ति की मौत हो गई। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी अखबारों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिंदुस्तान ने उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन के हवाले से लिखा है, लोग नौकरी करने बिहार आएं, ऐसा विकास करें। दैनिक जागरण की बड़ी खबर है, दुनिया में तीसरी सर्वश्रेष्ठ है भारतीय वायुसेना, चीन छूटा पीछे। दैनिक भास्कर ने अयोध्या मामले पर लिखा है, श्रद्धालु घटे, होटल ऑक्यूपेंसी 25% ही बची, राम मंदिर में चढ़ावा चोरी के बाद बदले हालात। प्रभात खबर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के हाजीपुर में पेपरलेस निबंधन प्रणाली की शुरुआत पर लिखता है, अब 75 वर्ष से ज्यादा उम्र के बुजुर्गों को घर बैठे रजिस्ट्री की सुविधा। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज दिल्ली स्थित पूसा परिसर में पर्यावरण संरक्षण संकल्प कार्यक्रम में 17,000 वृक्ष मित्रों से संवाद करेंगे। ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने कहा, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल विकास योजना के लिए 8,33,00,000 रुपए की राशि जारी की गई। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग ने राज्य के मेडिकल कॉलेजों में MBBS सीटें बढ़ाने की दी मंजूरी। PMCH में सीटों की संख्या 200 से बढ़कर 250 हुई। और मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान राज्य के उत्तरी हिस्सों में कई स्थानों पर भारी बारिश और वज्रपात की चेतावनी जारी की। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन दोपहर 2 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
1: आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीरकर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
0: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

मीडियम वेव 205.76 मीटर अर्थात 1458 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम नगमे नए पुराने। आरंभ में सुनिए फिल्म दिल्ली 6 का ये गीत, मोहित चौहान की आवाज़ में, गीत गुलजार के हैं और संगीत रचना AR रहमान का।

0: सुनो ना,
1: हाँ?
0: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
1: तो रोका किसने है, हाँ?
0: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
1: मुझसे।
0: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
1: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
0: पर उससे मेरा क्या फायदा?
1: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
0: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
1: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 8700014242।
0: ओ 8700014242। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700014242 पर।
2: कुमार सानू और साधना सरगम की आवाजों में सुनिए फिल्म दीवाना का ये गीत।

आप सुन रहे थे कार्यक्रम नगमे नए पुराने, प्रसारण आकाशवाणी भागलपुर से किया गया। आइए सुनते हैं कार्यक्रम बाल मंजूषा।

जय हिंद बच्चों, आज के बाल मंजूषा कार्यक्रम के साथ उपस्थित है आपकी दीदी अर्चना। तो बच्चों, आरंभ करते हैं आज का ये कार्यक्रम, और हर बार की ही तरह आज भी कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं अमृत वाणी से। किसी महापुरुष ने कहा है, कागा काके धन हरे, कोयल काके दे, मीठी वाणी बोल के जग अपनो कर ले। बच्चों, सभी को इस बात का पता है कि कौआ और कोयल रंग रूप और आकार प्रकार में लगभग एक समान होते हैं, लेकिन कौवे को कोई पसंद नहीं करता। वह घर की मुंडेर पर आकर बैठता भी है तो सभी उसे उड़ाने के लिए दौड़ पड़ते हैं, जबकि कोयल सभी को प्रिय लगती है होते हैं। फिल्मों के लिए तो उसकी आवाज़ को रिकॉर्ड करके रखा जाता है, ताकि ज़रूरत पड़ने पर उस आवाज़ के प्रयोग से अतिरिक्त प्रभाव उत्पन्न किया जा सके। यह अंतर बच्चों वाणी का अंतर है। मनुष्य जिस तरह की वाणी का व्यवहार करता है, उसकी तरह के परिणाम उसे भोगने पड़ते हैं। जिस प्रकार मधुर वाणी के प्रभाव से धन और मित्र बनते चले जाते हैं, उसी प्रकार निर्मित होने वाले परिवेश में और हमें प्राप्त होने वाले आदर और सम्मान में वाणी की महत्वपूर्ण भूमिका है। वाणी जब अपने नकारात्मक रूप में प्रकट होती है तो जीत हार में बदल जाया करती है। मित्रों की पंक्ति में खड़े लोग शत्रु हो जाते हैं, और हमारे समस्त सुखों पर मनुष्यत और दुखों के काले बादल मंडराने लगते हैं। मधुर वचनों के प्रभाव को आंकते हुए ही तो कबीर ने कहा है, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आप हो शीतल हो। हमारे व्यक्तित्व की छाप हमारी वाणी के माध्यम से औरों के मन मस्तिष्क और हृदय पटल पर अंकित हो जाती है। बहुधा प्रभावशाली लोगों की वाणी दूसरों के जीवन का संबल बन जाती है। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो यह एक तरह से समस्त कार्य व्यवहार के मूल में वाणी का प्रभाव निहित रहता है। वाणी के बिना व्यवहार कठिन है। सम्यक अर्थों में वाणी हमारे समूचे व्यक्तित्व और कृतित्व को भी अभिव्यक्त करती है। हमें अपनी अलग से मौलिक पहचान की जरूरत नहीं पड़ती। यही वजह है कि प्रिय और हितकारी वचनों को वाणी के तप की संज्ञा दी गई है। वाणी के तपस्वी व्यक्तित्व का संपूर्ण व्यक्तित्व ताजा गुलाब की तरह महक उठाता है, जिसे हर कोई पाना और अपनाना चाहता है। इसी के साथ बच्चों, आज की अमृत वाणी को हम यहीं विराम देते हैं, इस उम्मीद के साथ कि आप अपने वाणी को तौलकर और मीठे और मधुर स्वर में सबों के सामने प्रकट करेंगे, ताकि सभी आपकी तारीफ करें और आपकी प्रशंसा सभी ओर हो। और अब बच्चों, चर्चा करते हैं जलवायु परिवर्तन पर। बच्चों, कल्पना करो कि एक दिन आप सुबह में उठे और आपको पता चले कि पेड़ों से आम गायब हो गए हैं, पहाड़ों पर वह बर्फ ही नहीं है जिससे स्नोमैन बनाया जा सके, और आइसक्रीम इतनी जल्दी पिघल रही है कि क्लाइमेट चेंज बोलने से पहले ही वह गायब हो जाए। सुनने में मज़ेदार लग रहा है ना, लेकिन बच्चों यह कोई फिल्म नहीं बल्कि हकीकत है। जलवायु परिवर्तन यानी क्लाइमेट चेंज, और बच्चों यह हमारे देश भारत के दरवाजे पर दस्तक दे रहा है, वह भी जोरदार दस्तक। बच्चों, पहले हम यह समझे कि आखिर जलवायु परिवर्तन है क्या। बच्चों, जब धरती पर ज़रूरत से ज़्यादा गर्मी बढ़ जाती है, जिसके कारण जलवायु में कुछ विशेष परिवर्तन होते हैं, जिसे हम जलवायु परिवर्तन के नाम से जानते हैं। इसका कारण है कुछ गैसें, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड। ये गैसें सूर्य की गर्मी को धरती के चारों ओर एक मोटे कंबल की तरह रोक लेती है। अब बच्चों, सवाल यह उठता है कि यह गैसें आती कहाँ से है। तो बच्चों, ये आती है कारों से, फैक्ट्रियों से, जंगलों की कटाई से और अन्य मानव गतिविधियों से और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों से। और अब यह धरती गर्म होती है तो वह प्रेशर कुकर की तरह सीटी मारने लगती है। कभी बाढ़, कभी सूखा, कभी लू और कभी अत्यधिक बर्फबारी, यानी जलवायु एक अनिश्चित व्यवहार करने लगती है, और कई सालों से चला आ रहा मौसम चक्र भी प्रभावित होने लगता है।
बच्चों अब ये समझना है कि भारत क्यों पसीना पसीना हो रहा है। तो बच्चों भारत को सबसे ज्यादा मार इसलिए पड़ रही है क्योंकि हमारे देश की आबादी ज्यादा है। हम 1.5 अरब से भी ज्यादा है, मतलब हमारी बहुत सारी गाड़ियां, कूलर, फ्रिज और प्रदूषण। इतनी बड़ी जनसंख्या का पालन पोषण करने के लिए खेती की जमीन भी उतनी ही बड़ी होनी चाहिए, जिसका मतलब है कि वनों की कटाई। केवल यही नहीं, भारत एक मानसूनी प्रदेश है। हमारे मौसमों का चक्र मानसून की हवाओं से बंधा हुआ है। बढ़ता हुआ तापमान इस मानसून को प्रभावित कर रहा है, जिससे बाढ़ और सूखे की स्थिति बन जाती है। साथ ही तेजी से बढ़ता विकास, हमारे शहर और फैक्ट्रियां तो आगे बढ़ रही है, लेकिन साथ में धुआं भी उगल रही है। फैक्ट्री से निकलने वाला यह या प्रदूषण यानी ग्रीन हाउस गैसों को और भी बढ़ा रहा है। साथ ही जंगलों की कटाई भी हो रही है, नई फैक्ट्रियां लगाने के लिए, नई बस्तियां बसाने के लिए और कृषि योग्य नई भूमि तैयार करने के लिए पेड़ कट रहे हैं, और उसके बिना धरती की ठंडक भी उड़न छू हो रही है। बच्चों अब सोचे कि एक आम इंसान की जिंदगी में क्लाइमेट चेंज क्या गड़बड़ कर रहा है। तो पहला है गर्मी की तबाही। दिल्ली, राजस्थान जैसे शहर 50 डिग्री छू रहे हैं। ये गर्मी नहीं, भुनने का मौसम है। और यही हाल रहा तो ना हमारे कूलर काम करेंगे और ना एसी किसी काम के रहेंगे। दूसरा है किसानों की मुसीबत। बारिश कभी समय पर होती ही नहीं, या फिर एक दिन में बाढ़ ला देती है। खेती ठप, फसलें खराब और सब्जियां, फल, जरूरत के सामान महंगे। अगला है पानी की किल्लत। कहीं सूखा है तो कहीं बाढ़ है। ग्रामीण इलाकों में महिलाएं कई किलोमीटर दूर तक पानी भरने जाती है क्योंकि निकटवर्ती पानी के स्रोत सूख चुके हैं और शहर पानी के टैंकर के पीछे दौड़ने लगते हैं। अगला है सेहत का सवाल। बच्चों अत्यधिक नमी के कारण मच्छर बढ़ रहे हैं और बीमारियां भी। गर्मी में हीट स्ट्रोक से लोग चक्कर खाकर गिर रहे हैं। कई ऐसी नई बीमारियां हो रही है जिसका पहले किसी ने अनुभव भी नहीं किया था। इसके साथ ही गंदी हवा। देश की राजधानी दिल्ली जैसे शहरों में लोग हवा में धूल ज्यादा और ऑक्सीजन कम पा रहे हैं। बिना मास्क के बाहर जाना जैसे बहादुरी का काम हो गया हो। प्रदूषण के कारण लोगों की औसतन आयु कम हो रही है और काम करने की क्षमता भी प्रभावित हो रही है। जल के स्रोतों की अगर बात करें तो भारत की जो नदियां हिमालय के ग्लेशियरों से पानी ग्रहण करती थी, धीरे धीरे इन ग्लेशियरों के पिघल जाने के कारण ये नदियां भी सूख जाएगी और करोड़ों जिंदगियां जो इन नदियों के पानी पर निर्भर है उनका भविष्य भी अंधकार में चला जाएगा। साथ ही जब इतनी विकट परिस्थितियां आएंगी तो इन विपरीत परिस्थितियों से निपटने के लिए सरकारी तंत्र कई तरह के टैक्स भी लगाएंगे, जिससे आम आदमी का जीवन और भी कठिन हो जाएगा। बच्चों क्लाइमेट चेंज होने से भविष्य की डरावनी झलक भी हम देखें कि जब समुद्र का पानी बढ़ेगा, यानी जब ग्लेशियरों के पिघलने से जब समुद्र का जलस्तर बढ़ने लगेगा, तो मुंबई और चेन्नई जैसे शहर जो समुद्र के किनारे हैं कि डूबने की आशंका भी बढ़ जाएगी। अपने देश भारत की बात करें तो भारत जिसका लगभग 6100 किलोमीटर क्षेत्र तटवर्ती है, इसलिए यह समस्या काफी गंभीर है। साथ ही क्लाइमेट रिफ्यूजी शब्द का अर्थ होता है बच्चों वे लोग जिन्हें अपना घर विपरीत जलवायु परिवर्तनों के कारण छोड़ना पड़ता है। ये लोग दूसरी जगह पर जाकर शरण लेंगे जहाँ पहले से ही आबादी अधिक है।

बंजर होते चले जाएंगे, वहीं दूसरी ओर बढ़ते तूफान, आंधियां और नियमित वर्षा के कारण फसल की सफल उपज पर भी संदेह रहेगा। और अगर यही हाल रहा बच्चों, तो आम, लीची, आलू और मटर के पराठे सिर्फ कहानियों में ही मिलेंगे। लेकिन बच्चों डरो नहीं, अभी सब कुछ खत्म नहीं हुआ है, अभी भी उम्मीद बाकी है। और हम सब चाहे तो अभी भी हम हालात बदल सकते हैं, और अगर पूरी तरह ना सही कुछ तो कम कर ही सकते हैं। लेकिन इसके लिए आवश्यक है कि हम पेड़ लगाएं। पेड़ मतलब बच्चों धरती का कूलर। पेड़ गर्मी के मौसम में तापमान को कम करने में मदद करते हैं, खासकर शहरी क्षेत्र में। कुछ अध्ययनों से पता चला है कि पेड़ सतह के तापमान को 12 डिग्री सेल्सियस तक काम कर सकते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, ये बारिश को नियमित करने में भी सहायक है। दूसरा है प्लास्टिक को ना कहें। प्लास्टिक का क्षय नहीं होता है, इसलिए ये नॉन बायोडिग्रेडेबल है। यह पर्यावरण को विपरीत तरीके से प्रभावित करती है, इसलिए जितना हो सके एक बार इस्तेमाल होने वाले प्लास्टिक से दूरी बनाएं, और यदि अनिवार्य हो तो ऐसे प्लास्टिक का ही प्रयोग ना करें जो रिसाइकल ना हो सके। इसके साथ ही बिजली बचाएं, क्योंकि ज़्यादातर बिजली जो बनाई जा रही है वह जीवाश्म ईंधन जैसे कोयला और तेल से बनाई जा रही है, जिससे ग्रीन हाउस गैस से निकलती है जो कि जलवायु परिवर्तन के लिए जिम्मेदार है। पंखा, लाइट, मोबाइल जब ज़रूरी ना हो तब बंद कर दें। बिजली बचाने के साथ ही साइकिल चलाएं और पैदल चलें, क्योंकि बढ़ती आबादी के साथ वाहनों की संख्या भी बढ़ती जा रही है, जो ग्रीन हाउस गैसों का एक बहुत बड़ा स्रोत है। इसलिए जहां तक संभव हो कारपूल और सार्वजनिक वाहनों का प्रयोग करके पेट्रोल बचाना चाहिए। साइकिल चलाएं, पेट्रोल बचाएं, सेहत भी बनाएं, और इन सब के लिए आवाज़ उठाएं। स्कूल में पोस्टर बनवाएं, इको क्लब शुरू करें और दूसरे को भी समझाएं, क्योंकि यह संकट भविष्य का नहीं वर्तमान का है। बच्चों जलवायु योद्धा बनो। क्लाइमेट चेंज सिर्फ बड़ों का मुद्दा नहीं है, यह हमारे कल से जुड़ा है। अगर हम सब मिलकर थोड़ा थोड़ा करें तो भारत और धरती दोनों को दोबारा कूल बना सकते हैं। तो बच्चों अगली बार कोई पूछे कि मौसम कैसा है तो कहे थोड़ा गड़बड़ है पर मैं काम कर रहा हूँ। तो बच्चों अब हम अपनी इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं और इसके बाद आनंद लेते हैं इस प्यारे से गीत का।

इस गीत के बाद बच्चों जानते हैं कुछ ज्ञान विज्ञान की बातें। वयस्क मानव शरीर में कुल 206 हड्डियां होती है। हर साल 10 साल में पूरा कंकाल तंत्र खुद को नया बना लेता है। जांग की हड्डी यानी फीमर शरीर की सबसे मजबूत हड्डी है। मानव शरीर में लगभग 640 मांसपेशियां होती है। जबड़े की मांसपेशी सबसे मजबूत है। जीभ मानव शरीर की सबसे लचीली मांसपेशी है। अगर तंत्रिका की बात करें तो मानव मस्तिष्क में लगभग 100 अरब न्यूरॉन्स होते हैं। प्रत्येक न्यूरॉन्स हजारों सिनेप्स बना सकता है। मस्तिष्क लगभग 268 मील प्रति घंटे की गति से जानकारी प्रसंस्कृत करता है। रक्त संचार प्रणाली लगभग 60,000 मील लंबी होती है। जीवन काल में हृदय लगभग 8 अरब बार धड़कता है। औसतन रक्तचाप 120/80 mmHg होता है। मनुष्य प्रतिदिन लगभग 22,000 बार सांसें लेता है। मनुष्य का फेफड़ा लगभग 5 लीटर हवा रख सकता है। श्वसन तंत्र के द्वारा मनुष्य प्रतिदिन लगभग 550 लीटर ऑक्सीजन ग्रहण करता है। आगे है बच्चों, मनुष्य का पाचन तंत्र लगभग 30 फीट लंबा होता है। मानव शरीर 100 से भी ज़्यादा पाचक एंजाइम बनाता है। खाए गए पोषण का लगभग 90% शरीर अवशोषित कर लेता है। मानव शरीर की त्वचा में कुल 7 परतें होती है। प्रत्येक 24 सप्ताह में नई त्वचा बनती है। मानव शरीर में औसतन 0.3 मिलीमीटर प्रतिदिन बालों की वृद्धि होती है। बच्चों, मानव के अंतःस्रावी तंत्र की बात करें तो इसमें 8 मुख्य ग्रंथियां होती है। मानव शरीर 200 से भी ज़्यादा अधिक हार्मोन्स बनाता है। नियमन हार्मोन्स वृद्धि विकास और मेटाबॉलिज्म को नियंत्रित करते हैं। प्रतिरक्षा तंत्र में प्रतिदिन 1 ट्रिलियन श्वेत रक्त कोशिकाओं का निर्माण होता है। प्रतिरक्षा तंत्र शरीर को बैक्टीरिया, वायरस और फंगस से बचाता है। टीका शरीर को विशेष बीमारियों से लड़ने के लिए तैयार करता है। बच्चों, मानव शरीर की कुछ रहस्यमयी बातें, जैसे

0: प्लेसिबो प्रभाव। प्लेसिबो पदार्थ एक ऐसी घटना है जिसमें निष्क्रिय पदार्थ भी शरीर पर प्रभाव डाल सकते हैं। दर्द का अनुभव, इसमें कई तंत्रिका मार्ग शामिल होते हैं। चेतना, चेतना एक रहस्यमय घटना है जिससे कभी भी पूरी तरह समझा नहीं जा सका है। मानव शरीर की कुछ जिज्ञासाएं भी हैं बच्चों, जैसे अंगुलियों के निशान हर व्यक्ति के फिंगरप्रिंट अद्वितीय होते हैं। जीभ के निशान भी प्रत्येक व्यक्ति में अलग होते हैं। कई जीन मिलकर आँखों का रंग निर्धारित करते हैं। बच्चों, मानव शरीर एक अद्भुत और रहस्यमय मशीन है जिसकी हर परत और प्रत्येक क्रिया आज भी वैज्ञानिक को चकित करती है। तो बच्चों, आज के ज्ञान विज्ञान को हम यहीं विराम देते हैं। आशा है आपके लिए यह ज्ञानवर्धक होगा और आपकी कुछ जिज्ञासाएं भी शांत हुई होगी। और अब इसके बाद बारी है आप बच्चों के प्रस्तुति की। अब आपका भी मन हो रहा होगा बहुत कुछ सुनाने का, तो आप अपने दोस्तों के लिए क्या कुछ लेकर आए हैं ईशान, वो अपने दोस्तों को सुनाइए।
1: दीदी, मैं दो कहानी और कविताएं लाया हूँ,
0: सुनाइए।
1: साधु और लखड़हारा। एक समय की बात है, ईश्वरपुर नामक गांव में एक लखड़हारा रहता था जो कि बहुत गरीब था। किसी तरह से उसका और उसके परिवार का जीवन लकड़ियां बेचकर चलता था। लखड़हारा प्रतिदिन जंगल से अच्छी लकड़ियां लाता और इकट्ठा करता, दूसरे दिन उसे बाजार जाकर बेच आता, जिससे उसे कुछ पैसे मिल जाते थे। अचानक से एक रात लखड़हारे के घर पर चार साधु महात्मा आए, जिन्हें देखकर लखड़हारा आश्चर्यचकित हो उठा। सभी साधुओं ने एक एक करके अपना परिचय दिया। पहले साधु ने बोला, उसका नाम धन है। दूसरे का वैभव। तीसरे ने बोला, सफलता। और चौथे का नाम था श्रम। लखड़हारे ने साधु महात्मा से बोला, महाराज, हम बहुत गरीब हैं, हमारे पास आपको खिलाने का पर्याप्त भोजन नहीं हो पाएगा, आप बताओ हमें क्या करना चाहिए। साधुओं ने कहा कि ठीक है, आपके पास हम सभी को खिलाने लायक पर्याप्त भोजन नहीं है, तो कोई बात नहीं, हम चारों में से कोई एक आज आपके घर पर भोजन करेगा, पर ध्यान रहे, हम चारों में से जिसे आप अपने घर पर आमंत्रित करोगे वह अपने नाम जैसा प्रभाव लाएगा। लखड़हारा चिंता में पड़ गया और सोचने लगा किसको आमंत्रित करे, क्योंकि वे सभी हर किसी के लिए जरूरी होते हैं। वह घर गया और अपनी पत्नी से बात की। थोड़ी देर बाद जब वह घर से बाहर आया तो उसने सबसे पहले श्रम को आमंत्रित किया। जैसे ही श्रम घर के अंदर अपने कदम रखे, बाकी तीनों साधु धन, वैभव और सफलता भी अंदर आने लगे। यह सब देखकर लखड़हारे ने साधुओं से पूछा कि मैंने तो केवल श्रम को आमंत्रित किया और हमारे पास आप चारों को खिलाने लायक पर्याप्त भोजन भी नहीं है, तो आप तीनों भी क्यों आ रहे हैं? उन तीनों ने जवाब दिया कि जिस घर में श्रम रहता है उस घर में धन, वैभव और सफलता होती ही होती है। लखड़हारे का जीवन उसके बाद बहुत कुशलमय बीता।
0: आपने बहुत अच्छी कहानी सुनाई, इसमें इतनी अच्छी बात है सीखने के लिए कि अगर हम परिश्रम करें, श्रम करें, तो हमारे पास धन, वैभव और जितनी भी खुशियां हैं, जितने भी आराम के लायक चीज हैं, वो सब हमें सफलता के रूप में प्राप्त हो जाते हैं और हम सुखी में जीवन जीते हैं। ये बहुत अच्छी कहानी आपने सुनाई ईशान, और आप क्या लेकर आए हैं अपने दोस्तों के लिए?
1: दीदी, मैं एक और कहानी लाया हूँ,
0: सुनाइए।
1: बूढ़ों के लिए अलग गांव। बहुत पहले की बात है, चंद्रपुर राज्य में एक राजा राज्य करता था। उसकी एक ही संतान थी। राजा अपनी प्रजा का बहुत ध्यान रखता था, लेकिन दुर्भाग्य से जल्दी ही राजा और रानी दोनों की मृत्यु हो गई। अब राजकुमार राजा का कार्यभार संभालने लगा। उसके पास कोई अच्छा

0: मंत्री नहीं था जो उसे अच्छी सलाह देता। राजकुमार को अक्सर लगता कि बूढ़े लोगों से कोई लाभ नहीं होता, वे सिर्फ लड़कों और जवान लोगों के मामलों में बिना जरूरत दखल देते रहते हैं। अपनी इसी सोच के कारण उसने राज्य के सभी बड़ों बुजुर्गों के लिए अलग गांव बसा दिया और उन्हें उसी गांव में रहने का आदेश दिया। हालांकि यह बात राज्य के बुजुर्गों को अच्छी नहीं लगी, लेकिन वे मजबूर थे। जब पड़ोसी राज्य के राजा को इसका पता चला तो उसने स्थिति का लाभ उठाने का मन बनाया। उसने राजकुमार के पास एक खोखली छड़ी भेजी और यह संदेश भेजा कि राजकुमार बताए कि छड़ी का ऊपरी सिरा कौन सा है और निचला सिरा कौन सा। उसने यह भी कहलवाया कि यदि राजकुमार इस सवाल का जवाब नहीं दे पाता तो वह उसके राज्य पर हमला कर देगा। संदेश पाकर राजकुमार घबरा गया। उसे इस सवाल का कोई जवाब नहीं सूझ रहा था। अंत में उसने अपने युवा मंत्री से इसका उत्तर पूछा। मंत्री ने उसे एक दिन का समय लिया और अगले दिन आकर सबसे पहले एक बर्तन में पानी मंगवाया। छड़ी को उसने पानी में डाल दिया। पानी छड़ी के एक ओर से घुसकर दूसरी ओर से निकलने लगा। मंत्री ने बताया, जिस किनारे से पानी अंदर जा रहा है वह छड़ी का बड़ा भाग है और जिस किनारे से होकर पानी बाहर निकल रहा है वह छोटा। उत्तर सही था, इसलिए पड़ोसी राज्य के राजा को हमला करने का मौका नहीं मिला। लेकिन राजकुमार समझ नहीं पा रहा था कि मंत्री को इस प्रश्न का उत्तर कैसे पता चला। उसने मंत्री से पूछा। मंत्री ने कहा, महाराज मुझे क्षमा करें, मैंने अपने घर में अपने बुजुर्ग पिता को छिपा रखा है, उसने ही मुझे इस सवाल का जवाब मिला। यह सुनकर राजकुमार को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने बुजुर्ग का सम्मान करना शुरू कर दिया।
1: ये भी कहानी आपने बहुत अच्छी सुनाई ईशान, कि हमें हमेशा अपने बड़े बुजुर्गों का सम्मान करना चाहिए। उनके पास बहुत सारा अपना एक्सपीरियंस होता है जो वो हमें अपने साथ शेयर करते हैं, और हमारे लिए वो बहुत अच्छी बात होती है कि हम उससे अपने जीवन को अच्छे से चलाने के लिए उनके मार्गदर्शन को अपने जीवन में उतारें और अपने जीवन को चलाएं। ये कहानी भी आपकी बहुत अच्छी थी। और भी है आपके पास कुछ अपने दोस्तों को सुनाने के लिए?
0: हाँ दीदी,
1: सुनाइए।
0: पथ की पहचान। पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले, पुस्तकों में है नहीं छापी गई इसकी कहानी, हाल इसका ज्ञात होता है ना औरों की जबानी। अंगिनत राही गए इस राह से उनका पता क्या, पर गए कुछ लोग इस पर छोड़े पैरों की निशानी। यह निशानी मूक होकर भी बहुत कुछ बोलती है, खोल इसका अर्थ पंथी पंथ का अनुमान कर ले, पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले। है अनिश्चित किस जगह पर सरिता गिरी गहवर मिलेंगे, है अनिश्चित किस जगह पर बाग वन सुंदर मिलेंगे, किस जगह यात्रा खत्म और किस जगह यह भी अनिश्चित, यह अनिश्चित कब सुमन कब कंटकों के सर मिलेंगे, कौन सहसा छूट जाएंगे मिलेंगे कौन सहसा। आ पड़े कुछ भी रुकेगा तू ना, ऐसी आन कर ले, पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले। कौन कहता है कि सपनों को ना आने दे हृदय में, देखते सब है इन्हें अपनी उम्र अपने समय में, और तू कर यत्न भी तो मिल नहीं सकती सफलता, ये उदय होते लिए कुछ ध्येय नैनों के निलय में, किंतु जग के पंथ पर यदि स्वप्न दो तो सत्य 200, स्वप्न पर ही मुग्ध मत हो सत्य का भी ज्ञान कर ले, पूर्व चलने के बटो ही बाट की पहचान कर ले। स्वप्न आधा स्वर्ग से द्वग कोरकों में दीप्ति, पंख लग जाते

0: ललकती उन्मुक्त छाती। रास्ते का एक कांटा पांव का दिल चीर देता, रक्त की दो बूंद गिरती, एक दुनिया डूब जाती। आंख में हो स्वर लेके इन पांव पृथ्वी पर टिके हो, कंटकों की इस अनोखी सीख का सम्मान कर ले, पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले। यह बुरा है या कि अच्छा व्यर्थ दिन इस पर बिताना, अब असंभव छोड़ यह पथ दूसरे पर पग बढ़ाना। तू इसे अच्छे समझ यात्रा सरल से बनेगी, सोच मत केवल तुझे यह परा मन में बिठाना, हर सफल पंथी यही विश्वास ले इस पर बड़ा है। तू इसी पर आज अपने चित का आवधान कर ले, पूर्व चलने के बटोही बाट का पहचान कर ले।
1: बहुत अच्छी कविता ये भी थी आपकी ईशान। सही कहा गया है कि हम जिस राह पर चल रहे हैं उस राह की पहचान करना सबसे जरूरी चीज होता है। तो हम जिस राह पर चल रहे हैं उसकी पहचान पहले कर ले और फिर उस राह पर चलने की कोशिश करें। आप सबों की प्रस्तुति के बाद ही बच्चों अब वक्त हो चला है प्रायोजित कार्यक्रम बाल किलकारी का, तो आइए सुनते हैं बाल किलकारी का आज का ये अंक। आप बच्चों की इतनी सुंदर प्रस्तुति के बाद

0: जोश, नया उमंग और ढेर सारे नए इरादों के साथ एक बार फिर से हाजिर है आपके साथ बाल किलकारी के नए एपिसोड में। ढेर सारी मौज मस्ती और धमा चौकरी से आप सभी श्रोताओं के दिलों पर राज करने के लिए हम फिर से हाजिर हैं।
1: सुप्रभात बाल श्रोता सब, अपनो सभ्य बाल श्रोता के बहुते बहुते स्वागत है आपनो के इस सुंदर आरु अनोखा सा रेडियो कार्यक्रम बाल किलकारी के अंक 309 मा। अपनो सभ्य बाल मित्र के तहे दिल से स्वागत करे छे। आरु आज के ही खास कार्यक्रम के साथ है हम छे के अपने सभ्य के प्यारी रेडियो दीदी कंचन आरु अपनो के साथ है आपनो के रेडियो साथी
0: ऋषि। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? मैं आशा करता हूँ आप सभी बाल श्रोता स्वस्थ और तंदुरुस्त होंगे और ढेर सारी मौज मस्ती के साथ आज भी तैयार होंगे आज के ज्ञान और मनोरंजन से अपने स्पेशल संडे को और भी स्पेशल बनाने के लिए तैयार होंगे। दोस्तों, आजकल फोन हमारी जिंदगी का हिस्सा बन चुका है। इससे पढ़ाई भी होती है, नए दोस्त भी बनते हैं, नई बातें भी सीखने को मिलती है, लेकिन अगर इसका सही इस्तेमाल न किया जाए तो यही मोबाइल हमारी परेशानी का कारण भी बन सकता है।
1: ऋषि, ये मोबाइल में आखिर ऐसा की जादू है जे छोटका बच्चा से लेकर का दादा दादी तक सब एकरो दीवाना बनी गेलो छे। एकरा में की जादू छे?
0: जादुई इसलिए लगता है क्योंकि एक छोटे से मोबाइल में पूरी दुनिया समा गई है। इससे हम किताबें पढ़ सकते हैं, गीत सुन सकते हैं, वीडियो देखकर कुछ नया भी सीख सकते हैं और दूर बैठे लोगों से भी बात कर सकते हैं।
1: ये तो सचमुच कमाल छे, लेकिन कई बच्चा लोग मोबाइल पर गेम खेलता खेलता अपनो समय बिता दे छे, पढ़े न लिखे छे, दिन भर गेम खेलता रही छे। ई बात तो एकदम में गलत छे नी ऋषि?
0: बिल्कुल, अगर मोबाइल का उपयोग सीखने के लिए करे तो यह दोस्त है, लेकिन अगर घंटों बिना रुके गेम खेले या वीडियो देखते रहे तो पढ़ाई, खेल कूद और नींद पर असर पड़ सकता है।
1: हाँ, एकदम सही कहले। साथ में आँखों भी थकी जाए छे, शरीर भी तक कम काम कर रहे छे और बाहर खेले के समय भी घटी जाए छे।
0: इसलिए जरूरी है कि मोबाइल का उपयोग समझदारी से किया जाए।
1: श्रोता सब सोचो, अपनो सब मोबाइल पर सबसे ज्यादा बेसी की करे छी? पढ़ाई करे छी, गेम खेले छिये, कहानी सुने छिये कि कार्टून देखे छिये? एक बार जरूरे सोची का बताओ कि अपना ज्यादा समय मोबाइल पर की करे छो।
0: दीदी, इन सभी सवालों के जवाब क्यों ना हम मोबाइल फोन से ही पूछ लें?
1: वो कैसा?
0: आज हम अपने कार्यक्रम में किलकारी मुलाकात में अपने आज के खास गेस्ट स्मार्टफोन को बुलाने वाले हैं।
1: स्मार्टफोन यानी कि आज कार्यक्रम में फोन आने वाला छे?
0: हाँ बिल्कुल सही कहा आपने, आज हमारे खास गेस्ट हैं मोबाइल जी। हम इनसे कुछ खास सवाल पूछेंगे और इनसे पूरी दुनिया का हाल समाचार जानेंगे। कैसा रहेगा ये सेगमेंट?
1: बहुते अच्छा सुने में तो काफी इंटरेस्टिंग लगी रेलो छे इस सेगमेंट। उम्मीद करे छे कि उतना मजा भी आते।
0: तो चलो दीदी शुरू करते हैं और बुलाते हैं आज के स्पेशल गेस्ट मोबाइल जी को। हेलो मोबाइल जी, कैसे हैं आप?
2: हेलो, मैं तो अच्छा हूँ, आप कैसे हैं?
0: आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास रेडियो कार्यक्रम बाल किलकारी में।
2: धन्यवाद आपका कि आपने हमें इस रेडियो कार्यक्रम में बुलाया।
0: तो मोबाइल फोन जी, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले ये बताइए कि आपका दिन कैसे बीतता है, लोग आपको दिन भर कैसे यूज करते हैं?
2: मेरा दिन तो सुबह से ही शुरू हो जाता है, जैसे ही लोग उठते हैं सबसे पहले मुझे ही ढूंढते हैं। कोई अलार्म बंद करता है, कोई संदेश पढ़ता है और कोई सीधे सोशल मीडिया या गेम खोल देता है। कभी कभी तो मुझे भी लगता है काश मुझे भी थोड़ा थोड़ी देर कोई आराम दे देता है।
0: बिल्कुल सही कहा आपने। तो मोबाइल जी, दूसरा सवाल है, बच्चे आपका सबसे ज्यादा किस काम के लिए उपयोग करते हैं?
2: कुछ बच्चे मुझसे पढ़ते हैं, नई नई बातें सीखते हैं, ऑनलाइन क्लास करते हैं, अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनते हैं, लेकिन कुछ बच्चे घंटों गेम खेलते रहते हैं, बिना रुके वीडियो देखते रहते हैं, तब मुझे बहुत चिंता होती है।
0: यह भी बिल्कुल सही कहा आपने। कुछ बच्चे वीडियो देखने या गेम खेलने में पूरा दिन गायब कर देते हैं। तो मोबाइल जी, मेरा तीसरा सवाल है, आपको सबसे ज्यादा खुशी कब मिलती है?
2: जब बच्चे मेरा उपयोग सीखने, किताब पढ़ने, ज्ञान बांटने या अपने दादा दादी और रिश्तेदारों से बात करने के लिए करते हैं, तब मुझे बहुत खुशी होती है। तब मुझे सचमुच में लगता है कि मैं इनके काम का हूँ।
0: मैं भी अपने रिश्तेदारों से, चाचा चाची से, दादा दादी से फोन से बात करता हूँ। मुझे भी बहुत अच्छा लगता है कि आपके जरिए मैं अपने रिश्तेदारों से बात कर सकता हूँ। मोबाइल जी, मेरा अगला प्रश्न है कि सबसे ज्यादा आपको दुख कब होता है? आप कब सबसे ज्यादा परेशान हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं?
2: मुझे सबसे ज्यादा दुख तब होता है जब बच्चे खेलना छोड़ देते हैं, परिवार के साथ बैठना छोड़ देते हैं और सिर्फ मुझे घंटों तक देखते रहते हैं। मैं नहीं चाहता कि उनकी आंखें थके, पढ़ाई प्रभावित हो या उनका बचपन स्क्रीन तक ही सीमित हो जाए। मुझे सबसे ज्यादा दुख तब होता है जब बच्चे खेलना और सीखना छोड़ देते हैं।
0: मोबाइल जी, मेरा आखिरी प्रश्न है आपसे, अगर आपको बच्चों को एक सलाह देनी हो तो आप बच्चों से क्या कहना चाहेंगे?
2: मैं कहूँगा कि मेरा उपयोग जरूर करें, लेकिन समझदारी से करें। पढ़ाई के लिए करें, कुछ नया सीखने के लिए करें, लेकिन रोज थोड़ा समय मैदान में भी खेलें, किताबें पढ़ें और अपने परिवारों के साथ समय बिताएं। और हाँ, अगर आप मोबाइल में समय बिता रहे हैं तो आप सीखने के लिए समय बिताएं, तभी मैं आपसे ज्यादा खुश रहूंगा और आपका मोबाइल हमेशा आपके साथ रहेगा।
0: मोबाइल जी, आपने तो बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई हमारे बाल श्रोताओं को। अब बारी है हमारे लास्ट राउंड की, जिसका नाम है फटाफट राउंड। मोबाइल जी, मैं इसमें आपसे सवाल पूछूंगा और इसके जवाब आपको देने होंगे। तो सवाल है, पढ़ाई या गेम?

0: पहले पढ़ाई फिर थोड़ी देर गेम,
1: बाहर खेलना या मोबाइल,
0: दोनों जरूरी है लेकिन संतुलन के साथ।
1: बहुत बढ़िया जवाब दिया आपने। हमारा अगला सवाल है, रात में सोते समय मोबाइल?
0: आप सोएंगे क्या? मैं नहीं सोऊंगा, मुझे भी आराम चाहिए, इसीलिए सोने से पहले मुझे भी एक तरफ लग दीजिए और आराम से गहरी नींद में सो जाइए। याद रखिए दोस्तों, मैं आपका अच्छा साथी हूँ, लेकिन तब तक जब तक आप मेरे मालिक हैं। अगर मैं आपका मालिक बन गया तो नए मुश्किलें शुरू हो जाएंगी दोस्तों।
1: मोबाइल फोन जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई हमारे श्रोताओं को। मोबाइल जी, मैंने आपके लिए कविता लिखी है, क्या मैं ये कविता सुनाऊं आपको?
0: हाँ हाँ जरूर सुनाइए, मैं भी तो सुनूं आपकी कविता।
1: मोबाइल जी, मैंने कविता का नाम रखा है रिश्तों की डोर और मोबाइल का शोर। स्मार्टफोन की इस छोटी सी स्क्रीन में पूरी दुनिया सिमट आई है। दूर बैठे लोग तो पास आ गए, पर पास बैठे अपनों से दूरी बढ़ाई है। लाइक और कमेंट्स के इस दौर में सच्ची बातें कहीं खो सी गई है। उंगलियां तो दिन भर चलती ही है स्क्रीन पर दिल से दिल की बातें कम हो गई है। चलो आज एक छोटा सा काम करते हैं, सिर्फ 10 मिनट को इंटरनेट बंद करते हैं। नोटिफिकेशन की इस भागदौड़ को रोक कर सामने बैठे अपनों के साथ हंसते हैं, क्योंकि यादें स्टेटस लगाने से नहीं बनती, वो तो साथ बिताए हसीन पलों से सजती है।
0: वारिशी, आपने तो बहुत अच्छी कविता सुनाई। आपने तो इस कविता में आज की और इस सारी दुनिया की सच्चाई दिखा दी। आपकी कविता मुझे बहुत पसंद आई।
1: थैंक यू मोबाइल जी।
0: धन्यवाद बच्चों, मुस्कुराइए, खेलिए और सीखिए। फोन का उपयोग हमेशा समझदारी से कीजिए।
1: दोस्तों, आज हमने खुद मोबाइल फोन से उसकी बात सुनी। उसने हमें यह समझाया कि तकनीक हमारे जीवन को आसान बनाने के लिए है, हमारे बचपन की जगह लेने के लिए नहीं।
2: अरे रात में सोते से पहले मोबाइल का छोरी दियो, अरे एगो अच्छा किताब पढ़ो, घर के सभ्य संग कुछ देर बातचीत करो।
1: दीदी, मोबाइल बुरा नहीं है, उसका सही या गलत उपयोग हमारे हाथ में है।
2: याद रखियो साथी सब, मोबाइल जीवन के एगो हिस्सा छे, पूरा जीवन न।
1: तो आइए अब कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं, और अब कार्यक्रम में आज इस सुंदर से गीत को सुनते हैं। तो आइए सुनते हैं इस सुंदर से गीत को हमारे संगीत विधा के

0: लाने के बाद बहुत चुटकुले, बहुत चुटकुले। कौन से चुटकुले सुनाओ, नाम तो बताओ। आज चुटकी रानी आपके लिए चुटकुले का बंडा लाई है, तो चलो चुटकुले को शुरू करते हैं। चुटक चुटक के चुटकुले। तो आज का चुटकुला है,
1: एक दुकान के बाहर बोर्ड लगा था, यहाँ से जूते खरीदिए, अपनी पत्नी को खुश रखिए। ग्राहक, भाई साहब, इससे पत्नी कैसे खुश होगी? दुकानदार, चल जब आप नए जूते पहन के घर देश से जाइएगा, तो वह आपको मांगने के लिए नए और महंगे जूते देकर थोड़ा हिचकिचाएगी।
2: बहुत मजेदार छलन, खूबे हसनी एलन तरो चुटकुला सुननी का, मजेदार छलन चुटकुला सब, की ऋषि मजा एलन चुटकुला सुननी का।
3: हाँ दीदी, तो आइए श्रोताओं, इसी मजेदार सिलसिले को जारी रखते हैं और अब सुनते हैं एक मजेदार अंगिका किस्से को। तो आइए सुनते हैं इस मजेदार किस्से को अपने मुन्नू भैया से।
4: हमरो नाम छिके चुन्नू, आज हम तोरा सभे का एगो अंगिका वाला किस्सा सुना छियो। त किस्सा ई छिके बुद्धिमान चटकू। एगो गांव में चटकू नाम के एगो नटखट बच्चा छले। एक दिन

0: ओकरो दादी कहलकै छोटकू बाजार से 1 किलो अल्लू आन। छोटकू झोला लेकर बाजार चली गेलै। रास्ता में ओकरो दोस्त मिली गेलै। दोस्त कहलकै कहाँ जाय छे रे छोटकू? तब छोटकू बोललकै अल्लू खरीदे ले जाय छी रे। दोस्त हंसी के कहलकै पहले तो ये पता छोटकू 1 किलो अल्लू में कितना आलू है छे? तवा छोटकू थोड़ा देर सोचल कै आरो तब कहलकै ये तो दुकानदार पर निर्भर छे। अगर छोटो आलू देता तो ढेर होता है आरो बड़ो बड़ो आलू देते तो कम होता है। इस सुने का ओकरो दोस्त चुप हो गेले। बाजार पहुंची का सबसे पहले छोटकू ना आलू खरीद के घर आवे के समय एक आदमी पूछल का कि रे बाबू टाइम कितना हो रहल छे? छोटकू तब कहल के घरी त नै छौ, मतर की जितना देर अपनों के पूछे में लगले उतना देर में हमा घर के आधा रास्ता पार कर लेलो होत गए। ये सुनी का आदमी हंसा लगले। घर पहुंची का तब दादी पूछल के अल्लू त ले आले, मतर की इतना देर कैना हेलो? छटकू मुस्कुरा कर कहल के दादी रास्ता में सभे लोग ज्ञान ले ले चाहे छले तो थोड़ा ज्ञान बाटे में समय लगी गेले। चिन्नू के किस्सा कैनो लगले। अपनो भी छटकू जसनो हाजिर जवाब बनो।
1: मजा आयले कि नहीं? आशा करे छे कि श्रोता सबका अंगिका किस्सा पसंद अयलो होते।
2: तो आइए श्रोताओं, अब कार्यक्रम में चलते चलते इस सुंदर से मजेदार गीत को सुनते जाते हैं और कार्यक्रम को बेहद खास बनाते हैं। तो आइए सुनते हैं इस खास गीत को।

0: अपने सभ्य संगीत विधा के साथी सबके बहुते बहुते धन्यवाद। बहुते सुंदर प्रस्तुति छले। आशा करे छे कि श्रोता सबका खूबे पसंद ऐलो होते आरो ई गीत त एकदम मन खुश करी दल के बहुत बढ़िया प्रस्तुति।
1: जी हाँ साथियों, इसी के साथ कार्यक्रम की असम का सिलसिला यहीं खत्म होता है। मैं आशा करता हूँ कि आज का एपिसोड आप लोगों को पसंद आया होगा।
0: जी हाँ साथी सब, एकरे साथ अब कार्यक्रम यहीं समाप्त हो छे। आशा कर रहे छे कि श्रोता सबका आज के कार्यक्रम में खूब मन लगलो होते आरो कार्यक्रम का खूब आनंद के साथ एकदम सुनलो होबो। तो अपनों के ई कार्यक्रम कैसनो लगले हमरा जरूरे बताइयो। आशा करे छे कि आज के कार्यक्रम मजा त खूब ऐलो होते। तो अपनों प्यारा प्यारा मैसेज का भेजो आरो कार्यक्रम में अपनो प्यारा सा फीडबैक जरूरे शामिल करवाबो।
1: तो साथियों, आप अपना कीमती मैसेज हमें जरूर भेजें, क्योंकि हमें आपके प्यारे प्यारे मैसेजेस का बेसब्री से इंतजार रहता है। आप अपना मैसेज हमारे मोबाइल नंबर के जरिए भेज सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 7542029695। तो आप अपना मैसेज याद से भेजें। तो साथियों, अब हम मिलेंगे आपसे इसी कार्यक्रम में हर रविवार सुबह 10 बजे से इसी जोश और उमंग के साथ। आपकी चेहरे की मुस्कान को बरकरार रखने के लिए हम फिर से हाजिर होंगे।
0: तो बाल श्रोता सब, अब हम सब मिलबे नए का जानकारी, नए का किस्सा आरो ढेर सारा मौज मस्ती के साथ। तब तक अपनो ख्याल रखियो आरो अब अपनो रेडियो दीदी कंचन
1: और अपने प्यारे रेडियो दोस्त ऋषि को दीजिए इजाजत। हम फिर मिलेंगे बाल किलकारी के साथ आपके लिए नए एपिसोड में। तब तक के लिए हमें दीजिए विदा। बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।
2: अभी बच्चे सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम बाल किलकारी के आज का अंक, और इसी के साथ अब वक्त हो चला है आप सबों से विदा लेने का। तो ढेर सारी शुभेच्छाओं के साथ हम लेते हैं विदा। जय हिंद बच्चों।
3: आप सुन रहे थे कार्यक्रम बाल मंजूषा, प्रसारण आकाशवाणी भागलपुर से किया गया। प्रस्तुत है लोकगीत, कलाकार हैं विश्वनाथ ठाकुर। इनकी आवाज में सुनिए ये मनौन।

0: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
1: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
0: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
1: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
0: डायल कीजिए 8700014242।
1: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
2: शिव भजन सुनिए विश्वनाथ ठाकुर की आवाज में।

सुन रहे थे लोकगीत, कलाकार थे विश्वनाथ ठाकुर, प्रसारण आकाशवाणी भागलपुर से किया गया। कृपया हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा करें।

मीडियम वेव 205.76 मीटर यानी 1458 किलो हर्ट्स पर और FM 100.1 मेगाहर्ट्स पर आकाशवाणी का ये भागलपुर केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम नई फिल्मों से।

आप सुन रहे थे दर्शन रावल, जोनीता गांधी और रोचक कोहली के स्वर में ये गीत। फिल्म थी धड़क 2। और कार्यक्रम का अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म बॉर्डर 2 से।

ऋचा शर्मा और जावेद अली को आप सुन रहे हैं। फिल्म है मैदान, गीत मनोज मुंतशिर ने लिखे हैं, इसे संगीतबद्ध किया है AR रहमान ने।

0: जानते हैं इन वीरों की वीर गाथाएं लेकर कौन आ रहे हैं? हम यानी
1: क्रेश,
2: ट्रेश
0: और बाल्टी बॉय।
3: फ्रीडम फाइटर्स की कहानियां दिखाएंगे दूरदर्शन पर हर रविवार सुबह 11 बजे। क्रेश, ट्रेश और बाल्टी बॉय।
4: आप सुन रहे हैं कार्यक्रम नई फिल्मों से। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी के भागलपुर केंद्र से किया जा रहा है। मीडियम वेव 205.76 मीटर यानी 1458 किलो हर्ट्स पर और FM 100.1 मेगा हर्ट्स पर। कार्यक्रम का अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं विशाल मिश्रा रोचक कोहली के स्वर में। गीतकार हैं कुमार, संगीतकार रोचक कोहली और फिल्म है खेल खेल में।

इस गीत के साथ ही संपन्न होता है कार्यक्रम नई फिल्मों से। आकाशवाणी का ये भागलपुर केंद्र है। मीडियम वेव 205.76 मीटर यानी 1458 किलो हर्ट्स पर और FM 100.1 मेगाहर्ट्स पर प्रस्तुत है कार्यक्रम गुलदस्ता।

नमस्कार दोस्तों, हम हाजिर हैं लेकर आप सबों का पसंदीदा कार्यक्रम गुलदस्ता। दोस्तों, आज का दिन है बेहद खास। आज के कैलेंडर में जो तारीख है वो है 12 जुलाई और आज का दिन होता है हमारे इतिहास में बेहद खास। तो आज का कार्यक्रम समर्पित है इसी विषय पर। तो चलिए आज के कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। आज हम जानेंगे आज के दिन की विशेषताएं, जानेंगे प्रेरणादायक करेंगे बहुत सारी प्रेरणादायक बातें और सुनेंगे कुछ सदाबहार गीत। तो करते हैं इस यादगार सफर की शुरुआत।

तो दोस्तों हम बातें कर रहे हैं 12 जुलाई की, और तो शुरुआत करते हैं आज के इस सफ़र की। दोस्तों, जीवन में सफलता का सबसे बड़ा रहस्य यही है कि सीखना हमें कभी बंद नहीं करना चाहिए, क्योंकि कहा गया है दोस्तों कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती है, सीखने की कोई सीमा नहीं होती है। तो सीखना हमें हर उम्र में है, हर पड़ाव पर है, हर व्यक्ति से है और हर परिस्थिति में है। हम किसी भी परिस्थिति का जब सामना करते हैं, कोई परेशानी अगर हमारे सामने आ जाए, तो हमें उस परेशानी का सामना किस तरह से करना है, ये हमारे उस टाइम के रिएक्शन पर डिपेंड करता है। हम किसी परेशानी पर किस तरह से रिएक्ट करते हैं, ये सबसे बड़ी बात होती है। हमारी जो ये ज़िंदगी है वो है बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड, और इसे हम ये भी कह सकते हैं मित्रों कि हमारी ज़िंदगी में उतार चढ़ाव लगे ही रहते हैं। कभी कई सारे इतने सारे अच्छी बातें हमारे ज़िंदगी में होने लगती है कि देखिएगा कि आप कई सारे लोग ऐसे भी हमें मिलते हैं जो खुशी को संभाल ही नहीं पाते हैं। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि आप अगर खुशियों से सराबोर हों, आपकी ज़िंदगी में बस खुशियाँ ही खुशियाँ हैं, तो आप उसे संभाल ना सकें, क्योंकि हर परिस्थिति में जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ होती है वो होती है बैलेंसिंग। अगर हमें अपनी लाइफ को बैलेंस करना आ जाए, तो मेरा मानना है कि हम अपनी ज़िंदगी को बहुत हद तक सहज बना सकते हैं। तो हम अपनी ज़िंदगी में अपनी कामयाबी पर इतराए नहीं, अपनी असफलताओं में घबराए नहीं, और अपने

जिंदगी को कोशिश हमारी ये होनी चाहिए कि जिंदगी में जो हमारी कुछ बहुत सारी जो घटनाएं घट रही हैं।

बेहद आज के दिन को बेहद खास बनाता है मलाला दिवस के रूप में आज के दिन को मनाया जाता है। यह दिन शिक्षा के अधिकार और विशेषकर बालिकाओं की शिक्षा के महत्व का संदेश देता है। मलाला यूसुफ़ज़ई ने कठिन परिस्थितियों में भी शिक्षा का अधिकार छोड़ा नहीं और पूरी दुनिया के लिए प्रेरणा बन गई और वो सबसे कम उम्र की नोबेल प्राइज़ विनर भी हैं। मित्रों, तो हम देखते हैं कि हम अपने जीवन की परेशानियों से घबराकर, उससे डरकर उसके आगे हमें नतमस्तक होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर हमारे अंदर जुनून है, हमारे अंदर हौसला है, जज्बा है, तो हम अपने जीवन में हमेशा सफल होंगे। ये आपको अपने ऊपर विश्वास रखना होगा, दृढ़ विश्वास रखना होगा और कोई भी जो कार्य आप करें उसे पूरी तरह से आत्मबल से भरकर करें। अपने आत्मविश्वास को आप कभी टूटने ना दें। तो और जुनून जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होती है, इसमें अपने जुनून को अपने कार्य के प्रति लगाएं, आप अपने जीवन में सफल अवश्य होइएगा।

हाँ तो दोस्तों, हम बातें कर रहे हैं कि हमें अपने ज़िंदगी में परेशानियों से डरकर हारना नहीं चाहिए, बल्कि अगर हम अपनी ज़िंदगी में किसी कारण से असफल होते हैं तो उन असफलताओं से सीख लेकर हमें फिर से प्रयास करना चाहिए। क्योंकि आपने वो कहानी तो सुनी होगी मित्रों, मकड़ी वाली, कि मकड़ी बार बार दीवार पर चढ़ती थी, फिसलती थी, फिर चढ़ती थी, फिर फिसलती थी। कई बार वो मकड़ी चढ़ी और फिसली, फिर आखिर में वो अपने मंजिल पर, दीवार पर चढ़ते चढ़ते चढ़ते चढ़ते वो अपने मुकाम पर पहुंच ही गई। तो हम अपने जीवन में भी हमें इस फॉर्मूले को लागू करना चाहिए कि हम चाहे कितनी ही बार परेशानियों की वजह से फिसलें, लेकिन हमें आगे चलने का जो प्रयास है हमारा, वो रुकना नहीं चाहिए। हमें नित निरंतर प्रयासरत रहना चाहिए, क्योंकि हम प्रयास करेंगे तभी हम अपने मंजिल तक पहुंच सकते हैं। क्योंकि कहा गया है दोस्तों कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है, तो और लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती। अगर हम समंदर पर अपने जहाज़ या अपनी नौका को लेकर गए हैं, तो हमें तूफान के थपेड़ों से डरने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि मंजिल उसी मुसाफिर को मिलती है जिसे अपने काम के प्रति जुनून होता है। हम साहिल तक पहुँचेंगे अवश्य, बस हमें जो समंदर की लहरें हैं उससे जूझने की ज़रूरत होती है। और दोस्तों, हम बातें कर रहे हैं 12 जुलाई की, तो 12 जुलाई के बारे में और भी कुछ खास बातें हैं। 12 जुलाई 1943 को द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान इतिहास की सबसे बड़ी टैंक लड़ाइयों में से एक कुर्स्क का युद्ध अपने निर्णायक चरण में पहुंचा था। 12 जुलाई 1993 को जापान में आए भीषण भूकंप और सुनामी ने भारी तबाही मचाई थी। विज्ञान, साहित्य और खेल जगत में भी इस तिथि का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। कई सारे ऐसे चीज़ें हैं जो इस दिन को समर्पित हैं। और दोस्तों, हमने आपसे पहले कहा कि आज हम बहुत सारी बातें अलग अलग विषय पर करेंगे, तो उसमें प्रेरणादायक जो आपके हमें प्रसंग हैं उसके बारे में भी हम बातें करेंगे। तो इसी कड़ी को जब हम जोड़ते हैं तो एक प्रसंग हमें याद आ रहा है कि एक गुरु ने अपने शिष्य से कहा था कि यदि तुम हर दिन केवल एक नया ज्ञान प्राप्त कर लो तो एक वर्ष के बाद तुम्हारे पास 365 नए अनुभव होंगे। तो ये कितनी बड़ी बात है मित्रों, कि एक एक छोटा छोटा प्रयास, एक एक छोटा छोटा सीख, एक छोटा छोटा अनुभव हमें ज़िंदगी में कई सारे चीज़ें हमें बता जाता है, हमें कई सारी परेशानियों से लड़ना सिखा जाता है। तो कहते हैं कि छोटे छोटे प्रयास भी बड़े बदलाव ला सकते हैं। और जब बात ज़िंदगी की हो रही हो दोस्तों, तो उसमें हम ये भी बातें भूल नहीं सकते हैं कि ज़िंदगी में हमें सबसे इन असफलताओं के बीच लड़ने का, इनसे हौसला हम कैसे रखें इन परिस्थितियों में, इसके बारे में जो इस इन परेशानियों के इन परेशानियों के थपेड़ों से जब हम हिम्मत हारने लगते हैं तो हमें होती है ज़रूरत अपनों की। क्योंकि आप चाहे कितनी ही ऊंचाइयों पर चले जाएं या फिर कितनी ही असफलताओं की वजह से हारने लगे हो, आप अपने जब अपने अपनों से मिलते हैं
तो आपको अपने अंदर एक नया हौसला मिलता है, एक उम्मीद की किरण आपके अंदर फिर से जगती है कि आप अपनी ज़िंदगी से जो ज़िंदगी की जो परेशानियां हैं उसके उसके या फिर कह लें कि हम ज़िंदगी की जो लड़ाई है उससे हम जीतेंगे ज़रूर अगर किसी अपने का साथ हो।

हाँ तो दोस्तों, हम ज़िंदगी से जंग तो जीत ही लेंगे अगर हमें हमारे जीवन में अपनों का साथ हो, हमारे अपनों को हम पर विश्वास हो। और दोस्तों, हमें अपने जीवन की परेशानियों से कभी हारना नहीं चाहिए। हमें हर दिन एक नई सुबह की तरह अपने जीवन को उजालों से भरने की कोशिश करनी चाहिए। दोस्तों, यदि हम समाज में बदलाव चाहते हैं तो शुरुआत हमें स्वयं से ही करनी होगी। एक आप कोई भी एक काम ले सकते हैं, एक अपने जीवन का उद्देश्य ले सकते हैं और उस तरफ अपने कदम को बढ़ा सकते हैं। उसके लिए कई सारे ऐसे काम हैं जिसके करने से हमारे हम व्यक्तित्व का विकास तो होगा ही, साथ ही साथ हमें अपने आप को, अपने समाज को, अपने आस पड़ोस को बदल सकते हैं, अपने समाज को एक अच्छे रास्ते पर ले जाने की कोशिश कर सकते हैं। उसके लिए आप कोई भी विषय चुन सकते हैं, आप एक पुस्तक पढ़ सकते हैं। हर स्थिति में आप पेड़ लगाने की का भी संकल्प ले सकते हैं, क्योंकि आप देख रहे हैं कि ग्लोबल वार्मिंग किस तरह से बढ़ती जा रही है और हमारे जीवन में कई सारे संकट पेड़ों की कटाई की वजह से हो रहे हैं। तो हमें अपने वातावरण को सुरक्षित रखने के लिए, हमारे जो ओजोन परत है उसको सुरक्षित रखने के लिए हम पेड़ लगाने का संकल्प भी ले सकते हैं। ये भी एक बहुत ही बेहतरीन काम है जिसे हमें करने की आवश्यकता है। और या फिर हम किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति की सहायता करने का ही प्रण ले लें। इसमें बहुत सारे ऐसे विषय आपको मिल जाएंगे। आप किसी बुज़ुर्ग की सहायता कर सकते हैं, ऐसे बच्चों की सहायता कर सकते हैं जो जिनके सर पर किन्हीं का हाथ ना हो, जिसके जिनके सर पर किसी भी प्रकार का कोई जो कहते हैं कि वृद्ध हस्त या फिर हम उनका जो परिवार होता है वो उनके साथ ना हो, या फिर दिव्यांगजन। बहुत सारे ऐसे बच्चे आजकल हो रहे हैं मित्रों, जो कई सारी परेशानियों से जूझ रहे हैं। उन्हें बहुत सारे आर्थिक रूप से उन्हें मदद पहुंचाने की बात अगर हो, या फिर उन्हें हम कह सकते हैं कि शारीरिक रूप से। तो आप कई सारे ऐसे कार्य हैं जो आप कर समाज को बदल सकते हैं। तो आप सोचिएगा।

रूप से उन्हें मदद पहुंचाने की बात अगर हो, या फिर उन्हें हम कह सकते हैं कि शारीरिक रूप से, तो आप कई सारे ऐसे कार्य हैं जो आप कर समाज को बदल सकते हैं। तो आप सोचिएगा।

भारतीय भौतिक विज्ञानी अशोक सेन के प्रेरणादायी जीवन के बारे में, तो आइए जानते हैं उनके बारे में विस्तार से। श्रोताओं, हम में से अधिकांश लोगों ने दुनिया के महान वैज्ञानिक प्रोफेसर अशोक सेन का नाम शायद नहीं सुना होगा, क्योंकि वे इतना सादा जीवन जीते हैं कि आज भी साइकिल से ही सफर करते हैं। उन्होंने स्ट्रिंग थ्योरी की महान खोज की, लेकिन किसी भी सोशल प्लेटफॉर्म पर वो नहीं है। उन्हें भारत सरकार की ओर से पद्म भूषण और दुनिया का सबसे बड़ा विज्ञान पुरस्कार भी मिल चुका है, लेकिन उनके विचार सादगी से लबरेज हैं। श्रोताओं, अभी तक हम यही समझते हैं कि यह संसार परमाणु से बना है, जिसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के कण होते हैं। यह एक तरह से बिंदु है, लेकिन स्ट्रिंग थ्योरी ने इस सिद्धांत को चुनौती दी है और यह लगभग तय होने लगा कि ये कण कंपन करते हुए धागों का गुच्छा है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि स्ट्रिंग थ्योरी को धार देने वाला वैज्ञानिक कौन है? ये वैज्ञानिक कोई और नहीं बल्कि हमारे देश के महान वैज्ञानिक अशोक सेन हैं। आप में से अधिकतर लोग इनका नाम नहीं जानते होंगे, क्योंकि ये इतना सादा जीवन जीते हैं कि हर तरह के सार्वजनिक जीवन से कोसों दूर रहते हैं। लेकिन इनका काम ऐसा है कि इस कारण अशोक सेन को दुनिया का सबसे बड़ा वैज्ञानिक पुरस्कार फंडामेंटल फिजिक्स प्राइज मिल चुका है। इसके लिए उन्हें करीब 27.5 करोड़ की राशि मिली है। यह राशि नोबेल पुरस्कार की राशि की तुलना में भी 3 गुना ज्यादा है। लेकिन इस महान वैज्ञानिक की सादगी तो देखिए, आज भी प्रयागराज के अपने संस्थान में साइकिल से आते जाते हैं। अशोक सेन का जन्म कोलकाता में 1956 में हुआ था। दिलचस्प बात यह है कि उनके पिता भी भौतिक विज्ञान के शिक्षक थे। वे स्कॉटिश चर्च कॉलेज में भौतिकी पढ़ाते थे। उनके बायोग्राफी से ही लगता है कि वे कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बालक नहीं थे, लेकिन हर चीज में उनकी जिज्ञासा रहती थी। बचपन से लेकर 11वीं तक की उनकी पढ़ाई बंगाली माध्यम में हुई। अंग्रेजी उन्हें बचपन में न के बराबर आती थी। 11वीं में उन्हें पता चला कि IIT नाम का संस्थान होता है, फिर वे अंग्रेजी की ओर ध्यान देने लगे। इसके बाद प्रेसिडेंसी कॉलेज से उन्होंने BSc किया। इसके बाद उन्होंने IIT कानपुर से मास्टर्स की पढ़ाई की और यहीं से उनकी पूरी जिंदगी बदल गई। IIT में उनकी बौद्धिक क्षमता को धार मिली और रिसर्च में अपनी छाप छोड़ते रहे। श्रोताओ, अमेरिका से PhD IIT के बाद स्कॉलरशिप पर अशोक सेन उच्च शिक्षा के लिए विदेश चले गए। सबसे पहले अमेरिका के स्टोनी ब्रुक यूनिवर्सिटी से PhD किया। इसके बाद फर्मी लैब और स्टैनफोर्ड जैसी दुनिया की शीर्ष प्रयोगशालाओं में शोध कार्य किया। उनके पास बेहतरीन अवसर थे। अगर वे चाहते तो अमेरिका में ही एक शानदार वेतन वाली नौकरी और शानदार लाइफ को चुन सकते थे, लेकिन अशोक सेन को अपने देश भारत की याद सताती रही। वे अमेरिका से वापस आ गए। 1980 के दशक के अंत में वे मुंबई स्थित टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च से जुड़े। बाद में 1995 में वे प्रयागराज के हरिश्चंद्र अनुसंधान संस्थान में अध्यापन करने लगे। तब से आज तक वे इसी संस्थान में अपनी सेवाएं देकर रिसर्च में लगे हुए हैं। प्रोफेसर सेन किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर मौजूद नहीं है। उनकी मीडिया में फेम होने की कोई दिलचस्पी नहीं है। 2012 में प्रोफेसर सेन को एक फोन से उन्हें दुनिया के पहले ब्रेकथ्रू प्राइज इन फंडामेंटल फिजिक्स से नवाजे जाने की सूचना मिली। यह नोबेल प्राइज की राशि से 3 गुना थी। प्रोफेसर अशोक सेन को ढेरों पुरस्कार और सम्मान मिल चुके हैं। कई अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों के साथ ही उन्हें भारत सरकार पद्म भूषण सम्मान से भी सम्मानित किया है। प्रोफेसर अशोक सेन ने जिस चीज की खोज की उसे समझने से पहले यह जान लीजिए कि ब्रह्मांड को समझने के लिए अब तक 2 तरह के सिद्धांत हैं। सापेक्षता का सिद्धांत, जिसमें गुरुत्वाकर्षण को समझा जाता है, और दूसरा क्वांटम मैकेनिक्स, जिसमें परमाणु स्तर पर नन्हे कण को समझा जाता है। अब इसमें एक नया सिद्धांत आ गया है, जिसे स्ट्रिंग थ्योरी कहा जाता है। यह थ्योरी इन दोनों को एक ही गणितीय ढांचे में लाने की कोशिश करती है, इसलिए इसे थ्योरी ऑफ एवरीथिंग भी कहा जाता है। प्रोफेसर अशोक सेन ने इसी स्ट्रिंग थ्योरी के लिए महान काम किया। स्ट्रिंग थ्योरी होता क्या है? पारंपरिक भौतिकी हमें बताती है कि दुनिया इलेक्ट्रॉन और क्वार्क जैसे नन्हे कणों से बनी है, लेकिन स्ट्रिंग थ्योरी कहती है कि अगर हम इन कणों को और भी गहराई से देखें तो वे बिंदु नहीं है, बल्कि ऊर्जा के नन्हे कंपन करते हुए धागे हैं। सीधे शब्दों में कहें, सब कुछ धागों में लिपटा हुआ है। अशोक सेन न केवल भारत के बल्कि दुनिया के सबसे सम्मानित स्ट्रिंग थ्योरी वैज्ञानिकों में से एक हैं। स्ट्रिंग थ्योरी को आज जिस मुकाम पर हम देखते हैं, उसे वहां तक पहुंचाने में उनका योगदान क्रांतिकारी माना जाता है। 1990 के दशक की शुरुआत में स्ट्रिंग थ्योरी के 5 अलग अलग संस्करण थे। ऐसे में वैज्ञानिक उलझन में थे कि सही कौन सा था। अशोक सेन ने एस ड्यूअलिटी का सिद्धांत दिया, जिसने यह साबित करने में मदद की कि ये अलग अलग दिखने वाली थ्योरी इस वास्तव में एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। उनके इस काम ने ही आगे चलकर एम थ्योरी का रास्ता साफ किया। अशोक सेन ने यह समझाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई कि स्ट्रिंग थ्योरी के माध्यम से ब्लैक होल की एंट्रोपी की गणना कैसे की जा सकती है। अशोक सेन नेटेचियन कंडेंसेशन पर काम किया, जिसे भौतिकी की दुनिया में सेन कंजक्चर के नाम से जाना जाता है। यह सिद्धांत बताता है कि जब ब्रह्मांड में कुछ अस्थिर ऊर्जा क्षेत्र खत्म होते हैं तो वे कैसे स्थिर हो जाते हैं। यह ब्रह्मांड की उत्पत्ति और अंत को समझने के लिए बहुत जरूरी है। तो श्रोताओं, हमें उम्मीद है कि आपको इस महान भारतीय वैज्ञानिक के प्रेरणादायी जीवन से काफी प्रेरणा मिली होगी। श्रोताओं, विज्ञान रत्न के बाद अब वक्त

0: हमारे कार्यक्रम के स्तंभ विज्ञान मंजूषा का। श्रोताओं, अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में भारत लगातार नए मुकाम हासिल कर रहा है और इसी कड़ी में एक महत्वपूर्ण नाम है गगनयान का, जो मानव युक्त अंतरिक्ष यान है। हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड द्वारा निर्मित मॉड्यूल ने पहली बार 18 दिसंबर 2014 को अपना मानव रहित प्रायोगिक उड़ान किया। गगनयान स्पेस कैप्सूल रिकवरी प्रयोग के डिजाइन पर आधारित है। इसका विकास 2006 में शुरू हुआ था। इनका मुख्य उद्देश्य अंतरिक्ष यात्रियों को सुरक्षित रूप से अंतरिक्ष में भेजने और वापस लाने की तकनीकों का परीक्षण करना है। गगनयान 1 में व्योम मित्र नामक एक हाफ ह्यूमेनॉइड रोबोट भेजा जाएगा। यह रोबोट अंतरिक्ष में मानव शरीर पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन करेगा। गगनयान 2 में और अधिक उन्नत प्रणालियों का परीक्षण किया जाएगा। इन दोनों मानव रहित परीक्षणों की सफलता के बाद ही गगनयान 3 लॉन्च किया जाएगा, जो भारत का पहला मानव युक्त अंतरिक्ष मिशन होगा। इसके जरिए 3 भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों को 3 दिनों के लिए 400 किलोमीटर की कक्षा में भेजा जाएगा और सुरक्षित रूप से वापस लाया जाएगा। श्रोताओं, गगनयान के बाद हम एक और प्रोजेक्ट पर चर्चा करेंगे। जी हां श्रोताओं, हम बात करेंगे कम लागत वाला उपग्रह आधारित ब्रॉडबैंड नेटवर्क निर्मित करने और वैश्विक इंटरनेट पहुंच प्रदान करने वाली परियोजना स्टारलिंक प्रोजेक्ट की। श्रोताओं, स्टारलिंक प्रोजेक्ट स्पेसएक्स की परियोजना है, जिसे वर्ष 2019 में हजारों परिक्रमा कर रहे उपग्रहों के समूह के साथ एक ब्रॉडबैंड नेटवर्क निर्मित करने हेतु लॉन्च किया गया था। स्टारलिंक उपग्रहों को लो अर्थ ऑर्बिट में 350 किलोमीटर से 1200 किलोमीटर के बीच की ऊंचाई पर स्थापित किया जाएगा। इसमें यूजर को एक छोटा टर्मिनल दिया जाता है, जो इन तेजी से घूमते उपग्रहों से सीधे सिग्नल प्राप्त करता है और तेज गति का इंटरनेट प्रदान करता है। यह प्रोजेक्ट वर्तमान में दुनिया भर के 160 से अधिक देशों और क्षेत्रों में परिचालन में है और इसके 12 मिलियन से अधिक ग्राहक हैं। भारत में स्टारलिंक को आवश्यक सरकारी लाइसेंस प्राप्त हो चुके हैं और महाराष्ट्र जैसे राज्यों के साथ इसके पायलट प्रोजेक्ट और ट्रायल शुरू हो चुके हैं। भारत में इसे आम जनता के लिए पूरी तरह से कमर्शियल तौर पर लॉन्च करने की तैयारी चल रही है। अनुमानों के अनुसार भारत में इसकी सेवा के लिए हार्डवेयर यानी डिश और राउटर का खर्च लगभग 33,000 के आसपास हो सकता है, जबकि मासिक अनलिमिटेड डेटा प्लान 840 से शुरू होगा। श्रोताओं, आज हमने गगनयान पर बातें की, स्टारलिंक प्रोजेक्ट की बातें की, यानी हमने अंतरिक्ष से जुड़े हुए कई चीज़ों की बातें की। तो आज हम एक और विषय के बारे में बातें करेंगे, वो है SLV यानी सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। यहाँ श्रोता हूँ, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी और इसरो के संदर्भ में SLV का तात्पर्य सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल होता है। SLV से जुड़ी हुई कुछ प्रमुख बातों की बात करें तो SLV-3 भारत का पहला स्वदेशी प्रयोगात्मक उपग्रह प्रक्षेपण यान था। इसे 40 किलोग्राम तक के उपग्रहों को निचली पृथ्वी कक्षा में स्थापित करने के लिए डिजाइन किया गया था। इस परियोजना के निदेशक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम थे। 18 जुलाई 1980 को श्रीहरिकोटा में इसका सफल प्रक्षेपण किया गया था, जिसके जरिए रोहिणी उपग्रह को कक्षा में भेजा गया। इस सफलता के बाद भारत अंतरिक्ष यान प्रक्षेपित करने वाले देशों के विशेष क्लब का 6ठा सदस्य बन गया। तो श्रोताओं, अभी हमने जाना SLV की छोटी सी उपलब्धि के बारे में। क्या है सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, इसके बारे में आइए जानते हैं विस्तार से एक वार्ता के माध्यम से। वार्ताकार हैं रंजन कुमार रॉय।
1: आज मेरे विज्ञान वार्ता में चर्चा का विषय ऐसा है जो हर भारतीय के लिए गर्व और प्रेरणा का स्रोत। भारत के अंतरिक्ष और रक्षा क्षेत्र में सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल SLV देश को अभूतपूर्व ऊंचाइयों पर पहुंचाया है। 1980 के शुरुआती SLV-3 मिशन से लेकर आधुनिक SSLV और उन्नत GSLV LMV-3 तक इसरो की स्वदेशी तकनीकी आत्मनिर्भरता ने भारत को दुनिया के सामने एक ऐसे देश के रूप में ला खड़ा किया, जिसने अति अल्प काल में फर्ज से उठकर आत्मनिर्भरता को प्राप्त कर लिया है। भारत के उपग्रह प्रक्षेपण यान सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल का क्रमिक विकास यात्रा, इस यात्रा ने न केवल हमें अंतरिक्ष की दुनिया में एक वैश्विक महाशक्ति बनाया, बल्कि हमारी रक्षा प्रणालियों को भी एक नया और अजय आयाम दिया है। वस्तुतः आज के वार्ता की यह कहानी है हमारे पहले स्वदेशी सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल SLV से लेकर आज के अत्याधुनिक रॉकेट तक की यात्रा। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की स्थापना 1969 में हुई। इसके बाद डॉक्टर विक्रम साराभाई और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के अथक प्रयासों से 1970 के दशक में SLV-3 परियोजना की शुरुआत हुई। SLV-3 भारत का पहला प्रायोगिक उपग्रह प्रक्षेपण यान था। यह 22 मीटर लंबा और ठोस ईंधन वाला 4 चरणों वाला रॉकेट था जो 40 किलोग्राम के पेलोड को लोअर अर्थ ऑर्बिट में ले जाने में सक्षम था। 10 अगस्त 1979 के पहले आंशिक असफल प्रयास के बाद हिम्मत नहीं हारी। अंततः 18 जुलाई 1980 को श्रीहरिकोटा से इसरो SLV मिशन का ऐतिहासिक लॉन्च हुआ। रोहिणी उपग्रह RS-1 को सफलतापूर्वक कक्षा में स्थापित कर भारत दुनिया का 6ठा अंतरिक्ष सक्षम देश बन गया। रक्षा क्षेत्र पर SLV का प्रभाव, डिफेंस एनर्जी एंड मिसाइल प्रोग्राम, हमें यह पता रहना चाहिए कि हमारे पहले SLV-3 ने अंतरिक्ष के साथ साथ हमारी रक्षा प्रणालियों को भी नींव रखी। SLV-3 की प्रौद्योगिकी का उपयोग बाद में भारत की पहली स्वदेशी बैलिस्टिक मिसाइल जैसे अग्नि और पृथ्वी के निर्माण में किया गया। यह दर्शाता है कि हमारे अंतरिक्ष अनुसंधान ने हमारे रक्षा तंत्र को कितना मजबूत और आत्मनिर्भर बनाया है। SLV-3 की शानदार सफलता से प्रेरित होकर इसरो ने अधिक पेलोड क्षमता के साथ ASLV ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल का विकास किया। इसके माध्यम से नई और प्रौद्योगिकियों, स्टेप ऑन बूस्टर आदि का परीक्षण किया गया। 1994 में इसरो ने अपने सबसे भरोसेमंद रॉकेट PSLV पोलार सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल को विकसित किया। आज PSLV को इसरो का वर्क हॉर्स कहा जाता है। इसने न केवल भारत के रिमोट सेंसिंग और मौसम संबंधी उपग्रहों को लॉन्च किया बल्कि चंद्रयान-1 और मंगलयान जैसे ऐतिहासिक अभियानों को भी सफल बनाया है। GSLV और भारी अंतरिक्ष अभियानों में वृद्धि होती गई। समय के साथ साथ भारी संचार उपग्रहों, कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स को अंतरिक्ष में भेजने की आवश्यकता हुई। इसके लिए इसरो ने GSLV, जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, और LMV-3, जिसे GSLV-MK-3 भी कहा जाता है, विकसित किया। स्वदेशी क्रायोजेनिक इंजन के विकास ने भारत को अपनी भारी तकनीकों पर पूर्ण रूप से आत्मनिर्भर बना दिया। चंद्रयान-3 की सफलता और गगनयान मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन की तैयारियां इसी तकनीकी क्षमता का प्रमाण है। आज अंतरिक्ष के क्षेत्र में छोटे उपग्रहों की मांग तेजी से बढ़ रही है। इस बाजार को ध्यान में रखते हुए इसरो ने SSLV स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल का विकास पूरा कर लिया है। यह बहुत कम लागत और कम समय में छोटे उपग्रहों को अंतरिक्ष में भेजने में सक्षम है। इसे अब निजी क्षेत्रों को भी सौंपा जा रहा है ताकि व्यवसायीकरण को बढ़ावा मिल सके। इसके साथ ही इसरो ने ह्यूमन रेटेड लॉन्च व्हीकल, जो कि मॉडिफाइड LMV वर्सन है, आज अपने अभियान के तहत ले रखा है। SLV-3 के 40 किलोग्राम के पेलोड से लेकर आज दर्जनों उपग्रहों को एक साथ

0: अंतरिक्ष में स्थापित करने तक का सफर भारत की अदम्य इच्छा शक्ति और वैज्ञानिक उत्कृष्टता को दर्शाता है। अंतरिक्ष और रक्षा प्रणालियों में आज भारत दुनिया की महाशक्तियों के बराबर खड़ा है। यह केवल एक रॉकेट की यात्रा नहीं, बल्कि 1.4 अरब भारतीयों के ऊंचे सपनों और आत्मनिर्भर भारत की उड़ान है। जय हिंद, जय भारत।
1: श्रोताओं, सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, इस विषय पर अभी हमने जाना विस्तार से एक वार्ता के माध्यम से। वार्ताकार थे रंजन कुमार रॉय। श्रोताओं, विज्ञान मंजूषा में आज हमने विभिन्न क्षेत्रों के बारे में जाना। एक और खबर, एक और जानकारी हम आप तक पहुंचाना चाहते हैं जो भारत के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रक्षा क्षेत्र से जुड़ी हुई है, वो कि दशकों तक हवाई युद्ध की कमान मानव लड़ाकू पायलटों के हाथ में रही है, लेकिन भविष्य की लड़ाई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संचालित हो सकती है, क्योंकि बेंगलुरु स्थित एक रक्षा स्टार्टअप ने भारत की पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पायलटेड लड़ाकू विमान अवधारणा FWD सुप्रीम पेश की है। यह प्रणाली खतरों का स्वायत्त रूप से विश्लेषण करने, युद्ध संबंधी निर्णय लेने और मशीन की गति से मिशन को अंजाम देने के लिए डिजाइन की गई है। इस ऑटोनोमस एयर कॉम्बैट टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेटर की पहली उड़ान 2026 की तीसरी तिमाही में प्रस्तावित है। यह भारत की स्वदेशी रक्षा क्षमताओं और अगली पीढ़ी की युद्ध तकनीक की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। श्रोताओं, आज हम और आप रेडियो प्रसारण के माध्यम से जुड़े हुए हैं। 23 जुलाई 1927 को इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी के तहत बॉम्बे स्टेशन से देश का पहला रेडियो प्रसारण किया गया था। इसी सेवा को आगे चलकर 8 जून 1936 को ऑल इंडिया रेडियो नाम दिया गया। वर्ष 1957 में इसे आधिकारिक तौर पर आकाशवाणी नाम दिया गया। इसलिए भारत में हर साल 23 जुलाई को राष्ट्रीय प्रसारण दिवस मनाया जाता है। यह दिवस देश में रेडियो प्रसारण की शुरुआत और जनसंचार के क्षेत्र में ऐतिहासिक भूमिका का प्रतीक है। यह दिन राष्ट्र निर्माण, शिक्षा और मनोरंजन के प्रसार में प्रसारण की शक्ति को याद करने के लिए मनाया जाता है। श्रोताओं, भारत में राष्ट्रीय प्रसारण दिवस 1927 में इसकी स्थापना के बाद से देश के प्रसारण परिदृश्य के विकास का स्मरण कराता है। यह दिन भारत के विकास, शैक्षिक पहुंच और सांस्कृतिक संरक्षण में प्रसारण द्वारा निभाई गई महत्वपूर्ण भूमिका को उजागर करता है। सामुदायिक रेडियो जैसी पहलों पर सरकार का जोर दूर दराज के क्षेत्रों तक पहुँचने और स्थानीय विकास को बढ़ावा देने में प्रसारण के स्थायी महत्व को रेखांकित करता है। भारत जहाँ एक और राष्ट्रीय प्रसारण दिवस मनाता है, वैसे में भविष्य की कल्पना कर रहा होता है जहाँ प्रसारण राष्ट्रीय एकता, शिक्षा और नागरिक सशक्तिकरण के लिए एक महत्वपूर्ण साधन के रूप में लगातार रूपांतरित होता रहे। जैसे जैसे भारत डिजिटल युग में आगे बढ़ रहा है, ध्यान है कि एक व्यापक, समावेशी और तकनीकी रूप से उन्नत प्रसारण प्रणाली के निर्माण की ओर हो, जो वैश्विक गुणवत्ता मानकों को पूरा करते हुए अपनी आबादी की विविध आवश्यकताओं को पूरा करे। भारत में प्रसारण का सफर जून 1923 में बॉम्बे रेडियो क्लब के पहले प्रसारण के साथ शुरू हुआ था। भारतीय प्रसारण कंपनी यानी IBC की स्थापना 23 जुलाई 1927 को हुई, जिसने देश में संगठित रेडियो प्रसारण के जन्म का प्रतीक माना जाता है। ऑल इंडिया रेडियो का उदय 1936 में भारतीय राज्य प्रसारण सेवा से हुआ। स्वतंत्रता के बाद AIR का तेजी से विस्तार हुआ और 1956 में इसका नाम बदलकर आकाशवाणी कर दिया गया। आज ऑल इंडिया रेडियो 551 से अधिक स्टेशनों का संचालन करता है, जो भारत की 98% आबादी तक पहुंचता है और 23 भाषाओं और 146 बोलियों में प्रसारण करता है। श्रोताओं, भारत के विकास में प्रसारण की अहम भूमिका रही है। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान रेडियो सूचना प्रसार और एकता को बढ़ावा देने का एक शक्तिशाली माध्यम था। स्वतंत्रता के बाद इसने विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में साक्षरता, स्वास्थ्य जागरूकता और कृषि ज्ञान को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हवा का बाह्य सेवा प्रभाग 100 से अधिक देशों में प्रसारण करता है, जिसे वैश्विक स्तर पर भारत की आवाज़ बुलंद होती है और प्रवासी भारतीयों से जुड़ाव स्थापित होता है। FM चैनलों की शुरुआत और डिजिटल रेडियो मोंडियल यानी DRM तकनीक का उपयोग करके डिजिटल प्रसारण की ओर परिवर्तन आधुनिकीकरण के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है। राष्ट्रीय प्रसारण दिवस न केवल तकनीकी प्रगति का जश्न मनाता है, बल्कि रेडियो की उस अटूट शक्ति को भी दर्शाता है जो एक विविधतापूर्ण राष्ट्र को सूचित करने, शिक्षित करने, मनोरंजन करने और एकजुट करने में सक्षम है। भारत जैसे जैसे डिजिटल युग में आगे बढ़ रहा है, सार्वजनिक सेवा प्रसारण के सिद्धांत महत्वपूर्ण बने हुए हैं, जो यह सुनिश्चित करते हैं कि रेडियो भारतीय समाज में एक महत्वपूर्ण माध्यम बना रहे। प्रसारण क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने कई तरह की पहलें की, जैसे डिजिटल इंडिया, जिसका उद्देश्य था कि लोगों को डिजिटली एम्पावर यानी सशक्त करना और समाज में एक नॉलेज इकोनॉमी यानी ज्ञान अर्थव्यवस्था की स्थापना करना। इसके अलावा भारत नेट, जिसका उद्देश्य सभी ग्राम पंचायतों तक ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी पहुँचाना। इसके अलावा ब्रॉडकास्ट इंफ्रास्ट्रक्चर नेटवर्क डेवलपमेंट का गठन, जिसका उद्देश्य है प्रसार भारती के नेटवर्क और इंफ्रास्ट्रक्चर को और मजबूत बनाना। इसके अलावा ब्रॉडकास्टिंग का ऑटोमेशन किया गया, जिसका उद्देश्य है कि जो ट्रांसमीटर्स हैं, जो स्टूडियो हैं ऑल इंडिया और रेडियो और दूरदर्शन के, वो डिजिटाइज हो जाए।

0: कम्युनिटी रेडियो सपोर्ट स्कीम, इसके ज़रिए भी फाइनेंशियल यानी आर्थिक रूप से मदद दी जाती है कम्युनिटी रेडियो स्टेशन की स्थापना करने के लिए। पिछले 9 सालों में ही 140 से बढ़कर 481 से भी ज़्यादा हो चुकी है कम्युनिटी रेडियो की संख्या। इसके अलावा FM रेडियो चैनल्स की ई ऑक्शनिंग की जा रही है, जिससे रेडियो कवरेज को ज़्यादा से ज़्यादा जगहों तक पहुँचाया जाए। 284 शहरों में 808 से अधिक चैनलों के ऑक्शन की सरकार ने घोषणा की। ये सब उद्देश्य, ये सब पहले, ये सब स्कीम्स इस बात को दर्शाते हैं कि हम प्रसारण को लेकर कितने सजग हैं, भारत सरकार और जो प्रसार भारती है, जो सूचना प्रसारण मंत्रालय है, ये सभी प्रसारण को जन जन तक पहुंचाना चाहते हैं। श्रोताओं, हमने पहले ही कहा कि हम और आप आज रेडियो प्रसारण के माध्यम से जुड़े हुए हैं, चाहे हम रेडियो के माध्यम से जुड़े हों या टीवी के माध्यम से, प्रसार भारती के विभिन्न अंगों के माध्यम से। प्रसारण का उद्देश्य जन जन तक भारत के विकास, शैक्षिक पहुंच और सांस्कृतिक संरक्षण में जो महत्वपूर्ण भूमिका होती है उसको निभाना है। हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग जो रेडियो के प्रसारण को सुनते हैं और प्रसार भारती के विभिन्न चैनलों के माध्यम से जो सूचनाएं आप हासिल करते हैं, उनसे निश्चित रूप से कहीं ना कहीं समाज के विकास में, देश के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका हम निभाते हैं। श्रोताओं, वक्त है हमारे कार्यक्रम के स्तंभ माइंड टेस्ट का। इस स्तंभ में हम हर सप्ताह दो सवाल पूछते हैं जिसके जवाब आपको डाक या ईमेल के द्वारा हमें भेजने होते हैं, और सही जवाब भेजने वालों के नाम हम अपने कार्यक्रम में भी शामिल करते हैं। तो इंतजार किस बात का, आइए सबसे पहले जान लेते हैं पिछले सप्ताह पूछे गए सवालों के बारे में।
1: श्रोताओं, आइए सबसे पहले जान लें पिछले सप्ताह पूछे गए सवालों के बारे में। पिछले सप्ताह का हमारा पहला सवाल था कि मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ा ग्रंथि कौन सा है, और जिसका सही जवाब है लीवर यानी यकृत। और पिछले सप्ताह का हमारा दूसरा सवाल था कि पौधे प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस बनाते हैं, जिसका सही जवाब है ऑक्सीजन। और इन सवालों के सही जवाब हमें लिख भेजे हैं आप सभी श्रोताओं ने। विष्णु कुमार ने लालूचक भागलपुर से, आव्या सिंह और आत्मिक सिंह ने रेड क्रॉस के निकट भागलपुर से, और दीपक कुमार ने नाथनगर भागलपुर से। आप सभी श्रोताओं को हमारा कार्यक्रम ध्यान से सुनने के लिए और सही जवाब हमें लिख भेजने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। श्रोताओं, आइए नोट कर लें आज के सवालों को। आज का हमारा पहला सवाल है कि स्टारलिंक प्रोजेक्ट किस संस्था ने शुरू किया है। सवाल एक बार फिर से सुन लें, स्टारलिंक प्रोजेक्ट किस संस्था ने शुरू किया है। और आज का हमारा दूसरा सवाल है कि भारत के मानवयुक्त अंतरिक्ष यान का नाम क्या है। सवाल एक बार फिर से सुन लें, भारत के मानवयुक्त अंतरिक्ष यान का नाम क्या है।
0: श्रोताओं, सवाल तो आपने नोट कर ही लिया होगा, अब नोट कीजिए हमारा पता और लिख भेजिए इन सवालों के सही जवाब हमें डाक या ईमेल द्वारा। हमारा पता है कार्यक्रम विज्ञान वाणी अनुभाग, द्वारा केंद्र निदेशक, आकाशवाणी भागलपुर, पिन 812001। और हमारा ईमेल है phairbhagalpur@gmail.com, यानी phairbhagalpur@gmail.com। हमें इंतजार रहेगा आपके पत्रों और ईमेल्स का। तो श्रोताओं, ये था हमारा आज का विज्ञानवाणी कार्यक्रम। हमें उम्मीद है कि विज्ञानवाणी का अंक आपको पसंद आया होगा। विज्ञानवाणी के माध्यम से आपको बहुत सारी विज्ञान के क्षेत्र में नई जानकारियां मिली होंगी, और इन रोचक जानकारियों से आप विज्ञान के अपने ज्ञान को और बढ़ा पाएंगे, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। तो श्रोताओं, घड़ी की सुई इशारा कर रही है और वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। तो इस वादे के साथ ये होगी आपसे फिर मुलाकात, इसी दिन इसी जगह इसी समय यानी आकाशवाणी केंद्र भागलपुर पर। तब तक के लिए मुझे यानी अपने रेडियो दोस्त पीयूष आनंद को दीजिए इजाजत। नमस्कार।

0: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
1: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
0: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
1: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
0: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700001-4242 पर।
1: 8700001-4242।
2: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: विज्ञानवाणी कार्यक्रम संपन्न हुआ। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे सौरभ कुमार। प्रसारण आपकी सेवा में आकाशवाणी के भागलपुर केंद्र से किया गया। मीडियम वेव 205.76 मीटर यानी 1458 किलो हर्ट्ज पर और FM 100.1 मेगा हर्ट्ज पर। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में दिन के 12:30 होने को हैं। कृपया हमारे अगले कार्यक्रम के लिए कुछ पल प्रतीक्षा कीजिए।

0: बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
1: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
0: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
1: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
0: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700001-4242 पर।
1: 8700001-4242।
2: एक प्रकार से
3: आकाशवाणी का ये भागलपुर केंद्र है। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में दिन के 12:30 हुए हैं। प्रस्तुत है सुर संगम कार्यक्रम। आज सुर संगम के कलाकार हैं उस्ताद शाहिद परवेज। इनसे हम आपको सुनवाएंगे इनका सितार वादन। आइए सुनते हैं शाहिद परवेज का सितार वादन राग पूरिया धनाश्री में।

सुर संगम कार्यक्रम संपन्न हुआ। इसके अंतर्गत आप सुन रहे थे शाहिद परवेज का सितार वादन राग पुरिया धनासरी में। ये आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है। मीडियम वेव 205.76 मीटर यानी 1458 किलो हर्ट्ज पर और FM 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में दिन का 1 बजा है। प्रस्तुत है लोक गीतों का कार्यक्रम लोकरंग। आज लोकरंग की गायिका हैं नूतन कुमारी। इनके स्वर में अब हम आपको सुनवा रहे हैं देवी गीत।

0: सुनो ना,
1: हाँ?
0: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
1: तो रोका किसने है, हाँ?
0: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
1: मुझसे।
0: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
1: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
0: पर उससे मेरा क्या फायदा?
1: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
0: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
1: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 8700001424242।
0: ओ 8700001424242। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700001424242 पर।
2: आप सुन रहे हैं लोक गीतों का कार्यक्रम लोक रंग। कार्यक्रम का अगला लोकगीत हम आपको सुनवा रहे हैं नूतन कुमारी के स्वर में। आइए सुनते हैं शिव भजन।

लोकरंग कार्यक्रम को हम देते हैं थोड़ी देर के लिए विराम। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में दिन के 1:10 होने वाले हैं। कुछ पल में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार हमारे रांची केंद्र से। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा कीजिए।

0: आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं प्रियंका। पहले मुख्य समाचार। राज्य सरकार ने ग्रीन एनर्जी के तहत विभिन्न नदियों और नहरों में 16 जगहों पर माइक्रो हाइडल पावर प्रोजेक्ट लगाने का लिया निर्णय। ऊर्जा विभाग ने तैयारी शुरू की। झारखंड हाईकोर्ट ने जमीन विवाद मामले में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए एसडीओ के प्रशासनिक आदेश पर हस्तक्षेप करने से किया इनकार। साइबर अपराध के पीड़ित आम लोगों और व्यापारियों को निजात दिलाने के लिए झारखंड पुलिस ने शुरू किया जीआरएम पोर्टल। पुरी स्थित विश्व प्रसिद्ध भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा को लेकर दक्षिण पूर्व रेलवे ने चक्रधरपुर मंडल से होकर 3 जोड़ी स्पेशल ट्रेनों के संचालन का लिया निर्णय। और मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों तक राज्य में अच्छी बारिश होने के दिए संकेत। राज्य में अब तक कम बारिश की भरपाई होने की उम्मीद। और अब समाचार विस्तार से। राज्य सरकार ने ग्रीन एनर्जी के तहत राज्य के 16 जगहों पर माइक्रो हाइडल पावर प्रोजेक्ट लगाने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश पर ऊर्जा विभाग विभिन्न जिलों में स्मॉल, मिनी और माइक्रो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स लगाने की योजना तैयार कर रहा है। ये प्रोजेक्ट रांची, सिमडेगा, गुमला, लातेहार और पश्चिम सिंहभूम जिलों के नदियों और नहरों के लिए किनारे लगाए जाएंगे। राज्य के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने राजनीतिक जीवन से संन्यास लेने के संकेत दिए हैं। रांची में अपने निजी आवास पर पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने बताया कि अब तक उन्होंने राजनीतिक जीवन का लंबा सफर तय किया है, ऐसे में राजनीति में भी पड़ाव जरूर आना चाहिए, आपको स्वतः अवकाश ले लेना चाहिए। वित्त मंत्री ने एक सवाल का जवाब देते हुए कहा कि केंद्र की राजनीति का उन्हें कोई लालसा नहीं है। उन्होंने धर्म कर्म, सामाजिक उत्थान, लेखन कार्य और देशाटन करने की इच्छा जताई है।
1: राजनीति में एक पड़ाव आना चाहिए कि आपको स्वतः अवकाश ले लेना चाहिए राजनीति से। तो 2029 में जब चुनाव होगा तो राजनीतिक उम्र हमारी 50 वर्ष की हो जाएगी। तो मेरे मन की इच्छा यही है जो मैं साफ साफ आपके माध्यम से लोगों तक पहुंचा रहा हूं। तो 2029 के चुनाव में मैंने अभी तक मन बनाया है कि मैं चुनाव लड़ने के लिए तनिक भी इच्छुक नहीं।
0: झारखंड हाईकोर्ट ने जमीन विवाद के एक मामले में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए एसडीओ द्वारा जारी प्रशासनिक आदेश में हस्तक्षेप करने से साफ इनकार कर दिया है। अदालत ने स्पष्ट किया कि जमीन के अतिक्रमण और उसकी पहचान से जुड़े विवादित सवालों का फैसला रिट याचिका के माध्यम से नहीं किया जा सकता। ऐसे मामलों में साक्ष्यों की आवश्यकता होती है जिनका निपटारा दीवानी अदालत ही कर सकती है। प्रदेश भाजपा ने किसानों के मुद्दों को लेकर सरकार के कामकाज पर सवाल उठाया है। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता रविनाथ किशोर ने आरोप लगाया कि कृषि क्षेत्र से जुड़े कई सरकारी दावे जमीनी स्तर पर प्रभावी ढंग से लागू नहीं हो रहे हैं। उन्होंने किसानों की समस्याओं के समाधान और योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन की मांग की।
2: और राज्य सरकार को किसानों के हित से कोई मतलब नहीं है। उनको समय पर खाद बीज भी नहीं मिल रहा है, सरकार को उसे प्रोत्साहन राशि भी नहीं मिल रही है, धानों का जो मूल्य होना मिलना चाहिए वो भी उनको समय पर नहीं मिल रहा है, और ऋण माफी की जो बात किसानों के लिए उन्होंने की थी पिछले बार वो भी सब छलावा साबित हुआ है। तो यह सरकार जो चल रही है पूर्णतः किसान विरोधी है और किसानों के हित के लिए कोई काम नहीं कर रही।
0: केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत 350 रुपए प्रोसेसिंग शुल्क जमा करने पर 5,00,000 रुपए का ऋण मंजूर होने का दावा करने वाले एक फर्जी स्वीकृति पत्र का खंडन किया है। पत्र सूचना कार्यालय पीआईबी की फैक्ट चेक इकाई ने इस पत्र को पूरी तरह फर्जी बताया है। पीआईबी ने स्पष्ट किया है कि माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी सीधे सूक्ष्म उद्यमियों या व्यक्तियों को ऋण नहीं देती। साइबर अपराधों की जांच के दौरान फ्रीज या होल्ड किए गए बैंक खातों की समस्याओं से आम जनता और अब व्यापारियों को निजात दिलाने के लिए झारखंड पुलिस ने एक बड़ा कदम उठाया है। इसके तहत जीआरएम पोर्टल शुरू किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य प्रभावित निर्दोष खाता धारकों को पारदर्शी, ऑनलाइन और समयबद्ध शिकायत निवारण प्रणाली प्रदान करना है। आकाशवाणी के ताज़ा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताज़ा समाचार xhandle@airnewsalerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के xhandle@airnews_ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। विश्व प्रसिद्ध भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा के अवसर पर श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए दक्षिण पूर्व रेलवे ने विशेष रेल परिचालन करने का निर्णय लिया है। रेलवे ने रथ यात्रा 2026 के दौरान पूरी आने जाने वाले यात्रियों की सुविधा के लिए चक्रधरपुर मंडल से होकर गुजरने वाली 3 जोड़ी स्पेशल ट्रेनों के संचालन का निर्णय लिया है। इन विशेष ट्रेनों के चलने से झारखंड, ओडिशा तथा आसपास के क्षेत्रों के हजारों श्रद्धालुओं को राहत मिलेगी। पलामू पुलिस ने ऑपरेशन प्रहार के तहत मेदिनीनगर सदर और पाकी थाना क्षेत्र में 5 अफीम तस्करों को गिरफ्तार किया है। उनके पास से लगभग 1 किलोग्राम अफीम, 50 किलो डोडा, 15,450 रुपए नकद, कार, मोटरसाइकिल बरामद किया गया है।
3: ऑपरेशन प्रहार चलाया जा रहा है, जिसके तहत एनडीटीएस के अभियुक्तों के खिलाफ छापेमारी की जा रही है। सदर थाना अंतर्गत जो अभियुक्त थे उनके पास से लगभग 750 ग्राम अफीम जब्त हुआ। पाकी थाना क्षेत्र में जांच करने के क्रम में 50 किलोग्राम डोडा की रिकवरी हुई और उसके साथ साथ लगभग 250 ग्राम अफीम भी जब्त हुई। इस तस्करी में शामिल थे, उनकी गिरफ्तारी हुई।
0: राजधानी रांची के सराफा बाजार में आज 22 कैरेट सोने की कीमत 1,35,300 रुपए प्रति 10 ग्राम है, जबकि चांदी की कीमत 2,30,000 रुपए प्रति किलो है। दुमका जिले में वर्षा का पैटर्न बदल गया है, जिससे खरीफ की खेती का जोखिम बढ़ गया है। बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के दुमका क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र के कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर कुमार शैलेंद्र मोहन ने बताया है कि पिछले 35 सालों में दुमका जिले में वर्षा की कुल मात्रा में कोई कमी नहीं आई है, लेकिन वर्षा के समय और वितरण में बदलाव आया है। इससे खरीफ के मौसम में पानी की कमी हो रही है। उधर जामताड़ा जिले में अब तक अपेक्षाकृत कम बारिश होने से कृषि कार्य प्रभावित हो रहा है। जिला कृषि पदाधिकारी लव कुमार ने बताया कि कम बारिश को देखते हुए मोटे अनाजों की खेती करने के लिए किसानों को प्रेरित किया जा रहा है।
4: जिले में 50% से कम बारिश हुई है, बाकी जगहों पे अभी रोपा नहीं हो पा रही। इसी को देखते हुए जिला में कंटिजेंट प्लान के तहत अरहर का और मूंग का वितरण बीज का किया जा रहा है 100% सब्सिडी में और लेंस पैक्स के द्वारा 50% सीड एक्सचेंज, और अभी मिलेट मिशन का प्रचार प्रसार जोरों से किया जा रहा है। उसके द्वारा किसानों को प्रति एकड़ 3,000 रुपया करके मिलता है, किसान 5 एकड़ तक 15,000 रुपया ले सकते हैं।
0: मौसम विभाग ने देश के उत्तरी और पूर्वी हिस्सों में मूसलाधार वर्षा की आशंका व्यक्त की है। विभाग के अनुसार 14 जुलाई से राज्य के अधिकांश भागों में भारी बारिश के संकेत हैं, जिससे राज्य में अब तक कम बारिश की भरपाई होने की उम्मीद है। रांची में आयोजित नगड़ी प्रीमियर लीग मुकाबले में कल रॉयल्स की टीम ने टाइटंस को 43 रनों से हरा दिया। रॉयल्स ने 20 ओवरों में 128 रन बनाए, जबकि टाइटंस की पूरी टीम 19 ओवर और 4 गेंद पर 85 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्य सरकार ने ग्रीन एनर्जी के तहत विभिन्न नदियों और नहरों में 16 जगहों पर माइक्रो हाइडल पावर प्रोजेक्ट लगाने का लिया निर्णय। ऊर्जा विभाग ने तैयारी शुरू की। झारखंड हाईकोर्ट ने जमीन विवाद मामले में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए एसडीओ के प्रशासनिक आदेश पर हस्तक्षेप करने से किया इनकार। साइबर अपराध के पीड़ित आम लोगों और व्यापारियों को निजात दिलाने के लिए झारखंड पुलिस ने शुरू किया GRM पोर्टल। पूरी स्थित विश्व प्रसिद्ध भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा को लेकर दक्षिण पूर्व रेलवे ने चक्रधरपुर मंडल से होकर 3 जोड़ी स्पेशल ट्रेनों के संचालन का लिया निर्णय। और मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों तक राज्य में अच्छी बारिश होने के दिए संकेत। राज्य में अब तक कम बारिश की भरपाई होने की उम्मीद। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन दोपहर 2:55 पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
5: आकाशवाणी का ये भागलपुर केंद्र है। प्रादेशिक समाचार से पहले आप सुन रहे थे लोक गीतों का कार्यक्रम लोकरंग। लोकरंग कार्यक्रम को अब हम बढ़ाते हैं आगे और नूतन कुमारी के स्वर में आपको सुनवाते हैं उनका गाया ये झूमर।

लोक रंग कार्यक्रम को के आखिरी लोकगीत के रूप में हम आपको सुनवा रहे हैं नूतन कुमारी का गाया ये शिव भजन।

नूतन कुमारी की गाय इस शिव भजन के साथ ही संपन्न होता है लोक गीतों का कार्यक्रम लोक रंग। आकाशवाणी का ये भागलपुर केंद्र है। मीडियम वेव 205.76 मीटर यानी 1458 किलो हर्ट्स पर और FM 100.1 मेगा हर्ट्स पर। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में दिन के 1:30 हुए हैं। प्रस्तुत है अंगिका पत्रिका कार्यक्रम अंग दर्पण। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता हैं अतुल कुमार प्रियदर्शन।

अंग दर्पण कार्यक्रम सुनने वाला सब भाई बहन के गैरू के नमस्कार। श्रोता बंधु, भारत वर्ष जे छिके ओ विविधता से भरलो देश छिके, और एकरा दुनिया में कहलो जाय छे कि भारत यानी पूरा दुनिया के जँ देखै छौं तो भारत चललो जाय, कहने कि यहाँ विविध संस्कृति विविध सभ्यता के लोग निवास करे छे। एकरा ऋषि आरो कृषि वाला संस्कृति के देश कहलो जाय छे। यहाँ के लोगों के आशावादी लोगों के रूप में देखलो जाय छे, सौसे दुनिया देखे छे, कहने कि लाख परेशानी आवी जाए, कत्तो कुछो पहाड़ रंग बज्जर रंग दुख कष्ट आवी जाए, तभियो भारत के लोग घबरावे नहीं छे, बड़ा हिम्मत के साथ ओकरो सामना करे छे और कोनो न कोनो उपाय जरूर खोजी ले छे। और जब भी पूरा दुनिया पर कोनो संकट रहे छे तो सौसे दुनिया के नज़र भारत पर बनलो रहे छे कि आखिर भारत की निर्णय लेते की करते। श्रोता भाई बहन, आय विश्व आशा दिवस के, आशा यानी कि हमेशा अच्छा सोचना आरो एहनो उम्मीद लगाए कर रखना, एहनो आशा बनाए कर रखना कि जे होते अच्छे होते, जे होरलो छे अच्छे होरलो छे, ई विचार के माने वाला अपनो देश भारत छिके। और अपनो आशावादी प्रवृत्ति के कारण ही दुनिया भर में भारत अपनो अलग पहचान रखे छे। उदाहरण के लिए अगर बात कर लो जाए, देखो कोरोना काल में पूरा दुनिया जहाँ घुटना पाबी गले वहाँ भारत के लोग दिनों में दस दौ काढ़ा पीबी के कोरोना से जंग जीती लेलके। जत मौत दुनिया भर में भले भारत में एक चौथाई भी नहीं भले, एक कारण यह रहे आशावादिता। श्रोता बंधु, आए विश्व आशा दिवस के यानी अंतर्राष्ट्रीय आशा दिवस, इंटरनेशनल डे ऑफ होप, और यह दिन के शुरुआत जे छे संयुक्त राष्ट्र ने वैश्विक चुनौती के समय में शांति मानवाधिकार आरो सामाजिक प्रगति का बढ़ावा दे लेली करने रहे, आरो ओकरो शक्ति के आशा के शक्ति के पहचाने के लेली करने छले। यह दिनों का मुख्य उद्देश्य लोगों के बीच सहिष्णुता समावेशिता गरिमा आरो सकारात्मकता यानी पॉजिटिविटी के जे छे कि ओकरो प्रचार करना छे। ई दिन दुनिया भर के समुदाय आरो राष्ट्र के निराशा से उबरी के एक बेहतर आरो शांतिपूर्ण भविष्य के दिन में दिशा में जे छे कि काम करे के लिए प्रेरित करे छे। हर आदमी का आशावादी होना चाहिए, कहना कि जहनो सोच होय छे वहने जे छे हमरो शरीर काम करे छे। सकारात्मक सोचला से प्रकृति के जितना भी सकारात्मक ऊर्जा छे हो शरीर में प्रवेश करे छे और हमरो शरीर वही हिसाबों से काम करे लगे छे कि नहीं मन सोची रहलो छे अच्छा तो होते एकरा साथ हुए अच्छा। कई उदाहरण देलो जाए छे यह विषय में, लेकिन उदाहरण के कोई जरूरत नहीं छे। अपनो भोरे भोर उठी सोचो का हमरो दिन बहुत बढ़िया जेते, आई हमरो ई काम सफल हो जेते, ई काम आब एहनो भी नहीं सोची लो जे कि असंभव छे कि हम आज दिन भर में इतना पैसा कमेबे एक सांझक ताजमहल बना लेबे, एहनो नहीं सोचना छे। लेकिन हाँ, एहनो सोचो कि अगर हम जे भी काम करे ले निकली रहलो छे, कुछ सोचने छे पढ़ाई के संबंध में, उद्योग के संबंध में, व्यापार के संबंध में, तो हौ पूरा होय के संभावना रहे छे। एहले लिए कहे छे सकारात्मक सोच के साथ अपना जीवन जेला से और सकारात्मक ऊर्जा के आभा मंडल में रही के जे भी काम होय छे वो अच्छा होय छे। तो एकदम फेनु से हम सब अपना श्रोता भाई बहनी सबके अंतर्राष्ट्रीय आशा दिवस के शुभकामना दे छे। आरो आए एक आरो महत्वपूर्ण दिवस छिके श्रोता बंधु, आए उ छिके अंतर्राष्ट्रीय मलाला दिवस। मलाला पाकिस्तान के एक लड़की छिके, जैकि लड़की सनी के यानी कि बालिका के शिक्षा के ले ली आरो उकरो जे रूढ़िवादी व्यवस्था रहे एक समाज में जे इस्लाम में मान लो जाए छे बहुत चीज आरो मुसलमान बहिन सनी माने छे, ओकरा खिलाफ में लड़ाई लड़ले, बहुत लोग ओकरो खिलाफ करल के। लेकिन मलाला यूसुफ जई ने जे छे कि बहुत मेहनत करी के संघर्ष करी के लोगों के विरोध झेली करी के
एक दिन एहनो लनलकै कि ओकरा नोबेल पुरस्कार मिललै यही क्षेत्रमे। आरो आइ पूरा दुनिया मलाला यूसुफजईके जानै छै, आइ ओकरे जन्मदिन छिकै, तऽ ई ओकरे जन्मदिनपर मलाला दिवसके रूपमे मनैलो जाइ छै। आरो नोबेल पुरस्कार विजेता मलाला यूसुफजईके जन्मदिनके उपलक्ष्यमे दुनिया भरमे लड़कीके शिक्षा आरो हुनकर साहसिक कार्यके सम्मानित करैके लेल है दिन समर्पित छै। कम उम्रमे जे छै कि लड़कीके शिक्षा आरो अधिकार लेल लड़ाइ लड़ैवाली मलाला यूसुफजई जे दुनिया भरके लड़की लेल आइके समयमे प्रेरणा स्रोत छिकै। आब तऽ एकरो भी एक बधाई छै कि कोई भी जे स्त्री छै, कोई भी लड़की छै, कोई भी हमरो बेटी छै, कोई बच्ची छै, तऽ हौ ओकरा कमजोर नहि समझना छै, ओकरा जे छै कि अबला नहि कहना छै, आरो ओकरा ओकरो ताकतसँ पहचान कराना छै, ताकि दुनियामे हर एक काम ओ लड़की ओ बच्चा जे बालिका छै हौ वहाँ करऽ पड़ै आओर आइके समयमे करि रहलो छै। देखो एक घरके चूल्हा चौका बर्तनसँ लए करिके आसमानमे फाइटर जेट तक उड़ाबै छै, अपनो कठिनताके रास्ता जे तमाम ओकरा समाजमे झेलै लए पड़ै छै ओकरा ही केवल नहि चढ़ि रहलो छै बल्कि एवरेस्टपर भी चढ़ि रहलो छै। आओर हर क्षेत्रमे चाहे ओ शिक्षा हुए, स्वास्थ्य हुए, समाज हुए, रक्षा हुए, राजनीति हुए, आइ हर तरफ लड़की सनिके महिलाके बोलबाला छै आरो हुएके चाहिए। अपनो यहाँ कहलो जाइ छै यत्र नार्यस्त पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। एकरो मतलब ई नहि होइ छै कि स्त्रीके सामनामे बैठाके धूप दीप अगरबत्ती फूल पान प्रसाद चढ़ैलो जाय, एकरो मतलब ई कतई नहि छै। एकरो मतलब छै कि अपनो जे हमरा घरमे स्त्री छै, औरत छै, माय छै, दाय छै, बहिन छै, ओकरा इज्जत दिए, ओकरा सम्मान करिए, आरो हुनका पंख दिए, ओकरा कोई भी काम करे जे उचित छै ओकरा रोकैके प्रयास नहि करिए, ओकरो रास्ता अवरुद्ध नहि करिए। इएह ये दिवसके सार्थकता होतै। आओर हर दिन जँ एहने करलो जाए तऽ अपनो समाज, अपनो घर स्वर्ग न की बनि जेतै। चलिए तऽ कार्यक्रममे आब बढ़ै छियै आगू, आओर एक सुनै छियै एक बढ़िआँ रङ्ग देशभक्ति गीत।

0: वाह, की सुंदर अपना है अभी बहुत ही बढ़िया लोक भजन सुनलिए। और अब जे छे कि कार्यक्रम में बढ़े छे आगू, आरो देखो कि कोई भी मौसम हुआ, कोई भी समय हुआ, प्रकृति के कोनो सुख दुख हुआ, कोनो दृश्य हुआ, कोनो भी परिस्थिति हुआ, ओकरा जे वर्णन कहे करे छे कबला होय छे, हो कवि होय छे, साहित्यकार होय छे, लेखक होय छे, तो हुनी सनी हरेक दृश्य का, चाहे बचपन हुआ, बुढ़ापा हुआ, जवानी हुआ, कि उम्र के कोनो भी पड़ाव हुआ, या समाज के कोई परिस्थिति हुआ जकरा में कि दुख है, सुख है, अच्छाई है, बुराई है, समाज के हर गतिविधि पर नजर जे रहे छे, वो कवि सनी के रहे छे। तो आबिए अपनो अंगिका भाषा में अंजनी कुमार शर्मा के कुछ कविता के सुने छे हुनके आवाज में।
1: सच के टीली नै छोड़ते बने छे नै बंद करते बने छे, रहलो छे घरों में जबाल, देखे ले हरदम में होय छे घरों में बवाल, चुप रहे छे बीवी पर भुकते रहे छे टीली, सब बुतरू के देखे के लगलो छे चस्का, क्लासों में लगे छे लस्का, भर दिन देखे छे टीवी, पढ़े वक्ती खेले छे खेल, कहीं नहीं करते फेल, टीवी देखला से कि बुतरू बनते हीरो विलन, की रहते समाजों के दिन, भर दिन देखते कार्टून, अपने ते खाली अवगुण, हाँ घरों में जरूर बनते हीरो, माए बाप का समझते जीरो, नहीं जाने छे रेडियो, नहीं जाने छे आकाशवाणी, नहीं गो फेकरा, नहीं कोनो कहानी, नहीं जाने छे पूर्वजों के नाम, बिना डरो लचके न खड़े खर करे छे प्रणाम, नहीं जाने छे कहाँ आरो ने खेसारी, अंग्रेजी अतने देने छे सगरो टांग पसारी, नहीं जाने छे रहा, नहीं बूट, पिनिक घूमते खा

सूट, नहीं जाने से घर कौवा, नहीं बैलगाड़ी, नहीं कभी बच्चा मकरने से भैंसिया के सवारी, नहीं जलने से गुल्ली डंटा ने छूर, बिके नहीं है जे खरीद लेते लूर, खिसकी गले सरपट्टे हमरा सबके आधार, एबीसी जाने की होते जो ने पैबे संस्कार। अब मैं गजल सुना रहा थी, नहीं रजाई छे नहीं कंबल, नहीं कथू की छे ठिकाना, सांस पीबी मगर घुकरी के दिनों भीछे बिताना, देखते हालत दरकलो केकरा ने तरस आवे, सड़क पर ही टेंगना साथ है गुजारे से जनाना, अब पुलिसवा के मुँह से भी चुवे से लार पानी, जकरो तिरछी नजर से इज्जत हुए से बचाना, के भला करते गरीबों के बनी कब हितैषी, लोकतंत्र में सब मिली के हसोते से खजाना, अब गरीब अमीर के खाई बढ़ी रहलो छे यहाँ, आदमी सब बेमानी के यहाँ खोजे छे बहाना, भ्रष्ट लोगों से परेशान आजकल छे अंजनी भी, नियति आय बन ले दूसरा के छे सताना, रोज केना के बीते छे शाम सबठो मित्र वर के, दिल के छोरी बरो ने छुटका के बढ़ाना। दूसरा गजल छिके, जिंदगी भर बेतहाशा भागी रहले आदमी, सिर्फ धन के वास्ते ही जागी रहले आदमी, आदमी के आजकल गुणधर्म सब बदली गले, जानवर सन क्रूर कहने लागी रहले आदमी, आय नैतिकता फसल छे लोभ के जंजाल में, सत्य रो निष्ठा धर्म के त्यागी रहले आदमी, आदमी के रीत में प्रीत के अभाव छे, रोज पत्थर से दुआब मांगी रहले आदमी, सब महापुरुषों के अब आदर्श खारिज भै गले, चित्र हीरोइन के सगरो टांग रहले आदमी, जे गलत पर होठ खोले के यहाँ हिम्मत करे, ओकरे बेहरमी से गोली दागी रहले आदमी, अब जब समाजों की यहाँ रिश्ता विखंडित भै गले, आज रिश्ता के परिधि लांगी रहले आदमी। एक बाल कविता सुना रहलो छे जे आजकल इंग्लिश मीडियम में होइ छे, कितना बच्चा परेशान छे वही भी कविता छे। रिक्शा आगू खारो छे, रिक्शा आगू खारो छे, नुनवा अभी उघारो छे, भुतले लो छे अंगाटा, थरिया लेके आबे माय, नुनवा गीले दन दन, घंटी बाजे टन टन टन, रिक्शा आगू खारो छे, नुनवा अभी उघारो छे, कानों में बस्ता लटकन सोजो होय छे रिक्शा इन, रिक्शा सौसे शहर नचावे, नुनवा सीनी उधम मचावे, भागे रिक्शा सन सन सन, घंटी बाजे टन टन टन, रिक्शा यागु खारो छे, नुनवा अभी उघारो छे, सासो फूले देखी बस्ता, रेला में ना पैछे रास्ता, उबर खावर कछुआ चाल, हाल होले सबके बेहाल, जाम लगे छे छन छन छन, घंटी बाजे टन टन टन, रिक्शा यागु खारो छे, नुनवा अभी उघारो छे, खेलो के मिलो छे मौका, रिक्शो ओकरा लागे नौका, स्कूली में धरते गोर, खदबद खदबद करे कि दूर, स्कूल करे छे गन गन गन, घंटी बाजे टन टन टन, रिक्शा यागु खारो छे, नुनवा अभी उघारो छे, एगो बच्चा इत्ते हवा, दुए रोज में आवे लौवा, यह रंगता होय छे रोज, सीखी लै छे सबठो पोज, बात बात में भन भन भन, घंटी बाजे टन टन टन, रिक्शा आगु खारो छे, नुनवा अभी उघारो छे, कोई कहे छे हर पट्टी, कत्ते दे छे धर पट्टी, तैयो कुछ ने असराबे, खेलो में ने पछवाबे, घोरान की हनन हन, घंटी बाजे टन टन टन, रिक्शा आगु खारो छे, नुनवा अभी उघारो छे, खत्म करे छे रोजे पोथा, घर है जेना मौगी मोथा, अंतितलो सब बात बनावे, हिसाबों में नेता बहावे, मिनट मिनट में झन झन झन, घंटी बाजे टन टन टन, रिक्शा आगु खारो छे, नुनवा अभी उघारो छे, भकवेलो घर आवे बउआ, पट रहे छे ओकरो पौआ, छिरी आवे सब कपड़ा लत्ता, गिदनावे सब कागज गत्ता, सिकसली छे कन कन कन, घंटी बाजे टन टन टन, रिक्शा आगु खारो छे, नुनवा अभी उखारो छे। एक और बाल कविता सुनाई छे, आवे आवी गेले बुध, ये दो चार साल के बच्चा जब हो छे तब अपनो जे कहे छे माय से, आवे आवी गेलो बुध, छोड़े मम्मी बोतल दूध, पुरलो हमरो एक साल, खिलवे आवे भात दाल।

0: घर भेलो हमरा औत निकली गेलो सबठो दौत हमरा अपने बहकावे थरिया लेके नेलल जावे ढकरे छो जेना के बाबा रोज रोज दौड़े छो ढाबा दही होने हमरा पर ध्यान करबो दही चुरा जलपान खेबो तबनी अतो जान करबो भंसा के गुनगान आवे आभी गेलो बुध छोरे मम्मी बोतल दूध बेची दही आवे तो आकर की जरो छे नौकर चाकर गोरों में अले आओ ताकत बुले बुले लड़े में नहीं छे आपत अब फांदी जेबो चौकी खटिया चलो जेबो सब्जी हटिया भर दिन चुस्की ले छे माए आवे चाहियो हमरो चाय भर दिन चुस्की ले छे माए आवे चाहियो हमरो चाय गट गट पी है ठंडा पानी कंठ सुखे छे कानी कानी खाए पिए में होतो बीमार लेबो हमू सबके स्वाद आवे आवी गेलो बुध छोरे मम्मी बोतल दूध हट्टा बनबो खाए के खट्टा नुकाए नुकाए के पीबो मट्ठा पढ़बो त चकरे तो माथा घोकी लेबो सब तो गाथा डिग्री भेले सब बकवास झड़पी जेबो सभे क्लास आवे आवी गेलो बुध छोरे मम्मी बोतल दूध आवे हो रहलो छे लेट खेलबो अब हमे क्रिकेट धोनी नाकी उड़ेबो छक्का हो जेबे तो हक्का भक्का हमरा से पल्लो छो पल्ला जल्दी लानी दे तो बल्ला आवे आवी गेले बुध छोरा मम्मी बोतल दूध। और एक बाल कविता और सुनाई छे जे की जे बिछौने पर छे बच्चा साल दू साल के जे टुक टुक खाली आवे सुनवा वही छे टुक टुक आंखी सही आवे छे नुनुआ टुक टुक आंखी सही आवे छे नुनुआ झटपट मुंडी के हिलाबे छे नुनुआ हुकरी भूको समीप आवे छे नुनुआ क्या क्या क्या क्या की आवे छे नुनुआ औंठा चूसी भूख भगावे छे नुनुआ भोपूना की गाल बजावे छे नुनुआ गत रोज नानी के पुरावे छे नुनुआ उछली कूदी गीत सुनावे छे नुनुआ टेरा करी मुँह चमकावे छे नुनुआ सबके मनक हरसावे छे नुनुआ भर दिन लार चुवावे छे नुनुआ सिकचली से सबके लुभावे छे नुनुआ मुतियागी माय का चिरावे छे नुनुआ हरी घूरी फलिया घिनावे छे नुनुआ बरो छोटो के घरों ने लगावे छे नुनुआ बरो छोटो के घरों ने लगावे छे नुनुआ भोरे भोर सबे के जगावे छे नुनुआ लटपट लोगों से बतियावे छे नुनुआ खटपट होला पे खिसियावे छे नुनुआ टुक टुक आंखी से हियावे छे नुनुआ झटपट मुंडी के हिलावे छे नुनुआ।
1: बहुत ही बढ़िया बढ़िया हिने बाल कविता सुनेल के सच में हौ छवि हौ दृश्य जे छै कि सामना में लगे रहे कि एकदम प्रकट भए गेल रहे एकरा लिए कवि अंजनी कुमार शर्मा जी के बहुत बहुत धन्यवाद। आब ये एक लोकगीत अपने सनी के सुनबाबे छै एक कार्यक्रम के आखिर में।

करोर के उर जई है सुगनायक दिन

बहुत ही बढ़िया उर्जई हैं पिंजर सुगना एक दिन पिंजरवा के तोड़ के। सच में यह नियम छिके ये संसार का कि हर व्यक्ति के एक दिन जाना छे। अब आए यही कार्यक्रम के समय समाप्त हो छे। अब अपना सब हमरा दिए इजाजत। सबका गुरु के नमस्कार।

अंग दर्पण कार्यक्रम संपन्न हुआ। आकाशवाणी का ये भागलपुर केंद्र है। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में दिन के 2 बजने वाले हैं। कुछ पल में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार हमारे पटना केंद्र से।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अंशु अवस्थी से प्रादेशिक समाचार सुनिए। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा है कि राज्य की एनडीए सरकार लोगों के विकास के लिए लगातार काम कर रही है। श्री चौधरी ने आज मुजफ्फरपुर में स्मार्ट सिटी लिमिटेड के लिए लगभग 1,047 करोड़ रुपए की लागत वाली 900 से अधिक योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि नगर विकास और आवास विभाग की इन योजनाओं से शहर में सड़क, जल निकासी और पार्क समेत अन्य शहरी आधारभूत सुविधाओं का विकास किया जाएगा। बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए नामांकन का कल अंतिम दिन है। उपचुनाव को लेकर प्रचार प्रसार का शोर बढ़ गया है। प्रत्याशी लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं। भाजपा प्रत्याशी नीरज कुमार सिन्हा और जन सुराज के प्रत्याशी प्रशांत किशोर ने के कल नामांकन दाखिल करने की संभावना है। उपचुनाव के लिए अब तक 11 प्रत्याशियों ने अपने नामांकन पत्र दाखिल किया है। उम्मीदवार 16 जुलाई तक अपना नाम वापस ले सकते हैं। बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए मतदान 30 जुलाई को होगा, जबकि मतगणना 3 अगस्त को कराई जाएगी। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के मंत्री श्रवण कुमार ने दावा किया है कि बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में एनडीए की जीत पक्की है। श्री कुमार ने आज पटना में संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि चुनाव में राजद और जनसुराज की हार तय है। इधर राजद प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि बांकीपुर की जनता पार्टी प्रत्याशी रेखा गुप्ता के साथ है। श्री तिवारी ने कहा कि 3 अगस्त को चुनावी नतीजे चौंकाने वाले रहेंगे। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत 350 रुपए प्रोसेसिंग शुल्क जमा करने पर 5 लाख रुपए का ऋण मंजूर होने का दावा करने वाले एक फर्जी स्वीकृति पत्र का खंडन किया है। पत्र सूचना कार्यालय की फैक्ट चेक इकाई ने इस पत्र को पूरी तरह फर्जी बताया है। पीआईबी ने स्पष्ट किया है कि माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी मुद्रा सीधे सूक्ष्म उद्यमियों या व्यक्तियों को ऋण नहीं देती। पीआईबी के अनुसार मुद्रा गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों, सूक्ष्म वित्त संस्थानों, सोसाइटियों, ट्रस्टों, लघु वित्त बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों जैसे वित्तीय संस्थानों को पुनर्वित्त सहायता उपलब्ध कराती है। पीआईबी ने लोगों से ऐसे फर्जी संदेशों से सतर्क रहने की अपील की है। शीर्ष समाचार एक अंतराल के बाद।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
0: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। प्रदेश में मॉनसून की सक्रियता से पिछले 24 घंटों के दौरान राज्य के अनेक भागों में बारिश का सिलसिला जारी है। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार सीवान जिले के कुछ स्थानों पर भारी बारिश रिकॉर्ड की गई है। जिले के मैरवा में सबसे अधिक 75.6 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई। वहीं पटना जिले में 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चली है। विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान मुजफ्फरपुर, वैशाली, किशनगंज, कटिहार, जमुई और बांका जिले के अनेक स्थानों पर बारिश का पूर्वानुमान जताया है। वहीं अररिया, भागलपुर, सुपौल, खगड़िया और मुंगेर जिले में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। नेपाल के तराई क्षेत्रों में भारी बारिश और उत्तर बिहार के कई क्षेत्रों में लगातार बारिश से गंडक नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। नदी का पानी पश्चिम चंपारण जिले के योगापट्टी प्रखंड के सिसवा गांव में कई घरों में प्रवेश कर गया है। जल संसाधन विभाग के कार्यपालक अभियंता बाढ़ और कटाव पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। इधर कोसी नदी के जलस्तर में भी बढ़ोतरी हुई है। इसे देखते हुए नदी पर स्थित बराज के कई फाटकों को खोल दिया गया है। पूर्व मुख्यमंत्री सत्येंद्र नारायण सिन्हा की जयंती पर पटना में राजकीय समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर पटना के श्रीकृष्णापुरी पार्क में राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सेवानिवृत्त सैयद अता हसनैन, मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और उपमुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी सहित अन्य गणमान्य लोगों ने उनकी प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। अब आप सुनेंगे उर्दू बुलेटिन।

ये आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है। मीडियम वेव 205.76 मीटर यानी 1458 किलो हर्ट्ज पर और FM 100.1 मेगा हर्ट्ज पर। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में दिन के 2:15 होने वाले हैं। कुछ पल में आप सुनेंगे दोपहर समाचार, इसे हम अपने दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा कीजिए।

आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। भारत ने ओमान तट के पास वाणिज्यिक पोत GFS गैलेक्सी पर हमले की कड़ी निंदा की। 10 भारतीय सुरक्षित बचाए गए, एक लापता। क्षेत्र में वाणिज्यिक जहाजों पर लगातार हो रहे हमलों पर भारत ने चिंता जताई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौटे, इस दौरान कई समझौते हुए। गृह मंत्री अमित शाह ने अहमदाबाद में कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने निजी भविष्य निधि ट्रस्ट संचालित करने वाले प्रतिष्ठानों को अपनी स्थिति नियमित करने के लिए 6 महीने की माफी योजना शुरू की। विंबलडन टेनिस में आज शाम पुरुष सिंगल्स के फाइनल मुकाबले में यानिक सिनर और अलेक्जेंडर ज्वेरेव होंगे आमने सामने। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में इंग्लैंड और अर्जेंटीना ने सेमीफाइनल में जगह बनाई। अब समाचार विस्तार से। भारत ने आज ओमान तट के पास वाणिज्यिक पोत GFS गैलेक्सी पर हुए हमले की कड़ी निंदा की है। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि पोत पर सवार 11 भारतीयों में से 10 को सुरक्षित बचा लिया गया है, जबकि एक अब भी लापता है। मंत्रालय ने बताया कि ओमान में भारतीय दूतावास स्थिति पर लगातार नजर रखे हुए है और खोज तथा बचाव अभियान में ओमान के अधिकारियों के साथ समन्वय कर रहा है। विदेश मंत्रालय ने क्षेत्र में वाणिज्यिक जहाजों पर लगातार हो रहे हमलों पर चिंता जताई है। मंत्रालय ने तनाव तुरंत कम करने और कूटनीतिक समाधान के लिए जारी वार्ता को जल्द पूरा करने का आह्वान किया है। साथ ही अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुरूप क्षेत्र के समुद्री मार्गों पर निर्बाध और सुरक्षित नौवहन तथा व्यापार जल्द से जल्द बहाल किए जाने की बात कही है। अमेरिका ने आज सुबह ईरान पर फिर से हवाई हमले किए हैं। ये हमले ईरान द्वारा होर्मुज जलडमरू मध्य में एक वाणिज्यिक पोत पर हमला किए जाने के बाद किए गए। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने बताया कि हमलों में ईरान के लगभग 140 सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया। जवाबी कार्रवाई में ईरान ने बहरीन, कुवैत, कतर और संयुक्त अरब अमीरात को निशाना बनाते हुए मिसाइल और ड्रोन हमले किए। इस बीच ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड ने

0: सूचना तक होर्मुज जलडमरू मध्य को बंद करने की घोषणा की है और चेतावनी दी है कि यदि अमरीकी हमले जारी रहे तो वो भी जवाबी कार्रवाई करेगा। विदेश मंत्रालय ने वर्ष 2017 में जारी यमन यात्रा संबंधी अधिसूचना वापस ले ली है। ये अधिसूचना यमन में गृहयुद्ध और बिगड़ती सुरक्षा स्थिति के कारण भारतीय नागरिकों की यात्रा पर प्रतिबंध लगाने के लिए जारी की गई थी। हालांकि मंत्रालय ने परामर्श जारी कर भारतीय नागरिकों को यमन की गैर जरूरी यात्रा से बचने की सलाह दी है। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की सफल यात्रा पूरी कर स्वदेश लौट आए हैं। श्री मोदी की इस महत्वपूर्ण यात्रा की प्रमुख उपलब्धियों पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने 3 देशों के दौरे के पहले चरण में इंडोनेशिया का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने इंडोनेशिया के राष्ट्रपति के साथ द्विपक्षीय वार्ता की और दोनों देशों के बीच चल रहे सहयोग की प्रगति की समीक्षा की। दोनों देशों ने रक्षा, दुर्लभ खनिज, कृषि, समुद्री सुरक्षा और अंतरिक्ष जैसे कई क्षेत्रों में समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी को इंडोनेशिया का सर्वोच्च सम्मान बिंतांग आदिपूर्ण से सम्मानित किया गया। इस दौरे के दूसरे चरण में प्रधानमंत्री मोदी ऑस्ट्रेलिया पहुंचे, जहां उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री के साथ 3rd भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लिया। इस यात्रा के दौरान ऑस्ट्रेलिया से भारत को यूरेनियम की आपूर्ति का रास्ता भी साफ हुआ। साथ ही ऑस्ट्रेलिया सुपर ने भारत के नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड में 50 करोड़ ऑस्ट्रेलियाई डॉलर के निवेश की घोषणा की। अपने दौरे के अंतिम चरण में प्रधानमंत्री मोदी न्यूजीलैंड के ऑकलैंड पहुंचे। इस यात्रा के दौरान दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों ने भारत न्यूजीलैंड रणनीतिक साझेदारी की शुरुआत की घोषणा की। इसके अलावा दोनों देशों ने वर्ष 2030 तक आपसी व्यापार को दुगना करने का लक्ष्य तय किया। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि भारत हिंद महासागर और हिंद प्रशांत क्षेत्र में एक मजबूत और विश्वसनीय शक्ति के रूप में उभरा है। नई दिल्ली में पार्टी प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हाल की इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड यात्रा से भारत के रणनीतिक संबंध और मजबूत हुए हैं।
2: हम एक स्टेबिलाइजिंग फोर्स बनके इंडो पैसिफिक और इंडियन ओशन में आज उभर पाए हैं, इसी को प्रधानमंत्री एक साथ लेके आ रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने अपने परिश्रम से, अपने स्टेट्समैनशिप से अपने पॉलिसी को भारत में लागू करके बाकी देशों को दिखाया और सभी देशों ने एक्सेप्ट किया कि यस, लेट दिस बी द फ्रेमवर्क, लेट इंडिया डिसाइड द फ्रेमवर्क। हम इस फ्रेमवर्क पे एक लॉन्ग टर्म कोऑपरेशन, आप सोचिए ये कितनी बड़ी जीत है।
0: श्री संबित पात्रा ने कहा कि भारत और न्यूजीलैंड के बीच मुक्त व्यापार समझौता एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। उन्होंने बताया कि भारत और ऑस्ट्रेलिया ने रक्षा और सुरक्षा सहयोग पर संयुक्त घोषणा पत्र जारी किया है। इसके तहत दोनों देशों के युद्धपोत एक दूसरे के डॉक पर सर्विसिंग करा सकेंगे। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन EPFO ने माफी योजना 2026 शुरू की है। इसके तहत छूट प्राप्त भविष्य निधि ट्रस्ट चलाने वाले प्रतिष्ठानों को अपनी स्थिति नियमित करने का एक मुश्त अवसर दिया गया है। श्रम और रोजगार मंत्रालय ने बताया कि यह योजना 6 महीने तक लागू रहेगी। इसका लाभ उन प्रतिष्ठानों को मिलेगा जो आयकर अधिनियम 1961 के तहत मान्यता प्राप्त भविष्य निधि ट्रस्ट का संचालन कर रहे हैं। ऐसे ट्रस्ट में कर्मचारी भविष्य निधि का प्रबंधन सीधे EPFO के बजाय संबंधित प्रतिष्ठान अपने निजी ट्रस्ट के माध्यम से करता है।
3: EPFO की एमिनिस्ट योजना मान्यता प्राप्त भविष्य निधि ट्रस्ट चला रहे पात्र संस्थानों को नियमित करने का एक और अवसर प्रदान करती है। इस योजना के तहत वे अपने ट्रस्ट की स्थिति को पिछली तारीख से नियमित करा सकते हैं। इसका उद्देश्य ऐसे ट्रस्टों को एक समान वैधानिक व्यवस्था के दायरे में लाना और सभी लागू कानूनी प्रावधानों के पालन को सुनिश्चित करना है। कर्मचारियों के लिए यह योजना उनके नियोक्ता के भविष्य निधि ट्रस्ट की कानूनी स्थिति को लेकर अधिक स्पष्टता और भरोसा प्रदान करेगी। योजना के तहत निर्धारित राहत का लाभ तभी मिलेगा जब सदस्यों के खातों में निर्धारित अवधि के दौरान अंशदान जमा किया गया हो और उस पर EPFO की वैधानिक ब्याज दर के बराबर या उससे अधिक ब्याज दिया गया हो। छूट प्राप्त PF ट्रस्टों को नियमित किए जाने से भविष्य निधि लाभों का प्रबंधन अधिक सरल, सुव्यवस्थित और कानूनी प्रावधानों के अनुरूप होने की भी उम्मीद है। दीपेंद्र कुमार की रिपोर्ट के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: योजना का लाभ लेने के लिए पात्र प्रतिष्ठानों को संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय में ईमेल के माध्यम से औपचारिक आवेदन भेजना होगा। देश भर में आज व्यापक पौधारोपण अभियान चलाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में राज्य सरकार के व्यापक पौधारोपण अभियान के अंतर्गत 35 करोड़ पौधे लगाए गए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर से राज्यव्यापी पौधारोपण महायज्ञ का शुभारंभ किया। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि सतत भविष्य सुनिश्चित करने तथा पर्यावरण संरक्षण के लिए पौधारोपण बेहद महत्वपूर्ण है। नई दिल्ली में वृक्ष मित्र और पर्यावरण संरक्षण संकल्प कार्यक्रम में श्री चौहान ने कहा कि आज पूरा विश्व जलवायु परिवर्तन और पृथ्वी का तापमान बढ़ने को लेकर चिंतित है।
4: वर्तमान दर से अगर ग्रीन गैसों का उत्सर्जन जारी रहा, वनों की कटाई, प्रदूषण और प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक दोहन जारी रहा तो 2050 तक पृथ्वी को गंभीर पर्यावरणीय, आर्थिक और सामाजिक चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा।
0: गृह मंत्री अमित शाह ने आज अहमदाबाद में 405 करोड़ रुपए की लागत वाली नगर निगम की कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस अवसर पर श्री शाह ने एक पेड़ मां के नाम अभियान के अंतर्गत विशाल पौधारोपण अभियान का शुभारंभ भी किया। उनके लोकसभा क्षेत्र गांधीनगर में 1,25,00,000 से अधिक पौधे लगाए गए। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
5: गृह मंत्री ने बरगद, पीपल, जामुन और अर्जुन जैसे स्वदेशी पौधे लगाने पर जोर दिया, जिससे शहर के तापमान में 5% की कमी आएगी और भावी पीढ़ियों के लिए एक रहने योग्य पर्यावरण सुनिश्चित होगा। उन्होंने पर्यावरण स्थिरता में योगदान देने के लिए हर घर और आवासीय सोसाइटी से सोलर रूफटॉप अपनाने का भी आह्वान किया। इस पर्यावरण अभियान के तहत आज 101 नए ऑक्सीजन पार्क का भी उद्घाटन किया गया और उनकी जानकारी देने वाली एक विशेष ई बुक भी जारी की गई। सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देने के लिए AMTS और BRTS के बेड़े में आज 333 नई इलेक्ट्रिक बसें शामिल की गई, जिससे अहमदाबाद BRTS देश का पहला 100% इलेक्ट्रिक और शून्य प्रदूषण वाला बेड़ा बन गया है। अपर्णा खुंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने आज कहा कि देश के समाज सुधारकों की महान विरासत का सम्मान करना और उसे बनाए रखना हर नागरिक का कर्तव्य है। श्री राधाकृष्णन ने नई दिल्ली के द्वारका में मन्नम इंटरनेशनल सेंटर में मन्नम स्मृति मंडपम का उद्घाटन के अवसर पर यह बात कही। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत एक पौधा भी लगाया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। वियतनाम में भारतीय दूतावास ने आज बताया कि फू क्वोक द्वीप के निकट कल हुई नौका दुर्घटना में जान गंवाने वाले 15 भारतीय नागरिकों के पार्थिव शरीर हो ची मिन सिटी ले जाए जा रहे हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में दूतावास ने कहा कि वहां आवश्यक औपचारिकताएं पूरी होने के बाद पार्थिव शरीरों को भारत लाया जाएगा। इससे पहले दूतावास ने बताया था कि नौका दुर्घटना में घायल 15 भारतीयों को उपचार के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है और वे भारत लौट रहे हैं। दक्षिण की कोकिला के रूप में प्रसिद्ध रही गायिका एस जानकी अम्मा का कर्नाटक के मैसूर में एक निजी अस्पताल में निधन हो गया। वे 88 वर्ष की थीं।
6: छह दशक से अधिक लंबे अपने संगीत सफर में एस जानकी ने कन्नड़, तमिल, तेलुगु, मलयालम और हिंदी सहित कई भाषाओं में लगभग 48,000 गीतों को अपनी आवाज दी। अपनी बहुमुखी गायकी और भावपूर्ण प्रस्तुति के कारण उन्हें नाइटिंगेल ऑफ द साउथ के नाम से जाना जाता है। एस जानकी को सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायिका के लिए 4 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्राप्त हुए। इसके अलावा उन्हें 33 राज्य फिल्म पुरस्कार भी मिले। वर्ष 2013 में उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। इस जानकी के निधन से भारतीय फिल्म संगीत जगत ने एक ऐसी महान स्वर साधिका को खो दिया है, जिनकी आवाज आने वाली पीढ़ियों के लिए भी प्रेरणा और विरासत बनी रहेगी।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके निधन पर शोक व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि एस जानकी अम्मा का निधन संगीत और संस्कृति जगत के लिए अपूर्णीय क्षति है। कतर के पूर्व अमीर शेख हमद बिन खलीफा अल थानी का 74 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। उन्होंने खाड़ी देश को कूटनीति, मीडिया और निवेश के क्षेत्र में प्रमुख वैश्विक शक्ति के रूप में स्थापित किया था। उन्होंने अल जजीरा समाचार नेटवर्क की भी शुरुआत की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कतर के पूर्व अमीर शेख के निधन पर दुख व्यक्त किया है। और अब खेल जगत की खबरों के साथ है आनंद पाठक।
7: फीफा फुटबॉल विश्व कप के सेमीफाइनल मुकाबले तय हो गए हैं। पहला सेमीफाइनल बुधवार को फ्रांस और स्पेन के बीच खेला जाएगा।

0: रहेगा। ये मैच भारतीय समय अनुसार रात 12:30 बजे से शुरू होगा। दूसरा सेमीफाइनल गुरुवार को इंग्लैंड और अर्जेंटीना के बीच खेला जाएगा। इंग्लैंड ने नॉर्वे को अतिरिक्त समय में 2-1 से हराकर सेमीफाइनल में जगह पक्की की, जबकि अर्जेंटीना ने आज सुबह स्विट्जरलैंड को 3-1 से हराया। दोनों सेमीफाइनल मुकाबलों के विजेता 20 जुलाई को न्यूयॉर्क के न्यू जर्सी स्टेडियम में खिताबी मुकाबले में आमने सामने होंगे। सेमीफाइनल की दोनों पराजित टीमें 19 जुलाई को मियामी में तीसरे स्थान के लिए प्लेऑफ खेलेंगी। टेनिस में आज विंबलडन के पुरुष सिंगल्स और महिला डबल्स के फाइनल मुकाबले खेले जाएंगे। पुरुष सिंगल्स के फाइनल में विश्व के नंबर एक खिलाड़ी यानिक सिनर का मुकाबला जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़ेवरेव से होगा। ये मैच भारतीय समय अनुसार रात 8 बजे शुरू होगा। महिला डबल्स के फाइनल में चीन की गुओ हनयू और फ्रांस की क्रिस्टीना लादेनोविक की जोड़ी का मुकाबला कनाडा की ग्रेबियेला ड्रोवास्की और ब्राजील की लुइसा स्टेफनी की जोड़ी से होगा। ये मैच शाम 5:30 बजे खेला जाएगा।
1: और अब बात मौसम की। मौसम विभाग ने आज असम, मेघालय, बिहार, पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्र और सिक्किम में तेज वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, पूर्वी उत्तर प्रदेश, गंगा के मैदानी इलाकों, पश्चिम बंगाल और हिमाचल प्रदेश के अलग अलग स्थानों पर आज तेज वर्षा हो सकती है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, झारखंड, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, ओडिशा, पंजाब और उत्तराखंड में भी आज इसी तरह की स्थिति बने रहने का अनुमान है। अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत ने ओमान तट के पास वाणिज्यिक पोत GFS गैलेक्सी पर हमले की कड़ी निंदा की। 10 भारतीय सुरक्षित बचाए गए, एक लापता। क्षेत्र में वाणिज्यिक जहाजों पर लगातार हो रहे हमलों पर भारत ने चिंता जताई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौटे, इस दौरान कई समझौते हुए। गृहमंत्री अमित शाह ने अहमदाबाद में कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने निजी भविष्य निधि ट्रस्ट संचालित करने वाले प्रतिष्ठानों को अपनी स्थिति नियमित करने के लिए 6 महीने की माफी योजना की शुरुआत की। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: ये आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है। घड़ी में दिन के 2:30 बजे हैं। प्रस्तुत है श्रोताओं के पत्रों और ईमेल पर आधारित कार्यक्रम फिल्म संगीत। कार्यक्रम के पहले गीत के लिए फरमाइश आप सबों ने भेजी है। ये है मुजाहिदपुर पुरपटुला भागलपुर से मोहम्मद राजू खान, मोहम्मद जहांगीर खान, शबनम जानम, खैर भाई, रूबी बेगम, अरबाज खान, अयास खान और महमूदा खातून बसवारा पुंसिया से हैं। पवन कुमार सिंह, सचिन, छोटू राजा, सौरभ और गोलू जिला पश्चिमी सिंहभूम चाई बासा झारखंड से हैं। शिवा गोप, प्रेम गोप, प्यारी बहने, संगीता गोप, लिपि गोप, दीपाली सारिमपुर बक्सर से हैं। राज SD अंसारी, आसमा खातून अंसारी, आफ्ताब अंसारी और डॉक्टर सोनम आदिबा, नील कोटी मोहल्ला साहिबगंज भागलपुर से आप हैं। छोटू, सृष्टि, मोहित राज, सोनम, डॉक्टर सुभट कुमार मंडल, बड़ी खंजरपुर एकता रेडियो श्रोता संघ से हैं। गुलफराज आलम, शमा आरा और जमालुद्दीन नेपाली, धोरैया गंगदौरी से हैं। रामविलास, रविकांत, नीरज, अमर, मारुति, सावित्री देवी, कवित्री, तनुजा और सांदेव हरी, मुंदीचक भागलपुर से विशाल कुमार, ऋतिक रोशन और डोलू, और बैजानी चौबे टोला से हैं वर्षा, वंदना, कन्हैया, मेघा, साहब जी, शालू, सानू, निहाल, साक्षी, कोकू, चिकू, पवन, कुल्लू, मल्लू, सोनी, नीतू, मीतू, ईशु, अन्यू और आद्या। आप सबों ने सुनना चाहा है आशा भोसले का गाया ये गीत। फिल्म है उमराव जान, गीतकार हैं शहरयार और संगीतकार खयाम।

0: कार्यक्रम के अगले गाने की फरमाइश आप सबों ने भेजी है, यह है बूढ़ानाथ रोड भागलपुर से। भेजने वाले हैं गोपाल प्रसाद साह और इनके परिवार के सभी सदस्य। ग्राम बात से हैं राजू, सुमन, हिमांशु, छोटी बाबू, कंचन, डब्लू, बबली, पूचन और बबलू। और ये अगली चिट्ठी मेरे पास जो हमें दिख रही है वो है रिंगनी छत्तीसगढ़ से हैं ये दिनेश वर्मा और करुणा वर्मा। कटोरिया से हैं शहादत अली, सालिक शहादत, सिद्रा शहादत, शाहिना परवीन। चंपानगर से हैं शब्बीर अहमद, खालिद अंसारी, जाहिद अनवर और तारिक अनवर। बीकानपुर भट्टा रोड से हैं योगेंद्र प्रसाद राय, विभा राय, विप्लव वैभव, यामिनी, यशा। बांका से हैं रमेश साह और इनके परिवार के सभी सदस्य। गोराडी से हैं डॉक्टर हेमंत, जीवेश नंदन, नीलेश नंदन। ततारपुर से आप हैं नवा कौशर, अरशान अहमद, जरीस अहमद और हाशिक अहमद। यह है राजस्थान ज़िला झलवाड़ा से हर्षिता रामेश्वर, कान्हा सफलता, कपिल, मीनाक्षी सत्यनारायण, मनोहर बाई और प्रभुलाल भागरी। और साहिबगंज भागलपुर से हैं छोटू, सृष्टि, मोहित। आप सबों ने सुनना चाहा है फिल्म आखिरी रास्ता का यह गीत जिसे गाया है एस जानकी, मोहम्मद अजीज़ और साथियों ने। गीत आनंद बख्शी ने लिखे हैं, संगीतकार हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। आइए सुनते हैं आपकी फरमाइश पर ये गीत।
1: One, two.

0: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
1: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
0: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
1: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
0: डायल कीजिए 8700014242।
1: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
2: रानी अबक्का देवी का नाम सुना है तुमने? तिलका मांझी का नाम सुना है?
3: तिलका मांझी तो बहुत।
2: बख्शी जगबंधु का नाम सुना है?
4: बख्शी जगबंधु तो
3: हमने तो सुना है, लेकिन अगर आप लोगों ने नहीं सुना तो फिगर नॉट।
5: फ्रीडम फाइटर्स की कहानियाँ दिखाएंगे दूरदर्शन पर हर रविवार सुबह 11 बजे। क्रिश, ट्रिश और बाल्टी बॉय।
6: आप सुन रहे हैं आपके पत्रों और ईमेल पर आधारित फिल्म संगीत कार्यक्रम। श्रोताओं, आप भी अपने पत्र और ईमेल हम तक भेज सकते हैं। पत्र लिखने के लिए आप हमारा पता नोट करें। हमारा पता है फिल्म संगीत कार्यक्रम द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी भागलपुर, पिन कोड है 812001। और ईमेल आप हम तक भेज सकते हैं। हमारे ईमेल एड्रेस phairbhagalpur@gmail.com। तो हमें आपके पत्रों और ईमेल का रहेगा इंतज़ार। और कार्यक्रम के अगले गाने की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला गाना हम आपको सुनवा रहे हैं बप्पी लाहिरी और एस जानकी के स्वर में। फिल्म है साहेब, गीतकार अनजान, संगीतकार हैं बप्पी लाहिरी और फरमाइश आप सबों ने भेजी है। गांधी चौक रोपड़ पंजाब से हैं मीका वीरक, बलविंदर वीरक, जयतीग वीरक और हरदेव वीरक।

भानपुर भोपाल मध्य प्रदेश से आप हैं, राम गोपाल विश्वकर्मा, उमेश विश्वकर्मा, हिमांशु विश्वकर्मा और योगिता विश्वकर्मा, ये हैं। लालूचक भागलपुर से विष्णु कुमार चौधरी, सागर बादल चेतना, श्रीमती गायत्री देवी, रामदेव प्रसाद चौधरी, उत्तम नगर नई दिल्ली से हैं, गौरव मदन, अनिल मानसी और कविता अरोड़ा, किशनगढ़ अजमेर से हैं शैलेश झा, नौगछिया मुमताज मोहल्ला से आप हैं जफर अंसारी, शौकत अंसारी, अतहर अंसारी और इनके परिवार के सभी सदस्य। आइए सुनते हैं आपकी फरमाइश पर ये गीत।

कार्यक्रम के आखिरी गीत के लिए फरमाइश आप सबों ने भेजी है। कहलगांव पूरब टोला वार्ड नंबर 15 पांडे गली से हैं सुजीत रॉय, दीपांकर रॉय और तमाम रॉय परिवार। मोहल्ला सदर उद्दीन चक से हैं मोहम्मद शहजाद हाशिम, मोहम्मद हाशिम उद्दीन और इनके परिवार के सभी सदस्य। शैल बाग भागलपुर से हैं अभिजीत अभिषेक, सोनी भाविया, सोमो पारस, आदित्य, प्रीति और मोनी। सुल्तानगंज सीतारामपुर से हैं प्रमोद पासवान, सुष्मिता, सागर, दीपा, करीना और सूरज। भट्टा बाजार पूर्णिया से हैं लीनू, निशु और उनके मम्मी पापा। कुनौती बांका से बबलू डब्लू, नीपू और ललन। ग्राम कुड़रो से हैं पप्पू, लीली, अपरा, वैष्णो और कौशिक। आप सबों की फरमाइश पर हम आपको सुनवा रहे हैं अलका याग्निक का गाया ये गीत। गीतकार हैं आनंद बख्शी, संगीतकार MM करीम और फिल्म है जख्म।

इस गीत के साथ ही संपन्न होता है आपके पत्रों और ईमेल पर आधारित कार्यक्रम फिल्म संगीत। आकाशवाणी का ये भागलपुर केंद्र है। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में अपराह्न के 3 बजे हैं। प्रस्तुत है सामुदायिक गान शिक्षा पाठ उड़िया भाषा में।

0: बच्चों, आज मैं तुम्हें एक उड़िया गाना सिखाऊंगा। सीखोगे ना?
1: हाँ।
0: ये गाना एक भजन है जिसे श्री कालिंदी चरण पाणिग्रही ने लिखा है। किसने लिखा है?
1: श्री
0: कालिंदी चरण पाणिग्रही ने। अब इसे लिख लो।
2: क्यों नाम धरी, डाकिबी तुमको,
1: डाकिबी तुमको,
2: तुमे जे सर्वनाम,
1: तुमे जे सर्वनाम,
2: केऊ नाम धरी,
1: केऊ नाम धरी,
2: डाकिबी तुमको,
1: डाकिबी तुमको,
2: तुमे जे सर्वनाम,
1: तुमे जे सर्वनाम।
0: यह हुआ ध्रुपद। अब पहला अंतरा लिख लो।
2: आलोक तुमको,
1: आलोक तुमको,
2: नपारे देखाई,
1: नपारे देखाई,
2: तुमे जे देखाओ ताहारे,
1: तुमे जे देखाओ ताहारे,
2: आलोक तुमको,
1: आलोक तुमको,
2: नपारे देखाई,
1: नपारे देखाई,
2: तुमे जे देखाओ ताहारे,
1: तुमे जे
2: बेढ़ी चो,
1: तुमे जे बेढ़ी चो, कोटी विश्वर,
2: सबुरी भीतरे बाहरे,
1: सबुरी भीतरे बाहरे,
2: तुमे जे बेढ़ी चो,
1: तुमे जे बेढ़ी चो, कोटी विश्वर,
2: सबुरी भीतरे बाहरे,
1: सबुरी भीतरे बाहरे।
0: ये हुआ पहला अंतरा। अब दूसरा अंतरा।
2: लुहा होई तुमे,
1: लुहा होई तुमे,
2: झरी पड़ा परा,
1: झरी पड़ा परा,
2: केते नयनर कोणरु,
1: केते नयनर कोणरु,
2: लुहा होई तुमे,
1: लुहा होई तुमे,
2: झरी पड़ा परा,
1: झरी पड़ा परा,
2: केते नयनर कोणरु,
1: केते नयनर कोणरु,
2: हस होई पुणी,
1: हस होई पुणी, फूल परी फुट, केते जे नरम अधरु,
2: हस होई पुणी,
1: हस होई पुणी, फूल परी फुट,
2: केते जे नरम अधरु,
1: केते जे नरम अधरु,
2: केऊ नाम धरी,
1: केऊ नाम धरी,
2: डाकिबी तुमको,
1: डाकिबी तुमको,
2: तुमे जे सर्वनाम,
1: तुमे जे सर्वनाम।
0: अब हम गाना सीखेंगे। ये गाना खेमटा ताल में है। इसकी 6 मात्राएं हैं। ताल कैसा है ये पहले देख लो। इसमें एक ताली और एक खाली है।
2: एक दुई, एक दुई, वो एक दुई, एक दुई, एक दुई।
0: अब हम गाना सीखेंगे।
2: क्यों नाम धरी डाकी भी तुमको,

0: तुमने गाना सीख लिया, इसे अब तुम सब मिलकर गाओ देखें।
1: 1 2 3 4

0: तो अब यह गाना तो आपने सीख लिया, इसे याद रखना, भूलना नहीं। यह गाना तुम भी गाओ, अपने भाई बहनों से गवाओ तथा स्कूल में भी गाओ। नमस्कार।
1: आप सुन रहे थे सामुदायिक गान शिक्षा पाठ उड़िया भाषा में। आकाशवाणी का ये भागलपुर केंद्र है। मीडियम वेव 205.76 मीटर यानी 1458 किलोहर्ट्ज़ पर और एफएम 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में अपराह्न के 3:20 हुए हैं। प्रस्तुत है देशभक्ति गीत।

आप सुन रहे थे समूह स्वर में देशभक्ति गीत। ये आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में अपराह्न के 3:25 हुए हैं। अब से संध्या 5 बजे तक मीडियम वेव 205.76 मीटर यानी 1458 किलो हर्ट्ज पर और FM 100.1 मेगा हर्ट्ज पर आप सुनेंगे विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रम। संध्या 5 बजे से आप सुनेंगे आकाशवाणी भागलपुर के कार्यक्रम।

हम सुन रहे थे वापस फिल्म का यह गीत मोहम्मद रफी लता मंगेशकर की आवाज में, मजरूह सुल्तानपुरी के बोल और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत। आइए सुनते हैं अगला गीत हमारे अगले श्रोता की पसंद का, जो कि उन्होंने भेजा है उदयपुर से। ये खत हमारे पास आया है, एक पीला पोस्ट कार्ड जिस पर बहुत मोहब्बत से लिखा गया है कि ये गीत उन्होंने हमसे मांगा है। नाम है अशरफ खान, जब्बार मोहम्मद, नजीब खान और मंजू निम्मी, इन सब ने मांगा है ये गीत नाग मंदिर फिल्म से। बहुत खूबसूरत सा गीत है, आइए सुनते हैं।

0: हम सुन रहे थे नाग मंदिर फिल्म का यह गीत मोहम्मद रफी की आवाज में असद भोपाली के बोल और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत के साथ। और कार्यक्रम मनचाही गीत यहीं पर समाप्त होता है। आगे भी आपकी इसी तरह के पोस्ट कार्ड और चिट्ठियों का इंतजार रहेगा हमें। आप अपनी चिट्ठियां भेजते जाइए और हमारे साथ जुड़ते जाइए मनचाहे गीत कार्यक्रम में। नमस्कार।
1: मनचाहे गीत।

सूखा पेड़ किसी को छाया भी नहीं दे सकता, लेकिन यदि कोई स्वयं छाया बनकर सूखे पेड़ को धूप से बचाना चाहे तब उसे क्या करना चाहिए? इसी भाव भूमि पर खड़ा है ये सूखा पेड़, यानी आज का हमारा नाटक। तो आइए सुनते हैं लेखक और प्रस्तुतकर्ता लोकेंद्र शर्मा का नाटक सूखा पेड़।

0: रिकॉर्ड बजाकर कहाँ चले गए सब?
1: सब नहीं गए, मैं हूँ।
0: ओ जीजा जी, मगर आप ये अंधेरा करके क्यों बैठे हैं?
1: यूं ही बत्ती जलाने को मन नहीं किया। वैसे भी अंधेरे में संगीत अच्छा लगता है, नहीं?
0: अच्छा तो लगता है बाबा, मगर ये है गलत।
1: गलत क्यों? अरे ये बंद क्यों कर दिया?
0: गलत इसलिए श्रीमान जीजा जी, क्योंकि अब आप अकेले नहीं हैं। मैं घर आ चुकी हूँ। और बंद इसलिए किया क्योंकि आप शाम के समय सुबह का राग सुन रहे थे। देखिए देखिए खिड़की से बाहर।
1: भाई अब हम तुम्हारी तरह संगीत का हिसाब किताब तो जानते नहीं, बस कुछ सुनने को जी किया सो तुम्हारी अलमारी में से रिकॉर्ड निकाला और बजाने लगे। अब अकेले बैठे बैठे दीवार आखिर कब तक घूरे?
0: अकेले? मगर पल्लू कहाँ है?
1: कहकर तो गई थी कि क्लब जा रही है, मगर इस समय कहाँ है वो नहीं मालूम।
0: ओहो, ये अच्छी छुट्टियां बिताने आए हैं आप दोनों मियां बीबी नैनीताल। एक पूरब को जाता है, दूसरा पश्चिम को। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आता।
1: समझ में तो मेरी भी कुछ नहीं आता मीनाक्षी, इसलिए मैंने तो समझने की कोशिश ही छोड़ दी है। पर एक बात बताओगी?
0: पूछिए।
1: कुछ चाय वाय पिलाने का प्रोग्राम हो सकता है क्या?
0: ओ श्योर श्योर, क्यों नहीं। जरा कपड़े बदल लूं, दिन भर के पहनी हुई साड़ी है ना।
1: अच्छी बात है, तुम साड़ी बदल कर आओ, तब तक मैं किचन में जाकर गैस पर पानी रखता हूँ।
0: क्यों, आप क्यों? ये काम आपका नहीं है और आप तो वैसे भी मेहमान है मेरे।
1: मेहमान तो इस दुनिया में सभी हैं मीनाक्षी देवी।
0: बस बस रहने दीजिए, अब फिलॉसफी की क्लास मत शुरू कीजिए। वैसे ही दिन भर स्कूल में पढ़ा कर आ रही हूँ।
1: पढ़ा कर आ रही हो क्या, इसीलिए मुझे भी स्टूडेंट समझकर डांटोगी?
0: नहीं बाबा, मैं तो सिर्फ ये कह रही हूँ कि आप चुपचाप बैठिए, चाय मैं बनाऊंगी।
1: चाय भले ही तुम बनाओ मीनाक्षी, पर चुपचाप बैठने के लिए मत कहो, सारा दिन बीत गया है बिना बोले।
0: पल्लू क्या सुबह ही चली गई थी?
1: गई तो तीसरे पहर थी, मगर दो पहर तक सोई, उसके बाद घंटे भर नहाई, फिर घंटे भर श्रृंगार किया, फिर चली गई।
0: दिल्ली में भी ऐसे ही चलता है क्या?
1: कभी खुद ही आकर देखो ना।
0: यानी अगर खुद आकर देखना मुमकिन नहीं हो तो आप बताएंगे नहीं?
1: बताने जैसा कुछ है ही क्या?
0: सच कह रहे हैं, कुछ नहीं है।
1: देखो अब तुम चाय बनाने की बात को गोल मत करो।
0: ओह सॉरी, मैं चेंज करके ये आई
1: और मैं किचन में ये गया।
0: जाइए मगर कीजिएगा कुछ नहीं।
1: नहीं करूंगा बाबा, मगर वहाँ बैठकर तुम्हें चाय बनाते हुए देख तो सकता हूँ।
0: ओहो, मुझे देखने का प्रोग्राम है, तब तो जरा बन संवर कर आना पड़ेगा।
1: जैसे भी जाइए, अब आप जल्दी से जाइए और खटक से

0: पल्लू, क्या तुम सचमुच खाना नहीं खाओगी?
1: अरे कहा ना बाबा, मिसेस सिन्हा ने मुझे आज इतना इतना खिला दिया है कि लगता है कल तक भूख ही नहीं लगने वाली।
0: हम लोग तो तुम्हारा इंतजार कर रहे थे।
1: अच्छा,
0: मालूम है आज जीजा जी ने अपने हाथों से आलू के पराठे बनाए हैं।
1: ओहो, तो फिर अभी तक खाए क्यों नहीं?
0: तुम्हारा इंतजार कर रहे थे ना।
1: लेकिन प्रभाकर को तो मालूम था कि आज मेरा डिनर मिसेस सिन्हा के साथ है।
0: ये मिसेस सिन्हा से बड़ी जल्दी दोस्ती कर ली तुमने। अभी 10 दिन ही तो हुए हैं तुम्हें नैनीताल आए हुए।
1: अरे 10 दिन तो बहुत है यार, दोस्ती तो 10 मिनट में हो सकती है।
0: कभी कभी तो 10 बरस में भी नहीं होती पल्लू।
1: हाँ, नहीं होनी हो तो 10 जन्म तक नहीं होती। पर तू जाना, जाके पराठे खा ले, मैं तो जरा देर रजाई में बैठूंगी। हाथ पांव तो सुन हुए जा रहे हैं। बाप रे बाप, तेरी नैनीताल की रातें तो बहुत ही ठंडी हैं यार।
0: कॉफी पियोगी क्या?
1: कॉफी तो ऐसा कर, पहले तुम लोग जाके खाना खा लो।
0: मेरी एक बात मानिए जीजा जी।
2: कौन सी?
0: आप एक पराठे की दुकान खोल लीजिए, गर्मा गर्म आलू के पराठे। हा हा हा, मजा आ गया।
2: अच्छे लगे तुम्हें?
0: कह तो रही हूँ, मैं आपकी दुकान की परमानेंट ग्राहक बनने को तैयार हूँ।
2: ना बाबा ना, तुम जैसी पेटू को ग्राहक बनाकर दिवाला नहीं निकालना मुझे अपनी दुकान का।
0: क्यों क्यों क्यों?
2: क्योंकि तुम खाओगी उधार और मेरा हो जाएगा बंटा ढार।
0: बंटा ढार तो लगता है आज अपना हो गया है। ओ, इतना खा लिया है कि अब उठा भी नहीं जा रहा।
2: तुम मत उठो ना, बैठी रहो, कुछ देर और बातें करते हैं।
0: यहाँ डाइनिंग टेबल पर? मालूम है क्या टाइम हो गया है? 9 बज चुके हैं रात के, और सर्दी के मारे कुल्फी जमी जा रही है। चलकर बिस्तर में सोइए, पल्लू आपका इंतजार कर रही है।
2: करने दो, मैं भी तो करता हूँ रोज रोज उसका इंतजार।
0: 10 दिन हुए हैं आपको नैनीताल आए हुए, और इन 10 दिनों में एक दिन भी आप दोनों को नॉर्मल नहीं देखा। इतने खींचे खींचे, आखिर बात क्या है?
2: बात क्या है यही तो मेरी समझ में नहीं आता मीनाक्षी, कि आखिर बात क्या है। कभी कभी जिंदगी में बात बस इतनी ही होती है कि कोई बात नहीं होती। नो कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन बना रहे तो बात भी बनी रहती है, लेकिन
0: क्या हुआ? कुछ कह रहे थे आप, लेकिन क्या?
2: इस लेकिन के आगे कुछ नहीं है मीनाक्षी। जिंदगी में आदमी बहुत कुछ चाहता है, पर उसके रास्ते में जगह जगह लेकिन खड़े होते हैं। सारी कामनाएं एक लेकिन तक आकर रुक जाती हैं। मैंने भी शादीशुदा जिंदगी के बहुत मीठे मीठे सपने देखे थे। सपनों में प्यार के बादलों पर उड़ा था, रोमांस की हवाओं में तैरा था, लेकिन लेकिन सपना तो बंद आंखों

0: जीजा जी, अरे कहाँ है?
1: मैं यहाँ हूँ मीनाक्षी, छत पर।
0: ओ ऊपर, मैं आपके लिए कॉफी लाई थी।
1: यहाँ ऊपर ही ले आओ, आज की धूप बहुत मजेदार लग रही है।
0: वो तो होगा ही, आज संडे जो है, संडे तो सूरज का दिन होता ही है।
1: संडे छुट्टी का दिन भी तो होता है, जिसकी बदौलत तुम दिन भर घर में ही होती हो।
0: लेकिन मैं दिन भर घर में हूँ, क्या इसलिए आप ऊपर छत पर आ गए?
1: वो बात नहीं है, एक तो धूप में अच्छा लग रहा था, दूसरे तुम्हारे घर की इस छोटी सी छत पर आकर लगता है जैसे यहाँ से सारी दुनिया दिखाई देती है। देखो ना, दूर दूर तक बिछी चांदी के माथे वाली पहाड़ियां, पहाड़ियों से गलबैया डालकर लेटे रास्ते, और ऊपर इस कोने से उस कोने तक तना हुआ नीला कच्चा आसमान। सच मीनाक्षी, इतना बड़ा आसमान मैंने कभी नहीं देखा। शहर के आसमान को तो इमारतों की ऊंचाइयां खा जाती हैं, लेकिन यहां बैठकर जी करता है कि इस ढेर सारे आसमान की ताजी हवा को तलछट तक पी जाऊं।
0: लेकिन श्रीमान जीजा जी, फिलहाल आपको ये कॉफी पीनी है।
1: कॉफी? हाँ हाँ हाँ, लाओ लाओ लाओ। भाई, इस गुनगुनी धूप में गुनगुनी कॉफी जानते हो कैसी लगती है?
0: जैसे रजाई ओढ़कर पानी के टब में बैठे हो। भाई हंसो मत, अपन तो पहले ही कहते हैं कि कविताबाजी में बात करना अपने बस का नहीं। आपकी तरह कोई कवि या फिलोसफर तो है नहीं, हम बस सीधे सादे म्यूजिक टीचर हैं। सरगम चाहे सीधी गवा लो चाहे उल्टी, वही सात सुर आते हैं अपन को तो।
1: सात सुर तो बहुत हो गए मीनाक्षी, जीवन को सुरीला बनाने के लिए तो एक सुर का आना ही काफी है।
0: सुर का आना नहीं, सुर का मिलना।
1: हाँ, शायद ठीक कहती हो, मेरी बेसुरी जिंदगी का शायद यही कारण है कि मेरा और पल्लवी का सुर कभी मिला ही नहीं।
0: वो इसलिए क्योंकि कहीं ना कहीं तार ढीला है। पर मैं पूछती हूं, क्यों? आखिर इसका कारण क्या है?
1: कारण? मेरे और तुम्हारे सुर के मिलने का कारण क्या है?
0: जीजा जी,
1: मन के तार सितार के तारों की तरह मुर्दा नहीं होते मीनाक्षी, उन्हें कसने के लिए किसी औजार की जरूरत नहीं पड़ती।
0: मैं नीचे जाती हूँ।
1: ठहरो मीनाक्षी, मैं कुछ कहना चाहता हूँ।
0: कोई ऐसी बात मत कहिए जीजा जी, जिसे सुनना मेरे लिए गलत हो।
1: तुम मुझे नाम लेकर क्यों नहीं बुलाती?
0: यही कहना था?
1: नहीं, कहना तो पता नहीं क्या था, लेकिन ये बताओ, अपने मेहमान को नैनीताल की सैर नहीं करवाओगे?
0: जी,
1: मेरा मतलब है आज तुम्हारी छुट्टी है, मौसम भी अच्छा है, कहीं घूमने नहीं चल सकते क्या?
0: एक शर्त पर, कि आप मुझसे ऐसी वैसी कोई बात नहीं करेंगे।
1: इस शर्त पर नहीं करूंगा कि तुम मुझसे कोई ऐसी वैसी बात नहीं पूछोगी।
0: जाने दीजिए, शर्तों का बंधन कोई अच्छी बात थोड़ी है।

0: ओहो, बोर कर दिया आपने तो।
1: क्यों भाई?
0: पिछले घंटे भर से बस यही पूछे जा रहे हैं, इस पेड़ का नाम क्या है, इस फूल को क्या कहते हैं, ये किस चिड़िया की आवाज है, ये रास्ता कहाँ जाता है। इसके अलावा जैसे करने को कोई बात ही नहीं है।
1: है क्यों नहीं? चलो तुम्हारी बात करते हैं।
0: मेरी? मेरी कौन सी बात?
1: यही कि जब तुम यूं तुनकती हो तो।
0: तुनकती मतलब?
1: हाँ मतलब जब तुम यूं किसी बात पर चिढ़कर नाक सिकोड़ती हो
0: तो
1: बिल्कुल ऐसा लगता है कि जैसे तुम पहाड़न हो।
0: पहाड़न हो? ये क्या बात हुई? मैं तो हूँ ही पहाड़न। पहाड़ में पैदा हुई, पहाड़ में पली बढ़ी और पहाड़ में ही एक दिन देखना मरूंगी भी।
1: अरे भाई अब देखो ये मरने वरने की बात मत करो।
0: अच्छा बाबा नहीं करूंगी, तो भी रहूंगी तो पहाड़न ही, आपकी तरह पहाड़ थोड़े ही हो जाऊंगी।
1: पहाड़? मैं तुम्हें पहाड़ जैसा दिखता हूँ?
0: हाँ ज्वालामुखी पहाड़।
1: ज्वालामुखी पहाड़।
0: और नहीं तो क्या, जैसे ज्वालामुखी पहाड़ को ऊपर से देखकर कोई सोच भी नहीं सकता कि उसके भीतर कितनी आग है। आपका भी वही हाल है, भला इस तरह आपको हंसता देखकर कौन कहेगा।
1: कहो ना, रुक क्यों गई?
0: कुछ नहीं, ऐसे ही पागल हूं मैं भी।
1: नहीं मीनाक्षी, पागल नहीं हो तुम, तुम एक बेहद सेंसिटिव लड़की हो। ये पानी की धारा देखती हो, बिल्कुल इस पानी जैसी हो तुम, एकदम स्वच्छ निर्मल। कुछ बोलोगी नहीं?

0: बिल्कुल नहीं।
1: तो फिर?
0: तुम्हें ने कहा था कि ज्वालामुखी पहाड़ हूं मैं क्या करूं, कभी कभी अनजाने में ही भीतर का लावा फूट पड़ता है।
1: अच्छा पहाड़ साहब, अब इधर से आइए।
0: इधर? मगर पहाड़ जी, ये रास्ता तो लगता है कि किसी भूतिया हवेली की तरफ जाता है।
1: जी नहीं, ये शॉर्टकट है मंदिर का।
0: मंदिर?
1: हाँ, देवी का मंदिर। आइए।

0: कितना अच्छा लगता है ना, यहाँ इस समय रोज इसी तरह पूजा होती है। ये मंत्रों का स्वर, लोबान का धुआं, मंदिर का आंगन, सब कितना अच्छा लगता है, नहीं?
1: मुझे नहीं लगता।
0: अरे क्यों?
1: देवी देवताओं पर मेरा कतई विश्वास नहीं है।
0: एकदम नास्तिक है।
1: तो डल इन पत्थर की मूर्तों की जगह मैं इंसानों में ज्यादा विश्वास करता हूँ।
0: धीरे बोलो, अगर देवी ने सुन लिया तो नाराज हो जाएंगी।
1: फिर क्या करेंगी नाराज होकर?
0: वो जब देवी बैठी है ना घर में, पल्लू देवी, उसे आपके खिलाफ भड़काकर चंडी देवी बना देंगी। क्यों हंसे क्यों?
1: भाई पल्लवी को तुमने पल्लू देवी अच्छा कहा। क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रही हो?
0: कुछ नहीं, आप हंसते हैं तो अच्छा लगता है।
1: अरे हंस लेते हैं हम भी कभी कभी, जब तुम जैसा कोई साथ हो तो।
0: वो नीचे किसी की शादी हो रही है।
1: हाँ, घोड़े पर दुल्हन बैठी हुई है।
0: घोड़े पर नहीं, घोड़ी पर। और दुल्हन नहीं, दूल्हा। जिसे आप घूंघट समझ रहे हैं वो सेहरा है जनाब।
1: अच्छा भाई, वो इतनी दूर है ना, तो मैं समझा के। और क्या है कि अंधेरा है ना, तो पेट्रोमैक्स की रोशनी में कुछ ठीक से। वैसे एक सच्ची बात बताऊंगी तुम्हें, मुझे शादी ब्याह के बारे में कुछ भी पता नहीं है, इसलिए ये सेहरा और ये।
0: हद हो गई, आखिर आपने भी तो शादी की थी, घोड़ी पर बैठे थे या मोटर में?
1: कुछ और बात करूं मीनाक्षी।
0: सुबह से देख रही हूँ, जब भी आपकी और पल्लवी की शादी के बारे में कोई बात शुरू करती हूँ आप टाल जाते हैं। आखिर बात क्या है, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आता।
1: इतने दिनों से देख तो रही हो, अब भी क्या कुछ कहने पर ही समझोगी?
0: समझना नहीं, जानना चाहती हूँ।
1: जानकर क्या करोगी, और उससे होगा भी क्या?
0: होगा भी क्या, शायद ठीक सोचते हैं आप, मेरे किए क्या हो सकता है। और शायद इसीलिए आपकी शादी के बारे में सवाल करने का मुझे कोई अधिकार भी नहीं।
1: नहीं नहीं, वो बात नहीं है, आखिर तुम बहन हो पल्लवी की।
0: हाँ बहन हूँ, मगर मौसेरी, पल्लवी मेरी मौसी की लड़की है।
1: तो क्या हुआ, मैं तो तुम्हें सगा मानता हूँ।
0: सगा? सगा मानते हैं किस रिश्ते से?
1: रिश्तों के क्या नाम होना जरूरी है मीनाक्षी?
0: पता नहीं,
1: कहने को पल्लवी मेरी पत्नी है, पर पत्नी क्या ऐसी होती है? सच पूछो तो मेरी और पल्लवी की शादी दो परिवारों के बीच हुआ एक सामाजिक समझौता है। शादी के बावजूद पल्लवी ने अपनी जिंदगी में कुछ भी खोया नहीं, और मैंने शादी के बावजूद अपनी जिंदगी में कुछ भी पाया नहीं। इसे रिश्ता कौन कहेगा? तुम तो पल्लवी को शुरू से जानती हो ना मीनाक्षी।
0: नहीं तो, आपकी शादी से पहले शायद एक दो बार ही मुलाकात हुई थी। मैं तो बचपन से यहाँ नैनीताल में ही पली बढ़ी, और पल्लवी दिल्ली में रहती थी। बस कभी कभार मौसी के साथ यहाँ घूमने आती थी।
1: लेकिन पल्लवी तो कहती है कि उसकी और तुम्हारी खूब जमती थी।
0: जमती थी? पता नहीं।
1: देखो मीनाक्षी, तुमने पल्लवी के और मेरे बारे में पूछा है, तो एक बात मैं भी पूछूंगा।
0: पूछिए।
1: तुमने अभी तक शादी क्यों नहीं की?
0: जी
1: अपना सवाल दोहराऊं मैं?
0: बर्फ का पहाड़।

0: पंजर होता है प्रभाकर बाबू, बर्फ में फूल नहीं खिलते।
1: अगर बर्फ पिघल कर धरती में जज्ब हो जाए तो?
0: रोज रोज कहाँ होता है ऐसा, बस एक बार हुआ था मेरे साथ भी, कई बरस हो गए उस बात को। अब तो लगता है जैसे पिछले जन्म की बात है। तब मैं फर्स्ट ईयर में पढ़ती थी, पल्लवी गर्मियों की छुट्टी में नैनीताल आई हुई थी और उस बार वो

0: साले तू। हाय सच्ची मीना, तेरा गाना सुनकर तो साले दिल का इना मीना डिका हो जाता है।
1: रहने दे, झूठी तारीफ करने से जबान कट जाती है।
0: ओले, ये झूठी तारीफ है? मुझे अगर थोड़ा सा भी गाना आता ना तो हाय हाय हाय आशिकों की लाइन लगा देती।
1: छी, कैसी बातें करती है।
0: अरे तू क्या जाने, हाय हाय हाय सच कहूँ मीनाक्षी, अगर तो ये चश्मा ना लगाती और तेरे चेहरे पर ये दो चार चेचक वाले दाग नहीं होते ना, तो अपनी सुरीली आवाज की रस्सी में 20 लड़के बांध सकती थी तू।
1: लगता है तूने कई बांध रखे।
0: अरे अपन को साला गाना आता ही कहाँ है मीनाक्षी।
1: नहीं आता तो सीख ले।
0: नॉट ए बैड आइडिया। अच्छा चल ठीक है, इधर ला अपना सितार।
1: सितार नहीं, तानपुरा।
0: अरे हाँ हाँ यार, वो एक ही बात है, सितार कहो या तानपुरा, पर वो किधर गई तेरी सरगम वाली वो कॉपी, पता नहीं कहाँ रख देती है। हाँ ये रही। अब बोल बोल ना यार, कौन सा राग गाओ। अरे
1: नहीं,
0: बोल ना।
1: नहीं नहीं ये कॉपी मुझे दे।
0: हाँ मेरा राग भी तो सुन लेना कॉपी में से। अरे छुपी रुस्तम, कॉपी में ये फोटो किसका है?
1: मैं कह रही हूँ दे दे ये फोटो मुझे।
0: तो ये बात है बच्चू, इस फोटो का जादू है। हाय हाय मैं भी तो कहूँ, गले में से ऐसे ऐसे मीठे सुर कैसे फूट रहे हैं।
1: मैं कहती हूँ पल्लू फोटो मुझे दे दे।
0: अरे देती हूँ बाबा, देती हूँ ना, देख लेते तो अच्छी तरह से।
1: बस हो गया, अब दे दे।
0: हो गया, ये तो मैं समझ गई जाने मन, पर ये बता मेरी जान कब हुआ?
1: देख पल्लू
0: तू कब से चल रहा है तेरा ये मामला?
1: 3-4 महीने से।
0: अच्छा तो ये भी तो बता दे, कौन है ये तेरा बांका?
1: लड़का है।
0: अरे हाँ हाँ वो तो मैं भी देख रही हूँ, मगर इसका नाम क्या है?
1: शेखर।
0: शेखर तेरी क्लास में पढ़ता है?
1: सीनियर है।
0: ये भी गाना गाता है क्या?
1: नहीं, सुनने का शौकीन है।
0: हाय भाई है तो बहुत शानदार, पर असलियत में भी इतना खूबसूरत है कि सिर्फ फोटो में ही दिख रहा है?
1: देखकर बताना।
0: अरे यार यही तो मैं पूछ रही हूँ, कब मिलवाएगी?
1: शाम को।
0: अच्छा

0: कल तुमने अपनी जिस बहन से मिलवाया था, क्या नाम है उसका?
1: पल्लवी।
0: हाँ, पल्लवी। कितना नया नाम है। नहीं
1: नहीं, नया काहे को, हिस्टोरिकल है, चंद्रगुप्त मौर्य के जमाने का। जरा एक मिनट ठहरो ना।
0: क्यों, क्या हुआ?
1: देखो ना, यहाँ से नीचे झील कितनी सुंदर लग रही है, जैसे चांदी का फर्श हो।
0: मालूम है, अगर यहाँ से पाँव फिसल गया तो इस चांदी के फर्श तक पहुँचते पहुँचते हड्डी पसली के कितने टुकड़े होंगे।
1: अगर तुम साथ रहो तो फिर हो जाए टुकड़े, किसे परवाह है।
0: जाने दो, आगे चलते हैं।
1: ओके।
0: अच्छा ये बताओ कि अब वो यही रहेगी?
1: कौन?
0: अरे वही तुम्हारी हिस्टोरिकल बहन पल्लवी।
1: यहाँ? यहाँ क्यों रहेगी, वो तो दिल्ली में पढ़ती है ना, यहाँ तो सिर्फ छुट्टियां बिताने आई है।
0: मतलब महीने भर रहेगी?
1: हाँ महीने भर तो जरूर रहेगी, मगर क्यों?
0: नहीं ऐसे ही, बहुत सुंदर है तुम्हारी बहन, बिल्कुल जैसे अजंता एलोरा की गुफाओं से निकल कर आई हो।
1: सगी थोड़े ही है, मेरी मौसी की लड़की है।
0: आई नो, आई नो, सगी होती तो

0: तुम्हारी सूरतें इतनी अलग अलग थोड़ी ही होती। अच्छा एक बात बताओ, तुम ये बालों के जूड़ी से क्या बना लेती हो? पल्लवी की तरफ पोनीटेल क्यों नहीं करती?
1: तुम्हें अच्छी लगती है तो अब किया करूंगी।
0: कल झील में बोटिंग के लिए चले?
1: कल बोटिंग? लेकिन पल्लवी आई हुई है ना।
0: तो क्या हुआ, उसे भी साथ ले लेंगे। एक से भले तो दो से भले तीन।
2: अरे मीनू की बच्ची, अभी तक किताबों में घुसे हुए, कब तक पढ़ती रहेगी? तुझे मालूम है ना कल मैं दिल्ली वापस जाने वाली हूँ।
1: वो तो ठीक है पल्लू, मगर इम्तिहान भी तो सर पर है।
2: इसीलिए आजकल किताबों का कीड़ा बनी हुई है, बाहर आना जाना सब बंद।
1: तेरे पास भी तो फुर्सत नहीं है मेरे से बात करने की।
2: अरे यार मैं तो आई ही मस्ती मारने हूँ। और फिर अपना तो ये है कि मौज कर लो जितनी कर सकते हो, ये दिन कोई साले लौट कर तो आने वाले है नहीं।
1: अपना अपना नजरिया है, मैं तो समझती हूँ आने वाले कल को खुशनुमा बनाना हो तो आज थोड़ी मेहनत करनी ही पड़ती है।
2: अरे रहने दे यार अपनी ये फिलोसफी, हानि तो भूख आज लगी है और तू कहती है रोटी कल खाएंगे।
1: तुझे क्या पता, एक दिन उपवास रखो तो अगले दिन खाना खाने में ज्यादा मजा आता है।
2: अब छोड़ना छोड़ना यार ये बुढ़ियों वाली व्रत उपवास की बातें, आई डोंट लाइक ऑल दिस थिंग। इन्हीं बातों ने ना तुझे मरगिल्ली बना रखा है। देख देख देख, मेरे जैसे जिंदा दिल होती ना तो किताबों में आंखें गढ़ा कर चश्मे का नंबर बढ़ाने की बजाय रोज शाम को किसी बॉयफ्रेंड के साथ डिस्कवर डांस करती हुई नजर आती।
1: ना बाबा ना, ये सब ना मुझे अच्छा लगता है और ना ही शेखर को।
2: शेखर को? तो क्या तू अभी तक शेखर के नाम की माला जप रही है?

0: वो हंसी आज भी जैसे मेरे कानों में गूंजती है प्रभाकर बाबू, जैसे वो हंसी पल्लवी की नहीं मेरी तकदीर की थी, जो किसी श्राप की तरह मेरी जिंदगी पर छा गई। कितनी मूर्ख थी मैं, जो आईने में अपनी सूरत देखकर भी किस्मत पर शक नहीं हुआ मुझे। इतना भी ख्याल नहीं आया कि रेगिस्तान में सैर करने कोई नहीं आता, सब सब अजंता एलोरा जाना चाहते हैं।
1: सब नहीं मीनाक्षी, सिर्फ वही जो शेखर होते हैं, और शेखर हर कोई नहीं होता।
0: क्या पता कौन कैसा है, ये परखने की कभी हिम्मत ही नहीं हुई। बाद में एक अजीब सा डर था जिसे सीने में दबाए जिंदगी की डगर चुपचाप चलते चलते 35 बरस पार कर गई हूं, मगर पल्लवी की वो हंसी जैसे आज भी किसी प्रेत की तरह दोनों हाथों से मेरी गर्दन दबाए हुए है।
1: मेरी तरफ देखो मीनाक्षी, मेरी आंखों में देखो, क्या इन आंखों में तुम्हें कहीं झूठ की छाया दिखाई देती है?
0: कहना क्या चाहते हो?
1: दिल की पूरी सच्चाई से मैं ये कहना चाहता हूं मीनाक्षी कि तुम बहुत सुंदर हो।
0: प्रभाकर,
1: एक दिन पल्लवी ने तुमसे शेखर को छीना था, क्योंकि शेखर की नजरों में पल्लवी ज्यादा सुंदर थी, और आज उसी पल्लवी का पति तुम्हारी सुंदरता के आगे बिकने को तैयार है।
0: नहीं, सूखे पेड़ से तो किसी को छांव भी नहीं मिलती प्रभाकर बाबू।
1: मैं तुमसे कुछ मांग नहीं रहा हूं मीनाक्षी, मैं तो चाहता हूं कि अपमान के उस प्रेत से तुम्हें मुक्त कर दूं जिसने तुम्हारी गर्दन दबाई हुई है।
0: नहीं हो सकता। अपमान के जिस शहर ने मुझे जीवन भर तड़पाया है, उसे मैं पल्लवी के गले में कैसे उड़ेल दूं? पल्लवी आखिर मेरी बहन है, इस शहर को तो मैं किसी पेड़ की जड़ों में भी नहीं डाल सकती, कभी नहीं, कभी नहीं। ठूठ होकर जीने का दर्द,

0: सूखा पेड़। अभी आपने ये नाटक सुना। लेखक और प्रस्तुतकर्ता थे लोकेंद्र शर्मा।
1: ये है विविध भारती। उजाले

0: श्रोताओं नमस्कार। उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। फिल्मी पर्दे पर अनगिनत किरदार नजर आते हैं। जैसे हम याद रखते हैं हीरो को, वैसे ही विलेन को भी नहीं भूल पाते हैं। एक ऐसे ही कलाकार सदाशिव अमरापुरकर, जिन्होंने पर्दे पर विलेन का किरदार निभाकर हमारे दिल में पैदा किया एक खौफ, और दूसरी ओर अपनी कॉमिक अंदाज से ठहाका लगाने पर किया मजबूर। पर फिल्मी पर्दे से दूर कैसा था उनका व्यक्तित्व? पर्दे पर विलेन बनते सदाशिव अमरापुरकर असल जिंदगी में थे कैसे? उनका ये व्यक्तित्व हमारे सामने लाई हैं उनकी बेटी रीमा अमरापुरकर। उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में इन दिनों जाने माने अभिनेता सदाशिव अमरापुरकर की यादों के उजाले हमारे साथ बांट रही हैं उनकी सुपुत्री रीमा अमरापुरकर। आपसे बातचीत कर रहे हैं यूनुस खान। आइए सुनते हैं इस लंबी बातचीत की चौथी और अंतिम कड़ी।
1: पूरे एक दौर की हम बात कर रहे हैं, सदाशिव अमरापुरकर जी की पूरी यात्रा, जहां पर वो एकदम विलेन के रोल से कॉमेडी रोल्स की तरफ चले आते हैं और फिर वो मराठी सिनेमा में अपनी पसंद का अलग अलग तरह का काम कर रहे होते हैं। इतने बरस हो गए थे सिनेमा में काम करते हुए और कई बार एक एक जैसा काम भी हो रहा था। क्या ये वो दौर था 90s का जब उनके भीतर एक तरह का असंतोष आना शुरू हुआ था?
2: डेफिनेटली, क्योंकि ये किसी भी कलाकार के लिए एक ही तरह का काम करना ये एक बहुत बड़ी शिक्षा होती है। मराठी में शिक्षा कहते हैं, उसका मतलब है पनिशमेंट,
1: सजा।
2: सजा किसी भी संवेदनशील कलाकार के लिए ये एक सजा होती है। और रेस्टलेसनेस तो डेफिनेटली उनमें आ ही रहा था, पर जैसा मैंने कहा कि उन्होंने ये मान लिया था कि मुझे मेरा घर, मेरे परिवार के लिए अगर पैसे कमाने हैं तो मुझे ये करना है। ये उन्होंने एक पॉइंट पे मान लिया था और उन्होंने वो निभाया। लेकिन जैसे हमने बात की कि आउट एंड आउट कॉमेडी फिल्में करते वक्त वो वास्तु पुरुष दोगी जैसी फिल्में कर रहे थे, वैसे ही आउट एंड आउट कमर्शियल काम करते वक्त, विलनी का काम करते वक्त भी वो सामाजिक कामों में खुद को बहुत बिजी रखते थे। तो उनकी लाइफ में हमेशा ही दो ट्रैक चलते थे, हालांकि तीन ट्रैक भी कह सकते हो फैमिली का अगर ट्रैक पकड़ा जाए तो, वरना करियर वाइज अगर देखा जाए तो दो ट्रैक्स उनके चलते थे। एक तो जो कमर्शियल काम वो करते थे वो, और दूसरा जो सामाजिक काम करते थे वो। उन्होंने कभी सामाजिक काम की तरफ करियर के तौर पर नहीं देखा, उन्होंने हमेशा उसे एक जिम्मेदारी, एक कलाकार, और अगर मैं आज कुछ हूं, अगर मैं जो कहता हूं, मेरे कहने को अगर कुछ वजन है तो उसका उपयोग मैं किस लिए करता हूं, इसका उन्हें हमेशा ख्याल रहता था और वो करते थे। इसलिए वो सामाजिक कृतज्ञता निधि की हमने बात की, वो उनका चल रहा था। अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति में भी वो कार्यरत थे। मुक्तांगन डी एडिक्शन सेंटर जो है पूना में, जो पहला डी एडिक्शन सेंटर महाराष्ट्र में बना, उसमें भी वो इन्वॉल्व थे, बिकॉज डॉक्टर अनिल अवचट और सुनंदा अवचट उनके साथ उन्होंने वो किया था। डॉक्टर आनंद नाडकर्णी के साथ इंस्टीट्यूट फॉर साइकोलॉजिकल हेल्थ, सो मेंटल हेल्थ में भी वो काम कर रहे थे। फिर अहमदनगर में रेड लाइट एरिया में स्नेहालय करके एक संस्था है, आज भी है और बहुत अच्छा काम कर रही है, कि जो कमर्शियल सेक्स वर्कर्स है उनके बच्चों के लिए वो संस्था ने काम करने से शुरुआत की, और आज के दौर में लगभग 1,000-1,500 बच्चों का, जिनका शोषण अलग अलग तरीके से होता है, जो वायलेंस को फेस कर रहे हैं, उन बच्चों के लिए भी वो संस्था काम करती है और बहुत अच्छे से काम कर रही है। तो अहमदनगर के एक युवक ने जब ये डिसाइड किया कि मुझे ये काम करना है, एक ब्राह्मण युवक ने, ये कहना बहुत जरूरी है, बिकॉज ये अगेन 90

0: का दौर है जब जाति व्यवस्था बहुत स्ट्रांग थी, और जैसा मैंने कहा कि अहमदनगर एक बहुत ही पैट्रियार्कल सिटी है, आज भी है, तो उस वक्त एक ब्राह्मण लड़के ने ऐसी बस्ती में जाना और वहां की औरतों के साथ काम करना या उनसे बातचीत करना, ये बहुत ही खराब नजरिए से देखा जाता था। पर जब गिरीश वो काम कर रहे थे और पापा जब भी नगर जाते थे तो ये जो सारे काम करने वाले लड़के लड़कियां थे ये पापा को मिलने आते थे कि हम ये काम कर रहे हैं, हम ऐसा कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। तो जब गिरीश आया मिलने, तब गिरीश ने बताया कि मैं ऐसा ऐसा कर रहा हूं, और गिरीश पापा के कॉलेज प्रोफेसर के बेटे थे, तो इसलिए उन्होंने बताया कि ऐसा ऐसा है। तब पापा ने ये स्टेटमेंट दी हुई थी अहमदनगर के लोकल न्यूज़पेपर्स में कि देखो ये जो औरतें हैं ये भी हमारे समाज का ही एक घटक है, इसलिए इनके लिए काम करना कोई बुरी बात नहीं है। और फिर अहमदनगर में लोगों का नजरिया धीरे धीरे धीरे धीरे बदलने लगा। फिर पापा स्नेहालय के ट्रस्टी भी बने। फिर कुछ दिनों के बाद वो वहां से निकल गए, क्योंकि उन्होंने कहा कि अब संस्था अगर खुद से चल रही है तो मेरे होने की जरूरत नहीं है। पर वहां पर आमिर खान को ले जाना हो, सत्यमेव जयते में बिल्कुल पहले एपिसोड में स्नेहालय की केस स्टडी है,
1: बिल्कुल,
0: तो आमिर खान को ले जाना हो या श्याम बाबू को ले जाना हो, ऐसे बड़े बड़े लोगों को उस वक्त वो अहमदनगर लेके जाते थे, ये देखो ये ऐसे काम कर रहे हैं बच्चे, इनको ऐसे हम लोगों ने मदद करनी चाहिए, इस तरह से उनका काम चलता था। तो हालांकि कलाकार के तौर पर थोड़े से अनसेटल्ड वो हो रहे थे, क्योंकि उनकी जो रेंज थी, जिस तरह काम करने की उनकी क्षमता थी, उतना काम उन्हें उस वक्त नहीं मिल रहा था, उतनी रेंज का काम नहीं मिल रहा था, तो वो था, लेकिन वो इन कामों में खुद को बहुत ज्यादा बिजी रख रहे थे, तो इसलिए वो जो एक डिससैटिस्फैक्शन था वो सैटिस्फैक्शन में इस काम की वजह से वो बदल पा रहे थे।
1: बिल्कुल, इंपॉर्टेंट बातें हुई इस पूरे सेक्शन में, और मुझे लगता है कि अब यहाँ एक गाने की जगह बनाते हैं, तो कौन सा गाना होगा?
0: पापा का एक बहुत ही पसंदीदा गाना था, इतनी शक्ति हमें देना दाता।
1: वाह, अंकुश फिल्म का ये गाना, और यहाँ मैं दो क्रेडिट जरूरी तौर पर याद करना चाहूंगा, इसे अभिलाष जी ने लिखा था और कुलदीप सिंह का संगीत।
0: यस,
1: ये गाना सुनते हैं।

0: बहुत मजेदार बातें हुई हैं और चूंकि मेरा काम इन बातों को एक दिशा देना है, मुझे पीछे का एक सूत्र याद है जो हम छोड़ के चले आए थे कि इसकी बात आगे करेंगे, डॉक्टर श्रीराम लागू और सदाशिव अमरापुरकर के रिश्ते की बात।
1: हाँ जी, डॉक्टर लागू अब कैसे बताऊं मैं, जैसा मैंने मेरे शो में भी कहा हुआ है, उन्होंने कन्यादान प्ले जो था वो एक साथ किया,
0: तेंदुलकर वाला,
1: और उसमें डॉक्टर लागू को निर्देशित किया था पापा ने।
0: ये बहुत बड़ी बात बहुत मानी जानी बात चाहिए, क्योंकि डॉक्टर लागू एक दर्जे के कलाकार थे।
1: करेक्ट।
0: और उनको डायरेक्ट करना कोई आसान
1: और
0: काम,
1: उन्होंने मानना कि ये युवक है और ये मुझे डायरेक्ट करेगा
0: जी।
1: ये एक बहुत बड़ी कॉम्प्लीमेंट है, अपने आप में एक कॉम्प्लीमेंट है। तो उन्होंने उनके साथ काम किया हुआ था। जैसा मैंने कहा कि डॉक्टर लागू ऑलरेडी सामाजिक कामों में काफी बिजी थे और काफी इन्वॉल्व थे, तो ये जो बात है ना जो पापा के अंदर थी, पर उस बात को हवा देना, उस चिंगारी को हवा देने का काम डॉक्टर लागू और निरुभव ने किया कि हम कलाकार हैं और हमें समाज के प्रति हमारी जिम्मेदारी है, तो वो हमें निभानी है। तो इस तरह से पूरी तरह से उन्हें सामाजिक विचारधारा में और सामाजिक कामों में खींचने का काम डॉक्टर लागू ने किया, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरी बात मैं ये बताना चाहूंगी कि डॉक्टर लागू अगर नहीं होते तो शायद हमारा परिवार फिर से अहमदनगर, मतलब अहिल्यानगर हम जैसे कहते हैं, फिर से अहिल्यानगर जा चुका होता। क्यों? क्योंकि जब हमें वो किराए का घर छोड़ना पड़ा और पापा ने सीएम के पास जाकर, तेंदुलकर साहब ने उन्हें चिट्ठी दी थी, तो म्हाड़ा का घर भी अगर लेना हो तो आपको डिपॉजिट भरना पड़ता है, और उस समय इतना पैसा नहीं था पापा के पास कि हम घर ले पाए या डिपॉजिट भर पाए। तब पापा ने जाकर डॉक्टर लागू को रिक्वेस्ट की थी और उन्होंने 2 मिनट के अंदर लाके उन्हें वो पैसे दे दिए थे और वो फिर वो डिपॉजिट भर पाए और हमारा घर हो पाया। सो, ये एक बहुत बड़ी कॉन्ट्रीब्यूशन डॉक्टर लागू की हमारे परिवार के जीवन में रही है। और दूसरी एक जो बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो डॉक्टर लागू की वजह से पापा करने लगे और कर पाए, वो बात ये थी कि जो भी तुम कहना चाहते हो वो ठीक ठीक कहो। अभी ये हुआ है कि हम लोग काफी डिप्लोमेटिक हो गए हैं। एक समय था जब कलाकार, पॉलिटिशियंस सब लोग एक साथ बैठकर एक दूसरे की खिल्ली उड़ाया करते थे, आज वो दौर नहीं रहा। तो वो समय था जब डॉक्टर लागू ने पापा को बताया था कि तुम कलाकार हो, तुम नेशनल लेवल पर काम कर रहे हो, तुम काम बहुत करोगे, अपनी

0: हिस्ट्री ऐसी है कि आपको सबको खुश रखना होता है, पर ये कभी मत भूलना कि तुम्हें ये जो शोहरत मिली है, तुम ये जो मशहूर हुए हो, ये एक इट्स अ वेपन। इसका इस्तेमाल तुम्हें किस चीज के लिए करना है ये तुम डिसाइड करोगे। तो इसलिए कभी भी जब भी मौका मिले और सच की और तुम्हें खड़ा रहने का चांस मिले तो डेफिनेटली खड़े रहना। और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सीख जो डॉक्टर लाखू ने खुद के बर्ताव से भी हमेशा सामने लाई हुई है, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो वो डॉक्टर लाखू से सीखे पापा, ये बहुत जरूरी है। और मुझे खुशी इस बात की होती है कि ये जो सीखे पापा को मिली वो उन तक सीमित नहीं रही, वो उन्होंने अपने बर्ताव से, अपने जीवन से और अपनी बातों से हम तक भी वो पहुंचाई। मुझे याद है जब पापा गुजर गए थे और निखिल वागड़े जी आए थे कि श्रद्धा सभा में, और तब उन्होंने कहा था कि अब हम मराठी न्यूज चैनल्स अगर कुछ गलत हो रहा है तो ऐसा बड़ा नाम बचा ही नहीं है जो हमें रिएक्शन देगा,
1: विरोध करेगा,
0: जो विरोध करेगा या सामान्य आदमी को, नागरिक को क्या लग रहा है इसके बारे में बात करेगा। ऐसी आवाज ही नहीं बची है। तो ये मेरे ख्याल से एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी जो पापा ने बखूबी निभाई। जब अण्णा हजारे जी का अनशन उन्होंने किया था दिल्ली में, तब भी महाराष्ट्र में वो हवा बनाए रखने में पापा का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है उस वक्त।
1: घर की एक बात मुझे याद आई कि बाद के दिनों में ऐसा हुआ था कि किसी ने उनको सुझाव दिया था कि सरकार कलाकार कोटे से बड़े घर या बंगलो देती है, और उन्होंने रिफ्यूज किया था कि मैं वो नहीं कर सकता।
0: करेक्ट। सो पापा एक ऐसे कलाकार है, आई थिंक एक अकेले ऐसे कलाकार है जिन्हें म्हाड़ा के 2% में से घर मिला था। और जब उन्होंने खुद का घर खरीदा बाद में, तब उन्होंने वो म्हाड़ा को वापस कर दिया।
1: गजब।
0: हालांकि उन्होंने उसके लिए पैसे भी भरे थे, सब कुछ था, पर उनका कहना था कि जब मुझे जरूरत थी तब मुझे ये मिला था, तो आज किसी और को अगर ये जरूरत है तो ये जरूरत पूरी होना ज्यादा जरूरी है।
1: वो आराम से बेच सकते थे पैसे,
0: वो हाँ बेचकर वो ले सकते थे, बिकॉज हम वहां पर 7-8 साल रहे थे, तो जो 4 साल का लॉक इन पीरियड होता है वो भी निकल चुका था, तो वो बेच सकते थे, पर उन्होंने नहीं बेचा, उन्होंने वो वापस कर दिया।
1: गजब।
0: और इसी तरह उस समय अंधेरी में, जो अभी बहुत ही बड़ा एरिया है लोखंडवाला का, उस वक्त म्हाड़ा के छोटे छोटे छोटे छोटे बंगले हुआ करते थे जिनके काफी स्टूडियोज बन चुके थे। फिल्म इंडस्ट्री के काफी लोगों ने वहां पर वो छोटे छोटे म्हाड़ा के घर लेकर बहुत सस्ते में, क्योंकि मिल रहे थे, आज भी मौजूद है, और वहां पर बंगले में स्टूडियोज और ये सब बनाए। तो उस समय जो पापा के सेक्रेटरी थे उन्होंने कहा सदाजी हम भी ले लेते हैं, एक स्टूडियो बना देते हैं उधर, डबिंग स्टूडियो रहेगा, एडिटिंग स्टूडियो रहेगा, एक इनकम शुरू हो जाएगा। तो पापा ने कहा क्यों मैं करूं ये सब, अगर मैं ये करता हूं तो कोई और जो व्यवसाय के तौर पर करना चाहता है उसका मैं रोजगार छीन रहा हूं जो मुझे नहीं करना है। तो आपके बच्चों के लिए ये, वो मेरे बच्चों को मैं सिखा रहा हूं, वो बड़े होंगे उनको जितना कमाना है कमाएंगे, नहीं कमाना है नहीं कमाएंगे, दे डोंट नीड टू डू दिस, मैं उनके लिए जागीरें बना के नहीं रखूंगा, ये उनका एक कहना होता था। तो हाँ, उनको हर बार इलेक्शन जब भी होता था तो हर एक पॉलिटिकल पार्टी से उनको बुलावा आता था कि आप हमारी ओर से खड़े रहिए, आप हमारी ओर से। पापा ने कभी नहीं किया, या कोई भी सामाजिक संस्था में भी उन्होंने कोई भी डेजिग्नेशन नहीं लिया। तो वो कहते थे जो काम करना है ना वो मुझे बताओ, मैं करता हूं, मुझे ये डेजिग्नेशन नहीं चाहिए, आपने मुझे चेयरमैन बना दिया, सेक्रेटरी बना दिया, ये मुझे नहीं चाहिए, बिकॉज उसके साथ जो जिम्मेदारी आती है, लीगल हैसल्स आते हैं, वो कौन करेगा? बिकॉज जैसा मैंने कहा वो कलाकार थे,
1: बिल्कुल
0: उन्हें उनकी कला में रस था और जो अच्छा काम करना है उसमें रस था।
1: क्या बात है।
0: पापा का ये हमेशा कहना होता था कि मेरे बच्चों को जो भी कमाना है वो खुद के बलबूते पर वो कमा लेंगे, मैं उनके लिए जागीरें नहीं रखूंगा। और ये मेरे ख्याल से ये हमारी फैमिली का ही
1: ट्रेडिशन
0: है, बिकॉज मेरे दादाजी का भी यही कहना था कि मैं तो धर्मादाय कर दूंगा सब कुछ, तुम्हें देखो जो करना है, जैसे खुद का घर चलाना है तुम चलाओ, ऐसे ही पापा का भी था। तो जैसा मैंने कहा कि सामाजिक काम भी दादाजी करते थे, वही हमारे घर में चलता आया है, और ये भी वैल्यूज आई थिंक वहीं से आई हुई है।
1: बिल्कुल। रीमा जी, अब हम अपनी बातचीत के लगभग आखिरी मकाम पर आ पहुंचे जहां एक कठिन बात करनी है, और वो है कि जब सदाशिव जी बीमार पड़े और वो जो पूरा आखिरी दौर है, जाहिर है वो सब आपने देखा है, उन दिनों को थोड़ा याद करें।
0: उन दिनों को याद करना बहुत मुश्किल है। क्योंकि जैसा मैंने बिल्कुल शुरुआत में कहा था कि पापा की आवाज उनकी ताकत थी, और जब वो बीमार हुए और उनको इंटरस्टेशियल लंग डिसीज करके एक डिसीज होता है जिसमें अपने जो फेफड़े होते हैं उनकी फ्लेक्सिबिलिटी चली जाती है, तो सांस लेना बहुत मुश्किल होता है, और अगर आप में दमसांस नहीं है तो आप आवाज भी नहीं निकाल पाते, तो इसलिए उनकी आवाज धीरे धीरे धीरे धीरे कमजोर होती गई। और ये हम सब लोगों के लिए बहुत ही ट्रेजिक था। और उस समय उनकी उम्र ही क्या थी, ही वॉज 63, 63 साल के थे वो। आगे और बहुत 10-15 साल तो कम से कम वो काम कर पाते अगर
1: बिल्कुल
0: उन्होंने डिसाइड किया होता तो। लेकिन वो डिसीज हुआ, सांस लेने में तकलीफ होने लगी, इसलिए वो बात नहीं कर पाते थे। और वो इतने ऑनेस्ट थे कि उनके पास प्रोड्यूसर्स तब भी आते थे कि सदाजी ये छोटा रोल है आप ये कर दीजिए। कई कलाकारों को हम भी जानते हैं जो बीमार होते हुए भी काम करते रहते हैं, पर पापा उनको बोल देते थे कि देखो अगर तुम्हें लगता है मैं उसी तरह से बोलूंगा तो मैं बोल नहीं पाऊंगा, ये मेरी आवाज की हालत है। इस तरह से वो बहुत ओपनली और क्लियरली बात बताते थे। वो टाइम बहुत ही डिफिकल्ट हम सबके लिए था, बिकॉज आप सोचिए कि एक पहाड़ जैसा आदमी जिसको आपने बचपन से इतना स्ट्रॉन्ग, इतना क्या कहते हैं,
1: जुझारू
0: एक्चुअली और रियल लाइफ में भी सिर्फ पर्दे पर नहीं देखा हुआ है, वो जब आपके सामने धीरे धीरे धीरे धीरे वीक होता जाता है तो ये आप सहन नहीं कर पाते, ये आप एक्सेप्ट नहीं कर पाते। और ये हमारे पूरे परिवार के लिए एक बहुत ही तकलीफ वाला दौर था, पूरे 6 महीने जब वो बीमार थे तब। और मैं क्या कहूँ, तब लोगों ने, जैसा मैंने पहले कहा था कि जब आप मशहूर होते हो तो जैसे प्यार भी करते हैं लोग, तो लोग ये भूल जाते हैं कि वो भी एक इंसान है और उसकी भी एक निजी जिंदगी है। तो कुछ घटनाएं ऐसी घटी उस वक्त कि लोग ये चाहते थे, जैसे अभी धर्म जी के बारे में भी हुआ कि उनका आईसीयू में उनका वीडियो निकाला गया, तो वैसे लोग चाहते थे, मुझे चैनल से फोन आते थे कि रीमा उनका एक आईसीयू में एक फोटो निकाल के आप भेजो, ओके। या लोग मिलने आते थे, तो उस समय मोबाइल फोन्स कैमरा फोन्स आ गए थे, 2014 की बात कर रही हूं मैं, तो हम ये देखते थे कि जो भी अंदर जा रहा है पापा से मिलने उसके साथ कोई ना कोई हो, बिकॉज हम ये नहीं चाहते थे कि कोई फोन निकाले, वीडियो निकाले, फोटो निकाले और सर्कुलेट करे, बिकॉज वो एक कलाकार थे,
1: ये होना ही नहीं चाहिए।
0: हाँ,
1: कोई भी रीजन हो,
0: नहीं और नहीं, और लोग उन्हें जिस तरह से याद लोगों ने रखना चाहिए, वो उनकी बुलंद आवाज, वो उनकी पर्सनालिटी, उनकी एक्टिंग, उनकी दहशत जो पर्दे पे वो पैदा करते थे वो याद रखे, ये क्यों याद रखना है।
1: बिल्कुल,
0: जैसे इवन धर्म जी के बारे में जब हुआ तो इतना बुरा लगा कि ही मैन ऑफ द इंडस्ट्री,
1: राइट,
0: और उनको इतना वीक दिखाकर आप क्या हासिल कर रहे हैं।
1: देखिए, समय और उम्र किसी को नहीं बख्शते हैं,
0: exactly.
1: तो इसलिए उसका लिहाज कर लेना चाहिए और लोगों को अपनी प्राइवेसी में छोड़
0: देना चाहिए
1: ऐसे समय,
0: बिकॉज पापा अहमदनगर को अपने दिल में रखे हुए थे, तो ये बात तो पक्की थी कि उनका जो भी अंतिम संस्कार है वो अहमदनगर में होगा। तो जब हम अहमदनगर गए और हमारी जो हवेली है उसके आंगन में ही पापा को रखा हुआ था दर्शन के लिए, तो आप बिलीव नहीं करोगे, लगभग 2-3 किलोमीटर तक लाइन लगी हुई थी और वो लाइन रुकी नहीं रही थी। अल्टीमेटली एक 4-5 घंटे के बाद हमें ये डिसाइड करना पड़ा कि अभी बस अभी जाना जरूरी है, बिकॉज ऑलरेडी मुंबई से हम वहां गए थे, काफी समय बीत चुका था। तो उस समय लगभग 50-60 हजार लोग पापा के अंत्य यात्रा में थे, और वो सिर्फ अहमदनगर से थे ऐसा नहीं,
1: दूर दूर से आए थे।
0: और बाद के जो 15-20 दिन है, पूरा महीना जो हम लोग रखते हैं, पूरे महीने तक हमारी हवेली में लोग आ ही रहे थे, माथा टेक ही रहे थे और जा रहे थे। राजस्थान से लोग आए, पश्चिम बंगाल से आए, कहां कहां से आए, कुछ नहीं, सिर्फ उनके दर्शन करने हैं, बस उनकी हवेली देख ली, उनके बच्चों को देख लिया, उनके भाई को देख लिया, बस। ये जो लोगों की दुआ मिली है उस वक्त और ये जो प्यार हमें दिखा है, क्योंकि पापा बाहर जाकर किस किस के लिए क्या क्या करते थे ये कभी घर आकर हमें बताते नहीं थे, पर उसके बाद आज तक एक भी दिन ऐसा नहीं जाता कि पापा की याद किसी ने ना निकाली हो, कोई ना कोई वो याद निकालता ही है। और हर एक 2-3 महीने में ऐसा कुछ किस्सा पता चलता है कि अरे पापा ने ये भी किया था, पापा ने ऐसा भी किया था, ये भी मदद की थी। ये कब किया था उन्होंने?
1: गजब।
0: तो ये जो बात है कि जब इंसान, हम उसके बच्चे होते हैं, हम एक तरीके से उसको देखते हैं। वो मेरे लिए मेरे पिताजी थे, वो एक हीरो थे, बहुत महान कलाकार थे, अग्रीड। लेकिन मेरे लिए वो सिर्फ मेरे पापा थे। तो मेरी कुछ पर्सनल शिकायतें, कुछ रिलेशनशिप इश्यूज वो उनके साथ थे ही, मैं ना नहीं कहूंगी। लेकिन अब लगभग 11 साल हुए हैं और अभी 11 साल के बाद भी एक दिन ऐसा नहीं गुजरता जब उनका कोई रेफरेंस ना निकलता हो। तब आपको पता चलता है कि जो इंसान आप अपने पिताजी समझते थे वो सिर्फ आपके पिताजी नहीं थे,
1: वो पूरे संसार के लिए क्या थे।
0: एग्जैक्टली। और सिर्फ एक कलाकार भी नहीं थे वो, ही वॉज सो मच मोर। तो एक थोड़ी सी समझ आ जाती है कि फिर आप इंसान को एक ही दायरे में ना देखें, उसके कई मायने हैं और उन सारे मायनों में आपने देखना चाहिए इंसान को। तो ये आज भी मैं सीख रही हूँ उनसे, आज भी सिखा रहे हैं वो मुझे।
1: क्या बात है।
0: जैसे आज हम बातचीत कर रहे हैं तो मुझे लगा नहीं था मैं इतनी देर बात कर पाऊंगी। लेकिन जब एक एक एक एक एक एक आप पूछते गए तो ऐसी भी काफी सारी चीजें मैंने कही जो आज तक मैंने कहीं पर नहीं कही थी।
1: बिल्कुल।
0: अर्थात आकाशवाणी घर ही है हमारा। अभी मैं बहुत इमोशनल हो रही हूँ इसीलिए मुझे लगता है कि हमने रुकना चाहिए।
1: गाना बजाते हैं, रहे ना रहे हम महका करेंगे।

0: रीमा जी, उजाले उनकी यादों के कार्यक्रम ऐसा है जिसमें हम यादों के उजाले बिखेरते हैं। आपकी यादों में पिताजी किस तरह से सामने आए, ये सुनते हुए और आपसे बातें करते हुए लगातार मुझे सदाशिव जी की बातें याद आ रही थी जो विविध भारती में उनके आने पर उन्होंने बताई थी और बहुत दिलचस्प बातें थी। तो अब तक आपने पिताजी के बारे में बताया, अब संग्रहालय से पिताजी की आवाज निकालते हैं और हम सब मिलकर सुनते हैं सदाशिव अमरापुरकर की बातें। और हाँ, ये बातचीत हमारी साथी कांचन प्रकाश संगीत ने सदाशिव जी से की थी बरसों पहले, तो संग्रहालय से ये आया ऑडियो।
1: अब देखिए ना, मेरे मन में ऐसी घटा छाई है, ये प्रश्नों की घटा है।
2: अच्छा।
1: और पता नहीं अब ऐसा लग रहा है कि कौन सा प्रश्न बरस पड़ेगा। बताइए ना कि कहाँ से शुरू करें, कि आज आपकी अभी यहाँ से निकल के किस शूटिंग में आप जा रहे हैं, यहाँ से शुरू करें और पीछे चले जाएं, या आप अपने बचपन के दिनों को याद करेंगे?
2: नहीं, जो आपको अच्छा लगे वहीं से शुरू करें।
1: तो आप अपनी बचपन की ही याद ताजा करें और कुछ बताएं कि कैसे थे वे आपके दिन।
2: मैं एक बहुत छोटे से गांव में पैदा हुआ जिसका नाम अहमदनगर, ना वो शहर है ना वो देहात था। तो ऐसे छोटे से गांव में जब मेरा जन्म हुआ और बचपन बहुत अच्छा गया, खेल कूद में गया, स्कूल में जाते थे, लेकिन सिर्फ पास होने तक के मार्क हमें मिलते थे। और हमारी पिताजी की एक ही इच्छा थी कि बेटे तुम कभी फेल मत होना, हमेशा पास होना और ग्रेजुएट होना, उसके बाद नौकरी की जरूरत नहीं है, हम कुछ भी व्यापार वगैरह कर लेंगे, लेकिन शिक्षा जरूर लेना। तो ये बात अच्छी थी क्योंकि सिर्फ पास होना था तो 40-50 टका हमें मार्क्स मिलते थे और बचा हुआ टाइम हम खेल कूद में हर चीज में गुजारते थे और हर मौसम का मजा लेते थे। इमलियों के दिन आते थे तो इमलियां खाते थे, आम के दिन आते थे तो बहुत आम खाते थे, चुराते भी थे, हमारा खेत भी था उसमें भी बहुत दौड़ धूप करते थे।
1: और जामुन खा के आपका गला नहीं बैठ जाता था?
2: सब कुछ होता था। सब कुछ होता था। और हमारे जो रिश्तेदार थे वो और भी देहातों में रहते थे, छुट्टियों के दिन हम उनके साथ गुजारते थे, तो उनके साथ जंगल में घूमते थे, प्राणी पंछी सब देखते थे, बकरियों से खेलते थे, उनका दूध पीते थे। गाय को बछड़ा जब होता है तो क्या होता है, ये अनुभव मैंने वहां लिया और मुझे एहसास हुआ कि जब हम पैदा हुए थे तो हमारी माँ को कितनी तकलीफ हुई। तो इस तरह का बहुत अच्छा, बहुत जिसको हम समृद्ध कहेंगे, ऐसा मेरा जीवन बचपन का गुजरा है और उसका फल बहुत अच्छा है। आज जब मैं कहीं भी जाता हूँ, आउटडोर शूटिंग में जाता हूँ या किसी से मिलता हूँ, और जब उसको देखकर मुझे एहसास होता है कि ये कहाँ कहाँ से गुजरा होगा ये इंसान, ये आदमी, तो इंसान को समझना, इंसान को जान लेना और उसके बारे में सोचना, ये सब मुझे बचपन में मिला, ये संस्कार। मेरे पिताजी छोटे से व्यापारी थे तो हर तबके के लोग, हर जाति के लोग, हर धर्म के लोग हमारे घर आते थे। तो मैं मंदिर में खेला हूँ, मस्जिद में खेला हूँ, हमारे पीछे मस्जिद थी उसके पीछे आज भी चर्च है, तो वहीं उसी ग्राउंड पे खेला हूँ। तो मेरे लिए तो कभी धर्म की बात, जाति की बात आई नहीं, और ये एक बड़ा अच्छा संस्कार मेरे गाँव ने मेरे ऊपर किया है।
1: तो अहमदनगर ही में आपका स्कूल का जो है पूरी पढ़ाई लिखाई वहीं पे हो गई और आप इर्द-गिर्द जाते रहे हैं?
2: अहमदनगर में ही मेरी पढ़ाई हुई, स्कूल की, कॉलेज की, वहीं मैंने थिएटर किया, एक्टिंग की। मेरे गांव में पानी कम है लेकिन मेरा गांव छोटा है, मेरे गांव के रास्ते गलत है, मतलब खराब है। हमारा गांव चांद बीबी के नाम गांव से पुकारा जाता है और मुझे तो लगता है कि आज भी अगर चांद बीबी आई तो बिना हिचक के उसी रास्ते पर अपने महल में चली जाएगी। उस जमाने के रास्ते वहां पर है
1: जी।
2: और क्रिएटिव है
1: जी।
2: और मुझे हमेशा ये बात अच्छी लगी है कि मेरे जीवन के हर मोड़ पर मुझे ऐसे इंसान मिले जिसकी वजह से मेरा जीवन दिन ब दिन संस्कारित होते गया
1: जी। ये जो आपका संस्कारित बचपन है वही आपका साथ आज भी दे रहा है
2: जी,
1: है ना सदाशिव जी? इसी बात पे आपकी पसंद का कोई एक गीत हम क्यों ना सुन लें?
2: जी जी, जरूर सुनते हैं। पिक्चर का नाम है पोस्ट बॉक्स नंबर 999।
1: अरे वाह, बहुत पुरानी फिल्म है ये। हाँ
2: और उसके बोल है मेरे दिल में है।

0: आप बता रहे थे कि नगर में रह के ही आपने अपना कॉलेज का भी पूरा जो जीवन है वहाँ पे आपका आपकी शिक्षा दीक्षा वहाँ हुई और इसके साथ साथ वहाँ पे थिएटर भी आपने शुरू किया, वो सब बातें बताइए ना।
1: हाँ,
0: तो आप बहुत शरीर बालक रहे, बहुत शरारती रहे, तो कॉलेज में जाके क्या धमाके किए, क्या हंगामे किए?
1: नहीं, वैसे मैं शरारती तो स्कूल में था, मतलब पढ़ाई में दिल नहीं लगता था और मेरे दोस्तों को बताता था कि चलो यार घूमने चलते हैं। और मुझे याद है कि स्कूल में एक दिन मैंने पूरे स्कूल को मेरे साथ लेकर, मतलब हमारी पूरी जो कक्षा को लेकर मैं बाहर निकला था और दिन भर हम घूमकर शाम को घर लौटे थे।
0: पिटाई नहीं हुई थी?
1: और दूसरे दिन जब हम स्कूल गए तो सब बच्चों ने कहा कि सदाशिव ने कहा इसलिए हम निकले। और मैं, मुझे ऐसा नहीं लगा कि मैंने कुछ गलती की है। मैंने कहा हाँ हम बहुत बोर हो गए थे, पढ़ाई में दिल नहीं लगता था, तो ऐसा लगा थोड़ा घूमकर आए, इसलिए मैंने इनको कहा और ये सब मेरे साथ आए। हम बाजारों में घूमे, दुकानें देखी, फ्रूट्स देखे, फिर उसके बाद मिठाई की दुकानें देखी और शाम को घर लौटे, इसमें क्या बुरा है? लेकिन उस वक्त वो बहुत बुरा था, तो इसकी शिक्षा भी मुझे बहुत मिली। और स्कूल में मैं बहुत क्रिकेट खेलता था, मैं हमारी स्कूल की टीम में था, लेग स्पिनर था, बैटिंग भी करता था और क्रिकेट में इतना मन लगा हुआ था कि मुझे लगता था कि मैं
0: क्रिकेटर बन जाऊंगा।
1: और जैसे मैं कॉलेज में आया तो हमारे कॉलेज की एक परंपरा रही है, हमारे कॉलेज के गैदरिंग में वन एक्ट प्ले कॉम्पिटिशन्स होती है
0: जी।
1: आज भी चल रही है वो और बहुत अच्छी चीज है। उन्होंने बहुत बड़े बड़े कलाकार इस देश को दिए हैं, महाराष्ट्र को दिए हैं। तो उसमें एक बात थी कि बच्चे ही, मतलब विद्यार्थी ही एकांकी लिखते थे, विद्यार्थी डायरेक्शन करते थे और सब विद्यार्थी मिलकर वो वन एक्ट प्ले करते थे। काम करने का मौका मिला, हम कहेंगे कि वो बिच्छू एक्टिंग का उसी वक्त हमें काटा। और उसमें मुझे 10 रुपये का प्राइज मिला
0: उस समय।
1: हाँ, और तब से मेरा क्रिकेट छूट गया और मेरी एक्टिंग शुरू हो गई।
0: लेकिन बिच्छू ने काटा आपको और इसीलिए शायद आप विलन बन गए, ऐसा तो नहीं हुआ?
1: नहीं, नाटक करता रहा, धीरे धीरे नाटक में इतना मन लगने लगा, उसके वजह से पढ़ने लगा,

0: किताबें आईं, फिर किताबों में मन लगने लगा और दोस्त मिलने लगे। रात रात जागते रहे, बातें करते रहे। बहुत तूफानी दिन थे, हमारे पैर जमीन पर नहीं थे
1: जी।
0: हम मतलब हवा में दौड़ते थे।
1: और यूथ फेस्टिवल्स वगैरह में बहुत सारे प्राइजेस भी आपने जुटाए होंगे।
0: जी जी जी, यूथ फेस्टिवल में बहुत प्राइजेस लुटाए और हर बार हमारी एकांकी आती थी और उसको काफी प्राइजेस मिलते थे। और जब हमारी गैदरिंग होती थी तो हमें 20-20 25-25 प्राइज लेने स्टेज पर जाना पड़ता था और वो हमारे लिए सब खुशी की बात रहती थी
1: जी।
0: और इसी दौरान आज जो मेरी पत्नी है सुनंदा, वो तो स्कूल से हमारे साथ थी। प्रॉब्लम ये थी कि वो पहले बेंच पे बैठती थी, मैं लास्ट बेंच पे बैठता था क्योंकि वो बहुत होशियार थी और हम तो बस पिछड़े हुए जाति के लोग।
1: तो वो पलट के नहीं देखती थी।
0: उस वक्त उन्होंने नहीं देखा, लेकिन बाद में जब हम कॉलेज में इकट्ठा हुए तो धीरे धीरे उनका ध्यान हमारी तरफ गया, हमारे अंदर, हम दोनों एक दूसरे को चाहने लगे और बाद में हमने शादी भी कर ली। उस वक्त एक फिल्म आती थी जिसका नाम था आराधना और उसका गाना था मेरे सपनों की रानी कब आएगी।
1: तो आ तो गई। गीत सुन लेते हैं
0: जी।

0: वो वहां से आपकी शुरुआत हो गई। और कितने साल, मतलब जब आपके मन में ये सुगबुगाहट होने लगी थी कि मुझे ये सब कुछ पढ़ाई वढ़ाई नहीं करनी है, तो आपके मन ने ये भी ठान लिया कि आगे जाके एमए वगैरह नहीं करना है, कौन सा विषय था आपका?
1: नहीं, मैं बीए होने के बाद मैंने यही सोचा कि मैं थिएटर करता रहूंगा, प्रोफेसर बनूंगा, और प्रोफेसर बनने के बाद कॉलेज में थिएटर करूंगा, क्योंकि हमारे कॉलेज में मधुकर तोरणमल थे जो प्रोफेसर थे और थिएटर भी करते थे, तो वही आदर्श मेरे सामने था। इसलिए मैंने सोशियोलॉजी लेके पुणे गया, पुणे यूनिवर्सिटी में दाखिल हुआ, लेकिन उस वक्त भालभा केलकर के साथ पीडीए में नाटक करता रहा
0: जी।
1: रात भर जागते थे, पैदल यूनिवर्सिटी वापस आते थे, और एक दिन भी मैं क्लास में गया नहीं। उस वक्त हमारे हेड ऑफ द डिपार्टमेंट विद्याधर पुंडलिक जी थे, तो एक दिन पीडीए का एक प्रोग्राम था, तो उसमें उनको एज अ चीफ गेस्ट बुलाया था। तो मेरा नाम सुनकर उन्होंने कहा कि देखो, मुझे आपका नाम कुछ याद आ रहा है। मैंने कहा यस सर, आप मुझे सिखाते हो। मैं सिखाता हूं तुम्हें? मैंने कहा जी हाँ, लेकिन मैंने तो कभी क्लास में आपको देखा नहीं। हाँ बिल्कुल याद आया, मैं जो हर रोज ये लेता हूँ, हाँ रोल कॉल लेता हूँ, उसमें आपका नाम होता है, लेकिन आप कभी दिखे नहीं। तो मैंने कहा देखो, ये पीडीए में मैं नाटक कर रहा हूँ, रिहर्सलें करता हूँ, 11 बजे खत्म होती है, उस तब तक वो पीएमटी की बस नहीं होती, फिर पैदल यूनिवर्सिटी तक जाना पड़ता है, तो रात को लेट सोते हैं, तो सवेरे लेट उठते हैं, तो आपका पीरियड हो जाता है। अरे बोले, एक काम करो, नाटक करते हो अच्छा है, लेकिन बीच में कभी कभी आया करो, ताकि मैं आपका रोल कॉल में नाम लिख दूंगा। अच्छा लगा सुनकर। मैंने कहा सर क्या करूं, मैं नाटक के सिवा जी नहीं सकता। तो उन्होंने कहा ये अच्छी बात है, आप आगे बढ़िए। और थिएटर करने लगा, तो फिर उसके बाद उसी वक्त एक साल हुआ था, तो मुझे आपकी आकाशवाणी की तरफ से एज ए अनाउंसर नौकरी मिली।
0: वाह।
1: तो मैं परभनी में अनाउंसर था 6 महीने,
0: जहाँ पे कृषि विद्यापीठ है
1: जी। और फिर वो नौकरी छोड़ी मैंने, क्योंकि तबीयत खराब हो गई।
0: आपको कैसा लगता था जब माइक्रोफोन के सामने, मुझे लगता है उस समय शायद पहली बार आप स्टूडियो में अकेले बैठ के बात कर रहे होंगे श्रोताओं के साथ, तो कैसा लगा था आपको?
1: नहीं, अच्छा लग रहा था, लेकिन सामने पैक्स बैठते थे।
0: मतलब प्रोग्राम ऑफिसर
1: जी, और वो हमेशा ध्यान से सुनते थे कि मैं क्या कह रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ। और उस जमाने में गांव में हमें बड़ा इज्जत थी, नया होकर भी, क्योंकि वहाँ एक मराठी प्रोग्राम था आपली आवड़, और वो हम सुनाते थे,
0: मतलब जैसी आपकी फरमाइश पे जैसे होता है हेलो फरमाइश।
1: और उस वक्त हम अगर तेल लेने जाए किसी होटल में, चाय पीने जाए, तो वो होटल मालिक या तेल देने वाला या सब्जी देने वाला हमें कहता था साहब 2 रुपये कम दो, 1 रुपया कम दो, 8 आना कम दो, लेकिन हमारा नाम लो। तो हमें बड़ा अच्छा लगता था, हम कहते थे नहीं नहीं भैया, पैसे क्यों कम लेते हो, मेहनत करते हो,
0: लेकिन बहुत अच्छा लगता होगा नहीं ऐसा, जब समाज में लोगों से प्यार मिलता है, इज्जत मिलती है। तो लेकिन आपने छोड़ तो दी वो नौकरी
1: जी, छोड़ दी। और उस वक्त मैंने वहां पर एक फिल्म आई थी प्यासा,
0: पुरानी
1: बहुत पुरानी, गुरुदत्त जी की, और वो प्यासा फिल्म से मैं बहुत प्रभावित हुआ था।
0: ये प्यासा फिल्म से कौन सा गीत आपको बहुत अच्छा लगा?
1: मुझे सभी गीत अच्छे लगे।
0: अभी एक बहुत अच्छा काम करते हैं, जो आपकी पसंद का गीत हम सुनते हैं, हमारे श्रोताओं को भी बहुत अच्छा लगेगा
1: जी।
0: वो प्यासा फिल्म से आप कह रहे थे
1: जी जी
0: जी।

0: ये सदाशिव जी की आवाज। देखिए ना, इंसान चला जाता है, यादें रह जाती हैं, और विविध भारती में तो ऐसा होता है कि आवाजें रह जाती हैं, और कितनी ही आवाजों के उजाले हमारे स्टूडियो को और हमारे संग्रहालय को रोशन करते हैं। रीमा जी, बहुत सारी बातें हुई हैं और अब वो वक्त है जहां आपको एक बहुत जरूरी काम करना है। okay. और वो ये काम करना है कि एक बेटी होने के नाते कहना है कि इतने वर्ष बाद भी क्या हैं आपके पिता आपके लिए। हो सकता है कि ये एक ऐसी बात हो जो आप उनसे कभी ना कह पाई हूँ, अपने घर आकाशवाणी में आप कह पाएंगे।
1: एक बेटी होने के नाते मैं सबसे पहले तो ये कहूंगी कि मैं बहुत बहुत बहुत नसीबों वाली हूँ कि पापा जैसे पिताजी मुझे मिले। ये मैं इसलिए नहीं कह रही हूँ कि वो बहुत बड़े कलाकार थे, मैं ये इसलिए कह रही हूँ कि उन्होंने कभी भी हमें शब्दों में सिखाया नहीं। उन्होंने जो भी किया उसमें से वो चाहते थे और वो हमें खुला छोड़ देते थे कि तुम्हें जो सीखना है इसमें से सीखो। इसी वजह से आज भी, अभी उन्हें गुजरे हुए 11 साल हो गए, आज भी जब कोई घटना याद आती है, कुछ किस्सा याद आता है, तो जैसे जैसे मेरी उम्र बढ़ रही है वैसे वैसे उसमें से जो मैं सीखती हूँ वो मैच्योर होता जाता है, वो नया नया मुझे सीखने को मिलता है। और जैसा मैंने कहा कि मैं लकी इसलिए भी हूँ कि ये आज़ादी उन्होंने मुझे दी, हम सब बहनों को इनफैक्ट दी, कि आपको जो करना है वो आप करो, सिर्फ सही करो, कभी भी कुछ गलत मत करो जिससे किसी इंसान को दुख पहुंचे या कुछ गलत हो। उनका सिर्फ एक ही कहना होता था कि आप जो करते हो वो करने के बाद रात में जब आप घर पे आते हो और बिस्तर पर लेटते हो तो एक भी मिनट आपका ऐसा नहीं गुजरना चाहिए कि यार ये मैंने क्या किया। बिस्तर पर लेटते ही आपकी आंखें बंद हो जाए और आपको नींद आ जाए शांति से, ऐसा आपका बर्ताव पूरे दिन में हो, फिर वो आपके काम में हो, पर्सनल रिलेशनशिप्स में हो, कहीं पर भी हो। तो ये जो सीख है, ये जो पापा ने दी है, और ये उन्होंने, जैसा मैंने कहा कि शब्दों में नहीं, उनके खुद के बर्ताव से उन्होंने हमें सिखाई है। और साथ ही मैं ये कहूंगी कि उन्होंने जो लॉयल्टी उनके अंदर थी वो उनकी बीवी के प्रति उनकी लॉयल्टी थी, उनके पिताजी के प्रति उनकी लॉयल्टी थी, हम बच्चों के प्रति उनकी लॉयल्टी थी, वैसी ही लॉयल्टी उनके काम के प्रति भी उनकी थी। जितना जितना वक्त गुजरता जा रहा है उतना उतना मैं ये समझ पा रही हूँ कि उनके जीने के और उनकी पर्सनालिटी के काफ़ी सारे ऐसे पहलू थे जो जब वो थे तब

0: मैं समझ नहीं पा रही थी, तो मैं पापा से ये कहना चाहूंगी कि पापा आपने जो भी करके रखा है एज एन आर्टिस्ट एज अ फादर, वो शायद समझते समझते पूरी जिंदगी बीत जाएगी, लेकिन आज भी रोज कुछ ना कुछ ऐसा याद आता है, कुछ ना कुछ ऐसा मिलता है आपके कोई मीम हो या कोई रील हो कि एक ऊर्जा मिलती है आगे जाने की, और ये ऊर्जा हमारे साथ इतने प्रकार से है आपके होने से, ये नसीब वालों को ही मिलता है। एंड आई एम वेरी वेरी हैप्पी, आई एम वेरी ग्लैड कि आप मेरे पापा थे। मैंने बहुत झगड़ा किया हुआ है पापा के साथ, काफी बार हम काफी झगड़ते थे, लेकिन वो भी एक फ्रीडम उन्होंने हमें दिया था, उनसे झगड़ा करने का फ्रीडम। बुरा लगता है कि मेरी बेटी उन्हें मिल नहीं पाई, खैर वो अलग अलग तरीके से उसे मिलते रहते हैं।
1: क्या बात है रीमा जी, पिताजी इतने मशहूर कलाकार थे और उनका कामयाबी का झंडा बहुत बुलंद था, जब आपके सामने करियर का सवाल आया तो उनके सामने जाके क्या ऐसा कुछ हुआ कि मैं भी इंडस्ट्री में?
0: हाँ, एक्चुअली जैसा मैंने कहा कि मैंने मास्टर्स इकोनॉमिक्स में किया है पूना से, कोखले इंस्टीट्यूट से, तो पापा एकदम सेट थे कि अभी सबसे छोटी बेटी है वो इकोनॉमिक्स कर रही है, वो शायद उसमें पीएचडी करेगी, हो गया एवरीथिंग इज सेट। पर मैं जब पूना में जॉब कर रही थी तब पुणे इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल शुरू हुआ, और तब जाके मैंने राशुमान देखी अकीरा कुरोसावा की, और सिनेमा की ताकत जो है वो सडनली मुझे ऐसे लगा कि यार ये करना चाहिए। मैंने अगर पीएचडी किया तो मैं रिसर्च पेपर लिखूंगी, वो किसी मैगजीन में छप के आएगा, खत्म, ऐसा कुछ करना चाहिए। और मैंने जाकर पापा से ये कहा तो सबसे पहले तो पापा की रिएक्शन थी, पर तुझे तो इकोनॉमिक्स करना था। मैंने कहा हाँ करना था, लेकिन अभी मुझे ये करना है। तो फिर वो कहते थे फिर तू एक्टिंग कर ले। सर मुझे एक्टिंग नहीं करनी। क्यों एक्टिंग क्यों नहीं करनी? बिकॉज वो एकदम ऑफेंड हो गए कि एक्टिंग क्यों नहीं करनी तुझे। तब मैंने उन्हें वो औरंगाबाद वाला किस्सा याद दिलाया कि आपको याद है आप अजंठा नहीं देख पाए थे, तो मुझे कैमरा के सामने नहीं जाना है, मैं कैमरा के पीछे रह के जो भी करना है करूंगी। ओके
1: राइट।
0: तो फिर पापा ने कहा कि ठीक है, फिर आपको अगर करना ही है ये तो उसमें पहले आपको सीखना जरूरी है। फिर न्यूयॉर्क फिल्म एकेडमी में मैं जाकर सीख कर आई, फिर मैंने असिस्टेंटशिप की, और फिर मेरा करियर जैसे बनना था वैसे बना। पर अगेन जैसे पापा का सामाजिक एक ये रहता था, वैसा इनडायरेक्टली डायरेक्टली मुझमें भी है, तो मैं एनजीओ के साथ ज्यादा काम करती हूँ, कमर्शियली मैं थोड़ा कम काम करती हूँ।
1: बहुत सारी बातें पिताजी के बारे में हुई और कई ऐसे पहलू सामने आए जिनके बारे में शायद कभी किसी ने नहीं जाना था, तो इसीलिए सार्थक होता है ये कार्यक्रम जिसका नाम उजाले उनकी यादों के है। तो आपके जरिए यानी रीमा की यादों के जरिए पिताजी सदाशिव अमरापुरकर की यादों के उजाले आपने सजाए, बहुत बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम में आने के लिए और हमसे ये लंबी बातचीत करने के लिए।
0: थैंक यू सो मच। ऐसे होता है ना, कभी कभी डर लगता है कि हम बहुत ज्यादा उनकी बातें करेंगे तो रो देंगे, इसलिए कई बार हम खुद से भी दूर भागते हैं और बातें नहीं करते हैं, पर यहाँ बुलाकर वो पुराने दिन किस्से घटनाएं और पापा उनको याद दिलाया, थैंक यू सो मच। मुझे नहीं लग रहा था कि मैं इतनी देर बात कर पाऊंगी, लेकिन आपने जिस तरह से मुझसे बातचीत की है वो बहुत ही मुझे इट हैज बीन एन एनरिचिंग एक्सपीरियंस।
1: थैंक यू वेरी मच।
0: शुक्रिया।
2: उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में आप सुन रहे थे जाने माने अभिनेता सदाशिव अमरापुरकर की सुपुत्री रीमा अमरापुरकर से यूनुस खान की बातचीत की चौथी और अंतिम कड़ी। कार्यक्रम का संपादन नेहा शर्मा, विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता तेज श्री कामले। अगले सप्ताह फिर हाजिर होंगे किसी और मशहूर हस्ती की यादों के उजाले लेकर। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।

0: देश की सुरीली धड़कन विविध भारती से आप सुनेंगे छाया गीत बस कुछ ही लम्हों बाद।
1: मीडियम वेव 205.76 मीटर अर्थात 1458 किलोहर्ट्ज़ एवं एफएम बैंड के 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के भागलपुर केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 5:01 हुए हैं। पेश है युवाओं को संबोधित हमारा दैनिक कार्यक्रम युववाणी, प्रस्तुत करता है सौरभ कुमार।

0: हेलो नमस्कार, मैं हूं अवनीश और एक बार फिर से हाजिर हूं आपके पसंदीदा कार्यक्रम युववाणी को लेकर। उम्मीद करते हैं कि आपने कल का कार्यक्रम काफ़ी एंजॉय किया होगा और आज भी आपको भरोसा दिलाते हैं कि आज की शाम भी मनोरंजक होगा। हम यह भी उम्मीद करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे और बदलते मौसम का आनंद ले रहे होंगे और जुड़ चुके होंगे हमारे साथ न्यूज़ ऑन AIR मोबाइल एप्लीकेशन पर या मीडियम वेव 1458 किलोहर्ट्ज़ पर, FM बैंड के 101.10 पर आकाशवाणी भागलपुर से। साथियों, आज रविवार है और यह महीने का दूसरा रविवार है, तो अपने म्यूजिक लाइब्रेरी से हम खंगालेंगे पुराने कैसेट्स और एंजॉय करेंगे पुराने नगमे को। साथियों, आज का दिन विशेष चर्चा में रेत और धूल के तूफानों से लड़ने की अंतर्राष्ट्रीय दिवस पर चर्चा करेंगे। वहीं संविधान पर आधारित हमारा सेगमेंट होगा आइए जाने संविधान को। आज के महत्वपूर्ण सुर्खियों पर भी नज़र डालेंगे हमारे डेली सेगमेंट करंट अफेयर्स में। फिलहाल कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और आज 12 जुलाई को विश्वभर में रेत और धूल के तूफानों से लड़ने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। इसे संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा घोषित किया गया था। इसका उद्देश्य रेत और धूल के तूफानों से होने वाले पर्यावरणीय, स्वास्थ्य एवं आर्थिक प्रभावों के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। साथियों, ऐसा अनुमान है कि हर वर्ष लगभग 2 अरब टन धूल वायुमंडल में पहुँचती है, जो सांस संबंधी बीमारियां, खेती की क्षति, परिवहन बाधित होने और वायुमंडल की गुणवत्ता में गिरावट का कारण बनती है। साथियों, जलवायु परिवर्तन, मरुस्थलीकरण और वनों की कटाई से इन तूफानों की तीव्रता बढ़ती है, तो वृक्षारोपण, भूमि संरक्षण और जल संरक्षण जैसे उपाय इन समस्याओं को कम करने में सहायक हो सकता है। श्रोताओं, पर्यावरणीय चुनौतियां हमारे भविष्य की बड़ी चुनौतियां बनते जा रही है, इसलिए संसाधनों का संतुलित उपयोग और प्रकृति का संरक्षण आने वाली पीढ़ियों को सुरक्षित और समृद्ध भविष्य सुनिश्चित कर सकता है। श्रोताओं, आज की चर्चा में इतना ही, रुकते छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे आज के कार्यक्रम विशेष सेगमेंट पुराने नगमों के साथ।
1: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
2: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
1: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
2: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
1: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700001-4242 पर।
2: 8700001-4242।
3: जल्दी टिफिन पैक करो राजू, मोबाइल छोड़ो।
4: अरे दीदी, वो बैंक का नंबर चाहिए, रिफंड ही नहीं आया।
5: मिल गया, अब भी कॉल करता हूँ दीदी।
3: बिना नंबर जांचे अक्सर जालसाज बैंक की नकली वेबसाइट और फर्जी नंबर से पैसों की धोखाधड़ी करते हैं।
4: तो फिर सही नंबर,
3: बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट या तो कार्ड।
5: आपने तो बचा लिया दीदी।
3: काम से नहीं।
6: RBI कहता है,
7: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका।
0: वेलकम बैक, मैं हूं अवनीश और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम युववाणी आकाशवाणी के भागलपुर केंद्र से। साथियों, जैसा कि हमने कार्यक्रम के आरंभ में ही कहा था कि आज हमने पुराने कैसेट्स को खंगाला है पुराने नगमे के इस खास सेगमेंट के लिए, तो पहला सॉन्ग प्ले करते हैं आपके लिए फिल्म मुद्दत से, जिसे आवाज़ दी है मोहम्मद अजीज और आशा भोसले ने।

प्यार हमारा अमर रहेगा, याद करेगा जहाँ। दोस्तों पुराने गाने भी इतने ही अमर हैं जिसे पूरा जहाँ याद करता है। और तो एक खूबसूरत सा गाना और हो जाए लता मंगेशकर की खूबसूरत आवाज़ में, फिल्म आरजू से।

जहाँ जाइएगा हमें पाइएगा, अजी रूठ कर कहाँ जाइएगा। क्या बात है, क्या बात है, एकदम जीवंत महसूस हो जाता है लता जी की इस आवाज़ से, जो जिसे सदियों याद किया जाएगा और सदाबहार गाने तो पीढ़ियों तक सुने जाएंगे। फिलहाल हम सुनेंगे और पुराने नगमे में बहुत सारे और गाने को, लेकिन ये अगला गीत फिर लता मंगेशकर की खूबसूरत आवाज़ में।

अभी आप सुन रहे थे फिल्म फकीरा का यह गीत लता मंगेशकर की हसीन आवाज़ में। और आज युवाणी के एक खास सेगमेंट पुराने नगमे का यह आखिरी गीत प्रस्तुत है कुमार शानू और अलका याग्निक की दिलकश आवाज़ में फिल्म दिलवाले से।

साथियों, पुराने नगमे में आप सुन रहे थे पुराने गीत। अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और लिए चलते हैं आपको संविधान पर आधारित हमारे सेगमेंट आइए जाने संविधान में। आज चर्चा करेंगे आम नागरिकों के जीवन में संविधान की भूमिका। साथियों, जब संविधान शब्द सुनते हैं तो आपके मन में सबसे पहले क्या आता है? अदालत, न्यायाधीश, वकील या संसद? अगर आपका जवाब यही है तो आप अकेले नहीं हैं। हमारे देश में बहुत सारे लोग ऐसे मानते हैं कि संविधान सिर्फ कानून के जानकारों के लिए है, लेकिन सच इससे कहीं बड़ी है। असल में संविधान हम सबकी जिंदगी से जुड़ा हुआ है, सुबह घर से निकलने से लेकर अपने विचार व्यक्त करने तक, शिक्षा प्राप्त करने, नौकरी करने, मतदान करने और सम्मान के साथ जीवन जीने तक हर कदम पर संविधान हमारे साथ चलता है। सोचिए, अगर कोई आपसे आपकी जाति, धर्म, भाषा या लिंग के आधार पर भेदभाव करे तो क्या यह उचित है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि हर नागरिक कानून की नज़र में समान है। अगर आपकी बात सुनने का, माफ कीजिएगा, अगर आपको अपनी बात रखने का अवसर मिलता है, अपनी पसंद का पेशा चुनने की आज़ादी मिलती है या शिक्षा पाने का अधिकार मिलता है, तो यह केवल सुविधाएं नहीं हैं बल्कि संविधान द्वारा संरक्षित मूल्य है। और एक सवाल कि क्या संविधान हमें सिर्फ अधिकार देता है? तो बिल्कुल नहीं, संविधान हमें अपने कर्तव्यों को याद दिलाता है। देश की एकता एवं अखंडता बनाए रखने, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा, पर्यावरण का संरक्षण, वैज्ञानिक सोच अपनाना, सभी नागरिकों का सम्मान करना, ये भी हमारी जिम्मेदारी है। साथियों, युवा किसी भी देश की सबसे बड़ी ताकत है। आज का युवा ही कल का मतदाता, शिक्षक, वैज्ञानिक, उद्यमी या प्रशासनिक अधिकारी होगा या फिर जनप्रतिनिधि हो सकता है। इसलिए संविधान को जानना केवल एक विषय नहीं बल्कि एक जागरूक नागरिक बनने की पहली सीढ़ी है। याद रखिए, संविधान केवल न्यायालयों की किताब नहीं है बल्कि हर भारतीय के जीवन का मार्गदर्शक है। साथियों, आइए जाने संविधान में इतना ही। नज़र डालते हैं आज की महत्वपूर्ण सुर्खी पर। फुटबॉल विश्व कप में इंग्लैंड ने नॉर्वे को 2-1 से हराकर पहली बार 2018 के बाद से सेमीफाइनल में प्रवेश किया है। वहीं प्रसिद्ध पार्श्व गायिका एस जानकी जी का कल यानी 11 जुलाई को 88 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। साथियों, अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का, पर आपसे हमेशा की तरह एक रिक्वेस्ट जरूर है कि आप अपने फीडबैक हमें ज़रूर भेजें। तो फीडबैक भेजने के लिए आप हमें पत्र भी भेज सकते हैं, पत्र भी लिख सकते हैं। पत्र के लिए हमारा पता नोट कीजिए, युववाणी अनुभाग द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी आदमपुर भागलपुर, और हमारा पिन कोड है 812001। साथियों, पता एक बार फिर से, युववाणी अनुभाग द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी आदमपुर भागलपुर, पिन कोड है 812001। आपके हाथ में फ़ोन होगा, आप में मेल भी कर सकते हैं, तो अभी मेल कीजिए। हमारे ईमेल आईडी को नोट कीजिए, phairbhagalpur@gmail.com। ध्यान रखिएगा, phairbhagalpur@gmail.com। तो हंसते रहिए, स्वस्थ रहिए, यूं ही मुस्कुराते रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी भागलपुर को। और अब दीजिए अपने दोस्त अवनीश को इजाज़त। नमस्कार।

युवावाणी कार्यक्रम आप सुन रहे थे आकाशवाणी के भागलपुर केंद्र से। प्रस्तुतकर्ता थे सौरभ कुमार। 5:30 हो चुके हैं। पेश है फिल्म संगीत। आगाज करते हैं बलमा फिल्म से। आवाजें हैं आशा भोसले और कुमार सानू की।

दाग द फायर इस फिल्म का गीत सुनिए, उदित नारायण और अनुराधा पौडवाल की आवाज़ों में। गीतकार हैं समीर और संगीतकार हैं राजेश रोशन।

0: सुनो ना।
1: हाँ?
0: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
1: तो रोका किसने है? हाँ?
0: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
1: मुझसे।
0: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
1: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
0: पर उससे मेरा क्या फायदा?
1: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
0: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
1: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 8700014242।
0: ओ 8700014242। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700014242 पर।
2: दिल है तुम्हारा, इस फिल्म का शीर्षक संगीत सुनिए। अलका याग्निक और कुमार सानू की आवाज़ों में साथ में हैं उदित नारायण। गीतकार हैं समीर और संगीतकार हैं नदीम श्रवण।

0: जानते हैं इन वीरों की वीर गाथाएं लेकर कौन आ रहे हैं? हम यानी
1: क्रेश,
2: ट्रेश
0: और बाल्टी बॉय।
3: फ्रीडम फाइटर्स की कहानियां दिखाएंगे दूरदर्शन पर हर रविवार सुबह 11 बजे। क्रेश, ट्रेश और बाल्टी बॉय।

फिल्म संगीत आप सुन रहे थे आकाशवाणी के भागलपुर केंद्र से। अब आइए सुनते हैं कार्यक्रम विवरण। इसमें सुनिए हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले आज के शेष एवं कल के कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा एवं इनका प्रसारण समय। पहले आज के शेष कार्यक्रमों पर एक नज़र। अब से थोड़ी देर बाद यानी शाम 6 बजे से आप सुनेंगे ग्राम जगत खेती गृहस्थी कार्यक्रम। प्रस्तुत करता होंगे अतुल कुमार प्रियदर्शन। सात बजकर 7:10 पर लोक गीत सुनेंगे शिवशंकर कुशवाहा से। 7:52 पर सुगम संगीत के कार्यक्रम सुरलहरी में स्वामी प्रणवानंद को आप सुन पाएंगे। 8 बजे रजनीगंधा कार्यक्रम में फिल्मी गीतों का आनंद लेंगे। 9:30 पर आप सुनेंगे फिल्म संगीत। 10 बजे अखिल भारतीय रविवासरीय संगीत सभा हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। ये तो थे हमारे आज के शेष कार्यक्रम। अब कुछ जानकारियां हम आपको देंगे कल के कार्यक्रमों की। कल हमारी प्रातःकालीन सभा आरंभ होगी 5:48 पर। 5:55 पर आप सुनेंगे खेत खलियान कार्यक्रम में कृषि आधारित वार्ता। 6:05 पर चिंतन मनन का प्रसारण किया जाएगा। 6:10 पर भक्ति संगीत सुनेंगे वंदना कार्यक्रम में। 6:35 पर स्वास्थ्य चर्चा के कार्यक्रम में जल जनित रोग इस विषय पर भेंट वार्ता आप सुनेंगे। भेंट वार्ताकार होंगे डॉक्टर एनपी सिंह और भेंटकर्ता होंगे सचिन कुमार। 6:40 पर रामचरितमानस गान का प्रसारण किया जाएगा। 7 बजे से 7:55 तक मॉर्निंग इन्फॉर्मेशन प्रोग्राम गुड मॉर्निंग विक्रमशिला में आप सुनेंगे सुगम संगीत। सुलेखा कुमारी से संस्कृत वार्ता सुनेंगे विदेशु वर्षा वर्णनम। वार्ताकार होंगे डॉक्टर रतीश चंद्र झा। इसके अलावा फिल्म संगीत, रेल सूचना, मौसम सूचना, अखबारों की सुर्खियां और कुछ बातें होंगी इतिहास की। प्रस्तुतकर्ता होंगे अतुल कुमार प्रियदर्शन। कल के कार्यक्रमों में फिल्मी गीतों का आनंद लेंगे। 9:06 पर, 10 बजे, 11 बजे, 11:30 पर एवं दोपहर 2:30 पर। 9:30 पर सुगम संगीत सुनेंगे अभिजीत आनंद से। 10:30 पर लोकगीत सुनेंगे वीरेंद्र कुमार ठाकुर से। 12 बजे नारी लोक कार्यक्रम का प्रसारण किया जाएगा। प्रस्तुतकर्ता होंगी श्री पार्वती के। 12:30 पर NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम सुनेंगे उमंग। 1 बजे लोकरंग कार्यक्रम में लोकगीत सुनेंगे संगीता कुमारी एवं सविता देवी से। 1:30 पर घर आंगन कार्यक्रम का प्रसारण किया जाएगा। 3 बजे बांग्ला गान सुनेंगे जावेद अली, सपना मुखर्जी, कुमार सानू एवं मोहम्मद इरफान से। 3:20 पर देशभक्ति गीत सुनेंगे। 3:25 से शाम 5 बजे तक विविध भारतीय राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रम हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। कल शाम 5 बजे युवा सुनेंगे अपना पसंदीदा कार्यक्रम युववाणी। प्रस्तुतकर्ता होंगे सौरभ कुमार। 5:30 पर फिल्म संगीत सुनेंगे। 6 बजे ग्राम जगत खेती गृहस्थी कार्यक्रम का प्रसारण किया जाएगा। प्रस्तुतकर्ता होंगे अतुल कुमार प्रियदर्शन। 7:10 पर लोक गीत सुनेंगे नवल किशोर नबीना से। 7:52 पर सुगम संगीत के कार्यक्रम सुरलहरी में सुशील ठाकुर को आप सुन पाएंगे। 8 बजे रजनीगंधा कार्यक्रम में फिल्मी गीतों का आनंद लेंगे। 8:15 पर साप्ताहिक कार्यक्रम खेल खिलाड़ी का प्रसारण किया जाएगा। प्रस्तुतकर्ता होंगे मोहम्मद सरशार अहमद। 9:30 पर पब्लिक स्पीक कार्यक्रम हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। 10 बजे शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में कलाकार होंगे उस्ताद बिस्मिल्ला खां एवं साथी। 10:30 पर फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम पसंद आपकी का प्रसारण किया जाएगा। कार्यक्रम विवरण में आप सुन रहे थे हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले आज के शेष एवं कल के कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा एवं इनका प्रसारण समय।
ये आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है। शाम के 6 बजने को हैं। अब आप सुनेंगे हमारा दैनिक कार्यक्रम ग्राम जगत खेती गृहस्थी। प्रस्तुत करता होंगे अतुल कुमार प्रियदर्शन।

0: ग्राम जगत कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोता भाई बहनों को सोना का नमस्कार।
1: अरे सबका गरु के भी नमस्कार।
0: नमस्कार नमस्कार गरु भाई।
1: नमस्कार नमस्कार सोना बहन आरु सब सुनाव की हाल चाल छे। देखी रहल छ एकदम की लाइज कन्ने से लोटी फोटी के लछ की।
0: आज तो बहुत ही खास दिन है गरु भाई। आज जो 12 जुलाई है ना, संपूर्ण विश्व में रेत और धूल भरी आंधी से निपटने का अंतर्राष्ट्रीय दिवस है।
1: अच्छा,
0: आज जो 12 जुलाई है वो विश्व आशा दिवस भी है। और आज जो 12 जुलाई है ना गरु भाई, 1960 में आज ही के दिन तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय की स्थापना भी हुई थी। तो हुई ना आज का दिन बहुत खास।
1: बिल्कुल बिल्कुल आरु आय खुना अंतरराष्ट्रीय मलाला दिवस भी चके सोना
0: बिल्कुल
1: कहता दिवस एक साथ है तो कहना ना अपनो सनी बातचीत के माध्यम से अपनो श्रोता सनी का जे है सब दिवस के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी दे दो।
0: बिल्कुल देखिए जैसे कि अभी बारिश का मौसम है तो कुछ तो धूल से हम निवृत्त हो रहे हैं, लेकिन जब बारिश नहीं होता है गैरू भाई और पतझड़ और धूल का जो मौसम होता है, ये जो धूल भरी आंधी जो होती है उससे हमें काफी नुकसान पहुंचता है। ये सूखी मिट्टी और रेत के उड़ने से होने वाला जो नुकसान है वह है, ये फसलों को भी खराब करती है। और इससे निपटने के लिए संयुक्त राष्ट्र ने 2025 से 2034 तक का जो दशक है ना उसे एक दशक घोषित कर दिया। और ये आंधी आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से और पर्यावरणीय आयामों के भी एक गंभीर और व्यापक चुनौती पेश करती है। पर्यावरण में ये जो धूल भरी आंधी है इसके वजह से भी काफी हानि होता है। स्वास्थ्य की दृष्टि से देखिए तो आंखों को परेशानी होती है, जो गांव घर के लोग आना जाना करते हैं काफी दूर खेत खलिहानों में, तो धूल के कण आंखों के अंदर जाके आंखों में परेशानी करती है। और लगातार रेत या धूल अगर आंखों में जाते रहते हैं तो हमारी दृष्टि की जो शक्ति होती है वो लगातार क्षीण होती चली जाती
1: है। सही कह लो सोना बहन, आंख के तो आंख होबे कर लो, आरु जे अपनो सनी सांस ले छो नी।
0: बिल्कुल
1: है सांसक दौरान जे छे कि पूरा उ धूल सब कहां जते दुर्दास नी।
0: हाँ।
1: दुर्दा गर्दा बालू है सनी त कुछुन कुछ जैवन करता है तो ओकरा से भी फेफड़ा संबंधित बीमारी
0: हो होने की संभावना बढ़ जाती है। और साथ ही साथ जो त्वचा से संबंधित बीमारी है गैरू भाई, उसको तो बोलना ही भूल गए, मतलब जितने भी संक्रमण से फैलते हैं जो एलर्जी बोलते हैं जिसको हम, और ये धूल से जो एलर्जी होती है, सूखी मिट्टी से जो होती है एलर्जी, आंखों की एलर्जी, त्वचा की एलर्जी और अपने सांस लेने में जो एलर्जी होती है, छींकना खांसना, और जो आपने कहा कि फेफड़ों में धूल जम जाने से हमें भविष्य में बहुत बड़ी दमा की परेशानी भी हो सकती है। तो यह कृषि क्षेत्र में तो हानिकारक है ही, फसलों पर एक धूल का जो आवरण जम जाता है और उसे हटाने में हमें काफी परेशानी होती है। पानी के बारिश हमें नल चलाकर करना पड़ता है, जो मोटे मोटे नलकूप होते हैं वो पाइप से
1: फब्बारा देगा।
0: साथ ही जो सड़क के किनारे जो अपनी आजीविका चलाते हैं ना गैरू भाई, उनके लिए भी परेशानी का सबब हो जाता है, क्योंकि वो चाय बेच रहे होते हैं या कोई खाने पीने का सामान बेच रहे होते हैं तो ये जो धूल और आंधी होती है ना वो उनके खाने पर भोजन पर पड़ जाती है और लोग उसे खरीदना पसंद नहीं करते हैं।
1: सोना बहन है सनी तो बात जे छे छबे करे, अभी देख लो न है यह तो जून महीना में कहीं अन्हर तूफान आई लो।
0: बिल्कुल,
1: खास कर अपनो भागलपुर में एकदम सुता दिल के
0: मकई जो थी वो भी लगभग
1: पूरा खेत खेत जे छौ एकदम सूती गलो छलाई छे, आई की भाग ले एक बगलो से काटी गिराय देने छै न,
0: कृषि को काफी नुकसान पहुंचता है।
1: और जे कहलो आपने कि एकदम जे रोडक बगलो में सड़क के बगलो में जे छै
0: गरीब लोग जो अपना जो भी आजीविका के लिए अपना जो नाश्ता का दुकान करते हैं, झालमुड़ी का दुकान करते हैं, चाय का दुकान करते हैं और आने जाने वालों को कुछ साधन मिलता है भोजन का, तो उन्हें भी परेशानी हो जाती है।
1: छपरे उड़ी गेल सरपटेस लागे रे की हो गेले एकदम से कहनो हो गेले पूरे एकदम बांस सहित छप्पर उड़ी गेल
0: टीना का बहुत सारे पेट्रोल पंप में जो टीन का छप्पर था वो भी उड़ गया गहरे भाई तो बहुत कष्ट होता है ऐसे परिस्थिति में और ये बहुत गंभीर चिंता का विषय बन गया है आज के दिन में और ये जो पृथ्वी के प्राकृतिक जैव रासायनिक चक्रों का है ये एक अनिवार्य तथ्य है कि ये धूल भरी आंधी बीच बीच में आती ही है लेकिन मानव जनित कारकों से भी और ये धूल भरी आंधी होती है जलवायु परिवर्तन के वजह से भी यह धूल भरी आंधी आती है और जल जो उपयोग होता है वो निरंतर अगर हम शोषण दोहन करेंगे तो हमारे जल स्तर जो निरंतर घट रहे हैं उसके वजह से भी जो धूल भरी आंधी आती है साथ ही साथ ये वायु प्रदूषण में भी अपना महत्वपूर्ण योगदान करती है और इसके प्रभाव से पूरे दुनिया में कोई भी क्षेत्र अछूता नहीं है चाहे वह विकसित देश हो चाहे वह विकासशील देश हो और यह सतत विकास के लक्ष्यों में एक गंभीर चुनौतियां भी पेश कर रही है।
1: हाँ सही बात छे सोना भाई नेकरो तो बहुत बढ़िया जानकारी दिलो आरो देखो कि आय खनो छ विश्व अंतरराष्ट्रीय आशा दिवस यानी आशा मतलब कि हमरा पूरा विश्वास है कि कुछ अच्छा होते कोई मतलब कि नकारात्मक न सकारात्मक चीज
0: हमेशा हमें अपनी सोच को सकारात्मक ही रखनी चाहिए कि चाहे कितनी भी बुरी परिस्थिति क्यों ना हो
1: एक दिन एक दिन हमारे लिए अच्छा होते जे हो रहलो छे अच्छा हो रहलो छे जे होते हो अच्छा होते कहना देखो एकरो जब जब भी कोई बड़ो संकट आवे छे ना सोना बहन तो पूरा दुनिया के जे नजर होय छे पूरा संसार के भारत के तरफ होय छे अपना कोरोना काल ले लो कोविड वाला देखो कि पूरा दुनिया में जहां
0: निराशा के गर्त में डूब चुका था लगभग
1: वहाँ भारत के लोग दिनों 5 दा काढ़ा पीवी कोरोना भगाए दिल के
0: और गांव तो लगभग बहुत हद तक अछूता था गैरू भाई गांव के लोग बहुत आराम से घूम फिर रहे थे
1: बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं कर
0: शहरों में थोड़ी परेशानी थी
1: एक मतलब की छे कि एक आत्मविश्वास
0: कि हमें कोई परेशानी नहीं हो सकती है
1: तो ये छे कि दुनिया में अपनो जेना भारत जे छो देश छो जेना ऋषि आरो कृषि देश कहलो जाय छे उन्हें एक जे मजबूत सांस्कृतिक विदेश छे आरो हाउ संस्कृति में अपनो ये सभ्यता में जे छे कि एक आशा जे छे ये बहुत मजबूत
0: स्तंभ के रूप में है बिल्कुल
1: कि पूरा दुनिया सोचे छे की छे तो है हमरा सनी के हमेशा अच्छा सोच रखना चाहिए सकारात्मक काम करे सोच रखना चाहिए और अच्छा होते एहनो आशा और विश्वास रखना
0: और आशा से ही तो फिर आगे की रास्ता भी आसान हो जाता है
1: आसान हो छे ठीक
0: अगर मन ही टूट जाए तो मन के हारे हार है
1: मन के जीत है जीत
0: तो मन ही टूट जाए तो सब चीज टूट जाता है मन अगर मजबूत है आत्मविश्वास है ना तो रास्ता तो कहीं ना कहीं से निकल कर आ ही जाता है
1: बिल्कुल बिल्कुल सोना बहन आरो आज का अंतरराष्ट्रीय मलाला दिवस भी छिके मलाला यूसुफ जई जे पाकिस्तान के एक लड़की छिके ओकरा जैसे बहुत कम उम्र में उन्हीं वो बच्ची ना की करलके
0: कि शिक्षा के लिए बहुत अपना
1: क्षेत्र में अपना बहुत बड़ो योगदान दिए है जकरा की ओकरा नोबेल पुरस्कार से सम्मानित करलो गेले आरो हो लड़की ना सामाजिक कुरीति के खिलाफ आरो शिक्षा के ज्यादा से ज्यादा अपनावे के समर्थन में अपनो महत्वपूर्ण योगदान छके आय ओकरो जन्मदिन छके तो वही लेली पूरा दुनिया भर में जे छे कि ओकरा जन्म दिवस के मलाला दिवस के रूप में मनेलो जाय छे और साथे साथ अपने भी कहलो कि अपनो आन बान शान तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय जे कि पहिने भागलपुर विश्वविद्यालय के नाम से जानलो जाय रहे और जकरो कुलपति देश के राष्ट्र कवि दिनकर जी भेले जहां कवि गुरु रविंद्रनाथ टैगोर ने गीतांजलि के कुछ अध्याय के लेखन करल के
0: बिल्कुल
1: तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के आए जन्मदिन छिके यानी कि स्थापना दिवस 12 जुलाई 1960 का सोना बहन भागलपुर विश्वविद्यालय के नाम से एक स्थापना भेलो रहे और एक उद्देश्य भागलपुर तथा आस पास के क्षेत्र में उच्च शिक्षा के विस्तार करना प्रारंभ में एक अंतर्गत पटना विश्वविद्यालय से एक संबंधता प्राप्त रहे और बादों में आरो कई महाविद्यालय में शामिल कर लो गले लेकिन जैसे कि बाद के दिनों में यानी 1991 में भागलपुर विश्वविद्यालय के नाम बदली का तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय करी दे लोगले जे कि यहां करो अपनो तिलकपुर के रहे वाला वीर जबड़ा पहरिया जकरो बाद में नाम तिलक मांझी भेले जकरा बाद में कालांतर में तिलका मांझी के नाम से जानलो गेले अंग्रेज ने यही अपनो यहां जे तिलका मांझी चौक छ वहां जे बरगद छ बरगद गवाही छे अखनियो को वही बाबा तिलका के जे कि
0: फांसी
1: सैनिक सजा दे दिले रहे अंग्रेज है, तो हुनके नामों पर अपनो ये विश्वविद्यालय के नाम तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय बोले थे। गौरवशाली इतिहास छे सोना बहन, आरो आय हम सनी जे छे कि ओकरो स्थापना दिवस मना रहलो छे। ये जे विश्वविद्यालय छे ये अपनो पूरे क्षेत्र में कहो अंग प्रदेश यानी यहाँ से लेकर झारखंड एकरास भी बात ज्यादा बात करो तो बंगाल तक के विद्यार्थी जे छे तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय में 32 विषय के पढ़ाई करे के लिए यहाँ आवे छे। अन्य विभाग छे बहुत ही गौरवशाली इतिहास छे। आए सब विद्यार्थी के लिए, सब शिक्षक के लिए, सब शिक्षकेत्तर कर्मचारी के लिए,
0: बहुत गौरव की बात है गुरु भाई। हाँ।
1: सबके लिए गौरव के बात छे कि नहीं। एक बार सबका ये विश्वविद्यालय के सब लोगों से
0: बहुत बहुत शुभकामना, बहुत बहुत
1: शुभकामना। और हम सब अपन शुभकामना दे रहे
0: हम लोग उसी विश्वविद्यालय से पढ़कर आए हैं। हम भी गौरवान्वित है कि हम उसी विश्वविद्यालय के एक हिस्सा रह चुके हैं कभी।
1: जी जी जी सोना बहन, और अब की कार्यक्रम
0: इसी विषय पर हम बाह्य ध्वनांकन पर आधारित एक भेंट वार्ता अपने श्रोता भाई बहनों को सुनवाएंगे। और भेंट करता है सोनाली कर्मकार और संकलन करता है अतुल कुमार प्रियदर्शन। इस अंतराल के बाद
2: रानी बक्का देवी का नाम सुना है तुमने? तिलका मांझी का नाम सुना है?
3: तिलका मांझी तो बहुत।
2: बख्शी जगबंधु का नाम सुना है?
4: बख्शी जगबंधु तो
3: हमने तो सुना है, लेकिन अगर आप लोगों ने नहीं सुना तो फिगर नॉट।
5: फ्रीडम फाइटर्स की कहानियां दिखाएंगे दूरदर्शन पर हर रविवार सुबह 11 बजे क्रिश ट्रिश और बाल्टी बॉय।
6: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
7: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
6: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
7: अब घर दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
6: डायल कीजिए 8700014242।
7: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
8: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: नमस्कार, आज हम आए हुए हैं मारवाड़ी कॉलेज में, जहां तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय की स्थापना दिवस 67th स्थापना दिवस मनाई जा रही है। आइए हम बात करते हैं डॉक्टर राहुल सर से। सर, अपने बारे में कृपया बताएंगे और स्थापना दिवस के अनुभवों के बारे में कृपया बताएं।
2: आज विश्वविद्यालय के लिए गौरवान्वित दिवस है। हम सब ने आज विश्वविद्यालय का 67वां स्थापना दिवस समारोह मनाया है।
1: जी जी।
2: और इसका मतलब यह है कि विश्वविद्यालय ने अपने गौरवशाली 66 वर्ष पूर्ण किए हैं। इस अवसर पर हमने हमारे महाविद्यालयों के और विभिन्न पीजी विभागों के टॉपर्स को सम्मानित किया।
1: जी जी।
2: विभिन्न जो हमारे स्तंभ हैं इस विश्वविद्यालय के, हमारे जितने भी विभागाध्यक्ष हैं, संकायाध्यक्ष हैं, प्राचार्य हैं, सबको सम्मान दिया गया। 5 जो मुख्यालय के कॉलेजेज हैं उनकी सांस्कृतिक प्रस्तुतियाँ हुई और पूर्व कुलपति महोदय जो द्वय थे उनको आज हम लोगों ने विशिष्ट अतिथि और मुख्य अतिथि के तौर पे आमंत्रित किया था, उनकी उपस्थिति हुई और संपूर्ण विश्वविद्यालय परिवार आज एक आंगन में बैठकर अपने हर्षोल्लास के साथ अपने 66 ईयर्स के सफ़र को यादगार बनाया और साथ में आने वाले कल को और बेहतर कैसे बनाया जाए, इसके लिए संकल्प लिया।
1: सर, आपका अनुभव इस विषय में कैसा रहा?
2: इस विश्वविद्यालय में एक बहुत छोटा सिपाही हूँ, लेकिन मेरा यह मानना है कि इस तरह से कई कार्यक्रमों से विश्वविद्यालय परिवार की एकता और उनकी भावना मजबूत होती है, जिससे कि भविष्य में उन्हें और बेहतर करने की प्रेरणा मिलती है। तो मुझे लगता है कि आज का अनुभव यह रहा कि एक आंगन के एक छत के नीचे रविवार का दिन होने के बाद भी सब लोग जुटे हुए थे। यह दर्शाता है कि सभी छात्र हों, चाहे कर्मी हों, चाहे शिक्षक हों, शिक्षकेतर कर्मी हों, सबका सहयोग विश्वविद्यालय को है और सब लोग मिलकर इस विश्वविद्यालय को बिहार का ही नहीं, भारत के पटल पे एक स्थान के रूप में देखना चाहते हैं, दिलाना चाहते हैं। तो ये एक अच्छा संकेत है।
1: बहुत बहुत धन्यवाद राहुल सर का, जिन्होंने अपने विचारों से हमें अवगत कराया। अब हमारे साथ हैं संजय जायसवाल सर। सर, अपना परिचय देंगे और आज जो ये कार्यक्रम आयोजन किया गया और किस उपलक्ष्य पर था और क्या इसका उपलब्धि हो सकती है और आपका क्या अनुभव रहा, सर बताएंगे जरा।
3: मैं डॉक्टर संजय कुमार जायसवाल
1: जी,
3: क्रीड़ा परिषद सचिव, तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय भागलपुर।
1: जी जी।
3: आज का ये महत्वपूर्ण कार्यक्रम बच्चों को और विश्वविद्यालय परिवार के तमाम सदस्यों के लिए गौरवान्वित होने का पल था। ये विश्वविद्यालय का स्थापना दिवस समारोह है। जैसा आप जानते हैं कि 1960 में इस विश्वविद्यालय की स्थापना हुई और बाद में इसे तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के रूप में भी जाना गया। पहले यह भागलपुर विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता था।
1: जी जी।
3: और ये स्थापना दिवस इसलिए यादगार लम्हा था कि आज के कार्यक्रम में हमने शिक्षकों का, जो सेवानिवृत्त शिक्षक है, शिक्षकेतर कर्मियों का, छात्र छात्राओं का, जो टॉपर्स हैं, तमाम प्राचार्य का और तमाम जो डीन हैं, स्नातकोत्तर विभाग के विभागाध्यक्ष हैं, सबके सम्मान की श्रृंखला हमने रखी थी। हमने सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन कराया और सबसे जो बड़ी बात थी
1: जी जी।
3: और विश्वविद्यालय का जो सबसे बड़ा स्टेक होल्डर है वो स्टूडेंट होता है और हमने उसके सम्मान का कार्यक्रम रखा था। ये कार्यक्रम इस सेंस में माननीय कुलपति महोदय की प्रेरणा से, उन्होंने ऐसा निर्देशित हम लोगों को किया था कि आप बच्चों का सम्मान करिए क्योंकि वो सबसे बड़ा स्टेक होल्डर विश्वविद्यालय का होता है। तो उनके सम्मान के लिए हमने ये कार्यक्रम आयोजित कराया था और पहली बार विश्वविद्यालय ने अपने बच्चों को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से, प्रेरित करने के उद्देश्य से, जो सेमेस्टर टॉपर था उनको हमने सम्मानित किया मंच से, ताकि दूसरे बच्चे भी इससे प्रेरित हों और जो बच्चा आज सम्मान प्राप्त किए हैं वो और भी बेहतर करने की उम्मीद में और अच्छा काम करें, हम ऐसा उम्मीद करते हैं। तो ये कार्यक्रम बहुत ही सफल और यादगार रहा। आज छुट्टी का दिन था, बावजूद इसके सारे लोग, आपने देखा होगा कि पूरा हॉल खचाखच भरा हुआ और तमाम लोग, तमाम अधिकारी विश्वविद्यालय के थे, माननीय कुलपति महोदय का पूरा जो है आशीर्वाद था हम सब लोगों के साथ, पूरे आयोजन समिति के साथ। हम आभार व्यक्त करते हैं माननीय कुलपति महोदय का कि जिन्होंने हमें मार्गदर्शन दिया और उन्होंने इस कार्यक्रम को करने की प्रेरणा दी। थैंक यू।
1: बहुत बहुत धन्यवाद संजय जायसवाल सर को। अब हमारे साथ हैं डॉक्टर गौतम कुमार यादव, तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय में ये अंगिका विभाग से जुड़े हुए हैं। आइए जानते हैं उनके विचारों से और अनुभवों से अवगत होते हैं।
4: जी, मैं डॉक्टर गौतम कुमार यादव, विश्वविद्यालय अंगिका विभाग अध्यक्ष। विशेष करी के हमरा अंगिका विभाग होय के नाते हम चाहे अपने से अनुमति ले कि अंगिका में ही हम बात करें।
1: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल सर,
4: ये हमरा पर नैतिक दायित्व बनी जाए कि भाषा के प्रति सजगता और ओकरो समृद्धि के लिए। तो अंगिका विभाग के हैसियत से हम अपने कहे छे एक विभागाध्यक्ष हैसियत से, चूँकि तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के 67वां स्थापना दिवस समारोह छे, जिकरा में विशेष रूप से आयोजन समिति के तरफ से जे छे कि विश्वविद्यालय के विभिन्न फैकल्टीज, विभाग, संकाय, महाविद्यालय, संबद्ध महाविद्यालय, सभी छात्र छात्रा सनिक जे छे विशेष रूप से आमंत्रित छे, और एकरा में विशेष करी के सांस्कृतिक कार्यक्रम के रूप में बच्चा सबके जे एक अपनो कार्यक्रम के दौरान जे उनको एक अभिनय के प्रस्तुति होले और क्षेत्रीय सांस्कृतिक रूप में जे गीत, लोकगीत, तरह तरह के जे उनको द्वारा करलो, उनका बच्चा सबके द्वारा जे कार्यक्रम करलो गेले वो काफ़ी सराहनीय रहले। और खास करी के विश्वविद्यालय के कुलपति महोदय के विशेष निर्देशन में कि हुनी चूँकि दू विश्वविद्यालय के पद पर सुशोभित छे और उनको बावजूद व्यस्तम कार्यक्रम में आयोजन समिति के एक बेहतर प्रबंधन और निर्देश के उनको जे कल्पना करलो जाए वो शब्द में काफ़ी कम होते, और ये आधार पर स्थापना दिवस के दिन खास करी के हमरा सबके लगले कि संकल्प के दिवस के दूर रूप में एक बेहतर एक जैसे के नामकरण करलो जावे पड़े, कोई एक अतिशयोक्ति नहीं। कहने कि विश्वविद्यालय एक पठन पाठन देश के आवे वाला कल के भावी पीढ़ी के एक सृजन के एक बहुत बड़ो एक जैसे कि एक तरह से जै तरह से ईंट के भट्ठा होइ छै वहाँ ईंट के निर्माण होइ छै, वही ना विश्वविद्यालय के कार्यक्रम में विश्वविद्यालय के एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होइ छै देश के आबे वाली भावी पीढ़ी के जे छै कि ओकरो मने नैतिकता और ओकरो वास्तविक रूप से, सांस्कृतिक रूप से, राजनीतिक रूप से, बौद्धिक रूप से जे ओकरो एक विकास होना चाही उ एकरो रूपरेखा के धरातल मुख्य रूप से विश्वविद्यालय महाविद्यालय के शिक्षण जगत के एक बहुत बड़ी प्रभावशाली व्यवस्था छै। और ये आधार पर विभिन्न शिक्षक
1: आपको कैसा अनुभव हो रहा है सर?
4: तो ये बहुत अनुभव के नाम पर बहुत बेहतर अनुभव होले कि बच्चा सबके खुली के एकरा में भागीदारी बनले, भागीदार लेके और एकरा में आवे वाला पीढ़ी में जे बच्चा सब देखल के ओकरा भी एक उत्साह वर्धन लगले कि आब भावी और आवे वाला पीढ़ी में बेहतर प्रदर्शन करे पड़े। अई ढंग से प्रोग्राम जे छे कि अगर कोई भी संस्थान में होइ छे तो उ निश्चित तौर पर उस समाज, परिवार और वह संस्थान के एक बहुत बड़ा उपलब्धि कहलो जा सके।
1: बहुत बहुत धन्यवाद गौतम कुमार सर का, जो अंगिका विभाग से हैं। अब हम तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के सांस्कृतिक परिषद की उपाध्यक्षा महोदया डॉक्टर स्वस्तिका दास मैडम के पास उनके विचारों से अवगत हो रहे।
5: धन्यवाद, मैं आज साक्षी बनी हूँ तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय की 66वां स्थापना दिवस, 67वां स्थापना दिवस के अवसर पर हम सभी यहाँ एकत्रित थे इसे एक उत्सव के रूप में मनाने के लिए। जान रहे हैं कि कोई भी जब एक उत्सव होता है तो सबों का सहयोग और समायोजन बहुत जरूरी है
1: जी, जी।
5: तो हम लोगों ने यहाँ पर सबका साथ मिल करके विश्वविद्यालय हो, मारवाड़ी महाविद्यालय हो, TNB कॉलेज, असम कॉलेज, BN कॉलेज, सबों के सहयोग से एक बहुत ही बेहतरीन आज का कार्यक्रम किया गया। मेन उद्देश्य था कि स्थापना दिवस हम क्यों मनाते हैं, हमारी यह धरोहर है, हम जब तक नहीं इसको सींचेंगे तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते।
1: बिल्कुल,
5: और आगे बढ़ते जाएंगे इसको, इसके लिए हम इसको सींच रहे हैं। हमारे विद्यार्थी और अधिकारीगण सभी एक अच्छे मुकाम पे पहुँचे हैं और पहुँचेंगे भी, देश और विदेश में इस विश्वविद्यालय से पास किया हुआ विद्यार्थी आपको मिलेंगे। आज हम लोगों ने यहाँ पर कई प्राचार्यों को, कई विभागाध्यक्षों को, सीनेटर को, सबों को सम्मानित किया। हमारी अध्यक्षता कर रहे थे हमारे कुलपति महोदय विमलेंदु शेखर झा के आशीर्वाद से ये कार्यक्रम हो रहा था, और सुदामा मैम भी इसमें साथ दी कि वो अध्यक्षता की भूमिका में आज रहीं। और इसी तरह से हम लोगों ने एक सांस्कृतिक परिषद का भी जो उपाध्यक्ष हैं DSW मैडम, उनके निर्देशन में मैं उपाध्यक्षा भी, हम लोगों ने एक छोटा सा कार्यक्रम दिया। ज़्यादातर हम लोगों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम में लोक संस्कृति को दिखाया, क्योंकि हमारा मारवाड़ी महाविद्यालय हो चाहे तिलका मांझी विश्वविद्यालय हो, वो एक ऐसे परिवेश को दिखाना चाहता है कि हम अपने धरोहर को कभी ना भूलें, अपनी जो संस्कृति है उसको ना भूले। मारवाड़ी महाविद्यालय की ओर से गोधना की प्रस्तुति हुई, बहुत ही लोकप्रिय ना रहने वाली आज का ये पीढ़ी, आज इसे जो टैटू के रूप में लोग देख रहे हैं वो बहुत पहले इसे गोधना के रूप में देखे, उसका हमने आज प्रस्तुति दिखाई। इसके साथ ही कजरी और भी कई छोटे मोटे कार्यक्रम हुए जो बहुत ही बेहतरीन हुआ बच्चों के द्वारा प्रस्तुति। और एक अच्छी बात इस बार रही कि हम लोगों ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को भी पुरस्कृत किया। साल भर में जो भी बच्चे अच्छा प्रदर्शन किए अपने शैक्षणिक जगत में उसको भी आज पुरस्कृत किया गया, ताकि अन्य बच्चों को इस तरह का अवसर मिले कि वो भी उच्च मुकाम पर पहुँचे और अपनी प्रस्तुति दें। इसी तरह से हम लोगों ने आज का पर्व के तरह ये दिन को मनाया।
6: आपका अपना अनुभव कैसा रहा?
5: बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि सबों को मन में उत्साह था, सबों के मन में उल्लास था, और यही हम लोगों का कामना होती है। हम जब कोई आयोजन करते हैं तो इसी कामना के साथ जो भी हमारे गेस्ट आए, जो भी हमारे साक्षी बने, जितने भी दर्शक रहे, सबों को बड़ी खुशी हुई और आनंद का अनुभव किया। अंत में अल्पाहार की भी व्यवस्था थी तो सभी लोग यहाँ से बहुत खुश।
6: जैसा कि मेरी जानकारी है मैडम, आप इसी विश्वविद्यालय की छात्रा भी रही हैं और इसी विश्वविद्यालय से आपने स्नातकोत्तर की पढ़ाई भी की है। आप आगे चलकर इसी विश्वविद्यालय में इस पद पर हैं, आपको अपना अनुभव कैसा लग रहा है?
5: बहुत ही अच्छा लगता है जब एक बार पीछे मुड़ के देखती हूँ कि मैं यहाँ से स्नातक और स्नातकोत्तर की विद्यार्थी रही और उसी विश्वविद्यालय में मुझे मौका मिला छात्रों को पढ़ाने का, तो ये बड़ा अच्छा अनुभव लगता है। अध्यापन भी किया और अध्यापक भी रही, तो ये बहुत खुशी देता है अपने आप में।
6: बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम यहाँ आए हैं और हम डॉक्टर स्वस्तिका दास मैडम को पुनः धन्यवाद देते हैं। आप हैं डॉक्टर राजेश नंदन जो NCC के ऑफिसर हैं, आइए जानते हैं इनसे इनके अनुभव के बारे में।
7: आज जो 67वां उत्सव मनाया गया भागलपुर विश्वविद्यालय का, ये काफ़ी अच्छा रहा, स्थापना दिवस जो था भागलपुर विश्वविद्यालय का। और ये देखिए 1960 से ये विश्वविद्यालय चला आ रहा है और हम लोग का तो जन्म भी नहीं हुआ था उस समय और आज के अखबार के माध्यम से भी ये जानकारी हुआ। यह जो पुराने इतिहासकार हैं वो ये बताते आ रहे हैं कि ये जो है जो भारत के जो प्रथम राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उनकी पोथी को उपलक्ष्य में ये एक तरह से कहिए कि दहेज नुमा या उनसे ये उपहार स्वरूप मांगा गया जो कि आज हमें जानकारी हुआ, ये अच्छा मिलेगा। और यहाँ एक से एक विद्वान कुलपति पूर्व में रहे हैं, जैसे राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर, ये विश्वविद्यालय को सभा हुआ। और इस बार हर बार के अपेक्षा में कुछ और अच्छे रूप से मनाया जा सका। पिछले बार बाढ़ की वजह से हम लोग नहीं करा मना पाए थे क्योंकि बाढ़ का पानी पूरे विश्वविद्यालय कैंपस में चलाया था। इस बार वैसी व्यवस्था नहीं रही, बहुत रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम हुआ। पूर्ववर्ती छात्र मतलब वर्तमान में जो छात्र बढ़िया शोध किए या जो बढ़िया रिजल्ट लाए उनको पुरस्कार वितरण भी किया गया। सांस्कृतिक कार्यक्रम भी देखे विश्वविद्यालय के सांस्कृतिक परिषद की ओर से भी कराया गया, काफ़ी अच्छा अनुभव रहा। और NCC के कैडेट भी आप लोगों को देखा होगा कि सभी को पायलटिंग कर करके जो जितने भी पदाधिकारी आए उनको ले गया, तो सभी चीज़ों का समावेश इस बार प्रोग्राम में देखने को मिला, ये मेरा अनुभव।
6: बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर राजेश नंदन सर को। आप हैं डॉक्टर विजय कुमार, सांख्यिकी विभाग के विभागाध्यक्ष सह NSS के प्रोग्राम ऑफिसर। हम इनसे जानते हैं इनके अनुभव के बारे में।
8: मैम, आज का अनुभव जो है बहुत अत्यधिक लाभप्रद रहा, चूँकि सारे टीचर, भूतपूर्व कुलपति, दो दो कुलपति यहाँ पधारे हुए थे, उनके आशीर्वचन हम लोग को सुनने को मिला। और ये जो 67वां स्थापना दिवस था अपने आप में यादगार है और मारवाड़ी महाविद्यालय के लिए भी यादगार है, क्योंकि मारवाड़ी विश्वविद्यालय ने मारवाड़ी महाविद्यालय को होस्ट करने का मौका दिया और इसमें NSS, NCC और सांस्कृतिक परिषद सबका एक मिली भगत से ये कार्यक्रम सफल हुआ है। साथ ही साथ यहाँ खाना का एक बेहद आयोजन किया गया था जो भी काबिल तारीफ रहा है। और मैं क्या कहूँ, इसके साथ चाहता हूँ कि ये रिसर्च का भी ये अवसर मिलता है यहाँ पे, जैसे लास्ट में हुआ था कि जो भूतपूर्व कुलपति थे उन्होंने टीचर को भी अवार्ड दिए थे, बेस्ट टीचर का अवार्ड मिला था। इस तरह का आवेदन इसमें भी होता, इंक्लूड किया जाता तो बहुत अच्छा रहता। ये बहुत अच्छी बात है कि जो टॉपर छात्र रहे हर एक संकाय के, हर एक महाविद्यालय के, उनको पुरस्कृत किया गया। साथ ही साथ बेस्ट टीचर का भी अवार्ड मिलता और रिसर्च का और अपॉर्चुनिटी यहाँ पर हम लोग को मिलता है। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ।
6: बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर विजय कुमार सर को।
9: अभी हम लोग सुन रहे थे बाह्य ध्वनांकन पर आधारित भेंट वार्ता, भेंट करता थे सोनाली कर्मकार और संग प्रस्तुत करता थे अतुल कुमार प्रियदर्शन। और अब कार्यक्रम को हम लोग आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं एक पूर्व प्रसारित भेंट वार्ता
10: जेकरो विषय के आशा कार्यकर्ता से जे नीलिमा कुमारी छे ओकरा से जैसे कि भेंट और भेंट करता छे सोनाली कर्मकार और प्रस्तुत करता अतुल कुमार प्रियदर्शन।
9: श्रोताओं, आज हमारे बीच आई हुई है नीलिमा कुमारी जी। नीलिमा जी, आप क्या करती हैं?
11: हम एक आशा कार्यकर्ता हैं।
9: ये आशा का क्या मतलब है?
11: आशा अधिकृत सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता आशा है, वह 1000 की आबादी पर काम करती है।
9: तो ये आशा जो 1000 की आबादी पर काम करती है, वह क्या काम करती है?
11: राष्ट्रीय ग्रामीण मिशन की अभिन्न अंग है। मातृ मृत्यु एवं शिशु मृत्यु को कम करना आशा का मुख्य लक्ष्य है। आशा कार्यकर्ता अपने पोषक क्षेत्र से चयनित हुई है। उस क्षेत्र में घर घर जाकर सुरक्षित प्रसव हेतु सभी गर्भवती महिलाओं को 100% प्रसव पूर्व जांच करवाती है।
9: अच्छा नीलिमा जी, हम ये जानना चाहेंगे कि आप जब गांव-गांव जाती हैं तो घर घर जाकर उन्हें शिशु के सुरक्षित प्रसव के संबंध में जानकारी देती हैं, यही आपका मुख्य काम है
11: जी।
9: तो कोई भी बहन आशा कार्यकर्ता बनना चाहेंगी, उनके लिए उन्हें किस हद तक शिक्षित होना चाहिए?
11: आशा बहन का काम तो अब पहले तो इतना काम का बोझ नहीं था, इतना तो अब आशा को कम से कम मैट्रिक इंटर पास महिलाओं को ही आशा में आना चाहिए, क्योंकि इतना लिखना पढ़ना इतना पहले था सिर्फ गर्भवती महिला को अस्पताल तक प्रसव के लिए ले जाना, लेकिन अभी जो है ड्यू लक्ष्य सर्वे बहुत लिखना पढ़ना पड़ता है।
9: अच्छा, पढ़ाई लिखाई की बहुत सारी काम होती है, जैसे कि आप लोग जिस गांव में 1000 के आप बोल रहे थे कि 1000 की आबादी वाले जगह पर काम करती है, एक आशा काम करती है, तो उस जगह पर आप क्या सूची बनाती हैं?
11: जी, सर्वे पहले सर्वे बनाते हैं, 1000 की सर्वे लिस्ट हम लोग को मिला है, उस सर्वे में हम चढ़ाते हैं।
9: अच्छा, क्या आप लोग घूम घूम कर देखते हैं कि कहाँ गर्भवती महिलाएं हैं?
11: जी,
9: घर घर जाकर
11: जाके हम गर्भवती महिला का भी ड्यू सर्वे में लेते हैं, सर्वे में गर्भवती महिला का लिखते हैं कि अभी इस क्षेत्र में कितना गर्भवती है, और बच्चे का ड्यू हम 0 से 2 वर्ष तक का बच्चे का हम ड्यू बनाते हैं।
9: अच्छा, तो आप उन महिलाओं का नाम पता लिख कर रखती हो?
11: जी,
9: तो आप शुरू से ही प्रसव के पूर्व से ही उन्हें जानकारी देती हैं? किस चीज की जानकारी देती हैं?
11: पहले तो हम गर्भवती माता को अपने स्वास्थ्य केंद्र पर लाते हैं, निश्चय से उसको निश्चय किट मिलता है, निश्चय किट से उसका पेशाब का जांच करते हैं, ये पता लगाते हैं कि गर्भवती है या नहीं। गर्भवती अगर है फिर हम उसको RI के दिन VHND जिस दिन होता है आंगनबाड़ी केंद्र में, उस दिन हम अपने NM दीदी के पास ले जाते हैं, उसका रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, रजिस्ट्रेशन करवा के उसको टेटनस की सुई दिलवाते हैं। अगर गर्भवती फर्स्ट गर्भवती है तो उसको 2 टेटनस की सुई दिलवाते हैं 1 महीना, फिर दूसरे 3 माह पर फर्स्ट TT पड़ता है, फिर 4th माह में दिलवाते हैं उसको आयरन की फोलिक एसिड गोली 180 गोली खिलाते हैं। और अगर कोई 3 साल से पहले फिर दूसरा गर्भवती रह गया तो उसको मात्र 1 टेटनस की सुई पड़ता है।
9: अच्छा, तो ये सारी दवाइयाँ मुफ्त में ही दी जाती है?
11: जी हाँ।
9: तो ये सारी दवाइयाँ कहाँ से दी जाती है?
11: हम लोग को मिलता है अस्पताल से।
9: अच्छा, तो ये NHT आप बोल रही थी वो क्या है?
11: VHND आंगनबाड़ी केंद्र में जो RI टीकाकरण होता है, महिला मन की बैठक किया जाता है आंगनबाड़ी सेविका के, उसी दिन हम लोग उसको VHND बोलते हैं।
9: अच्छा,
12: उसका जांच करना या फिर सुई लगाना या फिर उनका हर चीज़ जांच करना, हीमोग्लोबिन टेस्ट करना, तो क्या आप लोगों को भी ये सब जांच करने दिया जाता है?
11: जी नहीं, हम लोग को अभी ये सब प्रशिक्षण नहीं मिला है।
12: अच्छा, आप लोगों का सिर्फ काम है कि आप उन्हें अस्पताल तक ले जाती हैं, उनकी एक सूची तैयार करती हैं, उनकी जानकारी आप अस्पताल तक पहुंचा देती हैं।
11: जी।
12: अच्छा, बच्चों के संदर्भ में आप क्या क्या करती हैं?
11: बच्चे जिस समय जन्म लेता है उस समय से ही बच्चे माँ को पहले हम समझाते हैं मदर केयर करने के लिए, सीने से लगा के, अगर कमजोर बच्चा है तो उसको गिरी भेंट में भी हम समझाते हैं। पहले तो बर्थ डोज टीका जो होता है हम अपने नम दीदी से अस्पताल में ही दिलवाते हैं, BCG का 0 खुराक, OPV एवं का पड़ता है हेपेटाइटिस बी का 0 डोज। उसके बाद हम फिर उसको घर आने पर तीसरे दिन फिर जाते हैं, तीसरे दिन जाते हैं, 7वें दिन जाते हैं, 14वें दिन, 28वें दिन, 42वें दिन गिरिभ्रमण के लिए जाते हैं। घर जाके बच्चे को देखरेख करते हैं, तो बच्चे जिस दिन हम उसके घर जाते हैं उस समय बच्चे का हम वेट लेते हैं, बुखार देखते हैं, ये सब मशीन हमको मिला है।
12: तो इसका प्रशिक्षण भी तो आप लोगों को मिला
11: जी? हाँ,

0: इसका प्रशिक्षण मिला है, हमको वजन करने वाला भी मिला है।
1: तो आप लोग जब से महिलाएं गर्भवती होती है तब से बच्चे कितने बड़े हो जाते हैं कि आप लोग देखरेख करती हैं? कब तक?
0: बच्चे को दो साल तक को हमको देखना, लेकिन मुख्य तरह से 28 दिन तक तो नवजात शिशु है और 42 दिन तक हम गिरी भेंट करके उसको जब 6 सप्ताह का टीका दिलवाते हैं। 6 सप्ताह के बाद फिर हम 10 सप्ताह में बच्चे को पेंटा, 6 सप्ताह में पेंटा फर्स्ट, 10 सप्ताह में पेंटा सेकेंड, 14 सप्ताह में पेंटा थर्ड की टीका दिलवाते हैं। फिर 9 माह पूरा होने पर खसरा फर्स्ट, जेई फर्स्ट का डोज दिलवाते हैं। फिर 16 से 24 माह के बीच टीका पड़ना चाहिए डीपीटी बूस्टर और जेई सेकेंड, खसरा सेकेंड की टीका दिलवाते हैं। अगर 9 महीना वाला टीका हम दिलवा देते हैं तो पूर्ण टीका कहा जाता है, और 16 से 24 माह के टीका दिलवाने पर संपूर्ण टीकाकरण बच्चे का हो जाता है।
1: तो इस तरह से आप महिलाओं को मदद करती हैं और एक अभिभावक के रूप में आप काम करती हैं। तो ये जानना चाहेंगे नीलिमा जी, जो आप ये काम करती कैसे हैं?
0: काम करने में हम बहुत अच्छा लगता है। हम घर जा जा के बच्चे माँ को समझाते हैं, बहुत माँ शिक्षित जो है वो तो समझदारी से काम करती है, वो हम लोग को भी मदद करती है। लेकिन जो शिक्षित नहीं है जिस परिवार से, उसमें तो बहुत कठिनाई होती है। फिर भी हम लोग हंस बोल के, क्योंकि हम लोग का समझदार यही काम मिला है। अगर गुस्सा करेंगे थी करेंगे तो नहीं, उसको समझा बुझा के ऐसी महिला को अस्पताल तक टीकाकरण के लिए अपने आंगनबाड़ी केंद्र तक लाते हैं।
1: तो क्या आप लोगों का कोई एक निश्चित कार्य समय है?
0: जी नहीं, समय आशा के लिए कोई निश्चित समय नहीं है। 12 बजे रात हो, 1 बजे हो, चाहे वर्षा हो, आंधी हो, तूफान हो, कुछ भी समय का कोई नहीं है। जिस समय गर्भवती महिला को पीड़ा हुआ, दर्द हुआ, उसी समय हमको लेकर जाना है।
1: आप अभी किस क्षेत्र में कार्य कर रही हैं?
0: गोपालपुर क्षेत्र में करते हैं।
1: अच्छा, तो आप, इसका मतलब है 24 घंटा आप तटस्थ रहती हैं काम करने के लिए।
0: जी,
1: आपको यह काम करके कैसा लगता है?
0: काम करने में तो हमें बहुत ही अच्छा लगता है, क्योंकि हम लोग का कोई पहचान भी बन गया है। पहले तो घर से बाहर भी नहीं निकलते थे, कोई जान पहचान नहीं था। अभी आशा के नाम से तो कम से कम पहचान बन गया है, तो क्षेत्र में भी अच्छा लगता है काम करने में।
1: मन में खुशी भी होती है?
0: जी, बहुत खुशी होती है।
1: तो क्या आप लोगों के इस कार्य से आप लोगों को कोई प्रोत्साहन राशि भी मिलती है?
0: जी, प्रोत्साहन राशि मिलती है। अगर एक गर्भवती महिला को प्रसव करवाते हैं तो 600 रुपया दिया जाता है, और अगर एक बच्चे को 9 महीना वाला खसरा का टीका दिलवाते हैं, पूर्ण टीकाकरण अगर करवा देते हैं, तब एक बच्चे पर 100 रुपया। अगर संपूर्ण टीकाकरण हम करवाते हैं, 1.5 वर्ष, 16 से 24 माह वाला टीका दिलवा देते हैं, तब फिर हमको उस बच्चे पर, एक बच्चे पर 50 रुपया।
1: ऐसा आप लोगों को लगता है कि आप लोग इससे बहुत प्रसन्न हैं या आप लोगों के लिए यह यथेष्ट है?
0: प्रसन्न तो है, अब जो मिल रहा है उसी में खुश हैं, लेकिन कुछ अंदर से तो तकलीफ होती है, क्योंकि आशा दीदी को भी तो बच्चा है, अपना परिवार है। अगर सरकार के तरफ से कुछ भी मान दे,
1: थोड़ी और
0: मिलता, और तो खुशी से और काम करने में मन लगता।
1: अच्छा, और अच्छा लगता?
0: अच्छा लगता। अरे, जिस क्षेत्र की में शिक्षित है परिवार, तो उस क्षेत्र में तो एक बच्चा से दो बच्चा में, और सरकार के तरफ से भी कहा जाता है बंध्याकरण करवाइए, पुरुष नसबंदी, महिला नसबंदी, तो एक से दो बच्चा में करवा देते हैं। शिक्षित क्षेत्र में तो महीना में एक या दो भी प्रसव होना मुश्किल है।

0: तो उस आशा दीदी को तो पैसा नहीं मिल हो सकता है, महीना में 1000-2000 भी नहीं मिलता है। जिस क्षेत्र में कुछ शिक्षा की कमी है, उस क्षेत्र की महिला नहीं समझती है, तो उसके क्षेत्र में उस क्षेत्र की आशा को महीना में 2-4 हो जाता है प्रसव, तो उसको कुछ पैसा मिल जाता है।
1: अच्छा, तो आप लोगों का कहना है कि ये अगर मानदेय प्रोत्साहन की राशि थोड़ी बड़ी हो जाती, थोड़ी बढ़ोतरी होती, तो आप लोगों को और अच्छा लगता,
0: यही ना? जी,
1: तो ये जानना चाहते थे नीलिमा जी कि आप लोग और क्या क्या बताती हैं गांव-गांव जाकर गर्भवती महिलाओं को, और क्या किस चीज़ की जानकारी देती हैं?
0: गर्भवती महिला को तो हम खान पान के संबंध में बताते हैं, मातृ मृत्यु एवं शिशु मृत्यु का मुख्य कारण है सामाजिक लापरवाही। सामाजिक लापरवाही के कारण ही मातृ मृत्यु और शिशु मृत्यु होती है।
1: तो क्या आप लोग उन्हें साफ सफाई, स्वस्थ रहना, खान पान के संबंध में भी जानकारी देती हैं?
0: जी,
1: क्या जानकारी देती हैं?
0: घर वाले से हम यही कहते हैं कि अगर गर्भवती महिला को खान पान स्वस्थ मां से ही स्वस्थ बच्चे का निर्माण हो सकता है, अगर उनके घर वाले बेहतर सहयोग कर सकते हैं, हमें उनके घर के लोगों एवं गर्भवती महिलाओं को भी प्रोत्साहित करना होगा, स्वस्थ मां से ही स्वस्थ बच्चे का निर्माण हो सकता है।
1: हम ये जानना चाहते थे नीलिमा जी कि आप क्या क्या बताती हैं गर्भवती महिलाओं को, उनको उनके खान पान के बारे में। हमारी श्रोता बहनें भी सुनेंगी कि आप क्या क्या बोलती हैं, क्या खाए, क्या नहीं खाए, कैसे रहेंगी, कैसे साफ सफाई का ध्यान रखेंगी, क्योंकि गर्भवती महिला हो या छोटे शिशु है, उनको संक्रमण का भय रहता है, तो आप उन्हें संक्रमण से बचाने के लिए क्या क्या जानकारी देती हैं, या उन्हें साफ सफाई रखने के लिए क्या क्या जानकारी देती हैं, और आप उन्हें खान पान के संबंध में क्या क्या जानकारी देती हैं?
0: सबसे पहले तो हम जाते हैं तो गर्भवती महिला को या बच्चे की माँ हो, उससे हम बोलते हैं कि हाथ साफ कर ही लाइफबॉय साबुन रखिए, उससे हाथ धोकर ही हाथ साफ कर ही, या कहीं से आते ही बच्चे को नहीं उठाए, हाथ बिना धोए बच्चे को उठाने से इन्फेक्शन बाहरी आपके शरीर में गंदगी है, उससे इन्फेक्शन लग सकता है बच्चे को, और आप अगर साफ सुथरा रहिएगा, बच्चे को भी रखिएगा, तो बीमारी नहीं फैलेगी किसी भी तरह की, और कपड़े को साफ करके ही लीजिए। गर्भवती महिला को भी अगर प्रसव से पहले हम बताते हैं कि पहले से ही सफाई करके कपड़े साफ करके धो के डिटॉल देकर रखिए, जिससे कि इन्फेक्शन किसी तरह का बच्चे को नहीं हो, हाथ साबुन से साफ कर लें, बाल साफ कर लें। खान पान के लिए गर्भवती माँ को हम पहले खान पान के लिए हरा साग सब्जी अंडा दूध मछली ये सब खाने के लिए बोलते हैं, फिर आयरन की गोली 180 गोली आप जरूर खाएं, जिससे कि अगर खाने में कम मिलता है तो वह आयरन की गोली से ही पूर्ति की करने के लिए। फिर बच्चे को हम 6 माह तक सिर्फ बच्चे को माँ का ही दूध पिलाने के लिए बोलते हैं, बाहरी एक भी बूंद पानी भी नहीं दीजिए, जिससे कि आपका बच्चा स्वस्थ रहेगा। 6 महीनों के बाद फिर हम बच्चे को ऊपरी आहार देने के लिए बोलते हैं।
1: ऊपरी आहार क्या क्या बोलते हैं?
0: ऊपरी आहार में दलिया बोलते हैं, दाल, घर का जो भी खाना बना हुआ है, साग सब्जी, मिर्च मसाला कम दीजिए, और बच्चे को उसको मसल के एक साफ कटोरी चम्मच लेकर और बच्चे को दीजिए। श्रोता बहनों को हम यही बताएंगे कि आप अगर आशा बनना चाहते हैं तो सबसे पहले तो कुछ पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दें, शिक्षा लेकर ही इसमें आना चाहिए, क्योंकि स्वास्थ्य विभाग में बहुत तरह का दवाई का भी काम है, अगर हम पढ़ नहीं पाएंगे तो देना होगा, पेट दर्द होगा तो हम बुखार का दवाई दे देंगे, इसलिए शिक्षा का सबसे जरूरी है। शिक्षा लेकर ही और अपने क्षेत्र में काम करें।
1: तो नीलिमा जी, आज आप हमारे बीच आई, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।

0: ओकरहो लेली या कोई भी स्त्री छै ओकरा शिक्षा कने के देखभाल करे वाली त हमरो फेरु माये बहिन होय छै त ओकरहो लेली तमाम चीज आरो साथ साथ पुरुष भाई बहिन के भाई के लेले भी तने के ध्यान रखे के भी काम चाहे निर्देश दे के काम त घरो में संपूर्ण काम देखे छै ने त सबके लेली समूल रूप से एक समग्र जानकारी जकरा कहे छे समुच्चा जानकारी हिनका देलनी देलके बहुत बहुत धन्यवाद हिनका। और अब किसान भाई सनी के लेली
1: कुछ मौसम की जानकारी
0: भए जाए कुछ मौसम के जानकारी भए जाए।
1: बिहार कृषि विश्वविद्यालय ग्रामीण कृषि मौसम सेवा एवं भारत मौसम विज्ञान विभाग के सहयोग से जारी पूर्वानुमान के अनुसार मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार 12 से 15 जुलाई के दौरान बिहार के कुछ जिलों में एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ आंधी चलने एवं मध्यम वर्षा होने का अनुमान है। बांका नवादा जिलों में एक या दो स्थानों पर भारी वर्षा होने की संभावना भी है। अधिकतम तापमान 31 से 32 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 26 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 90 से 95% तथा दोपहर में 50 से 55% रहने की संभावना है। पूर्वानुमान अवधि में 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से पछिया हवा चलने का अनुमान है। और इसी संदर्भ में समसामयिक सुझाव कुछ किसान भाई बहनों के लिए, पिछले कुछ दिनों में हुई वर्षा जल का लाभ उठाते हुए धान की सबौरदीप किस्मों जैसे प्रभात, शुष्क सम्राट, सहभागी की बुआई अवश्य करें। बुआई से पूर्व बीजों को कार्बेंडाजाइम 2.0 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज से उपचारित करें तथा 10 से 15 दिन की नर्सरी में समय पर निराई गुड़ाई अवश्य करें। मध्यम अवधि वाली किस्मों राजेंद्र नीलम, राजेंद्र कस्तूरी एवं राजेंद्र श्वेता की रोपाई कर सकते हैं। धान की किस्मों सबौर मोती धान, सबौर सोना आदि की सीधी बुआई भी कर सकते हैं। मोटे अनाजों की खेती हेतु उचास भूमि का चयन करें। मड़ुआ की बकुला के मर 316 GPU 67 BL 379 राजेंद्र मड़वा RU 8 एवं RU 3 तथा कौनी की राजेंद्र कौनी 1 किस्मों की बुवाई कर सकते हैं। उचास जमीन पर अरहर की बुवाई आसमान साफ रहने पर ही करें। बाहर पूसा 9 राजेंद्र अरहर 1 एवं राजेंद्र अरहर 2 किस्मों की बुवाई 60x20 सेंटीमीटर दूरी पर करें। अंतिम जुताई के समय प्रति हेक्टेयर 20 किलोग्राम नेत्रजन, 45 किलोग्राम सूर, 20 किलोग्राम पोटास तथा 20 किलोग्राम गंधक का प्रयोग अवश्य करें। अरहर के लिए अनुशंसित बीज दर 80 से 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है। खरीफ मक्का की बुआई आसमान साफ रहने पर ही करें। खेत की जुताई में 10 से 15 टन गोबर की सड़ी खाद प्रति हेक्टेयर की दर से व्यवहार करें। बुआई के समय प्रति हेक्टेयर 30 किलो नाइट्रोजन, 30 किलो स्फूर एवं 50 किलो पोटास अवश्य व्यवहार करें। अनुशंसित मक्का की किस्में जैसे स्वान, देवकी, शक्तिमान 1, शक्तिमान 2, राजेंद्र शंकर मक्का 3, गंगा 11 है। मूंग की तैयार फलियों की तुड़ाई करें। हरी खाद हेतु उसके पौधों को मिट्टी पलटने वाले हल से जमीन में गाड़ दें। भिंडी, कद्दू, खीरा, ननुआ एवं लौकी की फसलों में निराई गुड़ाई एवं खरपतवार नियंत्रण करें। पत्ती खाने वाली सुंडियों एवं फल छेदक कीटों की नियमित निगरानी करें। प्रकोप होने पर डाइमेथोएट 30 EC का 1 मिली प्रति लीटर पानी की दर से छिड़काव आसमान साफ रहने पर ही करें। खरीफ प्याज की खेती के लिए नर्सरी की तैयारी आसमान साफ रहने पर ही करें। स्वस्थ पौधे के लिए नर्सरी में गोबर की खाद अवश्य डालें। खरीफ प्याज के लिए N53 एग्रीफाउंड डार्क रेड, अर्का, कल्याण, भीमा सुपर किस्में अनुशंसित हैं। प्याज के बीज की व्यवस्था प्रमाणित स्रोत से करें। बीज गिराने के पूर्व बीजोपचार अवश्य कर लें। बीज की दर 8 से 10 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर रखें। अब कुछ जानकारी बागवानी से संबंधित। लीची की फल तोड़ाई के बाद बगीचों में आवश्यक छटाई कर लें, जिससे पेड़ों के भीतर पर्याप्त धूप एवं हवा का संचार हो सके। साथ ही बगीचे में गिरे हुए पत्तों, सूखी शाखाओं एवं अन्य पौध अवशेषों को एकत्र कर हटाएं।

0: आदि। इसमें कीट एवं रोगों के प्रकोप में कमी आएगी तथा पेड़ों के स्वस्थ वृद्धि एवं विकास को बढ़ावा मिलेगा। पशुपालक भाइयों के लिए कुछ जानकारी इस प्रकार से है। माह के अंत तक भैंसों का ब्यात शुरू हो जाता है। ब्याने वाले पशु का विशेष ध्यान रखें। गलाघोटू एवं लंगड़ी रोग से बचाव के लिए जून माह में टीके यदि नहीं लगाए हों तो इस माह में अवश्य लगा दें। ये तो हुई कुछ जानकारी मौसम संबंधी और समसामयिक सुझाव। और अब कुछ जानकारी प्राप्त करते हैं कि खरीफ फसल की तैयारी कैसे करें और इस विषय पर अपनी पूर्व प्रसारित वार्ता के माध्यम से जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर आर पी शर्मा। आइए जानते हैं इस विषय पर विस्तार से।
1: हमारे शरीर के उचित पोषण हेतु फल एवं सब्जियों का सेवन करना बहुत ही आवश्यक है। फल एवं सब्जियों से हमें विटामिन एवं खनिज पदार्थ प्राप्त होते हैं। ये मौसमी होते हैं एवं शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं। वर्ष भर इनका सेवन तभी कर सकते हैं जब हर मौसम में उससे संरक्षित पदार्थ तैयार कर रखें। ध्यान रखें कि जिस समय फल एवं सब्जी सस्ते तथा बहुतायत में उपलब्ध हों, फलों से जेली, जैम, स्क्वैश, मुरब्बा तथा रस संरक्षित पदार्थ बना सकते हैं। सब्जियों से सुखोता, चटनी, अचार या नमक के घोल में संरक्षित कर सकते हैं। फल एवं सब्जियों से संरक्षित पदार्थ कैसे बनाएं इसके बारे में जान लें। फलों से अमरूद की जेली। फलों को टुकड़ों में काटकर उसके वजन से डेढ़ गुना पानी डालकर तेज आंच पर उबालें। जब भांकें भलीभांति गल जाए तो पतले कपड़े से छानकर रस निकालें। इस रस में पेक्टिन नामक पदार्थ रहता है। इस पेक्टिन चीनी, साइट्रिक एसिड तथा पानी के मिश्रण से ही जेली बनती है। जाड़े एवं बसंत ऋतु के अमरूद में अधिक पेक्टिन रहती है। प्रति एक किलोग्राम रस में 600 ग्राम से 750 ग्राम चीनी डालकर इसे तेज आंच पर पकाएं। चीनी घुल जाने पर रस को कपड़े से छान लें, पुनः पकाते जाएं। जब काफ़ी उबलने लगे और तापक्रम 102 से 103 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाए तो प्रति किलोग्राम चीनी के लिए 6 ग्राम साइट्रिक एसिड थोड़ा पानी में घोल कर डाल दें। साइट्रिक एसिड के बदले 5-6 रसदार नींबू का रस निचोड़ कर डाल सकते हैं। 107 डिग्री सेंटीग्रेड पर जेली तैयार हो जाती है। इसकी पहचान के लिए काट के चलौने से पकते हुए जेली की कुछ मात्रा लेकर हवा में घुमावें एवं गिरावें। यदि बूंद बूंद न टपक कर पतली झिल्ली के रूप में गिरे तो जेली तैयार समझें। इसे आंच पर से उतार लें। थोड़ी देर के बाद ऊपर का झाग चम्मच से काट कर निकाल दें। जेली को गर्म अवस्था में ही चौड़े मुँह वाली बोतलों में भर दें तथा जम जाने पर पिघले मोम की परत ऊपर डालकर ढक्कन लगाकर रखें। जैम। फलों को छीलकर खाने वाले भाग गूदा को निकाल लें तथा इसको तौल लें। गूदा के तौल की 3/4 मात्रा चीनी तौल लें। यदि फल कड़ा हो तो थोड़ा पानी मिलाकर आग पर इसे नरम कर लें। चीनी डालकर पकाएं। जब तापक्रम 102 से 103 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाए प्रति किलो चीनी की मात्रा के लिए 5 ग्राम साइट्रिक एसिड थोड़ा पानी में घोलकर मिला दें और पकाएं। जब गाढ़ा हो जाए या तापक्रम 106 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाए तो आग से उतार लें। उतारने के बाद प्रति किलोग्राम जैम में 0.5 ग्राम सोडियम बेंजोएट नामक पररक्षी थोड़ा पानी में घोलकर जैम में मिला दें। इसे चौड़ी मुँह वाली कांच की बोतल में भर दें। इसके ऊपर पिघले मोम की परत डालकर ढक्कन लगाकर रखें। रस का संरक्षण। रस के संरक्षण हेतु फलों को भलीभांति धोकर रस निकाल लें तथा छान लें। रस को गर्म करें लेकिन खोलने के पहले उतार लें। इसके संरक्षण के लिए ठंडा होने पर 1.2 ग्राम पोटेशियम मेटावाई सल्फाइड थोड़ा पानी में घोलकर मिलावें। बोतल को गर्म पानी से अच्छी तरह साफ कर रस को भरकर काग लगा दें। काग के ऊपर पिघले मोम की एक परत डाल दें। इसे सुरक्षित स्थान पर रखें। रस का उपयोग पीने या शरबत बनाने में कर सकते हैं। फलों का स्क्वैश। प्राय सभी रसदार फलों से स्क्वैश बनाया जा सकता है। फलों से सर्वप्रथम रस निकाल लेते हैं तथा उसे छान लें। प्रति 1 किलो नीबी रस के लिए 2 किलो चीनी तथा अन्य फलों के लिए 1.5 किलो चीनी लें। चीनी का आधा पानी लें। पहले चीनी को पानी में गर्म करके घोल लें। इस घोल में साइट्रिक एसिड 5 से 6 ग्राम प्रति किलो चीनी के हिसाब से डाल दें। यदि नींबू का स्क्वैश बनाना है तो साइट्रिक एसिड नहीं डालें। चीनी के घोल को छान लें। ठंडा होने पर चीनी के घोल तथा रस को मिला दें। प्रति किलो स्क्वैश के लिए 0.6 ग्राम चाय के चम्मच का 1/8 भाग पोटेशियम मेटावाई सल्फाइड थोड़ा पानी में घोल कर मिला दें। यदि चाहें तो फलों के एसेंस भी मिलते हैं, इसमें 5-7 बूंद मिला सकते हैं। इसे साफ बोतलों में भरकर काग लगा दें। काग पर पिघले मोम की परत डालकर रखें। सेवन हेतु 1 भाग स्क्वैश तथा 2 से 3 भाग पानी मिलावें। फलों का मुरब्बा। आंवला तथा बेर का मुरब्बा बना सकते हैं। सबसे पहले फलों को धो लें। इसके बाद स्टील के कांटों से गोद लें। इसे 2.0% नमक के घोल में 24 घंटा रखें। दूसरे दिन नमक की मात्रा 4% कर दें। तीसरे दिन नमक की मात्रा 6% कर दें। चौथे दिन नमक घोल में नमक की मात्रा 8% कर दें। फलों को 8% नमक के घोल में 2 दिनों तक रखें। फिर 2% फिटकरी के घोल में उबालें। इसे साफ पानी में अच्छी तरह धो लें, जिससे नमक की मात्रा दूर हो जाए। फल की मात्रा की आधा चीनी फलों में डालकर 24 घंटा छोड़ दें। दूसरे दिन फलों को निकालकर चीनी के घोल को गर्म कर गाढ़ा करें। पुनः तीसरे दिन बची हुई चीनी की मात्रा को डालकर चाशनी को गाढ़ा करें तथा फलों को डाल दें। इस क्रिया को जब तक करें तब तक चाशनी गाढ़ी न हो जाए। इस विधि से तैयार मुरब्बा का रंग तथा स्वाद उत्तम रहेगा। अब हम बताएंगे कि घरेलू स्तर पर सब्जियों का संरक्षण कैसे करें। सुखौता। सब्जियों को धूप में सुखाकर सुखौता तैयार करने की प्रथा प्राचीन समय से घरों में चली आ रही है, लेकिन अच्छा आकर्षक बदली या बरसात में सुखौता तैयार करने के लिए बहुत से आधुनिक यंत्र तथा उपचार उपलब्ध हैं। इनमें से एक घरेलू सुखावन यंत्र जिसे होम ड्राइवर है, यह घरेलू स्तर पर बहुत उपयोगी है। इसमें जस्ता चढ़ी हुई लोहे की चादरों का बॉक्स होता है, जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई 90x60x60 सेंटीमीटर होती है।
0: बहुत ही अच्छी बातों की जानकारी को हम लोगों ने सुना। इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए वार्ताकार को बहुत बहुत धन्यवाद। और अब हमारे कार्यक्रम का समय समाप्त होता है। लेते हैं आप सभी श्रोता भाई बहनों से विदा। सबको सोना का नमस्कार।
2: सबका गैरू के भी नमस्कार।

ग्राम जगत खेती गृहस्थी कार्यक्रम आप सुन रहे थे। आकाशवाणी के भागलपुर केंद्र से प्रस्तुतकर्ता थे अतुल कुमार प्रियदर्शन। 7 बजे हैं रांची से, सुनिए प्रादेशिक समाचार।

0: प्रतिष्ठानों को अपनी स्थिति नियमित करने के लिए शुरू की 6 महीने की माफी योजना। और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा है कि देश के 14 लाख आंगनवाड़ी केंद्रों के माध्यम से करीब 9 करोड़ लाभार्थियों तक पोषण और प्रारंभिक शिक्षा की सेवाएं पहुंचाई जा रही हैं। उन्होंने कहा कि पोषण माह और पोषण पखवाड़ा के जरिए श्री अन्न और स्थानीय खान पान को बढ़ावा देकर महिलाओं और बच्चों के मानसिक एवं शारीरिक विकास पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।
1: महिला बाल विकास विभाग बहुत ही महत्वपूर्ण विभाग है। 14 लाख केंद्रों में लगभग 9 करोड़ के आसपास हमारे लाभार्थी हैं, जो 3 से 6 साल के हमारे बच्चे हैं। बच्चे को जब वो आंगनवाड़ी केंद्र में आते हैं तो उनको पोषण के साथ साथ उनको स्कूल के लिए रेडी करना, ये मुख्य लक्ष्य है।
0: ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री दीपिका पांडेय सिंह ने कहा है कि विकास का उद्देश्य केवल शहरों का विस्तार नहीं बल्कि अंतिम पंक्ति के व्यक्ति तक अवसर, सुविधा और सम्मान पहुंचाना है। उन्होंने कहा कि सरकार हर गांव और पंचायत को सशक्त बनाकर समावेशी विकास सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। सोशल मीडिया पर मंत्री ने एक पोस्ट के जरिए कहा कि राज्य सरकार का लक्ष्य समाज के अंतिम व्यक्ति तक विकास की किरण समान रूप तक पहुंचाना है। राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा ने दावा किया है कि अयोध्या आने वाले श्रद्धालु मंदिर की व्यवस्थाओं और पूजा पद्धति से संतुष्ट हैं। उन्होंने कहा कि संभावित CEO की भूमिका और अधिकार तय करना ट्रस्ट का विषय है। वहीं कथित चढ़ावा गबन के आरोपों को लेकर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और रांची के पूर्व सांसद सुबोध कांत सहाय ने ट्रस्ट की जवाबदेही पर सवाल उठाए हैं।
2: ये एक बड़ा सवाल है कि जो आस्था के तौर पे मंदिरों में दान देते हैं, ब्लाइंड तौर पे बिना बताए हुए डाल है, उन सारे चीजों का अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। तिरुपति इतना बड़ा मंदिर है, कभी आज तक ये बात नहीं आया हुआ।
0: प्रदेश भाजपा ने झारखंड कौशल विकास मिशन सोसाइटी पर ब्लैकलिस्टेड कंपनियों को सूची से हटाकर करोड़ों रुपए के भुगतान का आरोप लगाया है। प्रदेश प्रवक्ता अजय शाह ने दस्तावेजों के आधार पर उच्च स्तरीय न्यायिक जांच और संबंधित अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग की है। श्री शाह आज रांची में एक प्रेस वार्ता को संबोधित कर रहे थे।
3: झारखंड में स्किल डेवलपमेंट के विभाग ने ब्लैक लिस्टेड कंपनीज को 55 करोड़ रुपए का पेमेंट किया, जो कि पूर्ण रूप से अवैध है, और अगस्त यानी कि अगले महीने से इनको और पेमेंट देने की तैयारी है। इसमें क्या रूपरेखा, कैसे ये पूरा घपला हुआ है, घोटाला हुआ है, मैं एक एक करके आपके सामने इसका विवरण रखता जाऊंगा।
0: झारखंड में स्वर्ण व्यवसायियों के खिलाफ बढ़ती आपराधिक घटनाओं को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने चिंता जताई है। अपने सोशल मीडिया हैंडल पर श्री मरांडी ने गोड्डा और गुमला जिले में हाल की लूट की घटनाओं का उल्लेख करते हुए राज्य सरकार पर सुरक्षा देने में विफल रहने का आरोप लगाया है। उन्होंने पुलिस से दोषियों के विरुद्ध त्वरित कार्रवाई की मांग भी की है। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने कहा है कि राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने दावा किया कि वे प्रतिदिन लोगों की समस्याएं सुनकर उनके समाधान का प्रयास करते रहें और जनता का विश्वास ही उनकी सबसे बड़ी ताकत है। साथ ही उन्होंने विपक्ष की आलोचनाओं पर भी प्रतिक्रिया दी। मंत्री ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट के जरिए दावा किया कि राज्य सरकार के कार्यों के प्रति जनता का भरोसा दिन प्रतिदिन मजबूत होता जा रहा है। आकाशवाणी के ताजातरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताज़ा समाचार एक्स हैंडल @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIRNews_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIRNews Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ ने माफी योजना 2026 शुरू की है। इसके तहत छूट प्राप्त भविष्य निधि ट्रस्ट चलाने वाले प्रतिष्ठानों को अपनी स्थिति नियमित करने का एकमुश्त अवसर दिया गया है। इसका लाभ उन प्रतिष्ठानों को मिलेगा जो आयकर अधिनियम 1961 के तहत मान्यता प्राप्त भविष्य निधि ट्रस्ट का संचालन कर रहे हैं। ऐसे ट्रस्ट में कर्मचारी भविष्य निधि का प्रबंधन सीधे ईपीएफओ के बजाय संबंधित प्रतिष्ठान अपने निजी ट्रस्ट के माध्यम से करता है। एक रिपोर्ट।
4: ईपीएफओ की एमनेस्टी योजना मान्यता प्राप्त भविष्य निधि ट्रस्ट चला रहे पात्र संस्थानों को नियमित करने का एक और अवसर प्रदान करती है। इस योजना के तहत वे अपने ट्रस्ट की स्थिति को पिछली तारीख से नियमित करा सकते हैं। इसका उद्देश्य ऐसे ट्रस्टों को एक समान वैधानिक व्यवस्था के दायरे में लाना और सभी लागू कानूनी प्रावधानों के पालन को सुनिश्चित करना है। कर्मचारियों के लिए यह योजना उनके नियोक्ता के भविष्य निधि ट्रस्ट की कानूनी स्थिति को लेकर अधिक स्पष्टता और भरोसा प्रदान करेगी। योजना के तहत निर्धारित राहत का लाभ तभी मिलेगा जब सदस्यों के खातों में निर्धारित अवधि के दौरान अंशदान जमा किया गया हो और उस पर ईपीएफओ की वैधानिक ब्याज दर के बराबर या उससे अधिक ब्याज दिया गया हो। छूट प्राप्त पीएफ ट्रस्टों को नियमित किए जाने से भविष्य निधि लाभों का प्रबंधन अधिक सरल, सुव्यवस्थित और कानूनी प्रावधानों के अनुरूप होने की भी उम्मीद है। दीपेंद्र कुमार की रिपोर्ट के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: रांची विश्वविद्यालय के 67वें स्थापना दिवस समारोह का समापन प्रशासनिक भवन परिसर में हरित वितिका के तहत पौधारोपण के साथ हुआ। कुलपति प्रोफेसर सरोज शर्मा ने पर्यावरण संरक्षण और हरियाली को आने वाली पीढ़ियों के लिए महत्वपूर्ण बताया। कार्यक्रम में विश्वविद्यालय के पदाधिकारियों, शिक्षकों, छात्रों और कर्मियों ने पौधारोपण किया। पाकुड़ जिले में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के तहत शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के विभिन्न मतदान केंद्रों पर डिजिटाइजेशन कैंप लगाए गए। कैंपों में गणना प्रपत्र को वितरण, संग्रह और ऑनलाइन डिजिटाइजेशन किया गया। इस अवसर पर उप विकास आयुक्त अरविंद कुमार लाल सहित अन्य अधिकारियों ने विभिन्न केंद्रों का निरीक्षण किया। खूंटी जिले से पुलिस ने प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन पीएलएफआई के एक हार्डकोर उग्रवादी को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक ऋषभ गर्ग ने बताया कि आरोपी की निशानदेही पर एक देशी पिस्टल और 6 जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। रांची में भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा के समक्ष राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय थ्रोबॉल खिलाड़ियों ने शांतिपूर्ण सांकेतिक धरना दिया। खिलाड़ियों ने राज्य में समानांतर संगठन बनाए जाने का विरोध करते हुए कहा कि इससे चयन प्रक्रिया, मान्यता और खिलाड़ियों के भविष्य पर असर पड़ेगा। थ्रोबॉल एसोसिएशन के अध्यक्ष वेदांत कौस्तभ ने कहा कि खिलाड़ियों को विवाद नहीं बल्कि बेहतर प्रशिक्षण, प्रतियोगिताएं और रोजगार के अवसर चाहिए।
5: जब से थ्रोबॉल झारखंड में आया है तब से लगातार यहाँ के खेल को बढ़ाने के लिए, खिलाड़ियों को बढ़ाने के लिए मेहनत कर रहा है। इसी बीच कई एक राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताएं भी आयोजित की गई, सेकंड साउथ एशियन चैंपियनशिप का भी आयोजन हुआ। कहीं ना कहीं पूरे झारखंड के लिए और भारत के लिए एक बहुत गर्व का विषय। कुछ दिन पहले एक नए संघ का घोषणा किया गया है, अनुचित है यहाँ के खेल के लिए। तो हमें लगता है कि खेल को और खिलाड़ियों को बांटने का एक प्रयास है।
0: पश्चिमी सिंहभूम जिले के चाईबासा में आज जापान कराटे एसोसिएशन झारखंड की ओर से कराटे प्रशिक्षण शिविर सह ब्लैक बेल्ट डिप्लोमा परीक्षा का आयोजन किया गया। शिविर में चाईबासा सहित राज्य के विभिन्न क्षेत्रों से पहुंचे लगभग 150 कराटे खिलाड़ियों ने भाग लेकर उच्च स्तरीय प्रशिक्षण प्राप्त किया और ब्लैक बेल्ट डिप्लोमा परीक्षा में हिस्सा लिया। इस मौके पर जेकेए इंडिया के तकनीकी निदेशक सिहान आनंद रत्ना ने खिलाड़ियों को कराटे की उन्नत तकनीकों और आत्मरक्षा के प्रभावी तरीकों की जानकारी दी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। महिलाओं और बच्चों के समग्र विकास पर केंद्र सरकार का जोर। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने पोषण माह और पोषण पखवाड़े के जरिए जागरूकता बढ़ाने पर दिया बल। ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडेय सिंह ने कहा, गांव और पंचायतों को मजबूत करना राज्य सरकार का है लक्ष्य, अंतिम व्यक्ति तक विकास पहुंचाने की जारी है कोशिश। प्रदेश भाजपा ने राज्य में चल रहे कौशल विकास मिशन में अनियमितता का लगाया आरोप। ब्लैकलिस्टेड कंपनियों को भुगतान का दावा, न्यायिक जांच की मांग। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी का बयान, स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार राज्य सरकार की प्राथमिकता, विपक्ष पर किया पलटवार। और कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने निजी भविष्य निधि ट्रस्ट संचालित करने वाले प्रतिष्ठानों को अपनी स्थिति नियमित करने के लिए शुरू की 6 महीने की माफी योजना। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन कल सुबह 8:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

हम आकाशवाणी के भागलपुर केंद्र से बोल रहे हैं। 7:11 हुए हैं। आइए सुनते हैं लोकगीत कार्यक्रम में शिवशंकर कुशवाहा को। आरंभ में इनसे सुनिए ये देवी गीत।

0: अब सुनिए ये शिव भजन।
1: आ

लोकगीत आप सुन रहे थे शिवशंकर कुशवाहा एवं साथियों से। प्रसारण आकाशवाणी के भागलपुर केंद्र से किया गया। अब से थोड़ी देर बाद यानी 7:30 से आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार हमारे पटना केंद्र से। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: पशुपालक भाई बहन अत्यधिक गर्मी में पशुओं के रख रखाव का कृपया ध्यान रखें।
1: पशुओं को लू से बचाने के लिए छायादार जगह पर रखें। पशु घर को ठंडा रखने के लिए जूट की टाट लटकाकर उसे गीला रखें। उन्हें दिन में 2 से 3 बार नहलाएं, 3 से 4 बार ठंडा और साफ पानी पीने को दें। खाने में अजोला घास, चोकर और जौ की मात्रा बढ़ा दें। चराने के लिए सुबह जल्दी और शाम को देर से भेजें। लू लगने पर नजदीकी पशु चिकित्सालय में संपर्क करें।
0: डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग और सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, बिहार सरकार द्वारा जनहित में जारी।
2: बंधु, नई कार जीतने का मौका? वाओ, पापा को सरप्राइज दूंगी। बस थोड़ी सी तो उनकी डिटेल भरनी है।
3: रुक जा बुद्धू।
4: What? ऐसे पॉपअप से सावधान रहो, स्कैमर्स पर्सनल डिटेल्स का गलत यूज कर सकते हैं।
2: तो समझ गई ना, रिलैक्स। पर कार्ड जीत जाते तो पापा होमवर्क नहीं कराते।
4: RBI कहता है स्मार्ट बनो, कूल रहो।
5: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
6: आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीर कर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
5: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अंशु अवस्थी से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने मुजफ्फरपुर में 1047 करोड़ रुपए की लागत वाली 900 से अधिक योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए नामांकन का कल अंतिम दिन। एनडीए और महागठबंधन ने अपनी अपनी जीत

0: के दावे। गया जी के बिपार्ट परिसर में विधानसभा सदस्यों का दो दिवसीय प्रशिक्षण शिविर सह प्रबोधन कार्यक्रम संपन्न। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर प्रेम कुमार ने कहा, विधायकों को सदन में प्रभावी काम करने में मदद मिलेगी। और मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान मुजफ्फरपुर, वैशाली, कटिहार, जमुई और बांका सहित विभिन्न जिलों में तेज हवा के साथ बारिश का पूर्वानुमान जताया। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा है कि राज्य की एनडीए सरकार लोगों के विकास के लिए लगातार काम कर रही है। श्री चौधरी ने आज मुजफ्फरपुर में 1047 करोड़ रुपए की लागत वाली 900 से अधिक योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करने के बाद सभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि नगर विकास और आवास विभाग की इन योजनाओं से शहर में सड़क, जल निकासी और पार्क समेत अन्य शहरी आधारभूत सुविधाओं का विकास किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार के 100 दिन पूरे होने पर मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत महिलाओं को राशि दी जाएगी।
1: सरकार के महिलाओं को मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत हम लोग उनको रोजगार के लिए राशि उपलब्ध कराएंगे। 1,81,00,000 हमारी बहनों के खाते में हम लोगों ने पैसा पहुंचाया। और बता देना चाहता हूं, दूसरा किस्त हो या कुछ बहने हमारी जो छूट गई है उनको भी आश्वस्त करता हूं, इसी महीने हमारी सरकार का 100 दिन पूरा हो रहा है, उस दिन आप सभी बहनों के खाते में फिर से आपके खाते में राशि देने का काम हमारी सरकार करेगा। साथियों,
0: मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार अपराध और अपराधी से कोई समझौता नहीं करेगी, अपराध करने वालों को कड़ी सजा दी जाएगी।
1: अपराधी से कोई समझौता नहीं, अपराधी कोई हो उसको जेल के अंदर रहना पड़ेगा और नहीं तो उसको बिहार छोड़ना पड़ेगा। भ्रष्टाचार के खिलाफ भी जीरो टॉलरेंस है साथियों, और साइबर क्राइम में भी हम लोगों ने जीरो टॉलरेंस रखा है।
0: सभा को संबोधित करते हुए श्री चौधरी ने कहा कि मुजफ्फरपुर में आर्किटेक्ट यूनिवर्सिटी बनाई जाएगी।
1: मैं आज घोषणा करता हूं कि इस मुजफ्फरपुर MIT की धरती पर एक आर्किटेक्चर और सिविल इंजीनियरिंग का एक यूनिवर्सिटी बनाने का काम हमारी सरकार करेगा।
0: बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए नामांकन का कल अंतिम दिन है। उपचुनाव को लेकर प्रचार प्रसार का शोर बढ़ गया है। प्रत्याशी लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं। भाजपा प्रत्याशी नीरज कुमार सिन्हा और जन सुराज के प्रत्याशी प्रशांत किशोर के कल नामांकन दाखिल करने की संभावना है। उपचुनाव के लिए अब तक 11 प्रत्याशियों ने अपने नामांकन पत्र दाखिल किया है। उम्मीदवार 16 जुलाई तक अपना नाम वापस ले सकते हैं। बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए मतदान 30 जुलाई को होगा, जबकि मतगणना 3 अगस्त को कराई जाएगी। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के मंत्री श्रवण कुमार ने दावा किया है कि बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में एनडीए की जीत पक्की है। श्री कुमार ने आज पटना में संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि चुनाव में राजद और जनसुराज की हार तय है।
2: जो सम्राट चौधरी के नेतृत्व में काम चल रहा है और नीतीश कुमार जी के काम को आगे बढ़ाने का काम हमारी सरकार कर रही है, हर क्षेत्र में बिहार आगे बढ़ रहा है, सबको मदद किया गया है, इसलिए एनडीए के उम्मीदवार काफी मतों के अंतर से विजय होंगे। अभी तो सब ताल ठोक रहे हैं और ताल ठोकते रहेंगे।
0: इधर राजद प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा है कि बांकीपुर की जनता पार्टी प्रत्याशी रेखा गुप्ता के साथ है। श्री तिवारी ने कहा कि 3 अगस्त को चुनावी नतीजे चौंकाने वाले रहेंगे।
3: बांकीपुर की जनता राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन के उम्मीदवार श्रीमती रेखा गुप्ता जी के साथ है। बीजेपी के पास उम्मीदवार ही नहीं है जो जनता के आक्रोश का सामना कर पाए, इसीलिए बीजेपी चुनाव से पहले ही हार मान गई। 3 अगस्त बीजेपी का किला बांकीपुर ध्वस्त।
0: गया जी स्थित बिपार्ट परिसर में विधायकों के लिए 2 दिवसीय प्रशिक्षण सह प्रबोधन शिविर आज संपन्न हो गया। विधानसभा अध्यक्ष प्रेम कुमार ने समापन सत्र के बाद आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा कि समय समय पर इस तरह के आयोजन से विधायकों को सदन में जनता की आवाज अधिक प्रभावी ढंग से उठाने में मदद मिलेगी।
4: आज के समय में लोकतंत्र निरंतर विकसित हो रहा है, जनता की अपेक्षाएं बढ़ी है, और जनप्रतिनिधियों की जिम्मेदारियां जो पहले से अति व्यापक हुई है, ऐसे में समय समय पर इस प्रकार के प्रशिक्षण एवं संवाद कार्यक्रम अत्यंत आवश्यक ताकि जनप्रतिनिधियों अपने दायित्वों का प्रभावी ढंग से निर्वहन कर सके। यह कार्यक्रम किसी एक दल या विचारधारा का नहीं बल्कि लोकतांत्रिक संस्थाओं को अधिक सशक्त, उत्तरदायी और प्रभावी बनाने की भूमिका का प्रयास।
0: इस शिविर का उद्देश्य जनप्रतिनिधियों को संसदीय प्रक्रियाओं, विधायी परंपराओं, डिजिटल विधानसभा और उनकी संवैधानिक जिम्मेदारियों के बारे में प्रशिक्षित करना था। इस शिविर का उद्घाटन उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कल किया था। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है कि नरेंद्र मोदी की सरकार आने से पहले देश में केवल 5 जलमार्ग थे, लेकिन आज 111 जलमार्ग बनाए जा चुके हैं। श्री सिंह ने बेगूसराय में संवाददाताओं से बातचीत करते हुए कहा कि सिमरिया में मल्टी मॉडल टर्मिनल के निर्माण के लिए उन्होंने केंद्र से मांग की है।
5: हम भी मांग किए हैं कि सिमरिया में मल्टी मॉडल टर्मिनल, आज देखिए बड़े बड़े कार्गो रिफाइनरी के विस्तार के लिए उसमें जो लगेगा यंत्र वो बड़े बड़े कार्गो पे आ रहे हैं। ये आने वाले दिन में एक मल्टी मॉडल टर्मिनल यहाँ बनने का बनाने के लिए हम जल पोत डिपार्टमेंट को हमने लिखा है जल मार्ग विस्तृत करने के लिए, उम्मीद है वो होगा तो इसका एक नया स्वरूप दिखेगा।
0: केंद्र सरकार ने सोशल मीडिया पर चल रही उस फर्जी तस्वीर का खंडन किया है जिसमें दावा किया गया है कि इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल से वाहन के ईंधन टैंक में समस्या हो सकती है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने इस दावे को झूठा बताया है। कार्यालय ने कहा है कि पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि तेल विपणन कंपनियों द्वारा आपूर्ति किया जाने वाला E20 पेट्रोल भारतीय मानक ब्यूरो के निर्धारित मानकों के अनुरूप है। मंत्रालय ने कहा है कि निर्धारित मानकों के अनुरूप होने पर इथेनॉल और पेट्रोल पूरी तरह से घुलनशील होते हैं। मंत्रालय ने यह भी आश्वासन दिया है कि भारत में आपूर्ति किया जाने वाला इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल उच्च गुणवत्ता मानकों का पालन करता है और उपभोक्ताओं को उपलब्ध कराए जाने से पहले इसका गहन परीक्षण किया जाता है। शेष समाचार एक अंतराल के बाद।
6: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल, पुरानी यादें नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

0: समाचारों में आपका फिर स्वागत है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Patna को फॉलो कर सकते हैं। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि सतत भविष्य सुनिश्चित करने तथा पर्यावरण संरक्षण के लिए पौधारोपण बहुत ही महत्वपूर्ण है। नई दिल्ली में वृक्ष मित्र और पर्यावरण संरक्षण संकल्प कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री चौहान ने कहा कि आज पूरी दुनिया जलवायु परिवर्तन और धरती का तापमान बढ़ने को लेकर चिंतित है। उन्होंने कहा कि वर्ष 1880 के बाद समुद्र के बढ़ते तापमान और पिघलते हिमनदों ने वैश्विक समुद्री जल स्तरों को लगभग 20 से 23 सेंटीमीटर तक बढ़ा दिया है। श्री चौहान ने कहा कि आज पूरा विश्व जलवायु परिवर्तन और बढ़ते तापमान को लेकर चिंतित है।
1: वर्तमान दर से अगर ग्रीन गैसों का उत्सर्जन जारी रहा, वनों की कटाई, प्रदूषण और प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक दोहन जारी रहा तो 2050 तक पृथ्वी को गंभीर पर्यावरणीय, आर्थिक और सामाजिक चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा।
0: श्री चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस संकट से निपटने के लिए कई पहल की है। उन्होंने कहा कि देश में नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है। श्री चौहान ने पर्यावरण की रक्षा और संरक्षण के लिए एक पेड़ माँ के नाम अभियान और मिशन लाइफ जैसी पहलों का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि भारत ने वर्ष 2070 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य निर्धारित किया है। पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश ने कहा है कि विकास योजनाओं का लाभ पंचायत स्तर तक पहुंचाने के लिए सरकार लगातार काम कर रही है। श्री प्रकाश ने शेखपुरा दौरे के दौरान संवाददाताओं से बातचीत में जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों को भी जनता के प्रति संवेदनशील रहने को कहा।
2: योजनाओं का लाभ मिल रहा है लोगों को, लेकिन जो अपेक्षित लाभ है जिस उद्देश्य के साथ योजनाएं बनाई जा रही है, निश्चित तौर पर पंचायत स्तर को इसमें और बेहतरी किए जाने की जरूरत है। मुख्यतः इसमें एक तो लोगों को खुद जागरूक होना पड़ेगा, साथ ही साथ दूसरा जो जनप्रतिनिधि भी इसमें और ज्यादा बेहतर तरीके से काम करे, पूरी ईमानदारी के साथ काम करे, लोग खुद निरीक्षण करे और पदाधिकारी भी संवेदनशील होकर काम करे। अगर तीनों लेवल पे काम होगा, तीनों लेवल पे ही काम करने की जरूरत है। लोग लगे हुए आने वाले समय में पंचायती राज व्यवस्था और मजबूत होगी, जो भी योजनाएं चल रही है उनका लाभ लोगों को सही तरीके से मिलेगा, हर प्रकार से कोशिश की जा रही है।
0: प्रदेश में मॉनसून की सक्रियता से पिछले 24 घंटों के दौरान राज्य के अनेक भागों में बारिश का सिलसिला जारी है। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार सीवान जिले के कुछ स्थानों पर भारी बारिश रिकॉर्ड की गई है। जिले के मैरवा में सबसे अधिक 75.6 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के अनुसार अगले 24 घंटों के दौरान मुजफ्फरपुर, वैशाली, किशनगंज, कटिहार, जमुई और बांका जिले के अनेक स्थानों पर बारिश हो सकती है।
3: दिनांक 13 जुलाई राज्य के कटिहार एवं किशनगंज जिलों में मेज गर्जन वज्रपात तथा अत्यधिक भारी वर्षा के साथ तेज हवा 30 से 40 किमी प्रति घंटे तक चलने की संभावना है। राज्य के अररिया, बांका, भागलपुर, मधेपुरा, पूर्णिया एवं सुपौल जिलों में मेज गर्जन वज्रपात तथा भारी वर्षा के साथ तेज हवा 30 से 40 किमी प्रति घंटे तक चलने की संभावना है। राज्य के उत्तर मध्य एवं दक्षिण मध्य भाग के जिलों जमुई, खगड़िया, मुंगेर एवं सहरसा जिलों में मेज गर्जन वज्रपात के साथ तेज हवा 30 से 40 किमी प्रति घंटे तक चलने की संभावना है।
0: इधर विभाग ने बेगूसराय, दरभंगा, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, शिवहर और सीतामढ़ी जिले के कुछ भागों में अगले एक घंटे के दौरान वज्रपात के साथ बारिश की चेतावनी जारी की है। नेपाल के तराई क्षेत्रों में भारी बारिश और उत्तर बिहार के कई क्षेत्रों में लगातार बारिश से गंडक नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। नदी का पानी पश्चिम चंपारण जिले के योगापट्टी प्रखंड के सिसवा गांव में कई घरों में प्रवेश कर गया है। जल संसाधन विभाग के कार्यपालक अभियंता बाढ़ और कटाव पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। इधर कोसी नदी के जलस्तर में भी बढ़ोतरी हुई है। इसे देखते हुए नदी पर स्थित बराज के कई फाटकों को खोल दिया गया है। पूर्व मुख्यमंत्री सत्येंद्र नारायण सिन्हा की जयंती पर पटना में राजकीय समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर पटना के श्रीकृष्णापुरी पार्क में राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सेवानिवृत्त सैयद अता हसनैन, मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और उप मुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी सहित अन्य गणमान्य लोगों ने उनकी प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। भागलपुर जिले के हबीबपुर थाना क्षेत्र स्थित कोल्ड स्टोरेज के सामने कब्रिस्तान में जनाजा ले जाने के दौरान हाई टेंशन तार की चपेट में आने से 6 लोग घायल हो गए। सभी घायलों को मायागंज अस्पताल में भर्ती कराया गया है। रोहतास जिले के अकोढ़ी गोला थाना क्षेत्र में पुलिस ने एक निर्माणाधीन मकान से 7,990 लीटर विदेशी शराब के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। जब्त शराब की कीमत 10 लाख रुपए बताई गई है। वहीं मुंगेर जिले के टेटिया बंबर थाना क्षेत्र के छाता चौक के पास से पुलिस ने एक ट्रक से 3,447 लीटर शराब जब्त की है। सिवान जिले के मैरवा थाना की पुलिस ने पंडितपुरा गांव में छापेमारी कर जाली नोटों के अवैध कारोबार का भंडाफोड़ करते हुए 5,45,000 रुपए के जाली नोट समेत दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। जमुई सांसद अरुण भारती ने शेखपुरा में केंद्रीय विद्यालय पहुंचने के लिए लगभग 15 लाख रुपए की राशि से पहुंचे पथ के निर्माण और विद्यालय के बाउंड्री वॉल की आधारशिला रखी। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने मुजफ्फरपुर में 1,047 करोड़ रुपए की लागत वाली 900 से अधिक योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। बाकीपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए नामांकन का कल अंतिम दिन। एनडीए और महागठबंधन ने अपनी अपनी जीत के किए दावे। गैजी के बिपाट परिसर में विधानसभा सदस्यों का 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर सह प्रबोधन कार्यक्रम सम्पन्न। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर प्रेम कुमार ने कहा विधायकों को सदन में प्रभावी काम करने में मदद मिलेगी। और मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान मुजफ्फरपुर वैशाली कटिहार जमुई और बांका सहित विभिन्न जिलों में तेज हवा के साथ बारिश का पूर्वानुमान जताया। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन प्रातः 8:48 से प्रसारित किया जाएगा।
4: रुक जा, असली नोट से क्यों खेल रहा है?
5: ब्रो, ये फटा है।
6: सुन, कटे फटे या पुराने नोट को
4: बैंक ब्रांच में एक्सचेंज कर सकते हैं।
5: वाओ, नया नोट मिलेगा?
6: हाँ, जिससे तू हमें पिज़्ज़ा पार्टी देगा।
4: आरबीआई कहता है स्मार्ट बनो,
7: कूल रहो।
8: आकाशवाणी @90 90 साल की आवाज दिल से दिल तक।

0: यह आकाशवाणी का पटना केंद्र है। अब प्रस्तुत है अरवल जिले की हलचल। इसे प्रस्तुत कर रहे हैं हमारे संवाददाता चंद्रभूषण कुमार।
1: अरवल जिले में इन दिनों किसान युद्ध स्तर पर धान की रोपनी में जुटे हैं। जिले में पर्याप्त बारिश नहीं होने के कारण किसानों को रोपनी के लिए सिंचाई के अन्य साधनों का सहारा लेना पड़ रहा है। सोन नहर में पर्याप्त पानी नहीं रहने के कारण नहर के अंतिम छोर तक पानी नहीं पहुंच पा रहा है। जिला कृषि पदाधिकारी ने बताया कि जिले में धान की खेती के लिए 44,000 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। उन्होंने कहा कि किसानों को अनुदानित दर पर धान के बीज उपलब्ध कराए गए हैं, साथ ही जिले में पर्याप्त मात्रा में उर्वरक भी उपलब्ध है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी द्वारा 10 जुलाई को सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत जिले के 79,321 लाभार्थियों के खाते में डीबीटी के माध्यम से 11,69,81,400 रुपए की राशि हस्तांतरित की गई। इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण समाहरणालय के सभाकक्ष, प्रखंड परिसर, पंचायत सरकार भवन तथा आंगनबाड़ी केंद्रों पर किया गया। पेंशन की राशि प्राप्त होने के बाद लाभार्थियों के चेहरे पर खुशी देखी गई। बीते दिनों जिले के प्रभारी मंत्री दीपक प्रकाश द्वारा कलेर प्रखंड के टेरी ग्राम पंचायत में बेटी जन्मोत्सव किट का वितरण पात्र लाभार्थियों के बीच किया गया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि सशक्त समाज के निर्माण के लिए बालिकाओं और महिलाओं का सशक्तिकरण आवश्यक है। श्री प्रकाश ने कहा कि बालिकाओं को बेहतर विकास के लिए पोषण, शिक्षा और सुरक्षा सुनिश्चित करना हम सभी की जिम्मेदारी है, तभी देश और समाज को सशक्त बनाया जा सकता है। इधर मंत्री दीपक प्रकाश ने बीते दिनों पंचायत विकास दिवस कार्यक्रम का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि सरकार में आम लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए पंचायतों में प्रत्येक माह के अंतिम रविवार को इस तरह के कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। इसके माध्यम से पंचायतों में किए जा रहे विकास कार्यों, खर्च की गई राशि, उसकी गुणवत्ता सहित अन्य जानकारियां आम लोगों को उपलब्ध कराई जाएगी। जिले में बीते 2 जुलाई से 8 जुलाई तक सतर्कता जागरूकता सप्ताह का आयोजन किया गया। इस दौरान जिला पदाधिकारी द्वारा समाहरणालय में पदाधिकारियों और कर्मचारियों को ईमानदारी, कर्तव्य निष्ठा तथा भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन देने की शपथ दिलाई गई। इससे पूर्व 28 जून से 2 जुलाई तक जिले में पल्स पोलियो अभियान चलाया गया। अभियान के तहत 0 से 5 वर्ष तक के बच्चों को घर घर जाकर पोलियो की दवा पिलाई गई। जिले में 1,02,918 बच्चों को पोलियो की दवा पिलाने के लिए 255 टीमों का गठन किया गया था। जिले में प्रधानमंत्री सूर्य घर मुक्त बिजली योजना का कार्य तेजी से किया जा रहा है। जिला पदाधिकारी ने कहा कि इस योजना के माध्यम से स्वच्छ और हरित ऊर्जा को बढ़ावा दिया जा रहा है, साथ ही आम उपभोक्ताओं को बिजली बिल को कम करने की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण पहल है। इधर जिले में उर्दू भाषा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 8 जुलाई को उर्दू भाषी छात्र छात्राओं के बीच वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन समाहरणालय के सभा कक्ष में किया गया। प्रतियोगिता में सैकड़ों छात्र छात्राओं ने भाग लिया। उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया। जिले में आगामी बाढ़ और सुखाड़ की संभावित स्थिति को देखते हुए SDRF बिहटा की टीम ने बंसी प्रखंड में तैयारियों को लेकर समीक्षा बैठक आयोजित की। इस दौरान नाव, लाइफ जैकेट, पोलोथीन सीट की उपलब्धता तथा गोताखोरों की क्षमता का आकलन किया गया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर अरवल जिले में कई स्थानों पर सामूहिक योग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। वहीं समाहरणालय पार्क में भी योग शिविर आयोजित किया गया। योग शिविर में जिला पदाधिकारी अमृषा बैंस, आरक्षी अधीक्षक डॉक्टर नवजोत सिम्मी सहित कई लोगों ने भाग लिया। इस दौरान लोगों को योग के माध्यम से स्वस्थ और निरोग रहने का संदेश दिया गया।
0: अभी आप सुन रहे थे अरवल जिले की हलचल। इसे प्रस्तुत कर रहे थे हमारे संवाददाता चंद्रभूषण कुमार।

0: ये
1: आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है। 7:52 होने को हैं। पेश है सुगम संगीत का कार्यक्रम सुरलहरी। आज इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे स्वामी प्रणवानंद से भजन।

सुगम संगीत के कार्यक्रम सुरलहरी में आप सुन रहे थे स्वामी प्रणवानंद को। प्रसारण आकाशवाणी के भागलपुर केंद्र से किया गया। 8 बज चुके हैं। पेश है फिल्मी गीतों का कार्यक्रम रजनीगंधा। आरंभ में सुनिए हमराज फिल्म का गीत, आशा भोसले और महेंद्र कपूर की आवाज़ों में। गीतकार हैं साहिर लुधियानवी और संगीतकार हैं रवि।

जोएल थिफ। इस फिल्म का नगमा सुनिए। किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज़ों में नगमा निगार हैं मजरूह सुल्तानपुरी और मौसिकार हैं एस डी बर्मन।

गुप्त फिल्म में सुनिए साधना सरगम और उदित्य नारायण को। आनंद बख्शी के लिखे गीत को संगीत से संवारा है वीजू शाह ने।

किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज़ों में आप सुन रहे थे गाइड फिल्म का गीत। इस गीत को लिखा था शैलेंद्र ने और धुन तैयार किया था सचिन देव बर्मन ने। अब सुनिए अख्तर रोमानी का लिखा गीत कल्याण ये आनंद जी के संगीत निर्देशन में। आवाज़ें हैं मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की। फिल्म का नाम है हसीना मान जाएगी।

लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ों में आप सुन रहे थे हम शक्ल फिल्म का गीत। इस गीत को लिखा था आनंद बख्शी ने और संगीत दिया था आर डी बर्मन ने। अब सुनिए महेंद्र कपूर और लता मंगेशकर को फिल्म गीत में। गीत के गीतकार हैं हसरत जयपुरी और संगीतकार हैं कल्याण जी आनंद जी।

लता मंगेशकर और महेंद्र कपूर को आप सुन रहे हैं। नागिन फिल्म में गीतकार हैं वर्मा मलिक और संगीतकार हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

रजनीगंधा कार्यक्रम में आप सुन रहे थे फिल्मी गीत, प्रसारण आकाशवाणी के भागलपुर केंद्र से किया गया। 8:45 होने को हैं, आप सुनेंगे दिल्ली से समाचार संध्या।

ओमान तट के पास वाणिज्यिक पोत पर हमले के बाद पश्चिम एशिया क्षेत्र में तुरंत तनाव कम करने का आह्वान किया। अमेरिका ने कहा हॉर्मुज जलडमरू मध्य सभी जहाजों के लिए खुला और अमेरिकी सेना नौवहन की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए तैयार। वियतनाम में नौका दुर्घटना में मारे गए 15 भारतीयों के पार्थिव शरीर हो ची मिन शहर पहुंचे, उन्हें जल्द से जल्द भारत लाया जाएगा। उत्तर प्रदेश ने एक दिन में 35 करोड़ से अधिक पौधे लगाकर पर्यावरण संरक्षण में नया इतिहास रचा। चीन में अंडर 23 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत ने 3 स्वर्ण सहित कुल 16 पदक जीते और लंदन में विंबलडन टेनिस प्रतियोगिता के पुरुष सिंगल्स फाइनल में यानिक सिनर और अलेक्जेंडर ज़वरेव का मैच जारी। और अब समाचार विस्तार से। भारत ने कहा है कि हॉर्मुज जलडमरू मध्य क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय जलमार्गों से मुक्त और बिना रुकावट

0: वाणिज्यिक जहाजों और नागरिक ठिकानों को निशाना बनाना बंद होना चाहिए। भारत ने ओमान तट के पास वाणिज्यिक पोत जीएफएस गैलेक्सी पर हमले की कड़ी निंदा की है। पोत पर सवार 11 भारतीयों में से 10 को सुरक्षित बचा लिया गया है, जबकि एक लापता है। ओमान में भारतीय दूतावास स्थिति पर लगातार नजर रखे हुए है और खोज तथा बचाव अभियान में ओमान के अधिकारियों के साथ समन्वय कर रहा है। सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
1: ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर द्वारा रणनीतिक जलमार्ग को अगले आदेश तक बंद करने की घोषणा के कुछ घंटों बाद अमरीकी सेंट्रल कमान ने कहा है कि होर्मुज जलडमरू मध्य सभी वैध आवागमन चाहने वाले जहाजों के लिए खुला है। ये बयान अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के संवाददाता सम्मेलन में ये कहने के बाद आया है कि होर्मुज जलडमरू मध्य वाणिज्यिक जहाजों के लिए खुला है। अमरीकी सेंट्रल कमान ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि जल डमरू मध्य से समुद्री यातायात सुचारू रूप से चल रहा है और अमरीकी सेनाएं ईरानी आक्रामकता, उत्पीड़न, धमकियों और मनमानी घोषणाओं के बावजूद नौवहन की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए तैनात हैं। उन्होंने कहा कि ईरान का होर्मुज जल डमरू मध्य पर कोई नियंत्रण नहीं है और सुरक्षित पारगमन मार्ग खुले हैं। इससे पहले ईरान द्वारा होर्मुज जलडमरू मध्य में एक वाणिज्यिक पोत पर हमला करने और उसे आग लगाकर चालक दल को जहाज छोड़ने के लिए मजबूर करने के बाद अमेरिका ने ईरान पर नए हवाई हमले किए। वियतनाम में नौका दुर्घटना में जान गंवाने वाले 15 भारतीय नागरिकों के पार्थिव शरीर हो ची मिन शहर पहुंच गए हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में दूतावास ने बताया कि आवश्यक औपचारिकताएं पूरी होने के बाद पार्थिव शरीरों को यथाशीघ्र भारत भेजा जाएगा। हो ची मिन शहर स्थित भारतीय महावाणिज्य दूतावास वियतनाम के अधिकारियों के साथ लगातार संपर्क बनाए हुए है। इस नाव में 32 भारतीय पर्यटकों सहित 36 लोग सवार थे। दुर्घटना में घायल 16 भारतीय स्वदेश लौट रहे हैं। गंभीर रूप से घायल एक व्यक्ति का वियतनाम के फूकवाक स्थित अस्पताल में उपचार चल रहा है। इस बीच वियतनाम के प्रधानमंत्री ली मिन होंग ने दुर्घटना की जांच के आदेश दिए हैं। अमेरिका, ब्रिटेन और 12 अन्य पश्चिमी तथा एशियाई देशों ने 2016 के मध्यस्थता निर्णय के आधार पर दक्षिण चीन सागर में चीन के व्यापक दावों को अवैध बताया है। इन 14 देशों के संयुक्त बयान में कहा गया है कि विवादित जल क्षेत्र में क्षेत्रीय स्थिरता को खतरे में डालने वाली कार्रवाई अस्वीकार्य है। 27 देशों वाले यूरोपीय संघ के बयान में इसे विवादों के शांतिपूर्ण समाधान की दिशा में ऐतिहासिक निर्णय बताया गया है।
2: इन बयानों में 12 जुलाई 2016 को हेग में संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून सम्मेलन के तहत स्थापित न्यायाधिकरण के मध्यस्थता निर्णय का जिक्र किया गया है। उन्होंने इस ऐतिहासिक निर्णय को अंतिम और कानूनी रूप से बाध्यकारी बताया है। हालांकि चीन ने इस निर्णय को खारिज करते हुए इसे अमान्य बताया। उसने कहा कि इसका कोई बाध्यकारी प्रभाव नहीं है। चीन ने दोहराया कि वह इसे ना तो स्वीकार करता है और ना ही मान्यता देता है। एक वर्ष पहले विवादित जल क्षेत्र में तनावपूर्ण गतिरोध के बाद दक्षिण चीन सागर तनाव का प्रमुख केंद्र बना हुआ है। यहां चीन और फिलीपींस, वियतनाम, मलेशिया, ब्रुनेई और ताइवान के बीच बार बार क्षेत्रीय गतिरोध होते रहते हैं। समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। देशभर में पौधे लगाने के लिए आज व्यापक अभियान चलाया गया। इसके तहत उत्तर प्रदेश ने एक दिन में 35 करोड़ से अधिक पौधे लगाकर पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में नया इतिहास रचा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में लिंक एक्सप्रेसवे के निकट नीम, पीपल और बरगद के पौधे लगाकर राज्यव्यापी पौधारोपण महायज्ञ का शुभारंभ किया।
3: कार्यक्रम के दौरान जनभवन की नक्षत्र वाटिका में कुल 29 चंदन के पौधे लगाए गए। पौधारोपण अभियान में जनभवन के अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ साथ बालिका गृह की लड़कियों ने भी हिस्सा लिया। इस अभियान में कई मंत्रियों और जनप्रतिनिधियों के साथ साथ स्वयंसेवी संस्थाओं के सदस्यों, विभिन्न विभागों के लोगों, विद्यार्थियों और आम जनता ने भी भाग लिया। ये अभियान राज्य के 75 जिलों में चलाया गया। राज्य ने इस वर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर 5 करोड़ से ज्यादा पौधे भी लगाए। उत्तर प्रदेश में इस साल अब तक कुल 40 करोड़ 29 लाख पौधे लगाए जा चुके हैं। यह अभियान 27 विभागों के आपसी सहयोग से चलाया गया, जिसमें वन विभाग ने 15.5 करोड़ पौधे लगाने का सबसे बड़ा लक्ष्य पूरा किया। लखनऊ से सुशील तिवारी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से रेशमा तिवारी।
1: मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने आज इंदौर में एक पेड़ मां के नाम वृक्षारोपण अभियान का शुभारंभ

0: किया। इसका लक्ष्य राज्यभर में 21 लाख पौधे लगाना है। इस अभियान के अंतर्गत 51,000 वर्षा जल संचयन इकाइयां स्थापित करने की भी योजना है। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि टिकाऊ भविष्य सुनिश्चित करने और पर्यावरण संरक्षण के लिए पौधे लगाना बेहद महत्वपूर्ण है। नई दिल्ली में वृक्ष मित्र और पर्यावरण संरक्षण संकल्प कार्यक्रम में श्री चौहान ने कहा कि आज पूरा विश्व जलवायु परिवर्तन और पृथ्वी का तापमान बढ़ने से चिंतित है।
1: जैसे जैसे तापमान बढ़ेगा, जलवायु संकट गहराएगा और ये नुकसान 2100 तक बढ़कर जीडीपी में जो कमी हो रही 20% तक पहुंच सकता है। आप कल्पना कीजिए क्या होगा। यह आर्थिक संकट इतना बड़ा होगा कि इसको मुकाबला करना फिर कठिन हो जाएगा। और इसलिए वर्तमान दर से अगर ग्रीन गैसों का उत्सर्जन जारी रहा तो 2050 तक पृथ्वी को गंभीर पर्यावरणीय, आर्थिक और सामाजिक चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा।
0: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज अहमदाबाद में नगर निगम के 405 करोड़ रुपए की लागत की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस अवसर पर श्री शाह ने एक पेड़ मां के नाम अभियान के अंतर्गत विशाल पौधारोपण अभियान का शुभारंभ भी किया। इस अभियान के तहत आज उनके लोकसभा क्षेत्र गांधीनगर में 1,25,00,000 से ज्यादा पौधे लगाए गए। हमारी संवाददाता ने बताया कि गृहमंत्री ने 2029 के चुनाव तक निर्वाचन क्षेत्रों में पौधे लगाने की गतिविधि को 20% तक बढ़ाने की दीर्घकालिक पर्यावरणीय रूपरेखा पर बल दिया।
2: गृहमंत्री ने बरगद, पीपल, जामुन और अर्जुन जैसे स्वदेशी पौधे लगाने पर जोर दिया, जिससे शहर के तापमान में 5% की कमी आएगी और भावी पीढ़ियों के लिए एक रहने योग्य पर्यावरण सुनिश्चित होगा। उन्होंने पर्यावरण स्थिरता में योगदान देने के लिए हर घर और आवासीय सोसाइटी से सोलर रूफटॉप अपनाने का भी आह्वान किया। इस पर्यावरण अभियान के तहत आज 101 नए ऑक्सीजन पार्क का भी उद्घाटन किया गया और उनकी जानकारी देने वाली एक विशेष ई बुक भी जारी की गई। सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देने के लिए AMTS और BRTS के बेड़े में आज 333 नई इलेक्ट्रिक बसें शामिल की गई, जिससे अहमदाबाद BRTS देश का पहला 100% इलेक्ट्रिक और शून्य प्रदूषण वाला बेड़ा बन गया है। अपर्णा खूंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। भारत ने चीन के ओर्डोस में खेली जा रही एशियाई अंडर 23 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में अपना अभियान 16 पदकों के साथ संपन्न किया। इनमें 3 स्वर्ण, 4 रजत और 9 कांस्य पदक शामिल हैं। भारत ने आज अंतिम दिन 2 स्वर्ण और 2 रजत और 1 कांस्य पदक जीता। भारतीय महिला टीम ने 4x400 रिले में स्वर्ण पदक जीता, जबकि भाला फेंक में भारत के आनंद सिंह ने स्वर्ण और शिवम लोहाकरे ने कांस्य पदक हासिल किया। भारतीय पुरुष टीम ने 4x400 रिले और महिला टीम ने 4x400 मीटर रिले में रजत पदक जीते। विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट में पुरुष सिंगल्स का फाइनल मुकाबला इटली के यानिक सिनर और जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़ेवरेव के बीच जारी है। इससे पहले चीन की गुओ हानयू ने और फ्रांस की क्रिस्टीना मिलाडेनोवा की जोड़ी ने महिला डबल्स का खिताब जीता। उन्होंने फाइनल्स में कनाडा की गैब्रियला डाब्रोवस्की और ब्राजील की लुइसा स्टेफनी को 6-3, 7-5 से पराजित किया। उधर लंदन के लॉर्ड्स में भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने इंग्लैंड को एकमात्र टेस्ट में 457 रन का लक्ष्य दिया है। जवाब में तीसरे दिन इंग्लैंड ने ताजा समाचार मिलने तक 3 विकेट पर 23 रन बना लिए हैं। इससे पहले भारत ने अपनी दूसरी पारी 7 विकेट पर 341 रन बनाकर घोषित कर दी। इंग्लैंड की टीम पहली पारी में 170 रन की बना सकी। सरकार ने इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल से वाहन के ईंधन टैंक की सीमित समस्या संबंधी दावे का खंडन किया है। सोशल मीडिया पोस्ट पर वायरल फर्जी तस्वीर में ऐसा दावा किया गया है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने इस दावे को झूठा बताया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि तेल विपणन कंपनियों द्वारा आपूर्ति किया जा रहा E20 पेट्रोल भारतीय मानक ब्यूरो के निर्धारित मानकों के अनुरूप है। निर्धारित मानकों के अनुरूप होने पर इथेनॉल और पेट्रोल पूरी तरह से घुलनशील है। नई पीढ़ी के प्रशासनिक और ई गवर्नेंस सुधारों के विषय पर 2 दिन का राष्ट्रीय सम्मेलन कल से मेघालय के शिलांग में शुरू हो रहा है। प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग द्वारा मेघालय सरकार इसका आयोजन कर रखे हैं। ये सम्मेलन देश भर के नीति निर्माताओं, प्रशासकों, प्रौद्योगिकी विशेषज्ञों और शासन से जुड़े लोगों को एक मंच पर लाएगा ताकि वो लोक प्रशासन और डिजिटल गवर्नेंस के भविष्य पर चर्चा कर सकें। सम्मेलन में 300 से अधिक प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे। आवासन और शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल ने निर्माण क्षेत्र में पर्यावरण अनुकूल तकनीक अपनाने की आवश्यकता पर बल दिया। नई दिल्ली में केंद्रीय लोक निर्माण विभाग के 172वें स्थापना दिवस के अवसर पर आयोजित समारोह में केंद्रीय मंत्री ने कहा कि किसी भी भवन या संरचना के निर्माण के दौरान उसकी मजबूती से समझौता नहीं किया जाना चाहिए। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल कल से 17 जुलाई तक स्पेन, बेल्जियम और फिनलैंड की यात्रा पर रहेंगे। इस दौरान वो भारतीय उद्योग जगत के उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व भी करेंगे। इस यात्रा का उद्देश्य व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी, नवाचार और टिकाऊ विकास पर विशेष ध्यान देते हुए यूरोप के साथ भारत की आर्थिक साझेदारी को मजबूत करना है। यात्रा के पहले चरण में श्री गोयल कल स्पेन पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 16 तारीख को आकाशवाणी के मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात में देश और विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। ये इस कार्यक्रम का 136वां एपिसोड होगा। श्रोता टोल फ्री नंबर 1800117800 पर कार्यक्रम के लिए अपने विचार और सुझाव भेज सकते हैं। वो नरेंद्र मोदी ऐप या MyGov ओपन फोरम के माध्यम से भी ऑनलाइन अपने सुझाव दे सकते हैं। नागरिक 1922 नंबर पर मिस्ड कॉल देकर और SMS से प्राप्त लिंक का अनुसरण करके सीधे प्रधानमंत्री को अपने सुझाव भेज सकते हैं। आगामी एपिसोड के लिए सुझाव इस महीने की 24 तारीख तक स्वीकार किए जाएंगे। श्रम और रोजगार मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया मंगलवार को देश भर में लगभग 668 करोड़ रुपए लागत वाली 7 कर्मचारी राज्य बीमा ESI स्वास्थ्य परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत ने ओमान तट के पास वाणिज्यिक पोत पर हमले के बाद पश्चिम एशिया क्षेत्र में तुरंत तनाव कम करने का आह्वान किया। अमरीका ने कहा होर्मुज जल डमरू मध्य में सभी जहाजों के लिए खुला और अमरीकी सेना नौवहन की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए तैयार। वियतनाम में नौका दुर्घटना में मारे गए 15 भारतीयों के पार्थिव शरीर हो ची मिन शहर पहुंचे, उन्हें जल्द से जल्द भारत लाया जाएगा। उत्तर प्रदेश ने एक दिन में 35 करोड़ से अधिक पौधे लगाकर पर्यावरण संरक्षण में नया इतिहास रचा। चीन में अंडर 23 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत ने 3 स्वर्ण सहित कुल 16 पदक जीते और लंदन में विंबलडन टेनिस प्रतियोगिता के पुरुष सिंगल्स फाइनल में यानिक सिनर और अलेक्जेंडर ज़ेवरेव का मैच जारी। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

मीडियम वेव 205.76 मीटर अर्थात 1458 किलोहर्ट्ज़ एवं एफएम बैंड के 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के भागलपुर केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 9:30 हुए हैं। पेश है फिल्म संगीत।

0: जंजीर फिल्म में आप सुन रहे थे मन्ना डे को। इस कव्वाली को लिखा था गुलशन बावरा ने और संगीत दिया था कल्याण जी आनंद जी ने। अब सुनिए हंसते जख्म फिल्म की कव्वाली मोहम्मद रफ़ी, बलवीर और साथियों की आवाज़ों में। कलाम है कैफी आज़मी का और संगीत है मदन मोहन का।
1: हाय

रवि के संगीत निर्देशन में साहिर लुधियानवी का लिखा कलाम सुनिए। इसे हमने लिया है वक्त फिल्म से। आवाज़ है मन्ना डे।

0: तुझे तू भी न जाने,
1: बदन मेरा है गुलदन,
0: मेरा दिल भी है चंदन,
1: मैं चंदन की खुशबू हूँ,
0: मैं चंदन हूँ बहुत।

धर्मा फिल्म की कव्वाली आप सुन रहे थे मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले की आवाज़ों में। इसे लिखा था वर्मा मलिक ने और धुन तैयार की थी सोनी ओमी ने। और अब कार्यक्रम के अंत में सुनिए कर्मयोगी फिल्म की ये कव्वाली, जिसे गाया है आशा भोसले, किशोर कुमार और मोहम्मद रफ़ी ने। कलाम है वर्मा मलिक का और संगीत दिया है कल्याण जी आनंद जी ने।

आकाशवाणी भागलपुर से आप सुन रहे थे फिल्म संगीत। रात्रि के 10 बजने को हैं, दिल्ली से सुनिए अखिल भारतीय रविवासरीय संगीत सभा।

0: आज प्रस्तुत है श्री कुमार मर्डुर का गायन। संगीत नाटक अकादमी की ओर से उस्ताद बिस्मिल्ला खान युवा पुरस्कार पा चुके कुमार मर्डुर हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के एक प्रखर गायक के रूप में जाने जाते हैं। किराना और ग्वालियर घराने की गहरी समझ के साथ साथ अपने पिता पंडित सोमनाथ मर्डुर से मिली तालीम ने उनकी गायकी को एक अनोखा अंदाज दिया है। दिग्गज उस्तादों की प्रेरणा से सजी उनकी इस गायकी में जयपुर, अतरौली और अन्य घरानों की झलक भी मिलती है। एक बहुमुखी कलाकार और संगीतकार के रूप में कुमार मर्डुर ख्याल, ठुमरी, हिंदी भजन, मराठी अभंग, कन्नड़ दास साहित्य, कन्नड़ वचन साहित्य और कई अन्य संगीत परंपराओं का अन्वेषण करते हैं। आकाशवाणी और दूरदर्शन के ए ग्रेड कलाकार कुमार ने देश भर के कई प्रतिष्ठित संगीत समारोहों में अपनी प्रस्तुति दी है।
1: दिस इज आकाशवाणी। इन टुनाइट्स रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा वी ब्रिंग यू अ वोकल रिसाइटल बाय श्री कुमार मर्डुर, अवार्डेड द उस्ताद बिस्मिल्ला खान युवा पुरस्कार बाय द संगीत नाटक अकेडमी। कुमार मर्डुर स्टैंड्स आउट एज अ गिफ्टेड हिंदुस्तानी क्लासिकल वोकलिस्ट। हिज ग्राउंडिंग इन द किराना एंड ग्वालियर घरानास अलोंग विद ट्रेनिंग अंडर हिज फादर पंडित सोमनाथ मर्डुर हैज लेड टू अ यूनिक गायकी दैट वीव्स इन एलिमेंट्स फ्रॉम जयपुर, अतरौली एंड अदर घरानास बिल्ट ऑन डीप रियाज एंड इंस्पिरेशन फ्रॉम लेजेंडरी मेस्ट्रोस। A multifaceted performer and composer, Kumar explores khayal, thumri, Hindi bhajans, Marathi abhangs, Kannada dasa sahitya, Kannada vachana sahitya and many other traditions. An A-grade artist of Akashvani and Doordarshan, Kumar has performed throughout the country in various prestigious concerts.
0: Aaj ke is karyakram mein aapke saath tabla par Pandit Satlingappa Desai Kallur aur हारमोनियम पर श्री पंचाक्षरी हिरेमठ साथ दे रहे हैं। श्री कुमार मर्डुर अपने कार्यक्रम का प्रारंभ राग छायानट से कर रहे हैं। विलंबित झुमरा इनायत हो, द्रुत तीन ताल एरी मालनिया, द्रुत तीन ताल तराना।
1: इन टुनाइट्स प्रोग्राम ही इज अकंपनीड ऑन द तबला बाय पंडित सातलिंगप्पा देसाई कल्लूर एंड ऑन द हारमोनियम बाय श्री पंचाक्षरी हिरेमठ। Shri Kumar Mardur will begin his vocal recital with Raag Chhayanat, Vilambit Jhumra, Inayatahu, Drut Teen Taal, Eri Maliniya, followed by Tarana in Drut Teen Taal.

0: अभी आपने सुना राग छायानट। अब श्री कुमार मल्डूर प्रस्तुत कर रहे हैं राग बागेश्री। विलंबित एकताल सकी मना लागिना, द्रुत एकताल बिनती करता।
1: यू जस्ट हर्ड राग छायानट। श्री कुमार मल्डूर विल नाउ प्रेजेंट राग बागेश्री। विलंबित एकताल सखी मना लागेना, द्रुत एकताल बिनती करता।

0: अब तक आप सुन रहे थे राग बागेश्वरी। इसी के साथ आज की रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा संपन्न होती है, जिसमें आप सुन रहे थे श्री कुमार मरडूर का गायन। आपके साथ तबले पर पंडित सातलिंगप्पा देसाई कल्लूर और हारमोनियम पर श्री पंचाक्षरी हिरेमठ साथ दे रहे थे।
1: That was Rag Bageshri. With that, we come to the end of tonight's Ravivasariya Akhila Bharatiya Sangeet Sabha, in which you were listening to a vocal recital by Shri Kumar Maradur. He was accompanied on the tabla by Pandit Satlingappa Desai Kallur and on the harmonium by Shri Panchakshari Hiremath.
0: यह कार्यक्रम आकाशवाणी के धारवाड केंद्र में रिकॉर्ड किया गया और आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।
1: This program was earlier recorded at Akashvani Dharwad and relayed from Akashvani Delhi.
2: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, DRM 810 किलोहर्ट्ज़ पर। अब से कुछ ही देर बाद आप सुनेंगे समाचार, कृपया समाचारों की प्रतीक्षा कीजिए।
3: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अरुण कुमार। भारत ने कहा है कि होर्मुज जल डमरू मध्य क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय जल मार्गों से मुक्त और बिना रुकावट के नौवहन और वाणिज्य जहाजों को जल्द से जल्द बहाल किया जाना चाहिए। विदेश मंत्रालय के बयान में इस क्षेत्र में वाणिज्यिक जलपोतों पर लगातार हमलों की घटनाओं पर चिंता प्रकट की गई है।
4: भारत ने तनाव को तुरंत कम करने और कूटनीतिक समाधान के लिए बातचीत को शीघ्र निष्कर्ष तक पहुंचाने की मांग दोहराई है, ताकि इस इलाके में शांति और स्थिरता कायम की जा सके। विदेश मंत्रालय ने यह भी कहा कि इस क्षेत्र में वाणिज्यिक जहाजों और नागरिक ठिकानों को निशाना बनाना बंद होना चाहिए। भारत ने ओमान तट के पास वाणिज्यिक पोत GFS गैलेक्सी पर हमले की कड़ी निंदा की है। पोत पर सवार 11 भारतीयों में से 10 को सुरक्षित बचा लिया गया है, जबकि एक लापता है। ओमान में भारतीय दूतावास स्थिति पर लगातार नजर रखे हुए है और खोज तथा बचाव अभियान में ओमान के अधिकारियों के साथ समन्वय कर रहा है। सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
3: ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर द्वारा रणनीतिक जलमार्ग को अगले आदेश तक बंद करने की घोषणा के कुछ घंटों बाद अमेरिकी सेंट्रल कमान ने कहा कि होर्मुज जलडमरू मध्य सभी वैध आवागमन चाहने वाले जहाजों के लिए खुला है। यह बयान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के संवाददाता सम्मेलन में ये कहने के बाद आया कि होर्मुज जलडमरू मध्य वाणिज्यिक जहाजों के लिए खुला है। अमेरिकी सेंट्रल कमान ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि जल डमरू मध्य से समुद्री यातायात सुचारू रूप से चल रहा है और अमेरिकी सेनाएं ईरानी आक्रामकता, उत्पीड़न, धमकियों और मनमानी घोषणाओं के बावजूद नौवहन की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए तैनात हैं। ईरान ने बहरीन, कुवैत, कतर और संयुक्त अरब अमीरात को निशाना बनाकर मिसाइल और ड्रोन हमले किए। ईरान ने जॉर्डन में एक अमेरिकी सैन्य अड्डे पर भी हमला करने का दावा किया। इस तनाव ने क्षेत्रीय सुरक्षा और वैश्विक ऊर्जा बाजारों को लेकर चिंताएं बढ़ा दी हैं। वियतनाम में नौका दुर्घटना में जान गंवाने वाले 15 भारतीय नागरिकों के पार्थिव शरीर हो ची मिन शहर पहुंच गए हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में दूतावास ने बताया कि आवश्यक औपचारिकताएं पूरा होने के बाद पार्थिव शरीरों को यथाशीघ्र भारत भेजा जाएगा। हो ची मिन शहर स्थित भारतीय महावाणिज्य दूतावास वियतनाम के अधिकारियों के साथ लगातार संपर्क बनाए हुए है। इस नाव में 32 भारतीय पर्यटकों सहित 36 लोग सवार थे। दुर्घटना में घायल 16 भारतीय स्वदेश लौट रहे हैं। गंभीर रूप से घायल एक व्यक्ति का वियतनाम के फूसकॉक स्थित अस्पताल में उपचार चल रहा है। इस बीच वियतनाम के प्रधानमंत्री ली मिन हंग ने दुर्घटना की जांच के आदेश दिए हैं। देश भर में पौधे लगाने के लिए आज व्यापक अभियान चलाया गया। इसके तहत उत्तर प्रदेश ने एक दिन में 35 करोड़ से अधिक पौधे लगाकर पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में नया इतिहास रचा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में लिंक एक्सप्रेसवे के निकट नीम, पीपल और बरगद के पौधे लगाकर राज्यव्यापी पौधारोपण महायज्ञ का शुभारंभ किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज अहमदाबाद में नगर निगम की 405 करोड़ रुपए की लागत की विरासत परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस अवसर पर श्री शाह ने एक पेड़ माँ के नाम अभियान के अंतर्गत विशाल पौधारोपण अभियान का शुभारंभ भी किया। इस अभियान के तहत आज उनके लोकसभा क्षेत्र गांधीनगर में 1,25,00,000 से ज्यादा पौधे लगाए गए। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने आज इंदौर में एक पेड़ माँ के नाम वृक्षारोपण अभियान का शुभारंभ किया। इसका लक्ष्य राज्यभर में 21 लाख पौधे लगाना है। इस अभियान के अंतर्गत 51,000 वर्षा जल संचयन इकाइयां स्थापित करने की योजना है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में कल एमपी टेक ग्रोथ कॉन्क्लेव के तीसरे संस्करण का आयोजन किया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इसका शुभारंभ करेंगे। इसका उद्देश्य वैश्विक क्षमता केंद्र, डेटा केंद्र और सेमीकंडक्टर क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देना है। प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग मेघालय सरकार के सहयोग से कल शिलांग में नेक्स्ट जनरेशन प्रशासनिक और ई गवर्नेंस सुधार विषय पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कर रहा है। भारत ने चीन के आउटडोर्स में खेली जा रही एशियाई अंडर 23 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में अपना अभियान 16 पदकों के साथ संपन्न किया। इनमें 3 स्वर्ण, 4 रजत और 9 कांस्य पदक शामिल हैं। भारत ने आज अंतिम दिन 2 स्वर्ण और 2 रजत और 1 कांस्य पदक जीता। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।